राम जी ने मुस्कुराकर कहा, मां आपने ऐसा क्या हम में देखा जो तुम्हारे पति से ज्यादा अलग है? पता है क्या बोली मंदोदरी? ध्यान से सुनना भारत के लोगों, मंदोदरी हाथ जोड़कर और चिघारती हुई रोती कहती, राम एक मेरा पति था जो दूसरे की स्त्री को अपना बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो जो स्त्री की छाया देख करके माँ का संबंध जोड़ लेते हो। यही अलग बात, यही अनूठी बात थी राम, इसीलिए मेरा पति हारा है और तुम्हारी विजय हुई। मेरे भारत के लोगों, प्रभु श्री राम इतने मर्यादित हैं, इनकी मर्यादा के सामने कोई नहीं टिक पाया।

जी के जीवन काल की दूसरी कथा। राम जी जब जनकपुर जाने लगे, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या

पत्थर बनी हुई शिला को देखकर गुरुदेव से पूछ लिया, ये कौन है? तो गुरुजी मुस्कुराकर बोले, जिस पर किसी की नजर नहीं गई उस पर आपकी नजर चली गई, मतलब अब आपकी नजर से इसकी नजर में कमाल हो गया, अब ये शिला नहीं रह पाएगी। नाथ आप पहचान गए, आपने ठीक पूछा ये कौन है, ये बड़ी बदकिस्मती गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये पत्थर बनी हुई क्यों है, शिला क्यों बनी? श्राप के कारण। अच्छा हाँ, तो महाराज हम क्या करें? गुरुजी मुस्कुरा करके बोले।

हे राम, ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती। राम जी कहते हैं, गुरुदेव हम क्षत्रिय हैं, ये ऋषि की पत्नी है, हम अपना चरण रखेंगे, पाप नहीं पड़ेगा, और स्त्री के ऊपर चरण रखेंगे, क्या क्या मर्यादा हमारी बन पाएगी? हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं, हमारी मर्यादा टूट जाएगी। गुरु जी बोले, राम अगर तुम चरण रज नहीं दोगे तो इसका उद्धार भी तो नहीं होगा। अब देखना राम जी की कला, राम जी कितने नारी उपासक हैं, राम जी कितने स्त्रियों का सम्मान करते हैं। जरा इस कथा को गौर से सुनना मेरे पागलों। राम जी ने समाधान निकाला, राम जी ने चरण नहीं रखे, पता है क्या किया राम जी ने? चरण उठाया, हवा की तरफ इशारा किया, पवन का झोंका लगा और भगवान के चरणों की रज उड़कर उस गौतम ऋषि की नारी शिला के ऊपर पड़ गई, और जैसे ही पड़ी तो उसका उद्धार हो गया। इतने मर्यादित हैं, इतने मर्यादित प्रभु श्री राम। मेरे पागलों, प्रभु श्री राम से यह पांचवी शिक्षा पूरे विश्व को, लोगों को लेना चाहिए कि हमेशा अपनी माता का, बहन का, और भारत में रहने वाली सभी नारियों का सम्मान करना चाहिए। भारत में नारियां देवी का रूप मानी जाती हैं, और इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता, जहां स्त्रियां भोग हेतु नहीं अपितु स्त्रियों को मातृत्व का दर्जा दिया जाता है। भारत कोई साधारण देश नहीं है, कान खोलकर सुन लो, भारत के ऊपर उंगली उठाने वाले और भारत के साथ दोगलापंती करने वाले लोगों, भारत कोई साधारण नहीं है, भारत मातृत्व प्रधान देश है। भारत में गाय माता है, भारत में गंगा माता है, भारत में गीता माता है, और भारत स्वयं ही माता है। इसलिए हम लोग क्या कहते, भारत माता की कहते या नहीं? हाँ जी या ना? अरे जोर से बोलो। अच्छा, तुमने कभी सुना चीन माता? तुमने पाकिस्तान माता सुना? वेस्टर्न डीज माता सुना? लेकिन भारत माता तो सुना? इससे सिद्ध हो गया कि भारत ही माता है, बाकी सब बेटा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, है भारत माता है, ये प्रभु श्री राम से सीखना। तो पांचवी शिक्षा है मर्यादा मय श्री राम, राम जी मर्यादा मय है। अच्छा, छठवीं शिक्षा क्या है? राम जी की छठवीं शिक्षा है समानता। क्या है? जोर से बोलो। समानता का मतलब होता एकता। एक बात समझो, बुरा न मानना, आदमी जो मर जाता है ना तो वो सोचता है ना वो बोलता है, ना वो बोल पाता ना वो सोच पाता, और जो जिंदा होते हुए भी सत्य को सत्य ना कह पाए और राम जी के लिए ना सोच पाए, वो जीते जी मरा हुआ ही मान लेना चाहिए। बोलो सीताराम। तो राम जी का एक संकल्प और सीख लीजिए, राम जी सबके हैं। किसके हैं? जोर से बोलो, किसके हैं राम जी? केवल देखो, भगवान हमारे हैं, ये बढ़िया भाव है, लेकिन भगवान केवल हमारे हैं ये गड़बड़ भाव है। केवल भगवान हमारे नहीं है, भगवान सबके हैं। और राम जी ने एक काम किया, हमसे एक व्यक्ति पूछ रहा था, महाराज 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है, बताओ 500 साल बाद बन रहा है, राम जी को बनवाना होता पहले ही बनवा देते। हमने कहा ठटरी के बरे, राम जी को तो राजा उसी वक्त

बनना था, लेकिन 14 साल का वनवास पता है क्यों लिया? बोले क्यों लिया? हमने कहा निषाद का मान बढ़ाने के लिए, केवट की नाव पर जाने के लिए और सबरी के घर जूठे बेर पहले खाना था, फिर प्रभु श्री राम को अयोध्या का राजा और राज्य चलाना था। पहले उन्होंने निषाद का मान बढ़ाया, केवट की नाव पर बैठे। अच्छा, केवट की नाव पर, अरे कभी कभी भगवान को भी भग

बताइए, जो दुनिया को पार कर रहे उन्हें भी पार होने की जरूरत पड़ती है। क्या उन्हें पार होने की जरूरत है जो दुनिया को पार कर रहे? नहीं नहीं नहीं, उन्हें पार होने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो पार करने वाले मल्लाह यानी केवट का मान बढ़ाने के लिए केवट की नाव पर बैठ जाते हैं। सबरी माता कहती है क्या, रामा रामा रटते रटते। अरे जरा जोर से गाइए,

सुनने वाले कथा में बैठे पागलो, तुम्हारी जिंदगी में भी एक दिन राम आएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कथा के प्रति जो श्रद्धा है, तुम्हारी जो कथा के प्रति लगाव है, हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, जाओ तुम्हारी जिंदगी में सदा उजियारा बना रहे। सबरी माता एकता का प्रतीक है, निषाद राज की मित्रता एकता का प्रतीक है, केवट का मान बढ़ाना एकता का प्रतीक है। मेरे पागलो, यही भारत की अखंडता है, यही भारत की संप्रभुता है, यही भारत की एकता है। प्रभु श्री राम ने सबरी के मान को बढ़ाकर भारत में एकता का एक नया नारा दिया है। ये राम जी से छठवीं बात सीखनी चाहिए। बोलो सीखनी चाहिए या नहीं, जोर से बोलो। जो नहीं सीखते उनका हाल पता है क्या होता, पूछो क्या होता। एक बार एक मुंबई का चंगीलाल, हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल नाला सुपारा में ले रहा है, नाला सुपारा यही बंबई में रहता, नाम चंगीलाल। ट्रेन पे बैठा मुंबई से, जाना था दिल्ली, काले खां दिल्ली, ट्रेन में बैठा, भयंकर भीड़। भीड़ को देखकर चंगीलाल का दिमाग खराब, लेकिन मुंबई का आदमी दिमाग का बहुत तेज, बहुत तेज दिमाग, मुंबई में है ये दिमाग। उसने सोचा सीट है नहीं, बैठना है, क्या किया जाए। उसने एक युक्ति सूझी, उपाय। उस चिल्लाया, भागो भागो, सांप है सांप है सांप। आ पूरा डिब्बा खाली, सीटें खाली, लोग गिर गए, हाथ पांव टूट गए, पर डिब्बा खाली। इसने कहा जय सिद्धि विनायक गणेश भगवान, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, पूरी सीटें खाली। इसने कहा अब बढ़िया रात कटेगी। बिस्तर लिया, सो गया। सुबह हुई, रेलवे स्टेशन पर चाय ले लो चाय। इसने आवाज लगाई, चाय ले आओ, 5 का रुपया निकाला। कौन सी स्टेशन आ गई, बोले ये तो मुंबई ही है। इसका दिमाग खराब, रात को हम बैठे कहां से थे। मन में सोचने लगा बैठे भी तो मुंबई से, फिर रात भर में पहुंचे कहां, मुंबई। दिमाग खराब। चाय वाले से बोला एक बात बताओ, कल हम शाम को 7 बजे ट्रेन पर बैठे थे, यही मुंबई से ही बैठे थे, दिल्ली जाना था, दिल्ली ये रेलगाड़ी डिब्बी दिल्ली नहीं गई। चाय वाला बोला बाबूजी क्षमा करना, रात को इस डिब्बे में सांप निकल आया तो डब्बा को यहीं छोड़ दिया गया है। यही छोड़ दिया शाम निकलने के कारण। ऐसे लोगों की यही दुर्दशा होती है, जो राम जी के जीवन को नहीं समझते, राम जी के चरित्र को नहीं समझते, उनको भी यही छोड़ दिया जाता है, वह पर वहां नहीं पहुंच सकते। याद रखना, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक से ज्यादा भगवान की कथा जरूरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। मेरी झोपड़ी के सबरी माता अखंडता एकता का प्रतीक है, निषाद राज की मित्रता अखंडता एकता का प्रतीक है। ये राम जी से छठवां गुण सीखो। अब सातवां गुण सुन लीजिए, राम जी का सातवां गुण है भक्त की खोज। किसकी खोज, जोर से बोलिए। राम जी ने भक्तों की खोज की है, भक्तों ने भगवान की नहीं की। आहा, रामायण पढ़िएगा। पहली खोज जटायु जी की किसने की, किसने की, राम जी ने पैदल चल करके। गीधा देह तज धरे हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। पहली खोज गीधराज जटायु की राम जी ने की। दूसरा भक्त कौन, आ हा हा हा हा, दूसरे भक्त के रूप में तो अपने ही भाई साहब, कौन, बोलिए बोलिए बोलिए बोलिए। आ हनुमान जी महाराज, सबरी माता, निषाद राज, केवट राज, हनुमान जी, जटायु जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, इन सबकी खोज राम जी ने ही की, स्वयं चल कर के गए। किसी ने कहा कहां जा रहे, आगे जा रहे भक्तों के पास। अरे या जितना हमसे मिलने के लिए भक्त ललायत रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम अपने भक्तों से मिलने के लिए ललायत होते हैं। बोलो सीताराम।
जोर से बोलो। इसलिए जो भी साधक भक्ति करता, महात्माओं का संग करता, भक्ति के रंग में रंगा रहता, उसके जीवन में उमंग तो रहती ही है। उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान चल करके उसके घर पर आते हैं। आठवां गुण राम जी का सुनिए। आठवां गुण है माता पिता गुरु के आज्ञाकारी हैं। किसके आज्ञाकारी हैं? माता पिता गुरुदेव के। रामायण पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में राम जी की महिमा है, जरा सुनिएगा। चौपाई कहती है,

0: जी का आठवां गुण है माता पिता गुरुदेव के आज्ञाकारी हैं। किसके आज्ञाकारी हैं? हम लोग माता पिता को तो मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। हम लोग गुरु जी को तो मानते हैं, गुरु जी की नहीं मानते हैं। हमारे दादाजी हमसे कहते थे, बेटा जमाना उल्टा है। हमने कहा क्या? बोले जियत पिता को दीन ना नीर, मृतक पिता को हलुआ खीर। हमने कहा मतलब गुरुजी? तो मुस्कुराते हुए हमारे दादाजी बोले, बेटा भारत बड़ा अद्भुत देश है, जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाया जाता है, मरे हुए बाप को पितर पक्ष में हलुआ।
1: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल। सूर्य देव की चाल से किसको मिलेगा वरदान और किसकी समस्याओं का होगा समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: भक्ति और उत्साह के साथ चारधाम यात्रा जारी, 13 लाख के पार पहुंची यात्रियों की संख्या, केदारनाथ में सबसे ज्यादा 5.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। अमरावती में पुलिस आयुक्त की बड़ी पहल, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बांटे गए एयर कूल जैकेट, भीषण गर्मी में ड्यूटी करने में आसानी। आईफिल टावर की ओरिजिनल घुमावदार सीढ़ियों की नीलामी, 1,20,000 से 1,50,000 यूरो कीमत, 2008 में भी हुई थी सीढ़ियों के खास हिस्से की नीलामी। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो 2, जबकि संजय दत्त दे रहे हैं आखिरी सवाल के साथ दस्तक। तिलक वर्मा और विल जैक्स की आंधी में उड़ा पंजाब, श्रेयस ब्रिगेड की लगातार 5वीं हार, 6 विकेट से जीता मुंबई। लखनऊ में आज चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी लखनऊ सुपर जॉइंट्स। सीएसके के लिए करो मरो वाला मुकाबला, प्लेऑफ में बने रहने के चेन्नई के लिए जीत जरूरी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
11: सिनेमाघरों में आज रिलीज होगी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो 2। आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और अकुल प्रीत सिंह निभा रहे हैं मुख्य किरदार। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। इस मूवी में संजू बाबा के साथ समीरा रेड्डी, अमित साध और नीतू चंद्रा का अहम किरदार। हॉरर कॉमेडी फिल्म IIZ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज़ भी आज सिनेमाघरों में करेगी धमाका। इसमें मोहन कपूर, अनुप्रिया गोयनका, रंजन राज और जेसी लीवर निभा रहे हैं लीड रोल। समंथा रूथ प्रभु की तेलुगु एक्शन और फैमिली ड्रामा फिल्म माँ इतनी बंगाराम भी आज हो रही रिलीज। इसमें गुलशन देवैया, गौतमी और मंजूषा का भी रोल। सिनेमाघरों में जाने के बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 OTT पर हो रही रिलीज, जियो हॉटस्टार पर देगी दस्तक। सैफ अली खान की क्राइम थ्रिलर कर्तव्य नेटफ्लिक्स रिलीज के लिए तैयार, एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं सैफ। रणवीर हुडा की सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 भी OTT रिलीज के लिए तैयार, हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम। OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर वेब सीरीज एग्जाम आज होगी स्ट्रीम, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे गंभीर विषय की कहानी। के ड्रामा के फैंस आज से नेटफ्लिक्स पर द वंडरफुल्स नाम की सीरीज पर कर सकते हैं एंजॉय। इसमें आम लोगों की कहानी दिखाई गई जिसमें अचानक बेकाबू महाशक्तियां मिल जाती हैं। सच्ची क्राइम बेस्ड डॉक्यूमेंट्री द क्रैश नेटफ्लिक्स पर रिलीज, 2023 के मैकेंजी शिरला मामले पर बेस्ड है ये क्राइम डॉक्यूमेंट्री। गोलमाल फ्रेंचाइजी के बीच शानदार साल पूरे, इस मौके पर अरशद वारसी ने पुरानी और नई यादों को जोड़ते हुए वीडियो किया शेयर, लिखा 20 साल और कुछ नहीं बदला, गोलमाल आपको एंटरटेन करता रहेगा। मच अवेटेड तेलुगु फिल्म महाकाली में रोहित सराफ की एंट्री, अक्षय खन्ना संग फिल्म में आएंगे नजर, करेंगे साउथ सिनेमा में डेब्यू। 19 मई को फिल्म में वापस आऊंगा का ट्रेलर जल्द होगा रिलीज। फिल्म में दलजीत दोसांज, वेदांग रैना और शार्वरी वाघ जैसे स्टार शामिल। दुनिया भर के थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब OTT पर दस्तक देगी हॉलीवुड मूवी अवतार फायर एंड एश, 24 जून को जी हॉटस्टार पर, अंग्रेजी हिंदी तेलुगु तमिल में होगी स्ट्रीम। बंदर का पहला गाना क्यों मजा आ रहा है रिलीज, बॉबी के इंटेंस और इमोशनल अंदाज ने जीता सबका दिल, फिल्म 5 जून को होगी रिलीज।

0: कान में हुआ मशहूर पिज़्ज़ा पार्टी का आयोजन, पजामा, ड्रेसिंग गाउन या नाइटवेयर होता है इस पार्टी का ऑफिशियल ड्रेस कोड। एक लॉटरी में हिस्सा लेकर लोग बन सकते हैं इस अनोखी पार्टी का हिस्सा। इसमें शामिल होने के लिए आपको इंडस्ट्री या प्रेस की मान्यता प्राप्त सदस्य होनी जरूरी नहीं। वॉग मैगजीन के मुताबिक शहर की सबसे ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय पार्टी है ये पिज्जा पार्टी। फिल्म मेकर मैक्सिक जागो और डेव डिबोर्ड ने की थी इस पार्टी की शुरुआत। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में नए स्टेज के पर्दों का किया अनावरण। एक खास परफॉर्मेंस में शामिल हुए किंग। ओपेरा हाउस में आज स्प्रिंग गाला स्टोरीज फ्रॉम द रॉयल बैले एंड द रॉयल ओपेरा के मेहमानों में एक थे किंग चार्ल्स। गुजरात सरकार की शानदार पहल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास के क्षेत्र को एक प्रमुख डेस्टिनेशन वेडिंग स्थल के रूप में किया जा रहा है विकसित। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास से टैंक सिटी को किया जा रहा है तैयार। 50 गेस्ट के साथ की जा रही सकती है शादी। शादी के लिए 2.5 लाख रुपए का पैकेज, डेकोरेशन का भी खास इंतजाम। नर्मदा नदी के तट पर और सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है ये जगह, जिससे विवाह समारोह के लिए मिलता एक सुंदर और खुला वातावरण प्रदान। इस पहल से विदेशों के बजाय भारत में ही शादी प्लान करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना उद्देश्य, साथ ही इलाके के पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर। अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का किया था उद्घाटन। अब तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आ चुके हैं 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट। आज से 5 देशों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली में होंगे अहम समझौते। भारत यूरोप देशों को नई मजबूती देंगे मोदी। व्यापार, रक्षा, एआई और ग्रीन एनर्जी पर रहेगा फोकस। यूएई होगा प्रधानमंत्री के दौरे का पहला पड़ाव। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर होगी चर्चा। नॉर्वे दौरे पर भी जाएंगे नरेंद्र मोदी। इंडिया नॉर्डिक समिट में टेक्नोलॉजी और रक्षा पर चर्चा। 43 साल बाद किसी भारतीय पीएम का नॉर्वे दौरा। इन देशों के अलावा इटली, नीदरलैंड और स्वीडन की यात्रा पर भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम शामिल। ऊर्जा, निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी को मिलेगा इससे बढ़ावा। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी, 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 97.77 और डीजल 99.67 प्रति लीटर हुआ। दिल्ली दौरे के दौरान मेट्रो में सफर करते नजर आए एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव। पीएम मोदी की ऊर्जा बचत की अपील के बाद उठाया कदम। रांची में अपने आवास के लिए बाइक से रवाना हुए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ। पीएम के ईंधन की बचत की अपील पर अमल करते आए नजर। हल्द्वानी में एसएसपी ने दिया ईंधन बचाने का संदेश। कारों के काफिले की जगह किया बाइक का इस्तेमाल। गोवा सरकार ने सभी सरकारी आधिकारिक विदेश यात्राओं पर लगाया तत्काल प्रतिबंध। विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत को देखते हुए फैसला। सुकमा में नक्सल का गढ़ माने जाने वाले मोरपल्ली में पहली बार पहुंची सीआरपीएफ। इलाके के विकास के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम किया आयोजित। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों को बांटे जरूरत के सामान। बच्चों और बुजुर्गों से भी की बात। दरभंगा एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का खास कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीआईएसएफ के डीजी के हाथों में सौंपी हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था। सीआईएसएफ के जवानों ने दिखा दम, हर परिस्थिति में दुश्मन से निपटने का अपना डेमो किया पेश। डेमो के दौरान गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा दरभंगा हवाई अड्डा। अलग अलग परिस्थिति में दुश्मनों से निपटने के लिए जवानों ने दिखाया अपना जलवा। अकोला में छत्रपति संभाजी महाराज जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, शहर में गूंजा छत्रपति का जय घोष। यात्रा में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा के साथ उनके जीवन पर आधारित झांकियां की गई पेश, भजन मंडलियां, ढोल ताशा पथक, लेजिम दल और अखाड़ों के कलाकार हुए शामिल। शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क परिसर से हुई शोभा यात्रा की शुरुआत, शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए ओपन थिएटर परिसर तक पहुंची यात्रा। गोवा दौरे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, शिवोलिम में श्री स्वामी समर्थ परिवार मठ में की पूजा अर्चना। केजरीवाल के साथ पार्टी नेता आतिशी भी पूजा में हुई शामिल, गोवा के लोगों के सुख समृद्धि सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांगा आशीर्वाद। दिल्ली में लगी भयंकर आग, गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में दर्ज किया गया महीने का सबसे गर्म दिन। चालीस डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा अधिकतम तापमान, अभी और पारा बढ़ने की आशंका। राजस्थान में 18 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी, कई जिलों में 48 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। देश में 25 मई से मॉनसून की एंट्री का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक महीने के आखिर तक बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार में मॉनसून की शुरुआत की संभावना। गुवाहाटी में हुई भारी बारिश, जगह जगह भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: AI is changing what it takes to move forward in tech. And staying relevant isn't about chasing trends, it's about building the right skills. At WGU, our online technology master's programs focus on skills you can actually use at work. No filler courses, no busy work, just affordable programs designed for working adults with real schedules. You can learn at your own pace, build confidence as you go, and graduate ready for what's next. If you're ready to get started, learn more at wgu.edu.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। व्हेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू'ल फाइंड द राइट स्टेशन। हियर फ्रॉम द टॉप स्टेशंस लाइक टुडेज हिट्स, क्लासिक रॉक, कॉफी हाउस एंड मोर। Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Today. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल। सूर्य देव की चाल से किसको मिलेगा वरदान और किसकी समस्याओं का होगा समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन क्या असर दिखाने वाला है, अलग अलग राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, आज इस विषय पर बात करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 15 मई 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल विद्यमान हैं मेष राशि में, बुध वृषभ राशि में, बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनिदेव फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है। देखिए, सूर्य देव 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव के प्रवेश के समय वृषभ लग्न का उदय हो रहा है। राशि परिवर्तन के समय सूर्य देव बुध के साथ लग्न में विद्यमान होंगे और मीन राशि में बैठे हुए शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही होगी। सूर्य इस परिवर्तन के समय राहु और केतु से केंद्र में होंगे, तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन राजनैतिक रूप से बहुत बड़े उतार चढ़ाव का समय दिखा रहा है। राजनैतिक रूप से देश में, दुनिया में बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है और इस राशि परिवर्तन का प्रभाव लगभग एक महीने तक बना रहेगा। एक महीने तक सूर्य के इस राशि परिवर्तन से दुनिया प्रभावित होगी और अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का अलग प्रभाव दिखाई देगा। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा असर पड़ेगा, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अगले एक महीने तक अलग अलग राशियों पर प्रभाव डालेगा, अलग अलग राशियों को प्रभावित करेगा। मेष, वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के लिए ये परिवर्तन मध्यम फलदायी है, कुछ मामलों में बेहतर है, ज्यादातर मामलों में निगेटिव है। इनको अपने करियर और अपने स्वास्थ्य का
विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इनके करियर में, इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए ये परिवर्तन ज्यादा निगेटिव होगा, ज्यादा प्रतिकूल होगा, इनके जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बेवजह के विवादों से और बेवजह के अपयश से बचाव करना होगा। कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन शुभ रहेगा। इन लोगों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन लाभदायक होगा। इनको स्वास्थ्य और करियर के मामले में लाभ होगा और इनके जो तमाम रुके हुए काम हैं, इस समय इनके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। तो 12 राशियों में कर्क, सिंह, धनु और मीन, इनके लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है। बाकी राशियों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। सूर्य देव के राशि परिवर्तन पर क्या उपाय करेंगे, इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। जैसा आपको पहले बताया कि सूर्य देव का राशि परिवर्तन 12 में से केवल 4 राशियों के लिए अच्छा है, बाकी 8 राशियों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है। तो अगर सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए फायदेमंद नहीं है, तो अगले 1 महीने तक क्या उपाय करें कि सूर्य के राशि परिवर्तन से किसी तरह की समस्या ना हो। इस समय रोज प्रातः, नित्य प्रातः सूर्य देव को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिएगा। इसके बाद सूर्य देव के मंत्र का 108 बार जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। इस समय सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे वस्त्र धारण करने में। और चूंकि सूर्य के वृषभ राशि के समय गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ग्रीष्म का प्रभाव होता है, इसलिए इस समय नियमित रूप से जल का, फल का और वस्त्रों का दान करेंगे। नियमित रूप से लोगों को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, पौधों में, वृक्षों में जल डालें। जल वाले जो फल हैं, खरबूजा, तरबूज, खीरा, इनका दान करें। वस्त्रों का, जूते, छातों का अगर दान करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। तो आज हमने बात की सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए
एक लकी टिप। अगर आप माता पिता हैं, आपके बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, तो हर बृहस्पतिवार को शिव जी को जल और पीला फूल अर्पित करिए, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 15 मई 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: भक्ति और उत्साह के साथ चार धाम यात्रा जारी, 13 लाख के पार पहुंची यात्रियों की संख्या। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 5.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। अमरावती में पुलिस आयुक्त की बड़ी पहल, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बांटे गए एयर कूल जैकेट, भीषण गर्मी में ड्यूटी करने में आसानी। आईफिल टावर की ओरिजिनल घुमावदार सीढ़ियों की नीलामी, 1,20,000 से 1,50,000 यूरो कीमत। 2008 में भी हुई थी सीढ़ियों के खास हिस्से की नीलामी। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो दो, जबकि संजय दत्त दे रहे हैं आखिरी सवाल के साथ दस्तक। तिलक वर्मा और विल जैक्स की आंधी में उड़ा पंजाब, श्रेयस ब्रिगेड की लगातार 5वीं हार, 6 विकेट से जीता मुंबई। लखनऊ में आज चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, सीएसके के लिए करो मरो वाला मुकाबला, प्लेऑफ में बने रहने के लिए चेन्नई के लिए जीत जरूरी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में।

0: फायदेमंद रहेगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं 15 मई 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 15 मई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 8:31 तक, नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र रात के 8:14 तक, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि ये सूर्य के राशि परिवर्तन का आखिर मामला क्या है।
0: देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन की स्थिति क्या है और इसका प्रभाव देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ने वाला है। ये स्थिति क्या है पहले ये समझते हैं। सूर्य देव 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और जिस समय सूर्य देव वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं उस समय वृष लग्न का उदय हो रहा है। राशि परिवर्तन के समय सूर्य बुध के साथ लग्न में विद्यमान है और उस समय मीन राशि में चूंकि शनि बैठे हुए हैं इसीलिए शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ने लगेगी। सूर्य वृषभ में, राहु कुंभ में, केतु सिंह में, यानी राहु केतु सूर्य से केंद्र में रहेंगे। तो अब सूर्य वृषभ में, राहु कुंभ में, केतु सिंह में, यानी राहु केतु सूर्य से केंद्र में रहेंगे। तो अब सूर्य बुध राहु केतु और शनि का जो प्रभाव है ये राजनैतिक रूप से पॉलिटिकली बहुत बड़े उतार चढ़ाव का कारण बनेगा। अगले एक महीने में देश और दुनिया में राजनैतिक रूप से बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे और इस राशि परिवर्तन का प्रभाव लगभग एक महीने तक बना रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं जिन लोगों की राशि है मेष, वृष और मिथुन उनका क्या है राशिफल।
0: मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि,

0: बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी की सहायता से लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है, धन की समस्याएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि इस राशि परिवर्तन का सामान्य प्रभाव क्या होगा।
0: देखिए, सूर्य देव का राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और ये राशि परिवर्तन अगले एक महीने के लिए पूरी दुनिया का भविष्य, राशियों का भविष्य बता देता है। तो ये जो राशि परिवर्तन सूर्य देव का होने जा रहा है, इसका सामान्य प्रभाव क्या होगा? बाजार में, शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव घट सकता है। एकदम से भयंकर उतार चढ़ाव आने की संभावना बन सकती है। लोगों के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं, हीट स्ट्रोक हो सकता है, इन्फेक्शन की बीमारियां और ज्यादातर लोगों को डाइजेशन की बीमारियां, पेट की बीमारियां इस समय परेशान करेंगी। रोगों के मामले में, बीमारी के मामले में दुनिया भर में वृद्धि हो सकती है, लोगों की बीमारियां बढ़ सकती हैं, ये संभावना बन रही है। राजनैतिक रूप से, जैसा आपको पहले भी बताया कि देश में और दुनिया में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं और उतार चढ़ाव आ सकता है, उतार चढ़ाव की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। एक सामान्य आदमी को ये सलाह दी जाएगी कि इस समय गाड़ी सावधानी से चलाएं, वाहन चलाने में और आग के काम में, फायर से संबंधित काम में विशेष सावधानी रखनी होगी। जिनकी कुंडलियों में सूर्य या मंगल की स्थिति फेवरेबल नहीं है, उन्हें ज्यादा सावधानी इस समय बनाए रखना होगा।
1: और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: कर्क राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होती दिख रही हैं, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंता हल होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और पंडित जी द्वारा उनके दिए जाने के जवाबों का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न बबीता सिंह ने हमें लिखा है और बबीता हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 1984। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है बलिया, उत्तर प्रदेश। बबीता कह रही हैं कि बहुत दिन से ये और इनके पति मिल करके एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं। मकान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो अपने मकान का लाभ कब तक होगा? बबीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप फ्लैट खरीदने की कोशिश करते रहिए, अपना प्रयास जारी रखिए। इस साल के जून से लेके और अक्टूबर के बीच में बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीद लेंगी, ये संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। मंगल के कमजोर होने की वजह से थोड़ी अड़चन आ रही है, तो आप ऐसा करिए, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करिए, आपको लाभ होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और हमें अपने सवाल भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं?
0: जी अगला प्रश्न अमोघ जी ने हमें लिखा है और अमोघ जी हमें रांची झारखंड से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर सन 2002। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है रांची। ये कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अमोघ, आपकी कुंडली के हिसाब से आप प्रशासनिक सेवा की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करिए। प्रशासनिक सेवा में आपको सफलता मिलेगी और उसका बहुत अच्छा समय आपकी कुंडली में साल 2027-28 में दिखाई दे रहा है। थोड़ी मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रयास ज्यादा करिए, आप सफल होंगे। एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर सफलता के लिए प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: तो आइए जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस सूर्य परिवर्तन का क्या असर होगा।
0: अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव अगले एक महीने तक पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। पैसों रुपयों के मामले में, आर्थिक मामलों में सावधानी रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। वृषभ राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको सरदर्द की और आंखों की समस्या परेशान कर सकती है, उसका ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा, पारिवारिक समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। मिथुन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। धन के मामले, कर्ज के मामले आपको परेशान करेंगे, धन का खर्चा बढ़ेगा। इस समय लंबी यात्रा में सावधानी रखिएगा। सोच समझकर मिथुन वालों को इस समय यात्रा करनी चाहिए। कर्क राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा और आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। करियर में आपके पॉजिटिव बदलाव, सकारात्मक बदलाव इस समय हो सकता है, अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको लाभ होगा। आपको करियर में सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होगा। मन की चिंताएं आपकी लगातार दूर हो जाएंगी। कन्या राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आप दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है, तो इस समय दुर्घटनाओं से सावधान रहें। संतान पक्ष को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, उसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, करियर में बड़ा लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं कि बाकी बची हुई राशियों पर इस सूर्य परिवर्तन का क्या असर होगा।
0: तो हमने आपको बताया कि मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा असर होगा। तुला राशि की बात करते हैं। देखिए, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपके करियर के मामले में और आपके स्वास्थ्य के मामले में समस्याएं हो सकती हैं। पारिवारिक समस्याएं भी इस समय आपको परेशान कर सकती हैं, सतर्क रहिए। वृश्चिक राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन का बुरा प्रभाव आपके कारोबार पर और आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। बेवजह के झगड़े ना हो, विवाद ना हो, उसका थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। धनु राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद है। करियर के मामले में और धन के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन और करियर का मामला आपके लिए बेहतर होगा और मन चाहा स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। मकर राशि, स्वास्थ्य का खास तौर से डाइजेशन का ध्यान दीजिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। करियर में किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिए। करियर में जोखिम लेने से बचाव करिएगा। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपका क्रोध बढ़ा सकता है, आपका एग्रेशन बढ़ सकता है, इसलिए कुंभ राशि के लोग फिलहाल अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे और स्वास्थ्य के मामले में किसी तरह की लापरवाही फिलहाल नहीं करेंगे। मीन राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अनुकूल है। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और बड़ी सफलता भी आपको मिल सकती है। यानी मीन राशि के लोगों के लिए भी सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशि फलों को जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशि फल।
0: मकर राशि, अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं कम होंगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न हमें अजीत जी ने लिखा है और अजीत जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1978, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म स्थान है पंचकुला। अजीत जी कह रहे हैं कि मैं अपने भाई के साथ मिलकर के व्यापार करता हूं, लेकिन व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़े बहुत कर्जे भी हो गए हैं, तो हमारा व्यापार कब तक बेहतर होगा और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए क्या करें। अजीत जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके व्यापार की जो स्थिति है वो आने वाले समय में अच्छी रहेगी, उसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगस्त 2027 तक आते आते आपका काम दोबारा से बहुत बेहतर हो जाएगा और तब तक आपको कर्जों से मुक्ति भी मिल जाएगी। एक ओपल बनवा करके पहने, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया है आज के अंतिम प्रश्न को लेने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का चौथा और अंतिम प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न विकास जैन ने हमें लिखा है और विकास हमें मेल लिखते हैं जोधपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 30 सितंबर 1975, जन्म का समय दोपहर के 2:22, जन्म स्थान है जोधपुर। विकास कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरी नौकरी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मुझे नौकरी छोड़कर के 2:22, जन्म स्थान है जोधपुर। विकास कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरी नौकरी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मुझे नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार कर लेना चाहिए। विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी नौकरी छोड़ करके पूरी तरह से व्यापार में मत जाइए। नौकरी बदलना अगर चाहें, बदल करके बेहतर नौकरी में जाना चाहें, तो वैसा आप जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर व्यापार करना चाहेंगे तो 2029 के पहले आपको व्यापार की सलाह नहीं देंगे। तब तक आप नौकरी करिए, नौकरी बदलेंगे तो स्थितियां थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को शनिदेव का मंत्र पढ़ें और एक ओपल बनवा करके पहन लें, 8-10 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन 15 मई 2026 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।

0: 15 मई को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। अभी विवाह के और संतान के मामलों में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या सोते समय, लेटते समय पैर दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होने चाहिए? देखिए, दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने या लेटने से शरीर की ऊर्जा बाहर निकल जाती है, इसीलिए मृत्यु के बाद पैर दक्षिण की तरफ कर दिए जाते हैं ताकि शरीर की सारी ऊर्जा निकल जाए। जीवन काल में जीवित रहते हुए आप सोते समय, लेटते समय अपना पैर उत्तर या पश्चिम की तरफ रखें तो अच्छा होगा। दक्षिण की तरफ पैर करके लेटना या सोना उचित नहीं है।
1: और गुड लक में हम जानेंगे 15 मई 2026 यानी कि शुक्रवार के शुभ पहर के बारे में।
0: अब जान लेते हैं दिनांक 15 मई 2026 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 15 मई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए ये समय स्वास्थ्य के मामले में कैसा आजकल चल रहा है। आज की गुड लक राशि है कन्या। इस समय हड्डियों और आंखों की समस्या का ध्यान दीजिएगा। अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा।
1: और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, देखिए महा उपाय में बताते हैं कि अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि में सूर्य देव का जाना अगर आपके लिए अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। सुबह के समय सूर्य मंत्र का जप करिएगा रोज सुबह 108 बार, ओम आदित्याय नमः। और नियमित रूप से जल का और फल का दान करें, लोगों को पानी शरबत पिलाएं, वृक्षों में पौधों में जल डालें, और जो जल वाले फल हैं, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, इसका नियमित रूप से दान करेंगे तो बेहतर होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: मेरे पागलों, प्रभु श्री राम से यह पांचवी शिक्षा पूरे विश्व को, लोगों को लेना चाहिए कि हमेशा अपनी माता का, बहन का और भारत में रहने वाली सभी नारियों का सम्मान करना चाहिए। भारत में नारियां देवी का रूप मानी जाती हैं और इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता, जहां स्त्रियां भोग हेतु नहीं अपितु स्त्रियों को मातृत्व का दर्जा दिया जाता है।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किस राशि को लाभ होगा और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन का महत्व और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किस राशि को लाभ होगा और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन का महत्व और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
0: परिणाम भी अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: और अब बात सोने की कर लेते हैं। जी हाँ, सोना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है और देश हित में इसकी अभी खरीदारी नहीं करने की सरकार ने अपील भी की है, लिहाजा उस पर अमल करके भी देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया जा सकता है। और अगर आप गोल्ड की जगह दूसरे गहनों के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए थेवा आर्ट की ज्वेलरी बेहतर विकल्प हो सकती है, जो रॉयल लुक देती है। थेवा गहनों के बारे में जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट।
11: कहीं शादी हो, कोई पर्व त्योहार हो या किसी तरह की पार्टी हो, महिलाएं उसमें सजी सवरी नजर आती हैं। उनके श्रृंगार में गहनों की अहम भूमिका होती है, जो कि उन्हें आत्मविश्वास और सुंदरता का एहसास कराते हैं। खासकर शादियों में भारतीय दुल्हन के परिधान और गहनों पर हर किसी का ध्यान रहता है, क्योंकि परिधान जहां दुल्हन की खूबसूरती को निखारते हैं, वहीं गहने पूरे रूप में चार चांद लगाते हैं। भारत में सदियों से सोने चांदी को समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता रहा है। शादी ब्याह में गहने देना सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि बेटी के भविष्य की सुरक्षा और सम्मान से भी जोड़ा जाता है। लेकिन सोने चांदी की आसमान छूती कीमतों ने इस समय लोगों की नींद उड़ा रखी है। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश हित में लोगों से अभी सोने की खरीद से बचने की अपील की है, और सोने के आयात शुल्क में बढ़ोतरी होने से ये और ज्यादा महंगा हो गया है। ऐसे में अब गहनों को लेकर लोग ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं जो दिखने में रॉयल हो, लेकिन बजट पर भारी भी ना पड़े। और इसको लेकर राजस्थान की पुरानी थेवा कला एक बार फिर सुर्खियों में है।
12: थेवा आर्ट ये ऐसी कला है जो 400 साल पुरानी है, और इसमें सोने का इस्तेमाल बहुत कम होता है, उसके बजाय पीछे चांदी का बेस लगाया जाता है और साथ ही में कांच का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसकी कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये कला कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली भी है और साथ ही में अलग अलग डिज़ाइंस में मिलती है। आप अपने हिसाब से ऐसे कस्टमाइज़ करा सकते हैं जिससे आपका जो लुक है वो पूरा कम्प्लीट हो पाए। हम इस थेवा आर्ट के बारे में और ज़्यादा जानेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे डिजाइनर सेट्स दिखाना चाहती हूँ जिसमें ये आर्ट जो है ये नजर आ रही है कि किस तरीके से सोने का काम बारीकी से इसमें किया गया है, पर ये सोना सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है जिसको बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है, और कोई बता नहीं सकता है कि इसके पीछे क्या है। तो इसके पीछे है कांच और चांदी।
11: अब जरा ये भी जान लीजिए कि थेवा आर्ट के तहत कैसे गहने बनाए जाते हैं।
13: थेवा आर्ट जो है वो 23 कैरेट गोल्ड के पत्रे को बिल्कुल बारीक करके और फिर उस पर टूल से हाथों से नक्काशी करते हैं। पूरे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स, फिलगिरी पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मोर हो गया, हाथी हो गया, फूल पत्ती हो गए, सारे वो पैटर्न्स बनाते हैं। फिर उसको हीट एंड प्रेशर करके मोल्टन ग्लास के साथ कांच को गर्म करके फ्यूज करते हैं कांच पे।
11: राजस्थान के प्रतापगढ़ की मशहूर थेवा आर्ट अब सिर्फ विरासत तक सीमित नहीं रही, बल्कि आधुनिक फैशन इंडस्ट्री ने भी तेजी से अपनी जगह बना रही है। पहले इस कला में ज्यादातर स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसमें आधुनिक और डिजाइनर पैटर्न का बड़ा बदलाव आया है। आज थेवा ज्वेलरी में अलग अलग शेप्स, कट्स और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखने को मिल रहे हैं, जिनमें सेंटर होल वाले नेक पीस, डिजाइनर लेयर्स, स्टोन स्टडिंग और फ्यूजन आर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। थेवा कला की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें सोने की मात्रा बेहद कम होती है। रंगीन कांच पर 23 कैरेट सोने की पतली शीट से हाथों से महीन जालीदार डिजाइन तैयार किए जाते हैं और बेस में चांदी का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि इसका लुक पूरी तरह रॉयल और गोल्डन होने के बावजूद इसकी कीमत भारी गोल्ड ज्वेलरी की तुलना में काफी कम होती है।
12: कला को 400 साल पुराना बताया जाता है, तो कहाँ से ये शुरू हुई थी, क्या है इसके पीछे की कहानी?
13: ये शुरू हुई थी राजा सावंत सिंह जी थे 18th और 19th सेंचुरी के अंदर। तो उसके टाइम में उनके कोर्ट के अंदर जो सुनार थे नाथूलाल जी सोनी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा गोल्ड और ग्लास के साथ में कार्विंग करके कि इसको कैसे फ्यूज़ किया जा सकता है। तो वो करते करते उनको कोई टेक्निक समझ आ गई कि ये कैसे फ्यूज़ होता है गोल्ड एंड ग्लास। तो तभी से फिर उसका उसकी जो बैक साइड फ्रेमिंग है वो चाहे आप गोल्ड में कीजिए चाहे सिल्वर में कीजिए, बट अभी आपको पता है गोल्ड की प्राइसेस ज़्यादा होने से तब से काफ़ी टाइम से पीछे फ्रेमिंग सिल्वर में ही होती है, आगे ग्लास पे गोल्ड रहता है।
12: कम से कम और ज्यादा से ज्यादा किसी को ये कितने का पड़ सकता
13: है? कम से कम जो हमारा छोटा सेट स्टार्ट होता है पेंडेंट इयररिंग्स के साथ में वो 28,000 से 28,000 से, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हैवी ब्राइडल लुक जो है वो 2,00,000 रुपए तक जाएगा।
10: मतलब कितना? और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इनमें से कुछ है जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको इमोशनल कर देंगे।
14: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बच्चा नदी में उतरकर पानी में खेल रहा है, वहीं पास में सीढ़ी पर उसकी माँ बैठी हुई है। अब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग कपड़ों से बनी हुई रस्सी को बच्चे के शरीर पर बांधा हुआ है और दूसरा छोर पकड़े हुए बैठी है। बच्चे मजे से पानी में खेल रहे हैं और वहीं माँ उसकी रक्षा कर रही है। अब ये वीडियो कब और कहाँ का है ये तो नहीं पता चल पाया, मगर वीडियो बता रहा है कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में कितना सोचती है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप पर इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
16: How they looked after game one.
17: I mean, they were frustrated.
15: The Daily.
18: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
15: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
19: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
10: News Today par.
7: Khabrein kabhi raftaar se daudti hain to kabhi dheeme-dheeme pak rahi hoti hain. Khabrein kuch samaj ki soch dikhati hain to kuch dikhati hain vikas ki tasveer. Khabrein किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है।
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल

0: मथुरा में दर्शनार्थियों की सुविधा को लेकर बड़ा कदम। अब आप दुनिया में कहीं भी हो मेरो ब्रिज ऐप से मिलेगी पूरी जानकारी। साथ ही परिक्रमा पथ पर लगाई गई 516 स्ट्रीट लाइट। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर बाबा महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना, भक्तों ने लगाए जय महाकाल के जयकारे। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 5 देशों का दौरा। यूएई से यूरोप तक नए समीकरण साधेगा भारत। आर्थिक, तकनीकी और ऊर्जा संबंधों को मजबूत बनाने पर रहेगा जोर। अमेरिका ईरान तनाव से ऊर्जा बाजार में बड़ा दबाव। पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। सीएनजी भी 2 रुपए हुई महंगी। बिहार के बांका में जिला और सत्र न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य ने पेशी की अनोखी मिसाल पेश की और साइकिल पर सवार होकर पहुंचे दफ्तर, लोगों को दिया पेट्रोल डीजल बचाने का संदेश। वर्ल्ड फेमस शो यूरोविजन में कलाकारों का धमाकेदार प्रदर्शन जारी। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क सहित कई देश फाइनल में पहुंचे। कल होगा ग्रैंड शो। लखनऊ में आज चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी लखनऊ सुपर जॉइंट। सीएसके के लिए करो मरो वाला मुकाबला। प्लेऑफ में बने रहने के लिए चेन्नई के लिए जीत जरूरी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: उम्मीदों भरे पहर की खुशभरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: शुभ समाचार की शुरुआत उत्सव के रंगों के साथ। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं तो गुजरात के वड़ताल स्वामी नारायण मंदिर में भी अनोखा उत्सव हुआ। यह है भव्य तरबूज उत्सव। जी हां, वहीं कल शनिदेव महोत्सव है जिसको लेकर देश भर में आज से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इन उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उमंग है, ये दिखाएंगे आगे आपको। तो महाराष्ट्र के अमरावती में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी परेशानी हो रही है। लेकिन अमरावती पुलिस ने अपने जवानों के लिए खास जैकेट दी है। पुलिस की इस पहल की हर तरफ चर्चा है, क्या है जैकेट की खासियत ये भी आगे आपको दिखाएंगे। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के तमाम हिल स्टेशन सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन कुछ डेस्टिनेशन ऐसे भी हैं जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं छिपी हैं। बिलासपुर भी ऐसा ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहां गोविंद सागर झील में नौका विहार और वाटर स्पोर्ट्स पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। तो वहां की सैर भी आगे हम आपको दिखाएंगे। तो दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में शामिल पेरिस के आइफल टावर के एक हिस्से की नीलामी हो रही है। कौन सा है ये हिस्सा और कितनी है इसकी कीमत, ये भी आगे आपको दिखाएंगे। तो इसके अलावा आईपीएल में आज चेन्नई और लखनऊ के बीच मुकाबला होगा। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा तो कैसी है दोनों टीमों की तैयारियां, ये भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में देख लेते हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का 27वां दिन। अभी तक चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या करीब 13.5 लाख तक पहुंच चुकी है। हर धाम पर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मासिक शिवरात्रि के अवसर पर आज उज्जैन में बाबा महाकाल की दिव्य भव्य भस्म आरती की गई। दूर दूर से आए श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। NCR में तेज गर्मी के बीच एक बार फिर से मौसम में बदलाव और तापमान में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ब्रजभूमि मथुरा में लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले इसके लिए मेरो मथुरा ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अलावा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में

500 सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई गई है। बिहार के दरभंगा में सीआईएसएफ के जवानों ने अपने एक्शन का शानदार डेमो पेश किया। दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था सीआईएसएफ को सौंपे जाने के अवसर पर जवानों ने अपने ड्रिल की अनूठी झलक दिखाई। तेज धूप, गर्मी और लू से बचाव के लिए अमरावती में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को एयर कूल जैकेट दिए गए। ये जैकेट चिलचिलाती धूप में ड्यूटी कर रहे जवानों को गर्मी से राहत प्रदान करते हैं। बिहार के बांका में जिला और सत्र न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य ने अनोखी मिसाल पेश की। सरकार की ओर से तेल बचाने की अपील को देखते हुए जज साहब साइकिल पर सवार होकर अपने दफ्तर पहुंचे। उत्तरी 24 परगना के आदृत्रो पॉल ने पश्चिम बंगाल बोर्ड परीक्षा में टॉप स्थान हासिल किया। इसको लेकर आदृत्रो के परिवार में खुशी का माहौल है। घर के लोगों ने आदृत्रो को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों ने खासा उत्साह उनमें नजर आया।

तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात शनि जन्मोत्सव की कर लेते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को ये महा उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को शनि अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। कल ये पावन घड़ी आ रही है और इस बार का संयोग इसलिए भी खास बन गया है क्योंकि शनिवार और अमावस्या का दिन जो है वो एक साथ पड़ रहा है। इसी दिन श्रद्धालु शनि मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, तेल चढ़ाते हैं और शनि मंत्रों का जाप भी करते हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर शनि देव की पूजा करने से शनि की साढ़े साती ढैया और शनि दोष के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है।

0: तो शनि को कर्म फलदाता और न्याय के देवता के रूप में भी जाना जाता है, जो मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शनि जयंती की तिथि पर शनि देव की विशेष पूजा करने से हर तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। अमावस्या तिथि की शुरुआत कल सुबह 5:11 पर होगी, वहीं समापन 17 मई को आधी रात 1:30 होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शनि पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 पर होगा। सांध्य पूजन का मुहूर्त शाम 7:04 से शाम 7:25 के बीच तक रहेगा। शनिदेव भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। इन्हें न्याय के देवता भी कहा जाता है।
1: कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाते हैं। ऐसा पुराणों में कथा आता है कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भगवान शनि का जन्म हुआ। भगवान सूर्य के यह पुत्र हैं और भगवान सूर्य की दो पत्नियां, दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र हुए। भगवान सूर्य की जो एक पत्नी छाया थी उनसे भगवान शनि का जन्म हुआ और भगवान सूर्य की जो दूसरी पत्नी संज्ञा थी उनसे भगवान यम का जन्म हुआ। इसीलिए ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को शनि जयंती मनाते हैं।
0: तो कल शनि जयंती लोग मनाएंगे और शनि की कृपा जो है वो सब पर पड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि शनि की कृपा का कल शुभ संयोग बन रहा है। शनि को कर्म फलदाता और न्याय के देवता के रूप में भी जाना जाता है, जो मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शनि जयंती की तिथि पर शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना करने से हर तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। अमावस्या तिथि की शुरुआत कल सुबह 5:11 पर होगी और इसी के साथ आपके ऊपर चढ़ी हुई 7.5 ढैया जैसे जो है वो चीजें दूर हो जाएंगी और वहीं इसका समापन 17 मई को आधी रात 1:30 होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शनि पूजन का शुभ मुहूर्त 7:12 पर होगा और सांध्य पूजन का मुहूर्त शाम 7:04 से शाम 7:25 के बीच रहेगा। तो शनि देव की पूजा उनके मंदिर जाकर की जा सकती है या फिर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शाम के वक्त दिया जलाकर उनकी आराधना भी आप कर सकते हैं।
1: शनि जयंती पर शनि भगवान की उपासना के लिए आप विशेष रूप से भगवान शनि के मंदिर जाएं या पीपल के वृक्ष के नीचे सायंकाल के समय सरसों तेल का दीपक जलावें और काला वस्त्र काला धागा भगवान को अर्पण कर धूप दीप नैवेद्य गंध आदि से भगवान शनि का पूजन करें और ओम सन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शनि का पूजन करने से शनि भगवान अति प्रसन्न होंगे और जीवन में अत्यधिक खुशहाली प्राप्त होगी।
0: तो हिंदू धर्म में शनि जयंती का विशेष महत्व बताया गया है। इन्हें कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता और न्याय के देवता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि हर व्यक्ति को उसके बुरे और अच्छे कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हें शनि देव सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, लेकिन बुरे कर्मों के लिए सख्ती भी बरतते हैं। आपको बताते हैं शनि जयंती का महत्व। तो शनि जयंती का क्या महत्व है? शनिदेव की जयंती ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन शनिदेव का प्राकट्य हुआ था। इस दिन शनि संबंधी उपाय करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर उपवास रखकर संध्या काल में उपाय किए जाएं तो निश्चित लाभ होता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं चार धाम यात्रा की। जी हां, आस्था के महातीर्थ की पूरे उत्साह के साथ चार धाम यात्रा चल रही है और सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि केदारनाथ धाम में हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है और दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। पुलिस और प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने में तत्पर दिखाई दे रहे हैं ताकि भक्तों को आसानी से अपने आराध्य के दर्शन हो सकें।

0: 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब से अब तक 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन का पुण्य लाभ ले चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब तो यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। रिकॉर्ड संख्या में भक्त बाबा केदार के धाम में पहुंच रहे हैं और हर दिन के साथ श्रद्धालुओं की लाइन लंबी होती जा रही है, लेकिन भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं दिख रही। यहां पहुंच रहे यात्री बाबा केदार के दर्शन कर बेहद खुश हैं।
1: धरती में जैसे पांव रखते हैं ना, तो जो एक एहसास होता है वो एक अलग ही है, और बाबा के जो दर्शन, उनकी जो धजा के दर्शन हो जाते हैं ना, तो यानी आप समझो कि आप पूरा आपका जीवन का कल्याण हो गया सर।
2: आई फील वेरी बेस्ट हियर एंड दिस इज हेवन ऑन अर्थ। आई फील सो गुड, थैंक यू महादेव।
3: बहुत अच्छे हमारे दर्शन यहाँ पे हो गए हैं, और शासन प्रशासन का यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर तरफ से खाने से पीने से और स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीजें हैं सबको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, किसी प्रकार के कोई किसी को समस्या नहीं आ रही।
0: बाबा केदार का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर तक श्रद्धालुओं की कतार दिखाई दे रही है। ऐसे में प्रशासन पुरजोर कोशिश में लगा है ताकि व्यवस्थाएं सही तरीके से चलती रहें और भक्तों को कोई परेशानी ना हो।
4: यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनको ग्रुप्स में पैदल आगे भेजा जाता है गौरीकुंड की ओर, और ताकि वो शटल प्राप्त करके या पैदल पहुंच जाएं, और जो सड़क पर ट्रैफिक की स्थिति है उसको अवॉइड किया जा सके। और इसी तरीके से श्री केदारनाथ धाम में भी हमारे पुलिस बल, हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे सेक्टर ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं, जो भीड़ को नियंत्रित करने, उनको गाइड करने और उनको दर्शन कराने मदद करें।
0: तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ उत्तराखंड सरकार और रुद्रप्रयाग प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में मॉनसून का सीजन आने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन चौकस है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए खास तैयारी में है।
4: जब बर्फबारी होती है तो हमारी बर्फ हटाने की टीमें जो श्री केदारनाथ धाम में हैं, जो रास्ते खुलवाती हैं और वो तत्काल उसमें लग जाते हैं, और बारिश की स्थिति में सड़कों पे लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमारे जो लोक निर्माण विभाग है उनकी जेसीबी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में डिप्लॉय रहती हैं, और कई बार कुछ लैंडस्लाइड के घटनाक्रम हुए भी, परंतु उसको तत्काल हमारी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रोड को खुलवा दिया गया है। अत्यधिक बारिश और बर्फबारी की स्थिति में नितांत अस्थायी तौर पर 1-2 घंटे के लिए यात्रा को रोका भी जाता है, क्योंकि कई बार यहाँ पर तेज़ बिजली चमकने और बिजली के गिरने और आंधी की संभावनाएं और आंधी की घटनाएं होती हैं। ऐसी परिस्थिति में हम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से ये उम्मीद करते हैं और ये अनुरोध करते हैं कि जो जहाँ है वहाँ एक सुरक्षित जगह पर शरण ले लें, ताकि इस तरीके की परिस्थितियों में वो खुद को सुरक्षित रख सके।
0: केदारनाथ धाम का पूरा परिसर श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। हर हर महादेव के जयकारे से पूरा वातावरण गूंज रहा है। हालत ये है कि हर रोज 25,000 से ज्यादा लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं, जबकि अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम यात्रा में शामिल हो चुके हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो केदारनाथ धाम में 14 मई को 26,505 श्रद्धालु पहुंचे, और कपाट खुलने के बाद से अब तक बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए तो ये संख्या 5,50,087 तक पहुँच चुकी है। बद्रीनाथ धाम में 14 मई को 19,752 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। इस तरह से अभी तक बद्रीनाथ धाम में 3,43,833 श्रद्धालु आशीर्वाद ले चुके हैं। 14 मई को 12,599 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए, और अभी तक 2,18,024 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। 14 मई को 13,100 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर पर हाजिरी लगाई। अभी तक यमुनोत्री धाम में 2,20,490 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं। चार धाम यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की बात की जाए तो ये अभी तक 13,32,434 तक पहुँच चुकी है। चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक 60,000 से ज्यादा यात्रियों को ओपीडी और इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, जबकि 51,939 श्रद्धालुओं की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है। यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग के कर्मचारी तैनात हैं। यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए 412 पर्यावरण मित्र और 30 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। पुलिस की ओर से वाहनों की चेकिंग के साथ साथ यात्रियों के सामान और बैगों की गहन जांच की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: हिमाचल प्रदेश के तमाम हिल स्टेशन सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन कुछ डेस्टिनेशन ऐसे भी हैं जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं छिपी हैं। बिलासपुर भी ऐसा ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहां गोविंद सागर झील में नौका विहार और वाटर स्पोर्ट्स पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बिलासपुर पहुंचना भी बेहद आसान है। दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों से बिलासपुर की कनेक्टिविटी बेहतरीन है।
6: पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत झील और इस झील में नौका विहार करते कुदरत के करीब होने का एहसास। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गोविंद सागर झील प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य की मिसाल है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच दूर दूर तक फैली झील। गर्मी के मौसम में इस झील के आसपास का सुहावना मौसम दूर दूर से सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। हिमाचल प्रदेश के तमाम हिल स्टेशन भारत की सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शुमार हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली में पूरे देश से सैलानी हसीन वादियों का दीदार करने के लिए यहां आते हैं, लेकिन बिलासपुर की खासियत यहां की झील और इस झील में होने वाला वाटर स्पोर्ट्स है। इस झील में सामान्य बोट के साथ साथ लोग स्पीड बोट का मजा भी लेते हैं।
7: हमारे पास जितनी बड़ी गोविंद सागर लेक है शायद बहुत सारे देशों में इतनी बड़ी झील नहीं होगी। सामने बंदला की पहाड़ियों से पैराग्लाइडिंग होती है, इतना विहंगम दृश्य है। सामने आप देख सकते हैं कि एक ये जो लुणू का जो इंटरनेशनल, मैं कहूँगा कि इसको बनाया जाए, ये जो क्रिकेट का स्टेडियम है जो झील के साथ साथ में बड़ा ही विहंगम दिखता है।
6: पर्यटन के सीजन में बिलासपुर में गोविंद सागर झील के पास पहाड़ियों से पैराग्लाइडिंग भी होती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर बिलासपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिले तो पर्यटकों का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बन सकता है।
7: तो बिलासपुर के अंदर अपार टूरिज्म की संभावना है। पर्यटक जो है यहाँ पर आकर के अद्भुत आनंद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। बिलासपुर के सांडू के मैदान के बराबर कोई बड़ा मैदान अभी तक हिमाचल प्रदेश में नहीं है।
6: सड़क मार्ग से बिलासपुर पहुंचना बहुत आसान है। देश के कई बड़े शहरों से बिलासपुर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दिल्ली से बिलासपुर की दूरी करीब 350 किलोमीटर है। दिल्ली से बिलासपुर के लिए डायरेक्ट बसें चलती हैं। 7 से 8 घंटे में आप दिल्ली से बिलासपुर पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ से बिलासपुर 135 किलोमीटर दूर है। बस या फिर टैक्सी से सफर 3 से 4 घंटे में पूरा हो जाता है। देश में कुदरत की गोद में बसे ऐसे कई डेस्टिनेशन हैं जहां पर्यटन की अपार संभावना है। अब इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से ये ऑफबीट लोकेशंस सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही हैं। हिमाचल का बिलासपुर भी ऐसा ही एक डेस्टिनेशन है जो आने वाले समय में पर्यटन के सबसे लोकप्रिय लोकेशंस में शुमार हो सकता है। बिलासपुर से मुकेश कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और चलिए अब आपको गुजरात के जूनागढ़ लिए चलते हैं जहां एक भजन कार्यक्रम के दौरान खूब नोट उड़ाए गए। दरअसल खंभालिया में भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मौके पर ये लोक संगीत और भजन आयोजित किए गए। इस मौके पर कविराज जिग्नेश ने श्री कृष्ण और दोस्ती पर आधारित भजनों की ऐसी प्रस्तुति दी कि पूरा माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बन गया। लिहाजा कार्यक्रम में मौजूद श्रोता भजनों की धुन पर झूमते गाते नजर आए। इसी दौरान प्रसिद्ध लोक कलाकार माया भाई आहिर के बेटे जयराज आहिर भी मंच पर पहुंचे और उन्होंने भी खुलकर रुपए उड़ाए। शुरुआत में लोग हाथों से नोटों के बंडल उड़ाते दिखाई दिए, लेकिन जैसे जैसे लोक संगीत रंग में आता गया वैसे वैसे लोगों ने थैलों और बोरियों में भरकर नोट उड़ाने शुरू कर दिए। करीब 1.5 से 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में मंच पर लगातार धन वर्षा होती रही। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में उड़ाई गई पूरी राशि धार्मिक आयोजनों और सेवा कार्यों के लिए दान के रूप में इस्तेमाल की जाएगी।

0: और बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कान फिल्म फेस्टिवल के रंग।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किस राशि को लाभ होगा और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन का महत्व और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits,
4: somebody save me,
3: to timeless favorites,
4: and life is like a song,
3: and new discoveries.
4: So much more than a history. Wake up!
3: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: मेरे पागलों, प्रभु श्री राम से यह पांचवी शिक्षा पूरे विश्व को लोगों को लेना चाहिए कि हमेशा अपनी माता का, बहन का और भारत में रहने वाली सभी नारियों का सम्मान करना चाहिए। भारत में नारियां देवी का रूप मानी जाती हैं और इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता, जहां स्त्रियां भोग हेतु नहीं अपितु स्त्रियों को मातृत्व का दर्जा दिया जाता है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
13: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
0: भक्ति और उत्साह के साथ चारधाम यात्रा जारी। 13 लाख के पार पहुंची यात्रियों की संख्या। केदारनाथ में सबसे ज्यादा 5.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। मथुरा में दर्शनार्थियों की सुविधा को लेकर बड़ा कदम। अब आप दुनिया में कहीं भी हो, मेरो ब्रिज आपसे मिलेगी पूरी जानकारी। साथ ही परिक्रमा पथ पर लगाई गई 516 स्ट्रीट लाइट। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर बाबा महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना, भक्तों ने लगाए जय महाकाल के जयकारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 5 देशों का दौरा। UAE से यूरोप तक नए समीकरण साधेगा भारत, आर्थिक, तकनीकी और ऊर्जा संबंधों को मजबूत बनाने पर रहेगा जोर। देश के ऊर्जा बाजार को लेकर बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी, CNG भी 2 रुपए हुई महंगी। बिहार के बांका में जिला और सत्र न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य ने पेश की अनोखी मिसाल। साइकिल पर सवार होकर पहुंचे दफ्तर, लोगों को दिया पेट्रोल डीजल बचाने का संदेश। वर्ल्ड फेमस शो यूरोविजन में कलाकारों का धमाकेदार प्रदर्शन जारी। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क सहित कई देश फाइनल में पहुंचे। कल होगा ग्रैंड शो। लखनऊ में आज चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी लखनऊ सुपर जॉइंट। सीएसके के लिए करो मरो वाला मुकाबला, प्लेऑफ में बने रहने के लिए चेन्नई के लिए जीत जरूरी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शुभ समाचार में। अब आपको लेकर चलते हैं फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा की चमचमाती धरती पर, जहां रेड कार्पेट पर चमकते सितारे और कैमरों की लगातार फ्लैशलाइट्स दुनिया को नजर आ रही है और दुनिया की इस पर नजर भी है। इस बार कान का मंच सिर्फ हॉलीवुड सितारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय अभिनेत्रियों ने भी अपने फैशन और अंदाज से ऐसा जलवा बिखेरा कि हर तरफ इन्हीं की चर्चा है। सबसे पहले सुर्खियों में रही आलिया भट्ट, जिन्होंने अपने बेहद क्लासी और रॉयल लुक से फैंस का दिल जीता, और उसके बाद उर्वशी रौतेला रेड कार्पेट पर उतरी तो उनका ग्लैमरस और हाई वैल्यू ड्रेस सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो गया। और अब अभिनेत्री तारा सुतारिया ने कान के रेड कार्पेट पर एंट्री की है। ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन, स्टाइलिश काला चश्मा, खुले बाल और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान, तारा का पूरा लुक किसी इंटरनेशनल फैशन आइकॉन से कम नहीं लग रहा। वहीं इस रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरने के लिए साउथ सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री कल्याणी प्रदर्शनी की कान से पहली झलक सामने आई है। कल्याणी ने ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन का खूबसूरत मेल पेश करते हुए बेहद एलिगेंट अंदाज में रेड कार्पेट पर कदम रखा। उनका सॉफ्ट मेकअप, शाही आउटफिट और शांत मुस्कान लोगों को बेहद पसंद आ रही है। तारा सुतारिया ने कान के मंच पर अपनी शानदार मौजूदगी से फैशन प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। रेड कार्पेट पर तारा का अंदाज बेहद बोल्ड, ग्लैमरस और साथ ही विंटेज हॉलीवुड स्टाइल से प्रेरित नजर आया। ब्लैक ऑफ शोल्डर आउटफिट, स्टाइलिश सनग्लासेस, सॉफ्ट मेकअप और एलिगेंट हेयर स्टाइल में तारा किसी पुराने दौर की इंटरनेशनल फिल्म स्टार जैसी दिखाई दी। उनके लुक में मॉडर्न फैशन और क्लासिक चार्म का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला। तारा के अलावा कान के मंच पर अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शनी भी पहुंची। मलयालम सिनेमा की प्रतिभाशाली अभिनेत्री कल्याणी ने फिल्म लोका में अपने दमदार अभिनय से अखिल भारतीय स्तर पर खास पहचान बनाई थी और अब उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक कान में कदम रखकर अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। फ्रांस के खूबसूरत शहर में सजे इस भव्य फिल्म महोत्सव में कल्याणी का अंदाज बेहद शालीन, एलिगेंट और आकर्षक नजर आया। उन्होंने अपने लुक में इंटरनेशनल फैशन का खूबसूरत मेल पेश किया। जैसे ही उनकी पहली तस्वीर सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस और उनकी सादगी और स्टाइल की जमकर लोगों ने तारीफ की। तो वहीं कान फिल्म फेस्टिवल के लिए फ्रांस गई आलिया अपने शानदार फैशन स्टेटमेंट को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। रेड कार्पेट से लेकर फोटोशूट तक आलिया का हर अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाल ही में अभिनेत्री का एक नया और बेहद दिलकश लुक सामने आया, जिसमें वो मरून ऑफ शोल्डर क्रॉसेट गाउन में नजर आ रही है। इस आउटफिट में उनका अंदाज बेहद रॉयल, एलिगेंट और ग्लैमरस दिखाई दे रहा है। आलिया ने अपने इंस्टा अकाउंट पर इवेंट की कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों के साथ आलिया ने कैप्शन भी लिखा है कि प्यारे दोस्तों, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। यानी कान 2026 को आलिया ने अलविदा कर दिया है। लेकिन इस साल आलिया ने सिर्फ फैशन ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व और आत्मविश्वास से भी सबका दिल जीता है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कान फिल्म फेस्टिवल में सनातन की चमक। हाथ में गीता, गले में तुलसी माला, रेड कार्पेट पर पहुंची ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगर आरती खेत्रपाल। कान जैसे इंटरनेशनल मंच पर आरती ने सिर्फ फैशन नहीं दिखाया बल्कि अपनी आस्था और भारतीय परंपरा को भी एक खास अंदाज में पेश किया। आरती गोल्डन शेड के बेहद खूबसूरत कस्टम मेड लहंगे में नजर आई। इस लहंगे की खास बात थी उस पर बनी वृंदावन की सुंदर आकृतियां। लहंगे में मंदिरों, आध्यात्मिक स्थलों और कृष्ण भक्ति की झलक साफ दिखाई दे रही थी। रेड कार्पेट पर उनका ये देसी और आध्यात्मिक अंदाज लोगों को काफी अलग और यूनिक लगा।

0: और चलिए अब आपको लिए चलते हैं कान फिल्म फेस्टिवल में हुई पेजे पार्टी में। इसमें कई मशहूर हस्तियां आकर्षक पियाजे में नजर आई। यहाँ एक ड्रेस कोड है, इसमें आपको पजामा, ड्रेसिंग गाउन और नाइट वेयर पहनना होता है। इस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए आपको एक लॉटरी में हिस्सा लेना पड़ता है। इस साल 300 टिकट्स के लिए 1,800 लोगों ने आवेदन किया था। तो देखिए किस तरह से लोग जो हैं यहाँ फोटोशूट करते हुए नजर आ रहे हैं और कई मशहूर हस्तियां इस इवेंट में शामिल हुई, कई मशहूर लोग इस इवेंट में शामिल हुए और इसके लिए आपको कुछ खास नहीं, बस लॉटरी का टिकट लेना होता है। तो ये एक अलग सी पार्टी है, कुछ हटके पार्टी है, कांस में पायजामा पार्टी। तो एक बार फिर से फ्राइडे आ गया है और इस बार ये शुक्रवार लाया है फिल्मों की लंबी फेहरिस्त। पति पत्नी और वो पार्ट टू से टकराएगी आखिरी सवाल। तो ओटीटी पर धुरंधर दिखाएगी कबाल, कौन सी फिल्म पड़ेगी किस पर भारी, आइए जानते हैं।
1: आज से हो रही है वीकेंड की शुरुआत और ये वीकेंड अपने साथ लेकर आया है एंटरटेनमेंट की भरमार। बॉक्स ऑफिस से लेकर ओटीटी तक आज कई बड़े सितारे मेगा बजट फिल्मों के साथ फैंस का दिल जीतने आ रहे हैं। पति पत्नी और वो दो, सबसे पहले बात हंसी का फुल डोज लेकर आ रही आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो पार्ट टू। ये फिल्म कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर है। फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वमिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह जैसे सितारे हैं, यानी ग्लैमर के साथ साथ फुल ऑन एंटरटेनमेंट का डबल नहीं ट्रिपल डोज मिलने वाला है। इस फिल्म में आयुष्मान तीन तीन हीरोइंस के साथ इश्क फरमाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि तीन हीरोइंस के बीच फुल ड्रामा और कंफ्यूजन होने वाला है। फिल्म का एक और हाई पॉइंट है विजय राज, जिनके दमदार एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग से हर कोई वाकिफ है। ये फिल्म साल 2017 में आई हिट फिल्म पति पत्नी और वो का सिक्वल है। पिछली फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला था, ऐसे में इस बार भी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। आयुष्मान की इस जबरदस्त कंफ्यूजन को टक्कर दे रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त। आज संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल पर्दे पर रिलीज हो रही है, जिसके बाद संजू एक बार फिर पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरने को तैयार हैं। पहले ये फिल्म 8 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट में देरी की वजह से इसकी रिलीज डेट को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया। ये फिल्म आरएसएस की 100 सालों की यात्रा और उसकी सोच कैसे बदली, इस पर आधारित है। इस मूवी में संजू बाबा के साथ समीरा रेड्डी, अमित साध और नीतू चंद्रा ने अहम किरदार निभाया है। बॉक्स ऑफिस के साथ संजू बाबा ओटीटी पर भी छाएंगे। उनके रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 सिल्वर स्क्रीन के बाद आज से ओटीटी पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। धुरंधर 2 को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 56 दिन हो चुके हैं। इस फिल्म ने इस दौरान धुआंधार परफॉर्म किया और छप्पड़ फाड़ कमाई की। अब आदित्य धर निर्देशित ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है और फिर रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप के लिए तैयार है। लंबे समय से चर्चा का विषय रही एक्टर सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म कर्तव्य भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। क्राइम थ्रिलर कर्तव्य में सैफ अली खान एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी और परिवार की सुरक्षा के बीच फंसे हुए हैं। इसमें रसिका दुग्गल और संजय मिश्रा ने भी अहम रोल प्ले किया है। ये फिल्म शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है। यानी इस वीकेंड आपके मनोरंजन के लिए बॉलीवुड का भरपूर मसाला मौजूद है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दर्शकों को कौन सी फिल्म पसंद आती है। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: आईपीएल में आज चेन्नई और लखनऊ के बीच मुकाबला होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए चेन्नई के लिए मुकाबला काफी अहम है। टीम पिछले 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर है, वहीं लखनऊ टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 7 मैच खेले गए हैं, जिसमें दोनों ने 3-3 मैच जीते, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा। वहीं सीजन में दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी। पिछला मैच सीएसके ने जीता था।

0: तो मार्च से शुरू हुई मौसम की पहेली मई में भी अबूझ है, क्योंकि देश में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। एक हिस्से में तपती गर्मी है तो दूसरी तरफ बादल छाए हुए हैं, जबकि कई इलाके ऐसे हैं जहां खूब बारिश हो रही है। लेकिन इसलिए लोग भी पूछ रहे हैं कि मौसम तेरे कितने रूप। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों को बारिश का इंतजार है, ताकि तपती गर्मी से कुछ तो राहत मिल सके। इस बीच भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए तरबूजों का भोग लगाया गया। गर्मियों के सीजन में शाही लीची भी बाजारों में दस्तक दे रही है। इन सब के बीच पुलिस कर्मियों के लिए कूल कूल जैकेट लॉन्च की गई। देश भर में अब मौसम में गर्मी का सितम बढ़ने वाला है। आने वाले वक्त में मौसम की बात करें तो IMD के मुताबिक 27 मई तक उत्तर और पश्चिम भारत में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है, यानी गर्मी अब बढ़ने वाली है। जबकि दूसरी तरफ पूर्वोत्तर और दक्षिण के कई राज्यों में भारी बारिश तूफान का दौर रहने की संभावना है। और अब बात कामयाबी की। नई पीढ़ी अब सफलता को सिर्फ नंबर से नहीं मापती। जेन जी का फोकस अब ऑलराउंडर एक्सीलेंस पर है, जहां किताबें भी हैं और खेलकूद भी, कला भी है और नेतृत्व की क्षमता भी। CBSE 12वीं के इस बार के नतीजों में एक बार फिर से दिल्ली के वसंत वैली स्कूल के बच्चों ने सफलता की एक नई तस्वीर भी पेश की है।
1: खिलखिलाते चेहरे बता रहे हैं कि नतीजे शानदार रहे हैं। वसंत वैली स्कूल के इन छात्रों ने 12वीं की CBSE परीक्षा में 90% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। सबसे ज्यादा अंक रीतिका पवार ने हासिल किया, 99.5% नंबर पाकर ये साबित कर दिया कि पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में संतुलन बनाया जाए तो अच्छे नतीजे हासिल हो सकते हैं।
2: I think कि this is something जो like वसंत वैली स्कूल like inculcate करता है कि हम लोग like हम सिर्फ एक स्कूल में इंडिविजुअल नहीं है, हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, हम like स्कूल कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे जब हम आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, जब हम जैसे MCD स्कूल्स में जाते हैं और आफ्टर स्कूल टीचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इट्स समथिंग कि हम कम्युनिटी को रीच आउट कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स आर वन साइड, दैट्स ऑब्वियसली कुछ चीज़ जो तुम अपने लिए कर रहे होते हो, बट आई फील अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स आपकी जो कम्युनिटी है उसके तरफ भी आपको काम करना चाहिए उसको बेटर करने के लिए।
1: रितिका हेड गर्ल रहते हुए स्कूल की लगभग सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सक्रिय रही। इन्होंने उस पारंपरिक सोच को बदला है जिसमें माना जाता है कि पढ़ाई में अच्छा करने के लिए खेल कूद से दूरी बनानी पड़ेगी।
3: सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो इस साल हमारी टॉपर है, 99.5% उसने लिया है, वो हमारी हेड गर्ल भी थी, हमारी स्कूल कैप्टन थी, और वो हर चीज में जहाँ भी स्कूल में कुछ भी एक्टिविटी हो स्कूल कैप्टन के तरफ उसने पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह निभाया। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है या जो सिर्फ जो पढ़ता है वो ही करता है, तो बहुत कुछ चीज़ें एक साथ भी आदमी कर सकता है। एंड मुझे लगता है रितिका पवार जो हमारी इस बार टॉपर है, स्कूल टॉपर है, शी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस।
1: CBSE 12वीं के नतीजों में दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने सिर्फ शानदार रिजल्ट ही नहीं दिए बल्कि सफलता की एक नई तस्वीर भी पेश की है। स्कूल का औसत परिणाम 87% रहा, इनमें से करीब आधे छात्रों को 90% से ज्यादा अंक हासिल हुए। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वसंत वैली स्कूल में हर वर्ग के बच्चों को बराबर मौका दिया जाता है।
4: तो ये जो टॉपर्स हैं वसंत वैली के, ये हमें बता रहे हैं कि जेंजी जिसकी बहुत चर्चा है, ये प्रतिभा से भरे हुए हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं और कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत कुछ सोचते हैं।
1: वसंत वैली स्कूल के नतीजे सिर्फ परीक्षा में मिले अंकों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बदलती सोच का उदाहरण है जहां नई पीढ़ी पढ़ाई के साथ खेल, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी आगे बढ़ना चाहती है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में शामिल आइफल टावर अब सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि इसे खरीदने का मौका भी मिल रहा है। जी हां, आइफल टावर की ओरिजिनल सीढ़ियों का एक हिस्सा नीलामी में रखा जा रहा है। आखिर क्या है इसकी खासियत और क्यों करोड़ों में बिकती है ये सीढ़ियां, देखिए इस खास रिपोर्ट में।

0: पेरिस की पहचान एफिल टावर, दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में शामिल। हर साल लाखों सैलानी यहां पहुंचते हैं, लेकिन कोई लिफ्ट से ऊपर जाता है तो कोई सीढ़ियां चढ़कर इतिहास को करीब से महसूस करता है। अब इसी इतिहास का एक हिस्सा पेरिस में नीलामी के लिए रखा गया है। ये एफिल टावर की ओरिजिनल घुमावदार सीढ़ियों का हिस्सा है, जिसे 1889 में टावर बनने के वक्त लगाया गया था। आर्ट क्यूरियल पेरिस में रखी गई ये सीढ़ियां 14 स्टेप्स वाली हैं, करीब 9 फीट ऊंची और लगभग 1400 किलो वजनी है। 1983 में एफिल टावर कंपनी ने टावर को मॉडर्न बनाने और वजन कम करने के लिए पुरानी सीढ़ियों को हटाया था। करीब 160 मीटर लंबी सीढ़ियों को अलग अलग हिस्सों में काट कर नीलाम कर दिया गया।
1: On peut aujourd'hui acheter des morceaux de Tour Eiffel de façon tout officielle grâce à cette vente qui a lieu en 1983 où la société de la Tour Eiffel a décidé d'alléger, de moderniser ses escaliers.
0: नीलामी में रखे गए इस हिस्से की कीमत 1,20,000 से 1,50,000 यूरो यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत सिर्फ लोहे की नहीं है, बल्कि इतिहास, दुर्लभता और एफिल टावर से जुड़ी भावनाओं की है।
1: Au regard de son état, puisque ce tronçon d'escalier a été conservé pendant plus de 40 ans à l'abri dans la même collection. Ensuite,
0: इससे पहले भी एफिल टावर की सीढ़ियों के हिस्से रिकॉर्ड कीमतों में बिक चुके हैं। 2008 में एक हिस्सा करीब 5.5 लाख यूरो यानी करीब 6,20,000 में बिका था। आज दुनिया के कई देशों में एफिल टावर की पुरानी सीढ़ियों के हिस्से सजाए गए हैं, लेकिन पेरिस में होने वाली ये नीलामी एक बार फिर इतिहास प्रेमियों का ध्यान खींच रही है। एफिल टावर जो 137 साल बाद भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है, अब उसकी पुरानी सीढ़ियां इतिहास और विरासत की सबसे खास निशानी बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: इंस्टा स्टोरी में आपको हम उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए मोनालिसा की फनी इंस्टा स्टोरी।
3: बिजली विभाग से बोल रहे हैं?
4: हाँ बोलो।
3: हाँ सर, लाइन काट दीजिए।
4: लाइट क्यों काट दें?
3: वो कहा है कि हम कंबल में घुस गए हैं और बत्ती बुझाना भूल गए हैं।
4: खा के पटक देंगे।
5: पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी।
6: किस पे?
5: हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं।
6: तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो।
5: जी।
6: क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मत। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते।
2: तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
3: Thank God I get to wait.
2: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
5: You're listening to CNBC.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
7: Keep it on smooth jazz.
8: This is Roots Reggae.
9: Exclusively on TuneIn.
10: This is classic hip-hop.
11: Exclusively on TuneIn.
4: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
12: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long.
13: This guitar about as hard as a pain.
12: To top 40 hits you just can't get enough of.
3: Thank God I get to.
12: TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
14: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
18: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
18: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
17: अविश्वास में विश्वास बसता है।
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
19: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
20: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की को लेकर बड़ी खबर, 21 जून को होगी दोबारा परीक्षा, एनटीए ने किया आधिकारिक ऐलान। भक्ति और उत्साह के साथ चारधाम यात्रा जारी, 13 लाख के पार पहुंची यात्रियों की संख्या, केदारनाथ में सबसे ज्यादा 5.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर बाबा महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना, भक्तों ने लगाए जय महाकाल के जयकारे। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 5 देशों का दौरा, यूएई से यूरोप तक नए समीकरण साधेगा भारत, आर्थिक तकनीकी और ऊर्जा संबंधों को मजबूत बनाने पर रहेगा जोर। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज को आज सीएम योगी देंगे बड़ी सौगात, 207 करोड़ की लागत से 42 से अधिक परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। देश के ऊर्जा बाजार को लेकर बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी, सीएनजी भी 2 रुपए हुई महंगी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन क्या असर दिखाने वाला है, अलग अलग राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 मई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 8:31 तक

विद्यमान है मेष राशि में, बुध वृषभ राशि में, बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनिदेव फिलहाल विद्यमान है मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है। देखिए, सूर्य देव 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव के प्रवेश के समय वृषभ लग्न का उदय हो रहा है। राशि परिवर्तन के समय सूर्य देव बुध के साथ लग्न में विद्यमान होंगे और मीन राशि में बैठे हुए शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही होगी। सूर्य इस परिवर्तन के समय राहु और केतु से केंद्र में होंगे, तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन राजनैतिक रूप से बहुत बड़े उतार चढ़ाव का समय दिखा रहा है। राजनैतिक रूप से देश में, दुनिया में बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है और इस राशि परिवर्तन का प्रभाव लगभग एक महीने तक बना रहेगा। एक महीने तक सूर्य के इस राशि परिवर्तन से दुनिया प्रभावित होगी और अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का अलग प्रभाव दिखाई देगा। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा असर पड़ेगा, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत अच्छी होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी की सहायता से लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, संतान की उन्नति होगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है, धन की समस्याएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।

0: अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अगले एक महीने तक अलग अलग राशियों पर प्रभाव डालेगा, अलग अलग राशियों को प्रभावित करेगा। मेष, वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के लिए ये परिवर्तन मध्यम फलदायी है, कुछ मामलों में बेहतर है, ज्यादातर मामलों में निगेटिव है। इनको अपने करियर और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इनके करियर में, इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए ये परिवर्तन ज्यादा निगेटिव होगा, ज्यादा प्रतिकूल होगा, इनके जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बेवजह के विवादों से और बेवजह के अपयश से बचाव करना होगा। कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन शुभ रहेगा। इन लोगों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन लाभदायक होगा। इनको स्वास्थ्य और करियर के मामले में लाभ होगा और इनके जो तमाम रुके हुए काम हैं, इस समय इनके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। तो 12 राशियों में कर्क, सिंह, धनु और मीन, इनके लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है। बाकी राशियों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। सूर्य देव के राशि परिवर्तन पर क्या उपाय करेंगे, इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंता हल होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जैसा आपको पहले बताया कि सूर्य देव का राशि परिवर्तन 12 में से केवल 4 राशियों के लिए अच्छा है, बाकी 8 राशियों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है। तो अगर सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए फायदेमंद नहीं है, तो अगले 1 महीने तक क्या उपाय करें कि सूर्य के राशि परिवर्तन से किसी तरह की समस्या ना हो। इस समय रोज प्रातः, नित्य प्रातः सूर्य देव को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिएगा। इसके बाद सूर्य देव के मंत्र का 108 बार जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। इस समय सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे वस्त्र धारण करने में, और चूंकि सूर्य के वृषभ राशि के समय गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ग्रीष्म का प्रभाव होता है, इसलिए इस समय नियमित रूप से जल का, फल का और वस्त्रों का दान करेंगे। नियमित रूप से लोगों को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, पौधों में, वृक्षों में जल डालें। जल वाले जो फल हैं, खरबूजा, तरबूज, खीरा, इनका दान करें। वस्त्रों का, जूते, छातों का अगर दान करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा, करियर में बड़ा लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं कम होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप माता पिता हैं, आपके बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, तो हर बृहस्पतिवार को शिव जी को जल और पीला फूल अर्पित करिए, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 15 मई 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: मेरे पागलों, प्रभु श्री राम से यह पांचवी शिक्षा पूरे विश्व को लोगों को लेना चाहिए कि हमेशा अपनी माता का, बहन का और भारत में रहने वाली सभी नारियों का सम्मान करना चाहिए। भारत में नारियां देवी का रूप मानी जाती हैं और इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता, जहां स्त्रियां भोग हेतु नहीं अपितु स्त्रियों को मातृत्व का दर्जा दिया जाता है।
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा आपने ऐसा क्या हम में देखा जो तुम्हारे पति से ज्यादा अलग है? पता है क्या बोली मंदोदरी? ध्यान से सुनना भारत के लोगों। मंदोदरी हाथ जोड़कर और चिघारती हुई रोती कहती, राम एक मेरा पति था जो दूसरे की स्त्री को अपना बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो जो स्त्री की छाया देख करके माँ का संबंध जोड़ लेते हो। यही अलग बात, यही अनूठी बात थी राम। इसीलिए मेरा पति हारा है और तुम्हारी विजय हुई। मेरे भारत के लोगों, प्रभु श्री राम इतने मर्यादित हैं, इनकी मर्यादा के सामने कोई नहीं टिक पाया।

जी के जीवन काल की दूसरी कथा। राम जी जब जनकपुर जाने लगे, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या शिला बनकर के मार्ग में मिल गई। पत्थर बनी हुई शिला को देखकर गुरुदेव से पूछ लिया, ये कौन है? तो गुरुजी मुस्कुराकर बोले, जिस पर किसी की नजर नहीं गई उस पर आपकी नजर चली गई। मतलब अब इस आपकी नजर से इसकी नजर में कमाल हो गया, अब ये शिला नहीं रह पाएगी। नाथ आप पहचान गए, आपने ठीक पूछा ये कौन है। ये बड़ी बदकिस्मती गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये पत्थर बनी हुई क्यों है, शिला क्यों बनी? श्राप के कारण। अच्छा हाँ, तो महाराज हम क्या करें? गुरुजी मुस्कुरा करके

ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती। राम जी कहते हैं, गुरुदेव हम क्षत्रिय हैं, ये ऋषि की पत्नी है, हम अपना चरण रखेंगे पाप नहीं पड़ेगा, और स्त्री के ऊपर चरण रखेंगे क्या क्या मर्यादा हमारी बन पाएगी, हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं, हमारी मर्यादा टूट जाएगी। गुरु जी बोले, राम अगर तुम चरण रज नहीं दोगे तो इसका उद्धार भी तो नहीं होगा। अब देखना राम जी की कला, राम जी कितने नारी उपासक हैं, राम जी कितने स्त्रियों का सम्मान करते हैं, जरा इस कथा को गौर से सुनना मेरे पागलों। राम जी ने समाधान निकाला, राम जी ने चरण नहीं रखे, पता है क्या किया, राम जी ने चरण उठाया, हवा की तरफ इशारा किया, पवन का झोंका लगा और भगवान के चरणों की रज उड़कर उस गौतम ऋषि की नारी शिला के ऊपर पड़ गई, और जैसे ही पड़ी तो उसका उद्धार हो गया। इतने मर्यादित प्रभु श्री राम। मेरे पागलों, प्रभु श्री राम से यह पांचवी शिक्षा पूरे विश्व को, लोगों को लेना चाहिए कि हमेशा अपनी माता का, बहन का, और भारत में रहने वाली सभी नारियों का सम्मान करना चाहिए। भारत में नारियां देवी का रूप मानी जाती हैं, और इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता, जहां स्त्रियां भोग हेतु नहीं अपितु स्त्रियों को मातृत्व का दर्जा दिया जाता है। भारत कोई साधारण देश नहीं है, कान खोलकर सुन लो, भारत के ऊपर उंगली उठाने वाले और भारत के साथ दोगलापंती करने वाले लोगों, भारत कोई साधारण नहीं है, भारत मातृत्व प्रधान देश है। भारत में गाय माता है, भारत में गंगा माता है, भारत में गीता माता है, और भारत स्वयं ही माता है। इसलिए हम लोग क्या कहते, भारत माता की जय हो, कहते या नहीं? हाँ जी या ना? अरे जोर से बोला। अच्छा तुमने कभी सुना चीन माता? तुमने पाकिस्तान माता सुना? वेस्टर्न रीज माता सुना? लेकिन भारत माता तो सुना? इससे सिद्ध हो गया कि भारत ही माता है, बाकी सब बेटा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, है भारत माता है। ये प्रभु श्री राम से सीखना। तो पांचवी शिक्षा है मर्यादा मय श्री राम, राम जी मर्यादा मय है। अच्छा छठवी शिक्षा क्या है? राम जी की छठवी शिक्षा है समानता। क्या है? जोर से बोलो। समानता का मतलब होता एकता। एक बात समझो, बुरा ना मानना, आदमी जो मर जाता है ना तो वो सोचता है ना वो बोलता है, ना वो बोल पाता ना वो सोच पाता, और जो जिंदा होते हुए भी सत्य को सत्य ना कह पाए और राम जी के लिए ना सोच पाए, वो जीते जी मरा हुआ ही मान लेना चाहिए। बोलो सीताराम। तो राम जी का एक संकल्प और सीख लीजिए, राम जी सबके हैं। किसके हैं? जोर से बोलो, किसके हैं राम जी? केवल देखो, भगवान हमारे हैं ये बढ़िया भाव है, लेकिन भगवान केवल हमारे हैं ये गड़बड़ भाव है। केवल भगवान हमारे नहीं है, भगवान सबके हैं। और राम जी ने एक काम किया, हमसे एक व्यक्ति पूछ रहा था, महाराज 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है, बताओ 500 साल बाद बन रहा है, राम जी को बनवाना होता पहले ही बनवा देते। हमने कहा ठटरी के बरे, राम जी को तो राजा उसी वक्त बनना था, लेकिन 14 साल का वनवास पता है क्यों लिया? बोले क्यों लिया? हमने कहा निषाद का मान बढ़ाने के लिए, केवट की नाव पर जाने के लिए, और सबरी के घर जूठे बेर पहले खाना था, फिर प्रभु श्री राम को अयोध्या का राजा और राज्य चलाना था। पहले उन्होंने निषाद का मान बढ़ाया, केवट की नाव पर बैठे। अच्छा केवट की नाव पर, अरे कभी कभी भगवान को भी भक्तों

0: जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।
1: बताइए जो दुनिया को पार कर रहे उन्हें भी पार होने की जरूरत पड़ती है। क्या उन्हें पार होने की जरूरत है जो दुनिया को पार कर रहे? नहीं नहीं नहीं, उन्हें पार होने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो पार करने वाले मल्लाह यानी केवट का मान बढ़ाने के लिए केवट की नाव पर बैठ जाते हैं। सबरी माता कहती है क्या, रामा रामा
2: रटते रटते।
1: अरे जरा जोर से गाइए।

0: माता एक गीत और गा रही है, आजकल भारत में बहुत चल रहा,
1: मेरी झोपड़ी के
0: सबरी माता कहती है अगर राम जी आएंगे
1: मेरी झोपड़ी।

करने वाले कथा में बैठे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में भी एक दिन राम आएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कथा के प्रति जो श्रद्धा है, तुम्हारी जो कथा के प्रति लगाव है, हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, जाओ तुम्हारी जिंदगी में सदा उजियारा बना रहे। सबरी माता एकता का प्रतीक है, निषाद राज की मित्रता एकता का प्रतीक है, केवट का मान बढ़ाना एकता का प्रतीक है। मेरे पागलों, यही भारत की अखंडता है, यही भारत की संप्रभुता है, यही भारत की एकता है। प्रभु श्री राम ने सबरी के मान को बढ़ाकर भारत में एकता का एक नया नारा दिया है। ये राम जी से छठवीं बात सीखनी चाहिए। बोलो, सीखनी चाहिए या नहीं? जोर से बोलो। जो नहीं सीखते उनका हाल पता है क्या होता? पूछो क्या होता। एक बार एक मुंबई का चंगीलाल, हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल नाला सोपारा में रह रहा है, नाला सोपारा, यहीं बंबई में रहता, नाम चंगीलाल। ट्रेन पे बैठा, मुंबई से जाना था दिल्ली, काले खां दिल्ली, ट्रेन में बैठा, भयंकर भीड़, भीड़ को देखकर चंगीलाल का दिमाग खराब, लेकिन मुंबई का आदमी दिमाग का बहुत तेज दिमाग, मुंबई में है ये दिमाग। उसने सोचा, सीट है नहीं, बैठना है, क्या किया जाए। उसने एक युक्ति सूझी, उपाय, उस चिल्लाया, भागो भागो, सांप है सांप है सांप। आ पूरा डिब्बा खाली, सीटें खाली, लोग गिर गए, हाथ पांव टूट गए, पर डिब्बा खाली। इसने कहा, जय सिद्धि विनायक गणेश भगवान, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, पूरी सीटें खाली। इसने कहा, अब बढ़िया रात कटेगी। बिस्तर लिया, सो गया। सुबह हुई, रेलवे स्टेशन पर, चाय ले लो चाय। इसने आवाज लगाई, चाय ले आओ, 5 का रुपया निकला। कौन सी स्टेशन आ गई? बोले, ये तो मुंबई ही है, इसका दिमाग खराब, रात को हम बैठे कहां से थे। मन में सोचने लगा, बैठे भी तो मुंबई से, रात भर में पहुंचे कहां, मुंबई, दिमाग खराब। चाय वाले से बोला, एक बात बताओ, कल हम शाम को 7 बजे ट्रेन पर बैठे थे, यही मुंबई से ही बैठे थे, दिल्ली जाना था, दिल्ली ये रेलगाड़ी डिब्बी दिल्ली नहीं गई। चाय वाला बोला, बाबूजी क्षमा करना, रात को इस डिब्बे में सांप निकल आया तो डब्बा को यहीं छोड़ दिया गया है। यही छोड़ दिया सामने करने के कारण। ऐसे लोगों की यही दुर्दशा होती है, जो राम जी के जीवन को नहीं समझते, राम जी के चरित्र को नहीं समझते, उनको भी यही छोड़ दिया जाता है, वह पर वहां नहीं पहुंच सकते। याद रखना, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक से ज्यादा भगवान की कथा जरूरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, मेरी झोपड़ी के। सबरी माता अखंडता एकता का प्रतीक है, निषाद राज की मित्रता अखंडता एकता का प्रतीक है। ये राम जी से छठवां गुण सीखो। अब सातवां गुण सुन लीजिए, राम जी का सातवां गुण है भक्त की खोज। किसकी खोज? जोर से बोलिए, राम जी ने भक्तों की खोज की है, भक्तों ने भगवान की नहीं की। आहा, रामायण पढ़िएगा, पहली खोज जटायु जी की किसने की? किसने की? राम जी ने पैदल चल करके, गीध देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा। पहली खोज गीधराज जटायु की राम जी ने की। दूसरा भक्त कौन? आ हा हा हा हा, दूसरे भक्त के रूप में तो अपने ही भाई साहब। कौन? बोलिए बोलिए बोलिए बोलिए। आ हनुमान जी महाराज, सबरी माता, निषाद राज, केवट राज, हनुमान जी, जटायु जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, इन सबकी खोज राम जी ने ही की, स्वयं चल कर के गए। किसी ने कहा, कहां जा रहे? आगे जा रहे भक्तों के पास। अरे
आप भगवान हो, भक्त तुम्हारे पास आना चाहिए, तुम भक्तों के पास क्यों जाते हो? राम जी मुस्कुराकर बोले, भैया जितना हमसे मिलने के लिए भक्त ललायत रहते हैं उससे कहीं ज्यादा हम अपने भक्तों से मिलने के लिए ललायत होते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए जो भी साधक भक्ति करता, महात्माओं का संग करता, भक्ति के रंग में रंगा रहता, उसके जीवन में उमंग तो रहती ही है, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान चल करके उसके घर पर आते हैं। आठवां गुण राम जी का सुनिए, आठवां गुण है माता पिता गुरु के आज्ञाकारी हैं। किसके आज्ञाकारी हैं? माता पिता गुरुदेव के। रामायण पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में राम जी की महिमा है, जरा सुनिएगा। चौपाई कहती,

0: जी का आठवां गुण है, माता पिता गुरुदेव के आज्ञाकारी हैं।
1: किसके आज्ञाकारी हैं? हम लोग माता पिता को तो मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते।
0: हम लोग गुरु जी को तो मानते हैं, गुरु जी की नहीं मानते हैं। हमारे दादाजी हमसे कहते थे, बेटा जमाना उल्टा है। हमने कहा क्या? बोले, जियत पिता को दीन ना नीर, मृतक पिता को हलुआ खीर। हमने कहा मतलब गुरुजी? तो मुस्कुराते हुए हमारे दादाजी बोले, बेटा भारत बड़ा अद्भुत देश है, जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाया जाता है, मरे हुए बाप को पितर पक्ष में हलुआ खीर खिलाया जाता है। बताओ कितने विचित्र लोग हैं। अरे जब तक बाप जिंदा है पानी को नहीं पूछा, और जब मर गया तो कहते हैं पितर पक्ष में, हमारा बाप कौवा बनकर के आएगा। ठटरी के बरे, अब कौवा बनकर आएगा। जब जिंदा है तब पानी नहीं पिलाया, अब कौवा बनकर हलवा खीर खिलाओगे। एक संत कहते थे, जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। जियत पिता को खूब गालियां बकी, और जब मर गए तो बोले गंगा जी ले जाए। भैया ये राम का आदर्श नहीं है। एक और हमें मिले, बोले गुरुजी आप वृद्धाश्रम के बारे में नहीं कुछ बोलते, कुछ अच्छी बात बोलो। तब तक दूसरे जने बैठे थे पास में, बोले गुरुजी भारत में अगर बेटियों को माता पिता का रखने का अगर अधिकार होता तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। लेकिन हमने भी टोक दिया, हमने कहा रोको रोको रोको रोको रोको, इतनी जल्दी ताली मत बजाओ। हमने भी कह दिया, हमने कहा श्रीमान जी बात सही है, भारत में अगर बेटियों को माता पिता को रखने का अगर अधिकार होता तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता, लेकिन अगर भारत में बहुएं ही अपने सास ससुर को माँ बाप मान लेवे तब भी भारत में वृद्धाश्रम नहीं हो सकते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन अद्भुत है, घर घर युद्ध मचा महाभारत, माता पिता की पूंछ तब तक जब तक श्रीमती जी नहीं आई। जहां श्रीमती जी आई सोई अपनी मती खराब। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। कई लोग कहने लगते, गुरु जी आप पत्नियों की इतनी बुराई क्यों करते हो? हम कहा हम बुराई नहीं करते। एक बार एक जने बोले, आप शादी की पत्नियों की बहुत बुराई करते। एक बार क्या हुआ, यही मुंबई में एक जगह है साकी नाका। अभी हम और त्रिपाठी जी आ रहे थे, त्रिपाठी जी शायद चले गए, तो हम और त्रिपाठी जी आ रहे थे तो सामने बोर्ड पर लिखा था पुल के ऊपर साकी नाका। हम कहा ये क्या है? तो त्रिपाठी जी बोले, गुरुजी ये मुंबई है, पुराने नाम है। साकी नाका पे एक घटना घटी। पहले एक गधा था, गधा, वो गधा इतना गजब का था कि उससे कुछ भी पूछो वो हां कहता था। लोग, अब मुंबई के लोग तो बड़े अद्भुत, लोग माला ले ले जावे, लगता है पूर्व जन्म का महात्मा है, गधा भी महात्मा हो सकता। लोग जाएं वो पूछे क्या हमें भगवान मिलेंगे, गधा कहता था हां। लोग पूछे क्या हमारा काम हो जाएगा, गधा कहता था हां। लोगों ने कहा बड़ा गजब का गधा है, और गधा का मालिक वहीं खड़ा, कोई पैसा चढ़ा है कपड़ा चढ़ा है, गधा का मालिक माला माल। गधा बोले हां, एक हमारे जैसा आदमी पहुंच गया गधे के पास, लंबी लाइन लगी। गधे का मालिक बोला, कुछ भी पूछो जवाब मिलेगा, हां बोलेगा। हमने भी कह दिया, क्षमा करना मुंबई के साकी नाका पे रहने वाले टिल्लू गुरु, तुम्हारा गधा ना बोलेगा। तो जो गधे का मालिक था वो तो फुल कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि गधा को उसने हाँ सिखाया था। तो बोला, चाहे जो हो जाए पंडित जी, ये ना नहीं बोल सकता, हाँ ही बोलेगा। हमने कहा लगा लो सर, बोले लगी सर। हम कहा कितने की, बोले 20,000 की, और गधा ले लेना। हम कहा हम गधे का करेंगे क्या, हम गधा नहीं चाहिए, पैसे बढ़ाओ। बोले 30,000 देंगे अगर ये ना बोल दे। और हम गए, हमने कान पकड़ा गधा का, बढ़िया हमने एक माला चढ़ाई, कान में हमने कुछ बुदबुदाया, गधा तुरंत बोला ना ना। लोग चौंक गए, गधे का मालिक भी चौंक गया, हमारे चरणों में गिर गया, गुरु जी और तो सब ठीक है, रुपया तो 30,000 ले लो, हम हार गए, लेकिन एक बात बताओ ये गधे ने ना कैसे कहा। हमने कहा गधा से हमने पूछा शादी करोगे? अब बताओ गधे भी मना कर रहे। हमने कहा ज्यादा दिक्कत, हम फिर से ट्राई करें। तुरंत गधा का मालिक बोला समझ गए महाराज, ये तो विनोद की बातें हैं, लेकिन लोगों की मति, कई लोगों की मति, देखो पत्नी का अर्थ है जो पति को पतन से बचाए, जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी है। मेरे पागलो, पत्नी वही है जो अपने सास ससुर को माँ बाप मान करके उनकी सेवा करे, और जो सास ससुर को माँ बाप मानकर सेवा करेगा उसी घर में राम राज्य की स्थापना होगी।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
4: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वायरल वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको भावुक कर देंगे।
9: कर्नाटक के एक बच्चे ओम एन ने अपने हुनर से बड़ों को हैरान कर दिया। ओम ने दीवार के सहारे सिर के बल खड़े होकर यानी शीर्षासन मुद्रा में बेहद कठिन माने जाने वाले शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ किया।
10: सिर्फ 8 साल की उम्र में ओम ने पूरे स्त्रोत्र को मात्र 3 मिनट 47 सेकंड में पूरा कर लिया। सिर के बल खड़े होकर संस्कृत में मंत्रों का इतना तेज और शुद्ध उच्चारण करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए सांसों पर जबरदस्त काबू और शरीर का संतुलन चाहिए होता है। ओम की इस उपलब्धि को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। फरारी एक ऐसी गाड़ी है जो चुनिंदा लोगों के पास ही होती है, इसलिए सड़क पर दिखते ही नजर एक बार तो पड़ ही जाती है। एक बच्चे के साथ भी यही हुआ, वो इस कार के साथ फोटो खिंचा रहा था, मगर फरारी का ओनर ये सब दूर से ही देख रहा था, लेकिन डांटने या हटाने के बजाय उन्होंने बच्चे का दिल खुश करने की सोची। उन्होंने बच्चे को सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया, सिर्फ इतना ही नहीं उसे गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाई। बच्चा शॉक में था और खुश भी था। वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के मंडप में पूजा सामग्री रखी हुई है, मगर अचानक पता चल जाता है कि हवन में प्रयुक्त होने वाली लकड़ियां गायब थी। पुजारियों, मेहमानों और अनुष्ठानों के पहले से ही जल रहे होने के कारण घबराहट समारोह को बाधित कर सकती थी। इसके बजाय किसी ने 10 मिनट में किराने का सामान पहुंचाने वाली सेवा पर तत्काल ऑर्डर कर दिया। कुछ ही सेकंड के बाद डिलीवरी बॉय आ गया और तुरंत ही सबकी समस्या का समाधान कर दिया गया। वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि बारात आ चुकी है, स्टेज सज चुका है और बस दुल्हन की एंट्री का इंतजार हो रहा है। कुछ ही सेकंड में जैसे ही दुल्हन एंट्री लेती है, वो जमकर थिरकना शुरू कर देती है। दुल्हन का कॉन्फिडेंस और उसके कमाल के मूव्स देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दूल्हे के रिएक्शन की हो रही है। अपनी होने वाली पत्नी को इस अंदाज में नाचते देखकर बंदा बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो बिना पलक झपकाए और मुंह खोले बस एक टुक उसे निहारे जा रहा था।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
4: Gone! Home run!
3: NHL. College basketball.
5: He shoots it immediately.
6: And he makes it in.
3: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
7: One lap to go.
3: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
16: देश के सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर बड़ी खबर, 21 जून को होगी दोबारा परीक्षा, एनटीए ने किया आधिकारिक ऐलान। भक्ति और उत्साह के साथ चार धाम यात्रा जारी, 13 लाख के पार पहुंचे यात्रियों की संख्या, केदारनाथ में सबसे ज्यादा 5.5 लाख भक्तों के दर्शन। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर बाबा महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना, भक्तों ने लगाए जय महाकाल के जयकारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 5 देशों का दौरा, यूएई से यूरोप तक, नए समीकरण साधे का भारत, आर्थिक तकनीकी और ऊर्जा संबंधों को मजबूत बनाने पर रहेगा जोर। यूपी के महाराजगंज को आज सीएम योगी देंगे बड़ी सौगात, 2007 करोड़ की लागत से 42 से अधिक परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। उनासीवे कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा की धमक, एहसास चन्ना स्टारर फिल्म गुदगुडे की होगी स्क्रीनिंग, निदेशक मनीषा मकवाना ने जताई खुशी।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

केदारनाथ धाम, कल 26,500 से ज्यादा लोगों ने किए बाबा केदार के दर्शन। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हुई करीब 3.5 लाख, कल लगभग 20,000 श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। अब तक 2,21,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई यमुनोत्री में मां यमुना के द्वार पर हाजिरी, कल 13,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे मां के धाम। करीब 2,20,000 श्रद्धालु पहुंचे गंगोत्री धाम, कल 12,000 से ज्यादा भक्तों ने किए मां गंगा के दर्शन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर महाकाल की दिव्य भस्म आरती, मासिक शिवरात्रि के शुभ अवसर पर दिखा श्रद्धालुओं का उत्साह। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर आज शुभ संयोग, आयुष्मान योग के साथ बन रहे कई खास योग। मासिक शिवरात्रि के अवसर पर आज बन रहा सर्वार्ध सिद्धि योग, अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त जैसे शुभ संयोग भगवान शिव की पूजा का विशेष। आज वृषभ संक्रांति पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, वृषभ राशि में सूर्यदेव का प्रवेश दूसरे सौर मास के आरंभ का प्रतीक। दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम में बदलाव के आसार, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी की संभावना। आज दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से छाए रह सकते हैं बादल, कहीं कहीं हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर रह सकता है जारी। दिल्ली में आज 40 से 42 डिग्री के बीच रह सकता है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री तक रहने के आसार। दिल्ली में गुरुवार को दर्ज किया गया मई महीने का सबसे गर्म दिन, आने वाले दिनों में तापमान में फिर हो सकता है बदलाव। दिल्ली में कल 40.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा अधिकतम तापमान, 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। राजस्थान में 18 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी, कई जिलों में 48 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। राजस्थान में जयपुर सहित कई इलाकों में हीट वेव के हालात, गर्मी से सावधान रहने की अपील। तेज धूप, गर्मी और लू से बचाव के लिए महाराष्ट्र के अमरावती में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को दिए गए एयर कूलर जैकेट्स, चिलचिलाती धूप में ड्यूटी के दौरान गर्मी से राहत। देश में 25 मई से मॉनसून की एंट्री का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक महीने के आखिरी तक बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार में मॉनसून की शुरुआत की संभावना। गुवाहाटी में हुई भारी बारिश, जगह जगह भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। आज से 5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली में होंगे अहम समझौते। भारत यूरोप रिश्तों को नई मजबूती देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्यापार, रक्षा, एआई और ग्रीन एनर्जी पर रहेगा फोकस। यूएई होगा प्रधानमंत्री के दौरे का पहला पड़ाव, यूएई की मंत्री रीम अल हाशमी का बयान, दोनों देशों के बीच ऊर्जा निवेश और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर होगी चर्चा। नॉर्वे दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडिया नॉर्डिक समिट में टेक्नोलॉजी और रक्षा पर होगी चर्चा, 43 साल बाद किसी भारतीय पीएम का नॉर्वे दौरा। इटली, नीदरलैंड और स्वीडन की यात्रा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल, ऊर्जा निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी को मिलेगा इससे बढ़ावा। आंध्र प्रदेश के पुट्टपार्थी में आज रखी जाएगी एरोस्पेस और डिफेंस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। दिल्ली दौरे के दौरान मेट्रो में सफर करते नजर आए एमपी मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत की अपील के बाद उठाया ये कदम। रांची में अपने आवास के लिए बाइक से रवाना हुए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, प्रधानमंत्री की ईंधन की बचत की अपील पर अमल करते नजर आए। हल्द्वानी में एसएसपी ने दिया ईंधन बचाने का संदेश, कारों के काफिलों की जगह किया बाइक का इस्तेमाल। गोवा सरकार ने सभी सरकारी आधिकारिक विदेश यात्राओं पर लगाया तत्काल प्रतिबंध, विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत को देखते हुए लिया फैसला।
कुरुक्षेत्र में साइकिल से गुरुकुल पहुंचे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत।

0: लोगों से कि पेट्रोल डीजल बचाने की अपील। बिहार के बांका में जिला और सत्र न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य ने पेश की अनोखी मिसाल, साइकिल पर सवार होकर अपने दफ्तर पहुंचे जज साहब। पेट्रोल डीजल की दामों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी, दिल्ली में पेट्रोल 97.77 और डीजल 99.67 प्रति लीटर हुआ। यूपी के महाराजगंज में आज लोगों को मिलेगी सौगात, 208 करोड़ से अधिक लागत की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गढ़वाल राइफल्स के वीर जवानों के परिजनों ने रेजिमेंटल म्यूजियम को सौंपा गैलेंट्री अवार्ड के मेडल, आम लोग कर सकेंगे इसका दीदार। उत्तर प्रदेश के बरेली में नाथ कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ, 7 प्रमुख प्राचीन शिव मंदिरों को जोड़कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मकसद। यूपी सरकार का फैसला, आंधी तूफान और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि में प्रभावित परिवार को आर्थिक मिलेगी मदद, आपदा में मौत पर 4 लाख की राशि देने के निर्देश। उत्तरी 24 परगना के आद्रितो पॉल ने पश्चिम बंगाल बोर्ड परीक्षा में किया टॉप, परिवार के लोगों ने रसगुल्ले खिलाकर किया खुशी का इजहार। हरियाणा के सिवानी में गांव खेड़ा की रहने वाली दीपिका ने हरियाणा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में किया टॉप, राज्य में सबसे ज्यादा अंक किए हासिल। हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में बेटियों ने फिर मारी बाजी, 91.64% लड़कियां हुई पास। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन अलर्ट, तीर्थयात्रियों की सेहत की स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के लिए किए गए खास इंतजाम। नॉर्थ गोवा में स्वामी समर्थ मठ में अरविंद केजरीवाल ने की पूजा, पार्टी के कई और नेता रहे साथ। बटाला में आयोजित धार्मिक समागम में पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, महाराज दर्शन दास डेरे में माथा टेका। जम्मू कश्मीर के रामबन में नशा मुक्त भारत अभियान के सिलसिले में रक्तदान शिविर, प्रशासन ने किया इसका आयोजन। रामबन में प्रशासन ने किया पदयात्रा और जागरूकता रैली का आयोजन, नशे के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। सुकमा में नक्सल का गढ़ माने जाने वाले मोरपल्ली में पहली बार पहुंची सीआरपीएफ, इलाके के विकास के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम किया आयोजन। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों को बांटा जरूरत का सामान, बच्चों और बुजुर्गों से भी की बात। दरभंगा एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ का खास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीआईएसएफ के डीजे के हाथों में सौंपी हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था। सीआईएसएफ जवानों ने दिखाया दम, हर परिस्थिति में दुश्मन से निपटने का अपना डेमो किया पेश। डेमो के दौरान गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजा दरभंगा हवाई अड्डा, अलग अलग परिस्थिति में दुश्मनों से निपटने के लिए जवानों ने दिखाया अपना जलवा। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो दो आज होगी रिलीज। आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह ने भारे मुख्य किरदार। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी आज रिलीज। इस मूवी में संजू बाबा के साथ समीरा रेड्डी, अमित साद और नीतू चंदा का अहम किरदार। हॉरर कॉमेडी फिल्म IIZ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज़ का भी आज सिनेमाघरों में धमाका। इसमें मोहन कपूर, अनुप्रिया गोयनका, रंजन राज और जेसी लीवर निभा रहे लीड रोल। समांथा रूथ प्रभु की तेलुगु एक्शन और फैमिली ड्रामा फिल्म मां इंती बंगारम भी आज रिलीज। इसमें गुलशन देवैया गौतमी और मंजूषा का भी रोल। सिनेमाघरों में छाने के बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 OTT पर हो रही है रिलीज। जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके पढ़ने।
2: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाई और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है, ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये, इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to... But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: नीट यूजी परीक्षा को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, नीट यूजी 2026 की 21 जून को होगा दोबारा परीक्षा, अगले साल से ऑनलाइन होंगे एग्जाम। भक्ति और उत्साह के साथ चारधाम यात्रा जारी, 13 लाख के पार पहुंचे यात्रियों की संख्या, केदारनाथ में सबसे ज्यादा 5.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर बाबा महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना, भक्तों ने लगाए जय महाकाल के जयकारे। यूपी के महाराजगंज को आज सीएम योगी देंगे बड़ी सौगात, 207 करोड़ की लागत से 42 से अधिक परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा की धमक, एहसास चन्ना स्टारर फिल्म गुदगुड़ी की होगी स्क्रीनिंग, निर्देशक मनीषा मकवाना ने जताई खुशी।
3: नमन तुला सह्याद्री चा राजा, हा मुजरा सह्याद्री चा राजा।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त धर्म दुबे। यहां बात हो रही है हाल ही में रिलीज हुए एक ऐसे सॉन्ग की जिसने तहलका मचा दिया है। नमन तुला नाम का एक ऐसा गाना रिलीज हुआ है जिसके स्टारकास्ट के साथ इस समय हम बैठे हुए हैं। मिस्टर डायरेक्टर शक्ति भैया हमारे साथ हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अमृता फर्नांडिस मैम भी हमारे साथ हैं। खास बात यह है कि इस गाने को इन्होंने गाया है और इन्होंने एक्टिंग भी की है, और जिन्होंने संगीत दिया है मिस्टर अनु मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत। चूंकि सर लेडीज़ फर्स्ट, तो मैम आपसे मैं शुरुआत करूँगा। ढोल ताशे नगाड़ा लगातार, इतनी धूम, इतना बढ़िया मज़ा आया कि जो व्यूज है वो 1 करोड़ भी पार हो गए। आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि कैसे इस गाने का ऑफर आपके पास आया, कैसे आपने तैयारी की, और अब कैसा लग रहा है क्योंकि लगातार लोग पसंद कर रहे हैं।
5: सबसे पहले सभी को धन्यवाद, श्रोताओं को जिन्होंने इस गाने को इतना पसंद किया। सोशल मीडिया और यूट्यूब पे भी काफी उसे सराहा जा रहा है। एंड जैसे हमारे साथ अनु जी बैठे, उन्होंने एक ऐसा सुंदर गाना बनाया जो देश प्रेम से तो ओतप्रोत था ही, पर इसके साथ उन्होंने उसकी बीट्स रिदम ऐसी दी है कि एकदम एनर्जेटिक हो जाता है इंसान। तो आई रियली थैंक हिम फॉर दैट एंड द ब्यूटीफुल डायरेक्शन जो शक्ति जी ने किया, बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन। ये गाना ऐसे मेरे पास आया कि संदीप घुगे जी है जो बीजेपी से कनेक्टेड है, उन्होंने मेरे पास एक कंसेप्ट लाया था, और उसी वक्त मैं अनु जी से भी उस दिन मिली, तो उन्होंने कंसेप्ट दोनों से शेयर किया था एक प्रोग्राम में, और वहीं अनु जी को भी वो कंसेप्ट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हमिंग चालू कर दिया उसी प्रोग्राम में बैठे बैठे। वी वेंट इनसाइड आफ्टर द प्रोग्राम जस्ट टू सिट एंड चैट, और मुझे उनका वो हमिंग ही इतना अच्छा लगा जो उन्होंने एक टैगलाइन हम की थी, इतना कैची लगा। तो मैंने कहा मैं ये कर रही हूँ, अगर ये आप मुझे बना के देते हैं गाना तो। एंड ही वाज राइट ऑन इट, और 2 दिन में उनका गाना तैयार हो गया।
4: बिल्कुल पता चला, वैसे ही जो किला कोट है वहां पर गाना शूट हो गया। सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन मैं शक्ति भैया आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, जब गाना हम देखते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में देखा रितेश देशमुख भी वहां लिखा हुआ है, अब कब आएंगे वो, कब आएंगे, कब आएंगे, और लास्ट में जब उनकी एंट्री होती है और फिर आप दोनों जाकर के शिवाजी के चरण में जो आप टीका लगाते हैं, उनका तिलक करते हैं, तो उसके बाद जो ऊर्जा आती है, रोंगटे खड़े हो जाते, कैसे ये आइडिया आ गया? क्या आप उनकी फिल्म को प्रमोट कर रहे थे, या रितेश देशमुख कहीं ना कहीं एक महाराज का चेहरा हो गए हैं, या फिर अमृता मैम के साथ कैसे आपने सोचा कि उनकी जोड़ी लाई जाए?
6: इसका श्रेय मैं अमृता जी या नानू जी को ही दूंगा, क्योंकि आइडिया अमृता जी का था कि क्यों ना रितेश जी को इस कार्य में प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि उस दौरान उनकी फिल्म भी आ रही थी और लोग उनको उस चेहरे में देख रहे थे, छत्रपति के चेहरे में। तो मैम ने बोला कि अगर उनको लाएंगे तो लोग उसे एसोसिएट कर पाएंगे। एंड जहाँ तक गाने की बात है, जब हमने गाना सुना, गाने का जो एंड है वो इतना हाई क्रिसेंडो पे जाता है, इतने जैसे आपने कहा रोंगटे खड़े करने वाला है, तो हमने सोचा कि ऑलरेडी हम ना डांस तलवारबाजी सब दिखा चुके हैं, एंड ऐसे एंड में और क्या ऐसा दिखा सकते हैं कि हम उसके व्यूअर्स के इफेक्ट को और ऊपर ले जाए। तो ऐसा था कि एक सरप्राइज एलिमेंट रखेंगे गाने में और रितेश जी ने उसको बहुत
4: क्या बात है सर। अनु सर मैं आपसे क्या बताऊं, मैं अगर ये कहूं कि उदित नारायण साहब, कुमार शानू या जो भी आज सुपरस्टार सिंगर बने हैं, बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। ऐसे में एक मराठी गाना आपके पास आता है, वो भी उस दिन रिलीज हो रहा है जब 1 मई का दिन है, पूरे महाराष्ट्र देश दुनिया की नजर है, कितना प्रेशर था, कैसे आपने गाना बनाया, कैसे धुन बनाई?
7: नहीं, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बहुत नमन करता हूँ, बहुत मानता हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई में मेरी पैदाइश हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में मेरे पिताजी के थ्रू मैं बहुत सुनता था उनकी कहानियाँ। आप तो जानते ही हैं, मोर देन 350-370 फोर्ट्स उनके पास थे, जिसमें से अभी जैसे सिंधु दुर्गो, बल्कि अमृता जी विल लव दिस लाइन की तोरना जो फोर्ट है ना, वो 16 साल की उम्र में उन्होंने कैप्चर कर लिया था। मुझे जब संदीप जी ने कॉन्सेप्ट बताया और जब अमृता जी का नाम आया तो आई वॉज थ्रिल्ड, बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमृता जी इज डेडिकेशन टूवर्ड्स माई ट्यून। ये नहीं कि आप अब ये सवाल जो होता है कि भाई अमृता जी के साथ बैठे हैं तो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर गौर से आप गाना सुनेंगे तो आपको नजर आएगा कितनी, उन्होंने कहा कि दो दिन में आपने ट्यून बना ली और गाना बन गया, लेकिन इसके पीछे इतनी मेहनत की है इन्होंने मुखड़े पे अंतरे पे मेरे साथ कि अन्नू जी ने जो ट्यून बनाई है उसके पीछे मैं कैसे पढ़ूं। और अगर आज लोग गाना सुन रहे हैं तो मुझे लोग फोन करके पूछते हैं कि अरे एक बात पूछो, मैं हाँ बोलो गाना बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू, पर अमृता जी ने कमाल गाया एंड दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू मी। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब इनकी आवाज की तारीफ की जाती है और जेन्युइन तारीफ हो रही है। ये होता है ना कि भाई नहीं यार ऐसी तारीफ करो तो नहीं, लोग जगहें बताते हैं। फॉर एग्जांपल इस गाने के अंदर आपने अगर मुखड़ा अगर आपने सुना है तो ये गाना बहुत लोकप्रिय हो रहा है, उसमें अंतर ना चल रहा है, इसमें किसी को पता ही नहीं कि इसकी लिंक लाइन आना बड़ा मुश्किल था,

0: न मन तुला, ये मुखड़े पर आना, एक क्रॉस को बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और इन्होंने इतनी मेहनत की रिकॉर्डिंग में, विजय हमारे साथ वायरफ में हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैं जब इनकी आवाज सुनता जा रहा था मैं बोल रहा हूँ बाप रे कमाल की मेहनत करके आई है ये, देखा प्रोफेशनल सिंगर, बल्कि मैं आज दावे से कह सकता हूँ हमारे हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बीच में जो बड़े बड़े गायिका हैं उनमें से मैं अमृता जी का नाम लेना चाहता हूँ। लोग बोलेंगे अनु जी आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप गौर से गाने सुने, गौर से सुने, इनकी वॉइस का अपना जादू है जिसने गाने को हिट कर दिया है।
1: सर सही कह रहे हैं, लेकिन सर एक तमन्ना भीतर मेरे दिल में जाग उठी है और मेरे साथ लाखों करोड़ों लोग जो देख रहे होंगे उनके भी, इतना बढ़िया आपने म्यूजिक अपने तरीके से किया, मैम अगर थोड़ा सा गुनगुना दे।
0: बट बिल्कुल मैं यही एक्चुअली मैं उनको कहने वाला था, अमृता जी प्लीज मुखड़ा गा,
1: मजा आ जाए मैम प्लीज थोड़ा सा हो जाए
0: जो भी स्केल आपको अभी ठीक लग रहे
1: जी।
2: नमन तुला सह्याद्री चा राजा, हा मुजरा सह्याद्री चा राजा।
1: क्या बात क्या बात मैम, देखिए अनु मलिक साहब के बारे में एक बात है जो हम लोग जानते हैं क्योंकि जब से पैदा हुए इनके गाने सुनते जा रहे, बड़ा मजा आता है आज भी हम सुनते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं अपने सिंगर को, आप थोड़ा सा बताएं कि आपको इन्होंने परेशान किया या फिर इनको मतलब ऐसे ही तुरंत बहुत ही सरलता से सारा गाना बन गया, मैं थोड़ा बताएं परेशान किया कुछ
3: गाना
1: किया?
3: बहुत सरलता से बन गया नो डाउट, मैंने बताया ना इन्होंने जस्ट हमिंग की और गाना बन गया, बट इन द स्टूडियो जहां मेरी एक्सप्रेशन नहीं आ रही थी एंड ऑल, ये मुझे पकड़ रहे थे, ये बता रहे कि इजिली हो गया, बट ही कॉट मी एट द राइट प्लेसेस कि आप ये वापस करो, ये मुर्की थोड़ी क्लियर करो, सो ही डिड गाइड मी दैट टाइम, जिसकी वजह से वो अच्छा हो गया गाना।
1: अच्छा देखिए अभी ऐसा है, आप तो ठीक हैं, महाराष्ट्र से हैं, आप जानते हैं उनकी संस्कृति, लेकिन दीपिका पादुकोण को हमने देखा है, प्रियंका चोपड़ा को देखा है मराठी लिबास में जब वो आते हैं, आपको कितना ज्यादा एंजॉय आपने इसको किया या आप भी किसी को फॉलो आपने किया कि भाई मुझे इस तरह से दिखना है मुझे?
3: देखिए हमने कुछ इमेजेस तो जरूर देखे जिनके महाराष्ट्रीय नववारी अटायर्स अप्रिशिएट किए गए थे, बट उसमें बहुत अच्छा योगदान दिया नचिकेत बर्वे जी ने, ही इज रिनाउंड फैशन डिजाइनर, तो उन्होंने चाहे ज्वेलरी हो चाहे सारी ड्रेप या उसका कलर या उसका टेक्सचर, उसमें काफी मदद की और उससे काफी उठावदार ऐसा पूरा एंसेंबल हो गया था।
1: अच्छा मजा बहुत आ रहा है बात करने में, दिल तो कर रहा है और करूँ लेकिन बड़ा ही सीमित समय मिला है। मैम देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि ये सवाल जरूर पूछिएगा, मैम मुख्यमंत्री साहब ने देखा आपका गाना, देवेंद्र साहब ने देखा,
3: देवेंद्र जी ने देखा, दिविजा ने देखा, दोनों को बहुत अच्छा लगा और उनको पूरे टीम का एफर्ट जो था, देवेंद्र जी ने स्पेशली कन्वे करने बोला कि एवरीवन हैज डन अ फैबुलस जॉब एंड स्पेशल थैंक्स टू अनु जी एंड शक्ति जी फॉर अ ब्यूटीफुल सॉन्ग पुट टुगेदर।
1: मैम एक आखिरी सवाल वो मेरी तरफ से होगा क्योंकि वाकई में क्या है कि हम पत्रकार लोग हैं, जब देखते हैं लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं तो उनके पीछे भी बहुत सारे लोग लग जाते हैं, आप सामाजिक काम भी करती हैं, आप बहुत सारे ऐसे काम करती हैं, बहुत सारे हीरो हीरोइन के साथ आप मंच भी शेयर करते हैं अच्छे अच्छे काम करते हुए, आपको ट्रोल बड़ा किया जाता है, ऐसे चीजों को आप एंजॉय करते हो या किस तरीके से कि चल भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब कैसे कहां से आती इतनी शक्ति, शक्ति बगल में तो बैठे ही है लेकिन फिर भी कैसे आप देखते हैं मैम ऐसे ट्रोलर्स को, कैसे देखते हो आप?
3: मैं इसी तरीके से देखती हूँ कि ट्रोलिंग ऐसा होता है कि जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक, आप अगर कुछ बोल रहे हो तो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, या आप कंप्लीटली यू कैन बी इन योर ओन जोन और आप आगे निकल जा सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, कोई पत्थर फेंके तो आपको गिरना है वो पत्थर की चोट से, या आपको उठ के पत्थर उठा के उससे अपने कैसल्स बनाना है, यू हैव टू डिसाइड।
1: क्या बात है भैया, इसको बोलते हैं नारी शक्ति। अच्छा बड़ा मजा आ रहा था जब आपका गाना लगातार बढ़ते जा रहा है ढोल ताशे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और फिर अचानक मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा है कि रितेश देशमुख का नाम लिखा हुआ है, अब मैं इंतजार किए जा रहा हूँ, इंतजार किया हूँ कब आ रहे और जैसे ही वो आए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, उसके बाद मैम और वो दोनों खुद जाकर के शिवाजी महाराज के तिलक चढ़ाते हैं। सर कैसे ये दिमाग आ गया और कैसे आपने ये सोच ली कि भाई रितेश जी को भी लाना है, क्या रितेश जी की फिल्म को प्रमोट करना था या रितेश जी कहीं ना कहीं एक महाराष्ट्र का चेहरा बन चुके हैं या अमृता मैम के एक अच्छे मित्र भी हैं, क्यों?
4: इसका श्रेय मैं अनु जी और अमृता मैम को ही दूंगा क्योंकि आइडिया अमृता मैम का था कि क्यों ना गाने में रितेश जी को ले आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसी दौरान एक फिल्म भी कर रहे थे शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, तो एक चेहरा चेहरे के तौर पर लोग उनको देख रहे थे, तो हमने सोचा कि अगर उनको गाने में ले आए तो ऑडियंस को और मजा आएगा। एंड अनु जी ने जिस तरह गाना बनाया है, गाना एंड में जाके इतना बड़ा हो जाता है, उसका क्रिसेंडो इतना बड़ा है कि हमने सोचा कि गाने में ऑलरेडी हम डांस दिखा चुके हैं, तलवारबाजी दिखा चुके हैं, हम ऐसा क्या सरप्राइज एलिमेंट ला सकते हैं गाने में जिसको देखकर ऑडियंस को मजा आ जाए। तो तब जाके एक आइडिया आया कि क्यों ना रितेश जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे गाने में फीचर करें।
0: बड़ा आपने नोटिस किया, पिक्चर बहुत अच्छा किया गाना, बहुत अच्छा, और अमृता जी हैज परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल,
1: बहुत अच्छा। इसके पहले भी एक राजस्थानी सॉन्ग था मैम का, मैंने इंटरव्यू किया है उसमें राजस्थानी पोशाक में,
0: कमाल
1: बढ़िया।
0: इनकी डेडिकेशन एज एन आर्टिस्ट इस, मैं सच्ची बताना चाहता हूँ शक्ति जी, आपने नोटिस किया होगा 102,000% फोकस इनका एज एन आर्टिस्ट, अपने कला के पीछे पड़ जाती पीछे और काम में लगी रहती।
4: एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो शूटिंग कंडीशन थी बहुत डिफिकल्ट थी, मुश्किल थी, गर्मी का सीजन था और मैम फुल कॉस्ट्यूम में नवाली में डांस कर रहे हैं 200 डांसर्स के साथ, तो बाकी पूरी क्रू कभी ना कभी थकती थी या ब्रेक चाहती थी। मैम सिर्फ एक ही जन है जो पूरी क्रू को बोलते कि चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते, दैट इज मैम।
0: अच्छा एक बात अमृता जी आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज इन्होंने जो बात छेड़ी थी कि आई वर्क विद सर्टेन सिंगर्स और सिंगर्स का कभी कभी मैं उनसे बहुत मेहनत करवाता ना, तो आपने एक चीज नोटिस की नहीं की है, मैं बताना चाहता हूँ अमृता जी, एक जमाने में हम लोग जब रिहर्सल करते थे ना दीदी के साथ, दत्ता जी आशा जी के साथ, फिर वहां से करते करते और भी जो हमारे अभी के सिंगर्स हैं, तो उन लोग रिहर्सल बहुत करते थे हमारे साथ, तो मेहनत करते, जब सेट पर आते थे ना तो प्रिपेयर होते थे। मैंने बहुत सालों बाद ये चीज अमृता जी में देखी,
1: क्या बात है, वाह।
0: आप मेरा मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, हमने रिहर्सल की, जहां जहां इन्होंने बुलाया मैं पहुंच गया बाजा लेके, अब रिहर्सल कर रहे हैं, बट ये नहीं कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मुखड़ा क्या है, अंतरा क्या है, मुखड़ा क्या है, वर्ड्स क्या है, कितना लंबा गाना है, कैसे क्या क्या रेंज क्या है, स्केल क्या। उसके बाद जब सेट पर आई तो मैंने बोला भाई अभी बाजा खोल के बैठेंगे, और वो आई प्रिपेयर्ड, माइक पर गई, ट्रैक ऑन किया और आपको जितना गवाना है गवा लीजिए, लेकिन शी न्यू एवरी वर्ड बाय हार्ट। ये बहुत बड़ी बात होती है, इसका मतलब है आप अपने काम में फोकस्ड हैं, एंड दैट इज व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट एनी आर्टिस्ट।
1: देखिए बातों का सिलसिला ऐसे लगातार बढ़ते जाएगा मैम, एक्चुअली सच में मेरा ये सवाल था, अब जब उठी गया एक आखिरी सवाल प्लीज मुझे इसका जवाब दीजिए, कैसे मतलब कैसे कहां से इतना समय मिल पाता है आपको, और कैसे आपका फिल्मों से गानों से इतना रुझान उसकी तरफ आपका हो गया, कैसे आप इतना गा लेती हैं, अच्छा एक्टिंग भी करती हैं, और जैसा कि सर बता रहे इतनी मेहनत भी कर लेती, कैसे मैम इतने।
3: म्यूजिक में तो मैं बचपन से थी, मेरे पेरेंट्स मेरी दादी एवरी सब क्लासिकल सिंगर्स है, तो थोड़ा उनसे सीखा, आगे गुरुओं से सीखा, उसके बाद रियल लाइफ गुरुज भी मिले ऐसे, तो इजी हो जाता है। और दैट इमोशन ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक फॉर मी इज मेडिटेशन, सो दैट इज समथिंग जो मुझे जिंदा रखता है, मेरी सांसें चालू रखता है, तो दैट्स द लव आई हैव फॉर म्यूजिक, द पैशन, जिसकी वजह से मैं म्यूजिक करते रहती हूँ जैसे समय मिले, दिन रात सुबह शाम जब भी समय मिले आए। Keep on practicing.
1: बढ़िया मैम, हम तो बहुत मजा कर रहे हैं आपको देखकर, आपके गानों को देखकर, हम तो चाहते हैं राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत सारे पंजाब बचे। शक्ति सर मैम को आप एक अलग अलग विभिन्न रूपों में जरूर ले आइए, बहुत धन्यवाद आपके व्यूज लगातार इसी तरह से।
0: जय जय जय हिंद, जय महाराष्ट्र और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
1: आप बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।
2: नमन तुला सयात्री चाराजा, हाँ मुजरा सयात्री चा राजा।
5: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
11: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
12: गुड न्यूज टुडे
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम
16: तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं हिंदुस्तान की एक ऐसी बेटी से जो है तो एकदम सामान्य लेकिन काम इतना शानदार कि पेरिस फैशन वीक जैसे इंटरनेशनल इवेंट में उनके काम को काफी सराहना मिल रही है और उनकी जमकर तारीफ हो रही है लेकिन झारखंड की इस बेटी ने एक फैशन डिजाइनर के तौर पर कोल माइंस की थीम पर ड्रेसेस को पेरिस फैशन वीक में शोकेस किया
17: कुछ समय पहले हुए पेरिस फैशन वीक की ये तस्वीर बेहद खास है वो इसलिए कि इस ग्लोबल इवेंट में इस खास थीम ने दुनिया की फैशन इंडस्ट्री का ध्यान खींचा पेरिस फैशन वीक में इस खास थीम को इंट्रोड्यूस किया झारखंड के भूली की रहने वाली युवा फैशन डिजाइनर कंचन सिंह ने इनकी ड्रेसेस की थीम थी काली धरती जिसके मायने झारखंड की कोयला खदानों से जुड़े लोगों की हालत को बयान करती है दरअसल कंचन का फैशन को लेकर पैशन का सफर स्कूल टाइम से ही शौकिया शुरू हुआ जो अब जुनून में बदल गया है
18: जब मैं क्लास 9th में थी मेरी मम्मी ने बस एक सुई मशीन घर पे ले आई सिलाई की मशीन और मैंने बस कुछ सोचा समझा नहीं और मुझे सीखना था जानना था कि मशीन कैसे चलती है कैसे नहीं तो फिर मैंने अपनी मम्मी की पुरानी साड़ियाँ उठाई काटना चालू किया और ड्रेसेस बनाना चालू किया फिर मुझे वहाँ से पता चला कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है और मैं इस फील्ड में आगे जा सकती हूँ कर सकती हूँ तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगे जाके फैशन डिजाइनिंग ही करनी है
17: कंचन देशभर के 20 डिजाइनर्स में अकेली डिजाइनर रही जिनको झारखंड से अपने परिधानों के साथ पेरिस फैशन वीक में जलवा बिखेरने का अवसर मिला।
18: जब मैं अपने लास्ट ईयर में थी मास्टर्स के, तो उसमें हमारे कॉलेज में ही एक अपॉर्चुनिटी आई थी विदेश से, पेरिस से, कि आप अगर चाहे तो पेरिस फैशन वीक में जा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जो भी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने काम किया है या फिर जो भी आपका टॉपिक है, आप उस टॉपिक को उधर भेज सकते हैं। तो फिर हमने अपना डॉक्यूमेंट बनाया, मैं और मेरी बहुत सारे क्लास के दोस्त थे, सबने बनाया, सबने डॉक्यूमेंट भेजा पेरिस, और वहाँ से पेरिस से ऑल ओवर इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे सेलेक्ट हुए। उन 20 बच्चों में से एक मैं थी।
17: मुंबई की एटलस स्किल टेक यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही कंचन समेत कई और स्टूडेंट्स को जब पेरिस फैशन वीक जैसे बड़े मंच पर अपने कौशल और हुनर को दिखाने का ऑफर आया, तो उसमें जाने के लिए वो प्रभावशाली थीम भी मांगी गई जो समाज को शिक्षित कर पाए, उन्हें जागरूक बनाए। गोलमाइन जैसी थीम पर पेरिस फैशन वीक में हौसलों और उम्मीदों से भरी कंचन की बनाई ड्रेसेस की प्रभावशाली छाप उनके माता पिता को गर्व से भर दे रही है।
12: उसका एक रुझान था अंदर से कि हम कोयलांचल का रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, और झारखंड का नाम हमको आगे रोशन बढ़ाना है, करना है, इसलिए अपना रुचि से बनाई होगी।
17: जाहिर है गंभीर और संवेदनशील थीम को ग्लैमर और चमक दमक के साथ शोकेस करना कोई इजी टास्क नहीं था। यही वजह भी रही कि समाज को एक गहरा संदेश देने के लिए कंचन ने इस थीम बेस्ड ड्रेस को बनाने में करीबन 2 महीने का समय लिया।
18: इस डिज़ाइन को तैयार करने में मुझे तकरीबन 2 महीने लगे, और इस डिज़ाइन में मैंने जो मटेरियल यूज़ किया है वो PUC लेदर वायर स्ट्रिप्स है, और उसके अलावा एल्युमिनियम वायर भी है, और मैंने पूरे जो ड्रेस है वो वीविंग करके एक तकनीक होती है उससे बनाई है, अलग अलग तरीके की वीविंग किया हुआ है उसमें।
17: कंचन को ये पूर्ण विश्वास है कि किसी भी क्षेत्र का विकास जरूरी है, बशर्ते वहाँ के लोगों को अपने घर आंगन को छोड़ने और दर दर भटकने को मजबूर ना होना पड़े। शायद यही वजह रही कि पेरिस फैशन वीक के लिए उन्होंने अपनी ड्रेसेस की थीम काली धरती रखी। फिलहाल तो अपने हुनर, हौसले और क्रिएटिव आइडिया के बूते कंचन नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। इस सपने के साथ कि झारखंड के साथ बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की समृद्ध कला और संस्कृति को भी वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भागीदारी दें। इसके लिए वो इन राज्यों के युवा कलाकारों और डिजाइनर्स को साथ लेकर अपने आगे के सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं।
18: मैं इस सफलता को अभी कुछ इस प्रकार देखती हूँ कि ये सफलता मेरे लिए एक पहली सीढ़ी है, अभी मैंने शुरुआत ही किया है, अभी आगे जाके मुझे धनबाद झारखंड के नाम को बहुत आगे पहुँचाना है और बहुत सारे और भी काम करने हैं।
17: झारखंड के धनबाद से सिथुन मोदक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
16: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
19: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बच्चा नदी में उतरकर पानी में खेल रहा है, वहीं पास में सीढ़ी पर उसकी माँ बैठी हुई है। अब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग कपड़ों से बनी हुई रस्सी को बच्चे के शरीर पर बांधा हुआ है और दूसरा छोर पकड़े हुए बैठी है। बच्चे मजे से पानी में खेल रहे हैं और वहीं माँ उसकी रक्षा कर रही है। अब ये वीडियो कब और कहाँ का है ये तो नहीं पता चल पाया, मगर वीडियो बता रहा है कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में कितना सोचती है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप पर इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चुक रहे हैं।
13: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
20: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
4: What you got for me, Jack?
20: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
21: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
16: नीट यूजी परीक्षा को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, नीट यूजी 2026 की 21 जून को होगी दोबारा परीक्षा, अगले साल से ऑनलाइन होंगे एग्जाम। भक्ति और उत्साह के साथ चारधाम यात्रा जारी, 13 लाख के पार पहुंचे यात्रियों की संख्या, केदारनाथ में सबसे ज्यादा 5.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। देश के डिफेंस सेक्टर से शानदार खबर, आंध्र प्रदेश में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं का शुभारंभ, रक्षा मंत्री सीएम नायडू ने वैदिक मंत्रों के बीच किया भूमि पूजन। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पे बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना, भक्तों ने लगाए जय महाकाल के जयकारे। गोरखपुर के रामगढ़ ताल की लहरों पर दिखा रोइंग का रोमांच, अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ, विभिन्न राज्यों की 16 टीमें ले रही इसमें हिस्सा।

0: एनईसीसी संडे हो या मंडे रोज खावंडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नई हैं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला

0: आज से 5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली में होंगे अहम समझौते। कुरुक्षेत्र में साइकिल से गुरुकुल पहुंचे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, लोगों से की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील। यूपी के महाराजगंज में आज लोगों को मिलेगी सौगात, 208 करोड़ से अधिक लागत की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, शिलान्यास। उत्तरी 24 परगना के आदित्रो पॉल ने पश्चिम बंगाल बोर्ड परीक्षा में किया टॉप, परिवार के लोगों ने रसगुल्ले खिलाकर किया खुशी का इजहार। हरियाणा के सिवानी के गांव खेड़ा के रहने वाले दीपिका ने हरियाणा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में किया टॉप, राज्य में सबसे ज्यादा अंक किए हासिल।
1: श्रीनगर के बादामी बाग में एनसीसी का स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप शुरू, देश भर के साथ सांस्कृतिक विविधता का भी दिखा नजारा। जम्मू कश्मीर के रामबन में नशा मुक्त भारत अभियान के सिलसिले में रक्तदान शिविर लगाया गया, प्रशासन ने किया इसका आयोजन।

0: सुकमा में नक्सल का गढ़ माने जाने वाले मोरपल्ली में पहली बार पहुंची सीआरपीएफ। इलाके के विकास के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया। बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवानों ने दिखाया दम। हर परिस्थिति में दुश्मन से निपटने का अपना डेमो किया पेश। बटाला में आयोजित धार्मिक समागम में पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। महाराज दर्शन दास डेरे में टेका माथा।
1: रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो दो आज रिलीज। आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह निभा रहे हैं मुख्य किरदार। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी आज रिलीज। इस मूवी में संजू बाबा के साथ समीरा रेड्डी, अमित साध और नीतू चंद्रा का अहम किरदार। हॉरर कॉमेडी फिल्म IIZ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज का भी आज सिनेमाघरों में धमाका। इसमें मोहन कपूर, अनुप्रिया गोयनका, रंजन राज और जेसी लीवर निभा रहे लीड रोल। समांथा रूथ प्रभु की तेलुगु एक्शन और फैमिली ड्रामा फिल्म इंती बंगाराम भी आज रिलीज। इसमें गुलशन देवैया गौतमी और मंजूषा का भी रोल। सिनेमाघरों में छाने के बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 OTT पर हो रही है रिलीज। जियो हॉटस्टार पर देगी दस्तक।
0: अकोला में छत्रपति संभाजी महाराज जयंती पर भव्य शोभा यात्रा। शहर में गूंजा छत्रपति का जयघोष। मिस्र के शहर लक्सर में एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। यहां प्लास्टर से बनी एक दीवार के टुकड़े और शहर के पश्चिमी तट पर मरम्मत के बाद पुरानी कब्रों का अनावरण किया गया। चीन का यीवू शहर बना दुनिया के छोटे सामानों का बड़ा बाजार। क्रिसमस डेकोरेशन से लेकर वर्ल्ड कप सामान सब मिलेगा। गाजा के कलाकारों ने फुटबॉल स्टार लामिन यामल की मलबे पर बनाई शानदार पेंटिंग। चित्र में यामल के हाथ में लहराता दिखा फिलिस्तीनी झंडा। इटली में इटालियो के छठवें चरण का आयोजन किया गया। डेविड बैलरीनी रहे राउंड के विनर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: तो चलिए 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट सर्च करके तैयार है।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
1: मिडिल ईस्ट के तनाव का देखने लगा है असर।

0: लेकर देश में पेट्रोल डीजल हुआ 3 रुपए महंगा, सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए का इजाफा।
1: 5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री, यूएई से लेकर यूरोप तक ऊर्जा आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर होगी बातचीत।
0: नीट एग्जाम की नई तारीख का हुआ ऐलान, अब 21 जून को दोबारा परीक्षा देंगे छात्र।
1: चारधाम यात्रा में उमड़ रही आस्था, अपार दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 13 लाख के पार हुई।
0: और आज फिल्मी फ्राइडे है, फिल्मी फ्राइडे पे बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाल। बड़े पर्दे पर संजय दत्त के आखिरी सवाल का आयुष्मान खुराना की पति पत्नी और वो 2 से टक्कर, ओटीटी पर धुरंधर।

0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। कल देखिए शनि जयंती मनाई जाएगी। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को ये महाउत्सव मनाया जाता है। मान्यता इसके साथ ये है कि इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को शनि अमावस्या या शनैश्चरी अमावस्या के नाम से जानते हैं। कल ये पावन घड़ी आ रही है। इस बार का संयोग इसलिए भी खास बन गया है क्योंकि शनिवार और अमावस्या एक साथ पड़ रहे हैं और माना जाता है कि इस तिथि पर शनिदेव की पूजा करने से शनि की साढ़े साथी, उसकी ढैया और शनि दोष के अशुभ प्रभावों से मुक्ति भी मिल जाती है
1: और हर तरह की समस्या का समाधान होता है। देखिए अमावस्या तिथि की शुरुआत कल सुबह 5:11 पर होगी, वहीं इसका समापन 17 मई को आधी रात 1:30 होगा। ज्योतिष आचार्य के अनुसार शनि पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 पर होगा। संध्या पूजन का मुहूर्त शाम 7:04 से 7:25 के बीच रहेगा।

0: अमावस्या पर शनि जन्मोत्सव के शुभ संयोग से मिलेगा वरदान। शुभ घड़ी में शनि देव की पूजा से होगा जगत का कल्याण। कल ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या का दिन धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष के लिहाज से बेहद खास होने वाला है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसी पावन तिथि पर भगवान शनि का अवतरण हुआ था। इसी वजह से शनि जन्मोत्सव पर पूरे विधि विधान से शनि देव की पूजा की जाती है।
1: कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाते हैं। ऐसा पुराणों में कथा आता है कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भगवान शनि का जन्म हुआ। भगवान सूर्य के यह पुत्र हैं और भगवान सूर्य की दो पत्नियां, दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र हुए। भगवान सूर्य की जो एक पत्नी छाया थी उनसे भगवान शनि का जन्म हुआ और भगवान सूर्य की जो दूसरी पत्नी संज्ञा थी उनसे भगवान यम का जन्म हुआ। इसीलिए ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को शनि जयंती मनाते हैं।
0: इस बार शनि जन्मोत्सव शनिवार के दिन ही पड़ रहा है, लिहाजा ज्योतिष के लिहाज से ये एक दुर्लभ संयोग है। माना जाता है कि इस पावन तिथि पर शनि देव की पूजा करने से शनि की साढ़े साती और शनि दोष के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। कल 16 मई को अमावस्या की तिथि सुबह 5:11 पर प्रारंभ हो रही है। अमावस्या का समापन 17 मई को आधी रात करीब 1:30 होगा। ज्योतिष के मुताबिक शनि पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:19 से 8:59 तक है। संध्या पूजन का मुहूर्त शाम 7:05 से रात 8:23 तक है। शनि देव को कर्म फलदाता और न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। माना जाता है कि शनि देव मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शनि जयंती की तिथि पर शनि देव के विशेष पूजा करने से हर तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है।
1: शनि जयंती पर शनि भगवान की उपासना के लिए आप विशेष रूप से भगवान शनि के मंदिर जाएं या पीपल के वृक्ष के नीचे सायंकाल के समय सरसों तेल का दीपक जलावें और काला वस्त्र काला धागा भगवान को अर्पण कर धूप दीप नैवेद्य गंध आदि से भगवान शनि का पूजन करें और ओम सन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शनि का पूजन करने से शनि भगवान अति प्रसन्न होंगे और जीवन में अत्यधिक खुशहाली प्राप्त होगी।
0: इस बार शनि जन्मोत्सव के दिन एक नहीं बल्कि कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इसी दिन वट सावित्री व्रत का पावन संयोग भी बन रहा है। एक ही दिन दो महत्वपूर्ण धार्मिक पर्वों का साथ आना अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे दुर्लभ योग से इस दिन का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। इसी दिन केदार योग भी बन रहा है जो सुख समृद्धि और सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे।
2: और चलिए सुबह बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। संजय जी शनि जयंती का त्योहार चूंकि कल मनाया जाएगा, न्याय के देवता इनको हम कहते हैं, तो ये बताइए कि कल का दिन कितना उत्तम है और कल ऐसा क्या उपाय किया जाए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, जिनकी साढ़े साती चल रही है, जिनकी ढैया है या शनिदेव प्रसन्न नहीं है वो भी प्रसन्न हो जाए, क्या किया जाए ऐसा
3: जी। सबसे पहले आप सबको भी शनि जयंती की शुभकामनाएं और कहते हैं कि शनि जो है न्याय और अनुशासन के देवता है, तो हमारे जीवन में न्याय अनुशासन स्टेबिलिटी सब रहे और हम सुखद रहें, क्योंकि रौद्र नामक संवत्सर है जिसमें काफी ज्यादा जो है रौद्र हो रहा है, रुद्र रूप लिया हुआ है प्रकृति ने, युद्ध चल रहे हैं, तो परमात्मा पूरी सृष्टि में शांति बनाए रखे। एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा जो शनि का ही मंत्र है, ओम शनो देवी रविष्टये आपो भवंतु पीतये शनियो रविश्रवंतु ना। कहा जाता है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए और शनि की साढ़े साती के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनि के जो है 10 नामों का अगर आप उच्चारण करते हैं तो उससे विशेष लाभ रहता है। दूसरा 10 नाम क्या है एक बार मैं बोल देता हूं। ओम कौणस्थाय नमः, पिंगलाय नमः, विभुय नमः, मंदाय नमः, यमाय नमः, कृष्णाय नमः, रौद्रांतकाय नमः तो और यमाय नमः। इस प्रकार से इन नामों को अगर आप बोलते हैं तो उससे विशेष लाभ रहता है और दशरथ कृत जो है स्त्रोत्र जो है उसका अगर आप पाठ कर लेते हैं या फिर लघु मंत्र ओम शं शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, पीपल के वृक्ष में जल दे देते हैं और वट के वृक्ष में भी जल दें क्योंकि सावित्री व्रत भी है, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जो स्थान है वो वट वृक्ष में होता है, सबसे जो लंबी आयु भी होती है वो वट वृक्ष की ही शास्त्रों में बताई गई है। और सरसों के तेल का दीपक चार मुंह वाला जो है आप जलाएं और शनि को प्रसन्न करें, तेल इत्यादि का दान करें, काले तिल पितृ अमावस्या भी है तो तिल भी उसके अंदर रख दें और अपने पूर्वजों का भी ध्यान करें शनि को प्रसन्न करने के लिए, शनि से प्रार्थना करें और अगर हो सके तो क्योंकि शनि का जो माना गया है कि आप किसी गरीब की अगर मदद करते हैं, किसी गरीब को खाना खिला देते हैं तो उससे भी शनि जो है प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के अंदर न्याय प्रिय रहें, अच्छाई को देखें, बुराई को त्याग दें। और जिस प्रकार से भगवान शनि का मंत्र आता है नीलाजन समाभासम रविपुत्रम तो इस प्रकार से जो है शनि की प्रार्थना करते जाएं और गणेश स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं और जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है उनको जो है शनि और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और ओम शन शनिचराय नमः या फिर महामृत्युंजय का जो मूल मंत्र है ओम हूं जूं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदना मृत्युर्मोक्षीय मामृता स्वय भुआ भू सह जूं हूं ओम। अगर इतना लंबा ना बोल सकते तो ओम हूं जूं स्वाहा भी आप जो है बोल सकते हैं, क्योंकि शनि का जो है 52 अक्षर का मंत्र है तो इसके संपुट को भी आप बोल सकते हैं जिससे कि शनि, क्योंकि शनि की जब 7.5 आती है व्यक्ति के जीवन में 2700 दिन की आती है और जो 7.5 साल होते हैं तो जब ढैया आता है तो 2.5 वर्ष का आता है तो उसका जब अष्टम में ढैया आता है तो गणेश स्तोत्र का पाठ करें, शनि और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं, तिल काले तिल उड़द का दान करें, कपड़ा काला दान करें, इनसे छाता दान कर सकते हैं बारिश का मौसम है तो, अगर सर्दी ज्यादा हो तो उसमें कंबल का दान करें, तो जैसा समय चल रहा है उसमें दान करें और सरसों का तेल अवश्य दान करें या शनि की मूर्ति पर चढ़ाएं या शनि का के ऊपर जाकर के अभिषेक कर लें, उससे जीवन में शांति आती है और न्याय, कहते हैं कि शनि को तो न्याय का देवता ही माना गया है तो आपके जीवन में जो सत्य को धारण करो, जो सबसे लंबी उंगली है उसमें आप घोड़े की नाल का छल्ला या नाव की कील का छल्ला भी आप पहन सकते हैं जिससे कि शनि का जो दुष्प्रभाव है आपके ऊपर ना हो और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि शनि देव दे और आप प्रसन्न रहें।
2: बिल्कुल संत जी, एक और सवाल आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी, कल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि है और साथ ही में शनि जयंती भी पड़ रही है, ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है दिन वट सावित्री का व्रत भी है जैसे आपने बताया, किस तरीके से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है और क्या काले रंग से परहेज करना सही होगा, काले और मुख्यतः नीले रंग के कपड़ों से?
3: जी देखो, काला जो रंग है कहते हैं कि अंधकार का प्रतीक माना जाता है, परंतु नजर मिटाने के लिए भी जो है काला कलर या नीला कलर हम पहनते हैं, तो मैं कहूंगा कि शनिवार के दिन अगर आप काला पहने तो काला कलर कभी भी नुकसान नहीं करता क्योंकि काला पहनने से जो है शनि प्रसन्न ही होंगे आपसे। और एक कहावत भी है कि शनि के जो है मस्तक को ना देखे, शनि के पैर को देखे, जो सबसे बड़ी उंगली होती है पैर की या हाथ की बड़ी उंगली होती है, तो उसी प्रकार से शनि की जो मूर्ति होती है उसमें शनि के पैरों के ऊपर जो है जल या सरसों का तेल अर्पित किया जाए तो उससे शनि जो है सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि यमुना जी भी उनकी जो बहन है और यम उनके भाई हैं, तो कहा जाता है कि अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके परिवार को प्रसन्न करें, सूर्य को भी जल देना चाहिए प्रातः सुबह शीघ्र उठ करके और भगवान शनि का ध्यान भी करें और सब चीजें जो है काले तिल उड़द ये इत्यादि सामान लेकर के और काले पुष्प लेकर के या नीले पुष्प लेकर के शनि पर अर्पित करते जाएं और शनि के मंत्रों का जाप करें। और इसमें क्या है कि जो अगर आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा भी करते हैं तो भी आपके संकटों से जो है शनि जो है दूर रखते हैं, क्योंकि शनि को जो है मुक्त जो है हनुमान जी ने ही कराया था और कहा जाता है कि तब से जो है शनि की जब टांग काट दी रावण ने तो तब से जब तक शनि जो चलते हैं तो सबसे स्लो चलते हैं क्योंकि एक घर पूरा करते हैं 2.5 वर्ष के अंदर, तो इसीलिए जो है शनि की जब 7.5 या 2.5 आता है, वक्री दृष्टि होती है, वक्र दृष्टि, तो शनि थोड़ा दुष्प्रभाव देते हैं, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां होती है, 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो जब ये दृष्टियां पड़ती है, क्योंकि शनि की जब दृष्टि पड़ती है किसी के ऊपर, तो खराब होती है, जीवन में जो अशांति पैदा कर देती है। तो उससे बचने के लिए आपको न्यायप्रिय रहना है, सत्य को धारण करना है, असत्य को त्यागना है। कहते हैं तम को त्यागो, तम अर्थात अंधकार से दूर रहो, प्रकाश में आ जाओ। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान को अर्जित करो। रज को बढ़ाओ, रज बढ़ाने का मतलब कि जीवन में जो है रुपया पैसा धन दौलत मान सम्मान मर्यादा पर जो है मोहर माया से बचो। सत्य को धारण करो, अहम को त्याग करो और ब्रह्म को पहचानो कि आपका जो जन्म।
2: संजय जी एक और सवाल है, बिल्कुल संजय जी एक और सवाल है, दर्शक का ही सवाल आया है मेरे फोन पे है, ये सवाल मैं वही पूछ लेती हूँ, उसके साथ एक और सवाल जोड़ूंगी। सवाल इनका ये है कि इन्होंने पूछा है कि शनिदेव की पूजा के बाद कितनी बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी पड़ती है, और ये तो सवाल है ही, साथ में एक और सवाल है कि शनिदेव की दृष्टि में आप सीधा नहीं देखते हैं, उनके पैरों की तरफ देखा जाता है, ये कितना सत्य है? इन दोनों बातों का जवाब चाहती हूँ।
3: बिल्कुल बिल्कुल सत्य है कि शनि के चरणों को ही देखना चाहिए। मूर्ति का तो शास्त्रों में जो है विधान भी नहीं है, क्योंकि आप देखें शनि सुगनापुर भी जाए तो वहां भी जो है एक काले कलर का जो है पत्थर ही जो है स्थापित है, जो कि पानी में बह करके आया था, और उसी प्रकार से उसी आकार की जो है पूजा करनी चाहिए, मूर्ति तो बनानी भी नहीं चाहिए, और उसमें जो शनि के चरण है पैर है उन्हीं को देखना चाहिए, सीधी दृष्टि भी जो है शनि के ऊपर नहीं करनी चाहिए। और परिक्रमा कहते हैं कि आप जब भी परिक्रमा करें शनि की तो 7 परिक्रमा करें, और एक कच्चा सूत जरूर ले लें और पीपल के वृक्ष के ऊपर लपेट दें, या फिर जो है आप अपनी हाइट के बराबर का एक काला धागा लें और उसका 7 गुना करके और आधे एक घंटे के लिए अपने पेट पे बांध लें और उसको पीपल के वृक्ष पे भी लपेट दें, तो उससे आपके जीवन में शनि का जो दुष्प्रभाव है, क्योंकि शनि को जो है चरणों का प्रतीक माना जाता है, तो कहते हैं कि ब्रह्मा ब्राह्मण को ब्रह्मा का मुख माना गया है, तो शनि को जो है चरणों का माना गया है। जो भी लोग सेवा भाव वाले होते हैं, जो सेवा करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, चाहे आपकी सफाई वाली है, चाहे आपका कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति है, जो भी सेवा वाले या सेवा भाव वाले लोग हैं, उनको जो है अगर आप दान देते हैं या उनको प्रसन्न करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो शनि क्या है कि आपके जीवन में प्रसन्न होकर के आपको सभी प्रकार का न्याय भी देते हैं और सुख समृद्धि बढ़ाते हैं और आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी भी आ जाती है। और शनि कहते हैं कि जिसका शनि खराब हो जाए उसकी लाइफ में काफी अड़चने आ जाती है। मेष राशि में शनि को जो है नीचस्त माना जाता है और तुला राशि में जो है उच्चस्त माना जाता है, मकर कुंभ में जो है स्वग्रही माना जाता है। तो जब ये अपने घर में होते हैं तो अच्छा फल देते हैं और जहां नीच में पड़ जाए तो जीवन में खराब कर देते हैं, पर शनि जिस स्थान पे बैठता है, कहते हैं कि शनि अगर अष्टम में हो तो मानक हो जाता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो जिस स्थान पे बैठता है उसकी चीजों को बढ़ा देता है, अगर दृष्टि पड़ जाए तो खराब हो जाती है। तो शनि को आप प्रसन्न करने के लिए शनि की पूजा करें, शनि का ध्यान करें, जिससे कि शनि आपके जीवन में उत्तम से उत्तम फल दे और आपके जीवन में कहते हैं कि 5 तत्व है उनको जो है आप कहते हैं मिश्रित कर लेते हैं हम, और कहते हैं पीपल में जल चढ़ा दें, उसके पश्चात उसकी परिक्रमा कर लें, थोड़ा अन्न का दान कर दें, और उसके पश्चात आसन लगाकर ओम शनिश्चराय मंत्र का जाप कर लें और अपने पितरों का भी ध्यान करें, क्योंकि पितृ अमावस्या है, तो पितरों पूर्वजों का भी ध्यान कर लें। और वट वृक्ष की भी पूजा मैंने बताई है, जैसे सावित्री ने वट वृक्ष की जो पूजा करी उसमें विधान है कि अपने पति सत्यवान के प्राण बचाने के लिए वो यम के पीछे पीछे चलने लग गई और उससे वर मांग लिया कि मेरे 100, कहा कि मैं प्राण तो नहीं दूंगा पर उन्होंने कहा कोई और वर मांगो, तो उन्होंने कहा मेरे को 100 पुत्र होने चाहिए और मेरे मेरे पति का जो है राज्य पाठ मिल जाना चाहिए। तो क्या है कि जब उसने वर तो दे दिया पर क्या है कि 100 पुत्र कैसे होंगे जब तक पति नहीं होगा, तो उसने क्या है कि उनके प्राणों को वापस करना पड़ा, क्योंकि इतना ज्यादा सावित्री ने तप किया व्रत किया, क्योंकि हर महीने जो है वो पूजा पाठ करती थी। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में आता है वट वृक्ष की जो पूजा करता है उसके जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही उससे प्रसन्न हो जाते हैं, तीनों शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो आपके जीवन में सुख और आनंद देती हैं। इसीलिए जो है वट वृक्ष की पूजा भी करें, पीपल की पूजा भी करें, और मैं कहूंगा कि आज के दिन किसी भी पेड़ को बिल्कुल ना काटें, उसके पत्ते ना तोड़ें आज के दिन, और हो सके तो पीपल बड़ और नीम के पेड़ जो है अपने आसपास में लगवा दें, जिससे कि प्रकृति और नेचर भी अच्छा रहे और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा और नेचर की कृपा भी बनी रहे, शनि प्रसन्न रहे।
2: बिल्कुल संजय जी, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, अगर शनिदेव के बारे में हम बात करें तो कहते हैं कि वो कर्म प्रधान है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्म करोगे तो उसका बुरा ही असर होगा, तो ऐसे में गरीबों की किस तरीके से सेवा की जा सकती है इस दिन, और दान, किन चीजों का दान करना इस दिन उत्तम होगा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
3: जी देखो, काले उड़द और अन्न का दान जो है करना विशेष करके श्रेष्ठ होता है, और भोजन का दान, काले चने का दान जो है आज के दिन किया जाए तो बड़ा ही शुभ रहता है। और कहा जाता है कि गरीबों को खाना खिलाना, अमावस्या के दिन अगर आप कुछ लोगों को खाना खिला देते हैं या आप खीर खिला देते हैं, तस्मई खिला देते हैं, तो उससे विशेष करके, क्योंकि जब दूसरे की आत्मा तृप्त होती है तो आपको कहीं ना कहीं आशीष मिलती है, और आशीष मिलती है तो आपके जीवन में सुख शांति भी आती है। तो आप क्या है कि मावस के दिन जो है मजदूरों को खाना दे दें और खाना खिला दें, और आप खुद किसी के घर जाकर के भोजन ना करें, लंगर इत्यादि आप करवाना चाहते हैं ना उसमें से प्रसाद ग्रहण कर लें, पर मावस के दिन जो है आप भंडारा कर सकते हैं, अपने पितरों और पूर्वजों के नाम से ब्राह्मण को बुला करके, ब्राह्मणी को बुला करके भोजन करा सकते हैं और पितृ तर्पण कर सकते हैं, और पितरों को तृप्त करने के लिए जो है उनको जल चढ़ा सकते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, अगर वहां जाना संभव ना हो तो गंगा जल पानी में डाल करके अपने पितरों को तृप्त करें और गरीबों को जो है भोजन कराएं और दान पुण्य करें। तो शनि के लिए काली सात चीजों का भी दान आप कर सकते हैं, काला कंबल दे सकते हैं, शॉल दे सकते हैं, काला कपड़ा दे सकते हैं, काले उड़द दे सकते हैं,
2: बिल्कुल
3: चाकू दे सकते हैं, और कुछ धन या दक्षिणा दे सकते हैं, सरसों का तेल दे सकते हैं, काले तिल दे सकते हैं, उड़द दे सकते हैं, तो इन सब चीजों का दान करने से।
2: संजय जी क्योंकि वक्त कम है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा छोटा सा सवाल है, छोटा सा ही जवाब दीजिएगा उसका। सवाल ये है कि किन लोगों को शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए, और कल के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताइए, क्या करना चाहिए वो तो आपने बता दिया है।
3: देखो, कल के दिन आपको जो है बाल नहीं कटवाने चाहिए शनि मावस के दिन। दूसरा जो है गरीबों को दान करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए मैं ये कहूंगा कि देखो सब कुछ करो पर कोई ऐसा कृत्य ना करो जिससे कि दूसरे का मन दुखी हो, आत्मा दुखी हो, सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करो, और जितना सब लोग प्रसन्न रहे आपसे, कहा जाता है कि संसार में खुशी बांटेंगे तो खुशी बटेगी, जिस प्रकार से पुष्प खिला होता है ऐसे हम सबके चेहरों को खिला दें, सबकी जिंदगी में खुशहाली ला दें, और अपने अपने वचनों से, अपनी वाणी से सबको प्रसन्न रखें, इससे बड़ा कोई वो नहीं हो सकता दान पुण्य, क्योंकि अगर आप किसी की आत्मा को तृप्त कर देते हैं तो उससे बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है। और शनि के मंत्र का खास तौर से जाप करें, ओम शन शनिचराय नमः, नाखून इत्यादि ना काटें, और मंदिर जरूर जाएं, और हो सके तो घर में भी पाठ करें, और घर के बाहर की तरफ आंगन में भी जो है आप एक सरसों का तेल का दिया आप जला सकते हैं, घर के दरवाजे पर दिया जला सकते हैं, जिससे कि शनि आपसे प्रसन्न हो और आपके जीवन में सुख शांति रहे। और जो शनि का समय बताया गया है, आपने बड़े सुंदर शब्दों में बताया कि सुबह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग से लेकर के और शाम को 8:23 तक का जो समय है उसमें आप शनि के मंदिर भी जाएं और प्रणाम करें शनि को और दान पुण्य करें, गरीबों की मदद करें, उससे बड़ी चीज कोई भी जीवन में नहीं हो सकती।
2: बिल्कुल, चलिए संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी साझा करने के लिए कि कल का दिन इतना उत्तम क्यों है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कांस में बॉलीवुड सितारों का जलवा, बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
6: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
13: नीट UG परीक्षा को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, नीट UG 2026 की 21 जून को होगी दोबारा परीक्षा, अगले साल से ऑनलाइन होंगे एग्जाम।
14: भक्ति और उत्साह के साथ चारधाम यात्रा जारी, 13 लाख के पार पहुंचे यात्रियों की संख्या केदारनाथ में सबसे ज्यादा, 5.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन।
13: देश के डिफेंस सेक्टर से शानदार खबर आई सामने, आंध्र प्रदेश में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं का शुभारंभ, रक्षा मंत्री और सीएम नायडू ने वैदिक मंत्रों के बीच किया भूमि पूजन।
14: गोरखपुर के रामगढ़ ताल की लहरों पर दिखा रोइंग का रोमांच, अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ, विभिन्न राज्यों की 16 टीमें ले रही हिस्सा।
13: रेड कार्पेट पर दिखा तारा सुतारिया का बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज, ब्लैक ऑफ शोल्डर आउटफिट में नजर आई, उनके लुक में मॉडर्न फैशन और क्लासिक चार्म का दिखा बैलेंस।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
14: hey! भाई ब्यूटी ही ब्यूटी, ग्लैमर ही ग्लैमर, हर तरफ यही दिखाई दे रहा है कान फिल्म फेस्टिवल में। तस्वीरें आपको लगातार जीएनटी पर दिखा रहे हैं, फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा की चमचमाती धरती पर, जहां रेड कार्पेट पर चमकते सितारे और कैमरों की लगातार फ्लैश लाइट्स दुनिया की नजर है। इस बार कान का मंच सिर्फ हॉलीवुड सितारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंडियन एक्ट्रेसेस ने अपने फैशन और स्टाइल से ऐसा जलवा बिखेरा कि हर तरफ बस इन्हीं की चर्चा है। सरगम
13: बिल्कुल, तीन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस बार इंडियन सेलेब्स यानी भारतीय सितारों ने रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आलिया भट्ट जब रेड कार्पेट पर उतरी तो सभी की निगाहें उन पर टिकी की टिकी रह गई। वहीं तारा सुतारिया ने भी अपना डेब्यू किया है, वो ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस में नजर आई, काफी ग्लैमरस अंदाज में नजर आई। हालांकि लोगों को उनसे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल एज की भी उम्मीद थी। इसके साथ ही आपको बता दें उर्वशी रौतेला पांचवी बार कांस के रेड कार्पेट पर उतरी।
14: बिल्कुल, देखिए उर्वशी रौतेला का लुक अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने कुछ करने की कोशिश की है, जिस पर हमने लगातार चर्चा भी की है। तमाम तरह के लुक्स आपको हम दिखा रहे हैं। अब देखिए तमाम एक्ट्रेसेस के लुक्स तो सामने आ ही रहे हैं। तारा सुतारिया ने कान के मंच पर अपनी शानदार मौजूदगी से फैशन प्रेमियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा।
13: बिल्कुल, देखिए रेड कार्पेट पर तारा का अंदाज बेहद बोल्ड, ग्लैमरस और साथ ही विंटेज हॉलीवुड स्टाइल से इंस्पायर्ड नजर आया। ब्लैक ऑफ शोल्डर आउटफिट, स्टाइलिश सनग्लासेस, सॉफ्ट मेकअप और एलिगेंट हेयर स्टाइल में तारा सुतारिया किसी पुराने दौर के इंटरनेशनल फिल्म स्टार जैसी नजर आईं। उनके लुक की अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए उनके लुक में मॉडर्न फैशन और क्लासिक चार्म का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला। तारा सुतारिया का ये डेब्यू था जिसमें उन्होंने अपने इस लुक से चार चांद लगा दिए। तो देखिए शगुफ्ता, कांस की यहाँ पर बात हो रही है, तारा सुतारिया और आलिया भट्ट की तस्वीरें हम आपने दिखाई और इन दोनों के अलावा कान के मंच पर अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन भी पहुंची हैं। मलयालम सिनेमा की प्रतिभाशाली अभिनेत्री कल्याणी ने फिल्म लोका में अपनी दमदार अभिनय से अखिल भारतीय स्तर पर खास पहचान बनाई थी और अब उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक यानी कि कान फिल्म फेस्टिवल में कदम रखकर अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। फ्रांस के खूबसूरत शहर में सजे इस भव्य फिल्म समारोह में कल्याणी का बेहद शानदार, शालीन और एलिगेंट लुक देखने को मिला।
14: बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपने इस लुक में इंटरनेशनल फैशन का खूबसूरत मेल पेश किया। जैसे ही उनकी पहली तस्वीर सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस उनकी सादगी और स्टाइल की जमकर तारीफ करते थक नहीं रहे। चलिए कान फेस्टिवल के लिए फ्रांस गई आलिया अपने शानदार फैशन स्टेटमेंट को लेकर लगातार सुर्खियों में है। रेड कार्पेट से लेकर फोटोशूट्स तक आलिया का हर अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। हाल ही में एक्ट्रेस का एक नया और बेहद दिलकश लुक सामने आया जिसमें वो मरून ऑफ शोल्डर कॉर्सेट गाउन में दिखाई दे रही हैं। इस आउटफिट में उनका अंदाज बेहद रॉयल, एलिगेंट और ग्लैमरस दिखाई दे रहा है। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इवेंट की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। इन तस्वीरों के साथ आलिया ने कैप्शन में लिखा, प्यारे दोस्तों अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। यानी कान 2026 को आलिया ने अलविदा कह दिया है, लेकिन इस साल आलिया ने सिर्फ फैशन नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व, आत्मविश्वास से सबका दिल जीता।
13: तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कान फिल्म फेस्टिवल में सनातन की चमक किस तरह से देखने को मिली। हाथ में गीता, गले में तुलसी माला लिए रेड कार्पेट पर पहुंची ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगर आरती खेत्रपाल। देखिए कान जैसे इंटरनेशनल मंच पर आरती ने सिर्फ फैशन नहीं दिखाया बल्कि अपनी आस्था और भारतीय परंपरा को भी खास अंदाज में उन्होंने पेश किया। आरती गोल्डन शेड के बेहद खूबसूरत कस्टम मेड लहंगे में नजर आई। इस लहंगे की खास बात यह थी कि उस पर बनी वृंदावन की सुंदर आकृतियां नजर आ रही थी। लहंगे में मंदिरों, आध्यात्मिक स्थलों और कृष्ण भक्ति की झलक भी साफ देखी जा सकती थी। रेड कार्पेट पर उनका ये देसी और आध्यात्मिक अंदाज लोगों को काफी अलग और यूनिक लगा और लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। We'll be right back. देखिए, जब भी कोई इवेंट या कुछ भी होता है उसके बाद फन तो बनता है, तो कान फिल्म फेस्टिवल में हुई पायजामा पार्टी में आपको ले चलते हैं। इसमें कई पॉपुलर हस्तियां आकर्षक पायजामे में नजर आई। यहाँ एक ड्रेस कोड है, इसमें आपको पायजामा, ड्रेसिंग गाउन या नाइट वेयर पहनना होता है। इस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए आपको एक लॉटरी में हिस्सा लेना पड़ता है। इस साल 300 टिकट्स के लिए 1800 लोगों ने आवेदन किया था। तो ये देख सकते हैं आप इस पायजामा पार्टी के तमाम रंग। चलिए एक बार फिर से फ्राइडे आ गया है। फ्राई ये होता है हमारा, तो देखिए इस बार ये शुक्रवार लाया है फिल्मों की लंबी फेहरिस्त। पति पत्नी और वो पार्ट टू से टकराएगी आखिरी सवाल।
15: बिल्कुल, तो ओटीटी पर धुरंधर दिखाएगी कमाल, तो कौन सी फिल्म पड़ेगी किस पर भारी, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
16: आज से हो रही है वीकेंड की शुरुआत और ये वीकेंड अपने साथ लेकर आया है एंटरटेनमेंट की भरमार। बॉक्स ऑफिस से लेकर ओटीटी तक आज कई बड़े सितारे मेगा बजट फिल्मों के साथ फैंस का दिल जीतने आ रहे हैं। पति पत्नी और वो दो, सबसे पहले बात हंसी का फुल डोज लेकर आ रही आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो पार्ट टू। ये फिल्म कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर है। फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वमिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह जैसे सितारे हैं। यानी ग्लैमर के साथ साथ फुल और एंटरटेनमेंट का डबल नहीं ट्रिपल डोज मिलने वाला है। इस फिल्म में आयुष्मान तीन तीन हीरोइंस के साथ इश्क फरमाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि तीन हीरोइंस के बीच फुल ड्रामा और कंफ्यूजन होने वाला है। फिल्म का एक और हाई पॉइंट है विजय राज, जिनके दमदार एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग से हर कोई वाकिफ है। ये फिल्म साल 2017 में आई हिट फिल्म पति पत्नी और वो का सिक्वल है। पिछली फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला था, ऐसे में इस बार भी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। आयुष्मान की इस जबरदस्त कंफ्यूजन को टक्कर दे रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त। आज संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल पर्दे पर रिलीज हो रही है, जिसके बाद संजू एक बार फिर पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरने को तैयार है। पहले ये फिल्म 8 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट में देरी की वजह से इसकी रिलीज डेट को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया। ये फिल्म आरएसएस की 100 सालों की यात्रा और उसकी सोच कैसे बदली, इस पर आधारित है। इस मूवी में संजू बाबा के साथ समीरा रेड्डी, अमित साध और नीतू चंद्रा ने अहम किरदार निभाया है। बॉक्स ऑफिस के साथ संजू बाबा ओटीटी पर भी छाएंगे। उनके रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 सिल्वर स्क्रीन के बाद आज से ओटीटी पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। धुरंधर 2 को सिनेमा घरों में रिलीज हुए 56 दिन हो चुके हैं। इस फिल्म ने इस दौरान धुआंधार परफॉर्म किया और छप्पड़ फाड़ कमाई की। अब आदित्य धर निर्देशित ये फिल्म जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम हो रही है और फिर रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप के लिए तैयार है। लंबे समय से चर्चा का विषय रही एक्टर सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म कर्तव्य भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। क्राइम थ्रिलर कर्तव्य में सैफ अली खान एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी और परिवार की सुरक्षा के बीच फंसे हुए हैं। इसमें रसिका दुग्गल और संजय मिश्रा ने भी अहम रोल प्ले किया है। ये फिल्म शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है। यानी इस वीकेंड आपके मनोरंजन के लिए बॉलीवुड का भरपूर मसाला मौजूद है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दर्शकों को कौन सी फिल्म पसंद आती है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
15: तो चलिए अब बात आस्था के महातीर्थ की कर लेते हैं। पूरे उत्साह के साथ चारधाम यात्रा चल रही है और सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ लगातार पहुंच रहे हैं। और देखिए, आलम यह है कि केदारनाथ धाम में हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं।
13: देखिए, पुलिस और प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने में तत्पर दिखाई दे रहे हैं, ताकि भक्तों को आसानी से अपने आराध्य के दर्शन हो पाएं।

0: 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब से अब तक 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन का पुण्य लाभ ले चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब तो यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। रिकॉर्ड संख्या में भक्त बाबा केदार के धाम में पहुंच रहे हैं और हर दिन के साथ श्रद्धालुओं की लाइन लंबी होती जा रही है, लेकिन भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं दिख रही। यहां पहुंच रहे यात्री बाबा केदार के दर्शन कर बेहद खुश हैं।
1: धरती में जैसे पांव रखते हैं ना, तो जो एक एहसास होता है वो एक अलग ही है, और बाबा के जो दर्शन, उनकी जो धजा के दर्शन हो जाते हैं ना, तो यानी आप समझो कि आप पूरा आपका जीवन का कल्याण हो गया सर।
2: आई फील वेरी बेस्ट हियर एंड दिस इज हेवन ऑन अर्थ। आई फील सो गुड, थैंक यू महादेव।
3: बहुत अच्छे हमारे दर्शन यहाँ पे हो गए हैं, और शासन प्रशासन का यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर तरफ से खाने से पीने से और स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीजें हैं सबको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। किसी प्रकार के कोई किसी को समस्या नहीं आ रही।
0: बाबा केदार का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर तक श्रद्धालुओं की कतार दिखाई दे रही है। ऐसे में प्रशासन पुरजोर कोशिश में लगा है ताकि व्यवस्थाएं सही तरीके से चलती रहें और भक्तों को कोई परेशानी ना हो।
4: यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनको ग्रुप्स में पैदल आगे भेजा जाता है गौरीकुंड की ओर, और ताकि वो शटल प्राप्त करके या पैदल पहुंच जाएं, और जो सड़क पर ट्रैफिक की स्थिति है उसको अवॉइड किया जा सके। और इसी तरीके से श्री केदारनाथ धाम में भी हमारे पुलिस बल, हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे सेक्टर ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं, जो भीड़ को नियंत्रित करने, उनको गाइड करने और उनको दर्शन कराने मदद करें।
0: तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ उत्तराखंड सरकार और रुद्रप्रयाग प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में मॉनसून का सीजन आने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन चौकस है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए खास तैयारी में है।
4: जब बर्फबारी होती है तो हमारी बर्फ अटकने की टीमें जो श्री केदारनाथ धाम में हैं, जो रास्ते खुलवाती हैं और वो तत्काल उसमें लग जाते हैं, और बारिश की स्थिति में सड़कों पे लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमारे जो लोक निर्माण विभाग है, उनकी JCB लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में डिप्लॉय रहती हैं, और कई बार कुछ लैंडस्लाइड के घटनाक्रम हुए भी, परंतु उसको तत्काल हमारी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रोड को खुलवा दिया गया है। अत्यधिक बारिश और बर्फबारी की स्थिति में नितांत अस्थायी तौर पर 1-2 घंटे के लिए यात्रा को रोका भी जाता है, क्योंकि कई बार यहाँ पर तेज़ बिजली चमकने और बिजली के गिरने और आंधी की संभावनाएं और आंधी की घटनाएं होती हैं। ऐसी परिस्थिति में हम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से ये उम्मीद करते हैं और ये अनुरोध करते हैं कि जो जहाँ है वहाँ एक सुरक्षित जगह पर शरण ले लें, ताकि इस तरीके की परिस्थितियों में वो खुद को सुरक्षित रख सकें।
0: केदारनाथ धाम का पूरा परिसर श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। हर हर महादेव के जयकारे से पूरा वातावरण गूंज रहा है। हालत ये है कि हर रोज 25,000 से ज्यादा लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं, जबकि अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में शामिल हो चुके हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो केदारनाथ धाम में 14 मई को 26,505 श्रद्धालु पहुंचे, और कपाट खुलने के बाद से अब तक बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए तो ये संख्या 5,50,087 तक पहुँच चुकी है। बद्रीनाथ धाम में 14 मई को 19,752 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। इस तरह से अभी तक बद्रीनाथ धाम में 3,43,833 श्रद्धालु आशीर्वाद ले चुके हैं। 14 मई को 12,599 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए, और अभी तक 2,18,024 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। 14 मई को 13,100 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर पर हाजिरी लगाई। अभी तक यमुनोत्री धाम में 2,20,490 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं। 4 धाम यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की बात की जाए तो ये अभी तक 13,32,434 तक पहुंच चुकी है। 4 धाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक 60,000 से ज्यादा यात्रियों को OPD और इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, जबकि 51,939 श्रद्धालुओं की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है। यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग के कर्मचारी तैनात हैं। यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए 412 पर्यावरण मित्र और 30 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। पुलिस की ओर से वाहनों की चेकिंग के साथ साथ यात्रियों के सामान और बैगों की गहन जांच की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Your Saturday nights will never be the same.
8: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
9: The Tailgate Block Party.
10: The Tailgate Block Party.
8: 6 hours non-stop. Non-stop.
9: The best DJs from around the world.
10: The Tailgate Block Party.
8: Saturday night.
10: 8 p.m. Eastern.
9: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
8: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
5: दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में शामिल आइफिल टावर अब सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि इसे खरीदने का मौका भी मिल रहा है। जी हां, आइफिल टावर की ओरिजिनल सीढ़ियों का एक हिस्सा नीलामी में रखा जा रहा है। आखिर क्या है इसकी खासियत और क्यों करोड़ों में बिकती है ये सीढ़ियां, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।

0: पेरिस की पहचान एफिल टावर, दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में शामिल। हर साल लाखों सैलानी यहां पहुंचते हैं, लेकिन कोई लिफ्ट से ऊपर जाता है तो कोई सीढ़ियां चढ़कर इतिहास को करीब से महसूस करता है। अब इसी इतिहास का एक हिस्सा पेरिस में नीलामी के लिए रखा गया है। ये एफिल टावर की ओरिजिनल घुमावदार सीढ़ियों का हिस्सा है, जिसे 1889 में टावर बनने के वक्त लगाया गया था। आर्ट क्यूरियल पेरिस में रखी गई ये सीढ़ियां 14 स्टेप्स वाली हैं, करीब 9 फीट ऊंची और लगभग 1400 किलो वजनी हैं। 1983 में एफिल टावर कंपनी ने टावर को मॉडर्न बनाने और वजन कम करने के लिए पुरानी सीढ़ियों को हटाया था। करीब 160 मीटर लंबी सीढ़ियों को अलग अलग हिस्सों में काट कर नीलाम कर दिया गया।
1: On peut aujourd'hui acheter des morceaux de Tour Eiffel de façon tout officielle grâce à cette vente qui a lieu en 1983 où la société de la Tour Eiffel a décidé d'alléger, de moderniser ses escaliers.
0: नीलामी में रखे गए इस हिस्से की कीमत 1,20,000 से 1,50,000 यूरो यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत सिर्फ लोहे की नहीं है, बल्कि इतिहास, दुर्लभता और एफिल टावर से जुड़ी भावनाओं की है।
1: Au regard de son état, puisque ce tronçon d'escalier a été conservé pendant plus de 40 ans à l'abri dans la même collection. Ensuite,
0: इससे पहले भी एफिल टावर की सीढ़ियों के हिस्से रिकॉर्ड कीमतों में बिक चुके हैं। 2008 में एक हिस्सा करीब 5.5 लाख यूरो यानी करीब 6,20,000 में बिका था। आज दुनिया के कई देशों में एफिल टावर की पुरानी सीढ़ियों के हिस्से सजाए गए हैं, लेकिन पेरिस में होने वाली ये नीलामी एक बार फिर इतिहास प्रेमियों का ध्यान खींच रही है। एफिल टावर, जो 137 साल बाद भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है, अब उसकी पुरानी सीढ़ियां इतिहास और विरासत की सबसे खास निशानी बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। 11 मई को अपनी वडोदरा विजिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की अपील की थी, आपको याद होगा। अब पीएम की इस अपील के बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अथॉरिटी भी स्टैच्यू ऑपरेटिव एरिया को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की तरफ बढ़ रही है। चूंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उद्घाटन के बाद से ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित हो चुका है, अब पारंपरिक और आधुनिक शादियों के लिए भी लोग यहां पर आ रहे हैं। ऐसे में अगर ये डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तैयार होता है तो जाहिर सी बात है पर्यटकों को जगह की ऐतिहासिकता के साथ एक नया एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है।

0: जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाए और वेडिंग के लिए भी मैंने मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। जब यहां वेडिंग करते हैं ना तो हमारे पूर्वजों की मिट्टी भी हमें आशीर्वाद देती है और मैं तो आप सब पाटीदार भाइयों को तो कहूंगा आपको तो अब शादी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वहीं पर जाके करनी चाहिए। आपकी हर शादी में सरदार साहब खुद आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे और वहीं पर आपने जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में आप शांति के लिए जगह बना रहे हैं ना वैसे ही आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में शांति के लिए जगह बना दीजिए।
1: वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लोगों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर देखने की अपील की थी, जिसके पीछे वजह यही है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अब दिन ब दिन देश की एक बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित हो रहा है। ऐसे में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बन सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया में टेंट सिटी 1, टेंट सिटी 2 और कई बेहतरीन होटल्स मौजूद हैं। यही नहीं, गुजरात के बाहर दूसरे राज्यों जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग शादी करने के लिए यहां आने लगे हैं, जिसकी मुख्य वजह इस लोकेशन की खूबसूरती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सीईओ भी अब इस लोकेशन में डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर काफी संभावनाएं देख रहे हैं।
2: अथॉरिटी का भी प्रयास है कि हम लोग वेडिंग्स को फैसिलिटेट कर सकें। कुछ पब्लिक एरियाज हैं जो हम वेडिंग के लिए दे सकें। इस तरह के सभी प्रयास अथॉरिटी के द्वारा किए जा रहे हैं, साथ साथ प्री वेडिंग फोटोशूट वगैरह के लिए भी जो भी रिक्वायरमेंट है हम हर तरीके से प्रवासियों को फैसिलिटेट करने।
1: स्थानीय होटल के टेंट संचालक मानते हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, ऐसे में अगर इस एरिया को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया जाता है तो ये जगह भविष्य में पारंपरिक और आधुनिक शादी के लिए एक अच्छी खूबसूरत और शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगी।
3: गुजरात टूरिज्म के साथ मिलकर इस डेस्टिनेशन को हमने बहुत बहुत सक्सेसफुल लेवल पे ऑपरेट किया है और मैं चाहता हूं अब इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक वेडिंग डेस्टिनेशन की तरह लोग देखें।
1: 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आ चुके हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के एरिया में अब कई नए प्रोजेक्ट आए हैं, जिससे टूरिज्म को काफी तेजी मिल रही है। गर्मी के मौसम में भी यहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हर दिन औसतन 5,000 से ज्यादा टूरिस्ट यहां आ रहे हैं। वेडिंग के लिए भी लोग यहां आने ही लगे हैं। ऐसे में अगर पीएम की अपील पर काम करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए प्रमोट किया जाए तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इसी के साथ लंच टाइम में समय हो गया है आप सभी से अलविदा कहने का।
5: बिल्कुल, चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of.
9: God, I get to.
8: TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
11: It's college football time. College basketball feels
10: Pardon
11: like
10: in my take.
12: The Rams catching the Commanders.
10: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
14: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन.
4: नीट यूजी परीक्षा को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान. नीट यूजी 2026 की 21 जून को होगी दोबारा परीक्षा. अगले साल से ऑनलाइन होंगे एग्जाम. भक्ति और उत्साह के साथ चारधाम यात्रा जारी. 13 लाख के पार पहुंची यात्रियों की संख्या. केदारनाथ में सबसे ज्यादा 5.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए. देश के डिफेंस सेक्टर से शानदार खबर. आंध्र प्रदेश में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं का शुभारंभ. रक्षा मंत्री और सीएम नायडू ने वैदिक मंत्रों के बीच किया भूमि पूजन. गोरखपुर के रामगढ़ ताल की लहरों पर दिखा रोइंग का रोमांच. अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ. विभिन्न राज्यों की 16 टीमें ले रही हिस्सा. कान रेड कार्पेट पर दिखा तारा सुतारिया का बोल्ड ग्लैमरस अंदाज. ब्लैक ऑफ शोल्डर आउटफिट में आई नजर. उनके लुक में मॉडर्न फैशन और

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का 27वां दिन, अभी तक लगभग 13.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। कल 26,500 से ज्यादा लोगों ने किए बाबा केदार के दर्शन। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हुई करीब 3.5 लाख। कल लगभग 20,000 श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। अब तक 2,21,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई यमुनोत्री में मां यमुना के द्वार पर हाजिरी। कल 13,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे मां के धाम। करीब 2,20,000 श्रद्धालु पहुंचे गंगोत्री धाम। कल 12,000 से ज्यादा भक्तों ने किए मां गंगा के दर्शन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाकाल की दिव्य भस्म आरती, मासिक शिवरात्रि के शुभ अवसर पर दिखा श्रद्धालुओं का उत्साह। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आज शुभ संयोग, आयुष्मान योग के साथ बन रहे हैं कई खास योग। मासिक शिवरात्रि के अवसर पर आज बन रहा है सर्वार्ध सिद्धि योग, अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त जैसे शुभ संयोग, भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन। आज वृषभ संक्रांति पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, वृषभ राशि में सूर्यदेव का प्रवेश, दूसरे सौर मास के आरंभ का प्रतीक। दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम में बदलाव के आसार, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी की भी संभावना। आज दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से छाए रह सकते हैं बादल, कहीं कहीं हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर रह सकता है जारी। दिल्ली में आज 40 से 42 डिग्री के बीच रह सकता है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री तक रहने के आसार। दिल्ली में गुरुवार को दर्ज किया गया मई महीने का सबसे गर्म दिन, आने वाले दिनों में तापमान में फिर हो सकता है बदलाव। दिल्ली में कल 40.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा अधिकतम तापमान, 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। राजस्थान में 18 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी, कई जिलों में 48 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। राजस्थान में जयपुर सहित कई इलाकों में हीट वेव के हालात, गर्मी से सावधान रहने की अपील। तेज धूप, गर्मी और लू से बचाव के लिए महाराष्ट्र के अमरावती में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को दिए गए एयर कूल जैकेट, चिलचिलाती धूप में ड्यूटी के दौरान गर्मी से राहत। देश में 25 मई से मॉनसून की एंट्री का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक महीने के आखिर तक बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार में मॉनसून की शुरुआत की संभावना। गुवाहाटी में हुई भारी बारिश, जगह जगह भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पांच देशों की यात्रा के पहले पड़ाव यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री, भव्य स्वागत के बाद क्या दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों देशों के बीच ऊर्जा निवेश और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर होगी चर्चा। आज से 5 देशों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली में होंगे अहम समझौते। भारत यूरोप रिश्तों को नई मजबूती देंगे मोदी, व्यापार, रक्षा, एआई और ग्रीन एनर्जी पर रहेगा फोकस। नॉर्वे दौरे पर भी जाएंगे मोदी, इंडिया नॉर्डिक समिट में टेक्नोलॉजी और रक्षा पर चर्चा, 43 साल बाद किसी भारतीय पीएम का नॉर्वे दौरा। इटली, नीदरलैंड और स्वीडन की यात्रा भी पीएम के कार्यक्रम में शामिल, ऊर्जा निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी को मिलेगा बढ़ावा। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में आज रखी गई 16,000 करोड़ के एरोस्पेस और डिफेंस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। दिल्ली दौरे के दौरान मेट्रो में सफर करते नजर आए एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पीएम मोदी की ऊर्जा बचत की अपील के बाद उठाया कदम। रांची में अपने आवास के लिए बाइक से रवाना हुए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, पीएम की ईंधन की बचत की अपील पर अमल करते आए नजर।

हल्द्वानी में एसएसपी ने दिया ईंधन बचाने का संदेश, कारों के काफिले की जगह किया बाइक का इस्तेमाल। गोवा सरकार ने सभी सरकारी आधिकारिक विदेश यात्राओं पर लगाया तत्काल प्रतिबंध, विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत को देखते हुए फैसला। कुरुक्षेत्र में साइकिल से गुरुकुल पहुंचे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, लोगों से की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील। बिहार के बांका में जिला और सत्र न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य ने पेश की अनोखी मिसाल, साइकिल पर सवार होकर अपने दफ्तर पहुंचे जज साहब। पेट्रोल डीजल के दामों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी, दिल्ली में पेट्रोल 97.77 और डीजल 99.67 प्रति लीटर हुआ। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में आज लोगों को मिलेगी सौगात, 208 करोड़ से अधिक लागत की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। गढ़वाल राइफल्स के वीर जवानों के परिजनों ने रेजिमेंटल म्यूजियम को सौंपे गैलेंट्री अवार्ड्स के मेडल, आम लोग कर सकेंगे दीदार। उत्तर प्रदेश के बरेली में नाथ कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ, 7 प्रमुख प्राचीन शिव मंदिरों को जोड़कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मकसद। उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला, आंधी तूफान और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि में प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद, आपदा में मौत पर 4 लाख की राशि देने के निर्देश। उत्तरी 24 परगना के आद्रित्रोपॉल ने पश्चिम बंगाल बोर्ड परीक्षा में किया टॉप, परिवार के लोगों ने रसगुल्ले खिलाकर किया खुशी का इजहार। हरियाणा के सिवानी के गांव खेड़ा की रहने वाली दीपिका ने हरियाणा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में किया टॉप, राज्य में सबसे ज्यादा अंक किए हासिल। हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी, 91.64% लड़कियां हुई पास। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन अलर्ट, तीर्थयात्रियों की सेहत की स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के लिए किए गए खास इंतजाम। नॉर्थ गोवा में स्वामी समर्थ मठ में अरविंद केजरीवाल ने की पूजा, पार्टी के कई और नेता रहे साथ। बटाला में आज धार्मिक समागम में पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, महाराज दर्शन दास डेरे में माथा टेका। जम्मू कश्मीर के रामबन में नशा मुक्त भारत अभियान के सिलसिले में रक्तदान शिविर, प्रशासन ने किया आयोजन। रामबन में प्रशासन ने किया पदयात्रा और जागरूकता रैली का आयोजन, नशे के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। सुकमा में नक्सल का गढ़ माने जाने वाले मोरपल्ली में पहली बार पहुंची सीआरपीएफ, इलाके के विकास के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम किया गया आयोजित। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों को बांटा जरूरत का सामान, बच्चों और बुजुर्गों से भी की बात। दरभंगा एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का खास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीआईएसएफ के डीजी के हाथों में सौंपी हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था। सीआईएसएफ जवानों ने दिखा दम, हर परिस्थिति में दुश्मन से निपटने का अपना डेमो किया पेश। डेमो के दौरान गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा दरभंगा हवाई अड्डा, अलग अलग परिस्थिति में दुश्मनों से निपटने के लिए जवानों ने दिखाया अपना जलवा। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो पार्ट 2 आज रिलीज, आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुलप्रीत सिंह निभा रहे हैं मुख्य किरदार। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी आज रिलीज, इस मूवी में संजू बाबा के साथ समीरा रेड्डी, आमिर साथ और नीतू चंद्रा का अहम किरदार। हॉरर कॉमेडी फिल्म IIZ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज का भी आज सिनेमाघरों में धमाका, इसमें मोहन कपूर, अनुप्रिया, गोयनका, रंजन राज और जेसी लेवर निभा रहे हैं लीड रोल। सामंता रूथ प्रभु की तेलुगु एक्शन और फैमिली ड्रामा फिल्म माँ इनती बंगाराम भी आज रिलीज, इसमें गुलशन देवैया, गौतमी और मंजूषा का भी रोल।
सिनेमाघरों में जाने के बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 ओटीटी पर हो रही रिलीज, जियो हॉटस्टार पर देगी दस्तक। सैफ अली खान की क्राइम थ्रिलर कर्तव्य नेटफ्लिक्स पर रिलीज के लिए तैयार, एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं सैफ। रणवीर हुड्डा की सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 भी ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार, हॉटस्टार पर होगा स्ट्रीम। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर वेब सीरीज एग्जाम आज होगी स्ट्रीम, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे गंभीर विषय की कहानी। के ड्रामा के फैंस आज से नेटफ्लिक्स पर द वंडरफुल्स नाम की सीरीज पर देख सकते हैं एंजॉय। इसमें आम लोगों की कहानी दिखाई गई है जिन्हें अचानक बेकाबू महाशक्तियां मिल जाती हैं। सची क्राइम बेस्ड डॉक्यूमेंट्री द क्रैश नेटफ्लिक्स पर रिलीज, 2023 के मैकेंजी शिरला मामले पर बेस्ड है ये क्राइम डॉक्यूमेंट्री। गोलमाल फ्रेंचाइजी के बीच शानदार साल पूरे, अरशद वारसी ने पुरानी और नई यादों को जोड़ते हुए वीडियो किया शेयर, लिखा 20 साल और कुछ नहीं बदला, गोलमाल आपको एंटरटेन करता रहेगा। तेलुगु फिल्म महाकाली में रोहित सराफ की एंट्री, अक्षय खन्ना संग फिल्म में आएंगे नजर, करेंगे साउथ सिनेमा में डेब्यू। 19 मई को फिल्म में वापस आऊंगा का ट्रेलर होगा रिलीज, फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शार्वरी वाघ जैसे स्टार शामिल। दुनिया भर के थिएटर्स में धमाल मचाने के लिए अब ओटीटी पर दस्तक देगी हॉलीवुड मूवी अवतार फायर एंड एश, 24 जून को जियो हॉटस्टार पर, अंग्रेजी हिंदी तेलुगु तमिल में होगी स्ट्रीम। फिल्म बंदर का पहला गाना क्यों मजा आ रहा है रिलीज, बॉबी के इंटेंस और इमोशनल अंदाज ने जीता दिल।

0: कान में हुआ मशहूर पीजे पार्टी का आयोजन, पजामा ड्रेसिंग गाउन और नाइटवेयर होता है इस पार्टी का ऑफिशियल ड्रेस कोड। एक लॉटरी में हिस्सा लेकर लोग बन सकते हैं इस अनोखी पार्टी का हिस्सा। इसमें शामिल होने के लिए आपको इंडस्ट्री या प्रेस की मान्यता प्राप्त सदस्य होना जरूरी नहीं। वोग मैगजीन के मुताबिक शहर की सबसे ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय पार्टी है ये पीजे पार्टी। फिल्म मेकर मैक्सिक जागो और डेव डिबोर्ड ने की थी इस पार्टी की शुरुआत। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में नए स्टेज के पर्दों का किया अनावरण। एक खास परफॉर्मेंस में शामिल हुए किंग। ओपेरा हाउस में आज स्प्रिंग गाला, स्टोरीज फ्रॉम द रॉयल बैले एंड द रॉयल ओपेरा के मेहमानों में से एक थे किंग चार्ल्स। गुजरात सरकार की शानदार पहल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास के क्षेत्र को एक प्रमुख डेस्टिनेशन वेडिंग स्थल के रूप में किया जा रहा है विकसित। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास से टेंट सिटी वन को किया जा रहा है तैयार। 50 गेस्ट के साथ की जा सकती है शादी। शादी के लिए 2.5 लाख रुपए का पैकेज, डेकोरेशन का भी खास इंतजाम। नर्मदा नदी के तट पर और सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है ये जगह, जिससे विवाह समारोह के लिए मिलता है एक सुंदर और परफेक्ट लुक। इस पहल से विदेश के बजाय भारत में ही शादी प्लान करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना इसका उद्देश्य, साथ ही इलाके के पर्यटन को बढ़ावा देना पर जोर। अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का किया था उद्घाटन। अब तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आ चुके हैं 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: फील द गुड वाइब्स विद रूट्स रेगे। ट्यून इन इज ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी टू योर इयर्स विद द बेस्ट रेगे हिट्स। स्टिर इट अप विद बॉब मार्ली, जिमी क्लिफ, प्रोटेजे and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Khabrein kuch samaj ki soch dikhati hai, to kuch dikhati hai vikas ki tasveer. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
0: नीट यूजी परीक्षा को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, नीट यूजी 2026 की 21 जून को होगी दोबारा परीक्षा, अगले साल से ऑनलाइन होंगे एग्जाम। भक्ति और उत्साह के साथ चारधाम यात्रा जारी, 13 लाख के पार पहुंची यात्रियों की संख्या, केदारनाथ में सबसे ज्यादा 5.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। प्रधानमंत्री का 5 देशों का दौरा शुरू, अबुधाबी में गार्ड ऑफ ऑनर, ऊर्जा और व्यापार पर अहम समझौते संभव। गोरखपुर के रामगढ़ ताल की लहरों पर दिखा रोइंग का रोमांच, अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ, विभिन्न राज्यों की 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। कान रेड कार्पेट पर दिखा तारा सुतारिया का बोल्ड ग्लैमरस अंदाज, ब्लैक ऑफ शोल्डर आउटफिट में आई नजर, उनके लुक में मॉडर्न फैशन और क्लासिक चार्म का दिखा बैलेंस।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।

0: गर्मियों के इन दिनों में तो ये फ्रूट्स देते हैं हमें मच एडेड न्यूट्रिशन, कर देते हैं हमें तरोताजा और लेकर आते हैं हमारे लिए गुड हेल्थ वाली गुड न्यूज। उसी तरह हमारा शो सास बहू और बेटियां तो रोजाना लेकर आता है आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज जो कर देती हैं आपको तरोताजा। आज तो इन फ्रूट्स के आसपास ही हम करेंगे एंटरटेनमेंट की बातें, और जिस तरह है इन फ्रूट्स में वैरायटी उसी तरह है हमारे पास भी आपके लिए एंटरटेनमेंट की वैरायटी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला हेडलाइंस के साथ।
1: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, सीरियल जाने अनजाने हम मिले में कौशल्या बनेगी रीत का खतरा, रूही लेगी नाहर का बदला सिखाएगी युवराज और अग्नि को सबक, सुंदर में होंगी शादी की तैयारियां, शादी में आएगा ट्विस्ट, लाला के हमले का शिकार बनेगी किशोरी, होगी बहसबाजी और साथ ही मचेगी भगदड़, रूहानी पर फिर उठेगी दादी की लाठी, शुरू होगा तमाशा,
2: गुंजन को चोट कैसे लगी,
3: गुंजन को मार्केट लेकर गए थे, गुंजन को एक खिलौना चाहिए था
4: और तुम्हारी वजह से गुंजन का एक्सीडेंट हुआ,
1: जगधात्री को पड़ेगा थप्पड़, आएगा गुंजन के एक्सीडेंट का इल्जाम, बर्थडे से पहले गुलकी जोशी खुद को करेंगी पैम्पर, होगा डॉक्टर सृष्टि का मेकओवर, देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? एक्चुअली अब देखिए, फ्रूट्स की इतनी अलग अलग वेराइटी आ गई है ना हमारे इंडियन मार्केट में कि कभी कभी उन्हें देखकर समझ में नहीं आता कि इन्हें काटना कैसे है या इन्हें कैसे कंज्यूम करना है। खैर, अब इसके लिए भी आ गया है सोल्यूशन, क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल है ढेर सारे ट्यूटोरियल्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए इन फ्रूट्स की तरह एक मीठी मीठी एंटरटेनमेंट से भरपूर खबर, क्योंकि यहाँ तो है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। लेट्स चेक इट आउट।
1: किशोरी का हुआ बुरा हाल, लाला ने मचाया बवाल, मंजरी ने चली अपनी अगली चाल, दंगल टीवी के सीरियल पति अनाड़ी में लाला ने पूरी तैयारी कर ली है किशोरी से अपना बदला लेने की। तभी तो देखिए, जैसे ही किशोरी ने कमरे के अंदर एंट्री की, उसके ऊपर गेंदों की बौछार हो गई और वो बिचारी जमीन पर गिर गई और उसे लग गई चोट। लेकिन लाला ये देखकर बेहद खुश हो रहा है और किशोरी को लाला पर गुस्सा भी आ रहा है।
2: बहुत मजा आया, उल्लू बना आया, बड़ा मजा। बहुत तेज गिरी है ये,
3: बहुत तेज गई और ऊपर से बॉल्स
2: लगी इसके ऊपर बहुत सारे।
3: बॉल्स नहीं खेलने वाले, वो बाउंसिंग बॉल्स होते हैं ना जो भरे हुए रहते एकदम, वो सर पे आए। खुश हो रहे हो? शर्म नहीं आती?
2: लाला को ऐसा लग रहा है कि लाली जानबूझ के मुझे गिराना चाहती थी पहले वाले सीन में, तो लाला ने इस बार अपना बदला लिया है लाली से।
3: बदला बदला बदला बदला।
1: भाई, किशोरी और लाला के बीच बहस छिड़ जाती है। लाला किशोरी पर नाराज हो रहा है, लेकिन किशोरी वो तो आई है लाला को दवाई खिलाने के लिए। ऐसे में वो कोशिश करती है कि लाला दवाई ले ले, लेकिन लाला इनकार कर देता है और देखिए कैसे पूरे कमरे में भगदड़ मचा देता है, लेकिन दवाई खाने का नाम नहीं लेता।
3: गुनगुन ने मुझे बता दिया है कि ये दवाई तो बिल्कुल भी नहीं खाते, मंजरी जी आपके हाथ से खाते हैं, पर इनके हाथ से कैसे खाएंगे? और मैं बोलती भी हूँ कि मुझसे तो नाराज है तो कैसे खाएंगे, तो बोलती हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम बहू बन चुके हो तो तुम्हें वो खिलाना पड़ेगा। अब वो ऊपर से वही टेंशन में ऑलरेडी आ रही हूँ कि मैं कैसे खिलाऊंगी कैसे मनाऊंगी, मन माने ही नहीं अभी तक तो दवाई।
2: बेचारी दवाई खिलाने आई थी, गिर गई
3: ऊपर से।
2: कल पानी फेंका था इसके ऊपर, कल यहाँ गिरी थी, अब वहाँ गिरी, गिरती रहती है
3: आधा दिन।
1: किशोरी बिचारी तो बोलती रह गई, लेकिन लाला ने अपने ड्रामे शुरू कर दिए, अपने गले में दर्द होने की बात कह दी और किशोरी से पानी लाने के लिए कह दिया। भाई, वो तो इंतजार कर रहा था कि कैसे किशोरी कमरे के बाहर जाए और वो दरवाजा बंद कर ले। ऐसे में बिचारी किशोरी अब कमरे के बाहर कैद हो गई है, क्योंकि लाला किशोरी के लिए दरवाजा खोलेगा ही नहीं। ऐसे में दवाई के चक्कर में गुनगुन को आना पड़ता है और देखिए कैसे लाला गुनगुन के सामने ड्रामे करना शुरू कर देता है कि किशोरी ने उसे गिराया है और जिसके चलते उसे चोट लग गई है, और गुनगुन को सब पता है कि लाला ड्रामा कर रहा है।
4: पूरे पूरी उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की।
2: घर के सारे लोग ये चाह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम से डर जाए और भाग जाए, तो किशोरी का इस वक्त यही है कि नहीं मुझे फाइट करना है, ये लाला को मैं मना सकती हूँ।
3: जसोदा माँ जी ने भी बोला है मुझे कि जब तक तुम इसके कमरे के अंदर नहीं जा पाई अगर इन दिनों में, तो फिर तुम्हें मैं घर से भी निकाल दूंगी। तो फिर मुझे और एक ऐसा मिल गया है कि इनको कैसे भी करके मनाना पड़ेगा।
2: लाला नहीं मानेगा।
3: बताओ कैसे रियल लाइफ में आजकल लड़का लड़की को मनाते हैं, मैं यहाँ पे लड़की को मनाया जा रही हूँ और फिर मान ही नहीं रहा, ऊपर से बदला लिया जा रहा है।
1: भाई लाला का ये बचपना तो चलता रहता है और अब तो उसने अपना निशाना बना लिया है अपने ही छोटे भाई को। जरा देखिए कैसे उसके सिर पर एप्पल रख दिया और उस पर निशाने साध रहा है। बेचारा उसका भाई परेशान हो रहा है। भाई मंजरी के आते ही लाला का तो रूप ही बदल गया, वो तो जमकर खुशी से पेड़े खा रहा है। लेकिन तभी मंजरी ने अपना उदास चेहरा दिखा दिया। बस फिर क्या, लाला परेशान हो गया कि आखिर उसकी बहना इतनी परेशान क्यों है। ऐसे में उसने पूछना शुरू कर दिया। बस फिर क्या, मंजरी को मौका मिल गया है किशोरी के खिलाफ लाला को भड़काने का।
5: हम जानते हैं हमारे
1: अब मंजरी जो काम करने आई थी वो उसने कर दिया और लाला उसकी बातों में भी आ गया है। अब देखना होगा कि कैसे लाला किशोरी की पूजा में विघ्न डालेगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: राधिया तो हमसे कह रही हैं कि उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगता है पाइनएप्पल, बट पाइनएप्पल के साथ क्या होगा कि उसे काटे कैसे। ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत ही बड़ा चैलेंज है। मैं तो प्रेफर करती हूँ कि कोई मुझे पूरा काट कर पाइनएप्पल छोटे स्लाइसेस में करके देते, फिर मैं उसे खा सकती हूँ, या फिर मे बी पाइनएप्पल जूस जो होता है बहुत ही फ्लेवरफुल। एक्चुअली देखिए पाइनएप्पल का हर फ्लेवर चाहे हो वो किसी भी फूड आइटम में वो बहुत ही फ्लेवरफुल लगता है, उसका फ्रेग्रेंस आहा हा। पाइनएप्पल काटो तो पूरे घर में उसकी सुगंध फैल जाती है ना। तो क्या कुछ हो रहा है राधा और प्रथम की इस कहानी में आज, क्या यहाँ पर है किसी नए ट्विस्ट की सुगंध, चलिए पता कर कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको इन दोनों के पास।
1: प्रथम बना दूल्हा। उठा घूंघट से पर्दा। घर वालों को लगा जोरदार झटका। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज मित्तल हाउस में सज गया है शादी का मंडप निहारिका और प्रथम के लिए, क्योंकि आज निहारिका और प्रथम की बेमन की शादी जो हो रही है। ऐसे में सभी घर वाले शादी का मंडप सजा रहे हैं। हालांकि उनका चेहरा यही बयां कर रहा है कि वो भी इस शादी में जबरदस्ती शामिल हुए हैं। लेकिन उनके चेहरे की हवाइयां तब उड़ती हैं जब वहां पर आ जाती है निहारिका की माँ लेकर अपने गुंडों को, और तो और गुंडों को आदेश भी देती है कि वो सभी का मोबाइल ले लें ताकि कोई भी निहारिका के बारे में बाहर किसी को बता ना सके। ऐसे में न चाहते हुए भी प्रथम को उसकी बात माननी पड़ रही है और घर वालों को मोबाइल देने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है।
5: तो आज फाइनली मैं अपने जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हूँ और मुझे लग रहा है कि इस बार तो मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊँगी। तो फाइनली अब मेरी शादी होने जा रही है प्रथम से, और इस बार ऐसे है, ऐसी मतलब चीज़ें हो गई है कि मुझे छुपते छुपाते शादी करनी पड़ रही है। मतलब कैसे भी करके बस शादी पगलू हो गई हूँ मैं, तो शादी करनी है मुझे प्रथम से। तो उसके लिए मैंने, मुझे कोई पहचाने नहीं पुलिस वुलिस, तो पुलिस से बचने के लिए मैंने ये सारा वेश धारण किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पुलिस देखे, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया के सामने तो मरी हुई साबित हो गई हूँ। अब मैं सामने आ जाऊँगी तो सबको पता चल जाएगी मैं तो जिंदा हूँ और प्रथम बेकसूर है और ये सारी चीज़ें, तो मेरी शादी नहीं होगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, शादी तक मैंने ये सब, और इतने मैंने इस शो में ये सारे भेष या वेश जो भी कह लूँ इतने धारण कर लिए हैं कि अब मतलब नागिन भी इतने नहीं करती होगी, इतने चेंज नहीं करते होंगे अपने रंग जितना मैंने कर लिया है, तो बट बहुत मजा आता है।
1: सबके हाथों से मोबाइल के जाते ही घर में हो गई निहारिका की एंट्री, जो पहनकर आई है बुर्का, क्योंकि वो दुल्हन बनने की तैयारी जो करने वाली है। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि तभी होती है घर में दो पंडितों की एंट्री, और ये दोनों पंडित कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं जिन्हें प्रथम ने बुलाया है। और ये बात पता चल जाती है निहारिका की माँ को, और देखिए कैसे वो सबकी नजरों से बचते बचाते निहारिका को मैसेज कर देती है। इसी बीच मामी जाती है निहारिका को लाने, और प्रथम भी दूल्हे की शेरवानी पहनकर तैयार है शादी रचाने के लिए। और तभी होती है घूंघट ओढ़े दुल्हन की एंट्री। बस फिर क्या, प्रथम को लगता है कि आज वो खुलासा कर ही देगा, और वो आनन फानन में घूंघट उठाकर सभी घर वालों के सामने निहारिका का खुलासा करने की कोशिश भी करता है।
4: देखिए, ये वही है जिसे आप बना हो समझ रहे हैं।
1: कर ही देगा, और वो आनन फानन में घूंघट उठाकर सभी घर वालों के सामने निहारिका का खुलासा करने की कोशिश भी करता है।
4: देखिए, ये वही है जिसे आप बना हो समझ रहे हैं। वही है जिसके मर्डर का इल्जाम मुझ पे लगा हुआ है। इंस्पेक्टर, ध्यान से देखिए इस चेहरे को। इसने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार वालों को भी चोट पहुंचाई है। इंस्पेक्टर, अभी की अभी से लेके चाहिए उसको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दीजिए।
5: निहारिका बिंग निहारिका, उसकी मॉम भी ऐसी है, तो हमने मतलब अगर आप कोई भी अपनी मतलब चालाकी नहीं कर सकता, इफ़ यू अगर शादी होगी तो हमारी सिक्योरिटी के अंदर ही होगी, तो सारे सबके फ़ोन ले लेते हैं कि कोई बाहर की लोगों से कांटेक्ट ना कर पाए। तो ये बस,
6: तो मामी जी हैं यहाँ पे हमारी, वो मंद बुद्धि की हैं थोड़ी, तो मामी जी जाती है निहारिका को लाने के लिए, तो निहारिका ने देख लिया होता है पुलिस को, तो ये भूल जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो फिर निहारिका को पता चल जाता है कि पुलिस आई है, प्रथम मुझे फंसाना चाहता है, तो मामी को वो दुल्हन बना देती है, क्योंकि मामी भुलक्कड़ हैं, तो मामी को बोलती है कि आपकी 25वीं सालगिरह है तो आप जो है दुल्हन बन के जाइए। तो वो भुलक्कड़ करती है, अच्छा जी, तो वो आती हैं। फिर पुलिस देखती है कि ये तो निहारिका नहीं मामी है।
1: भाई निहारिका तो प्रथम से दो कदम आगे निकली, प्रथम का तो पोपट हो गया, और तो और जो भेष बदल कर पुलिस आई थी उन्होंने भी प्रथम को वार्निंग दे दी और वहाँ से चले गए। असल में निहारिका को तो पहले से ही शक हो गया था, क्योंकि जब वो प्रथम से मिलने के लिए उसके कमरे में आई थी तो प्रथम की टेबल पर प्रथम और राध्या की शादी का जोड़े का गठबंधन रखा हुआ था, जिसे गुस्से में आकर निहारिका जला देती है। और जैसे ही प्रथम कमरे के अंदर आता है तो वो बेचैन हो जाता है।
7: तुमने कल ही
4: घर में आपका बच्चा है, पर मैं नहीं चाहता था कि हमारे साथ में कोई भी अपशब्द हो। मैं आज कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता हूँ, इसलिए
5: तो वो था कि अब जैसे कि मेरी और प्रथम की शादी होने जा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि राध्या की सारी यादें और जो कुछ भी उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो ख़त्म कर दूँ मैं, और प्रथम एक नए सिरे से मुझसे लाइफ स्टार्ट करे। तो वही उन दोनों की शादी का गठबंधन मैं तोड़ती हूँ, मतलब जला देती हूँ। और उसी दौरान फिर प्रथम आ जाता है और वो पैनिक करने लगता है कि ये क्या किया तुमने, क्यों कर रही हो वगैरह। पहले तो वो शॉक हो जाता है कि ये कौन है, क्योंकि मैंने वो मुखौटा हुआ वगैरह सब कुछ पहना हुआ था, ये मास्क वगैरह, तो पहचान नहीं पाया। फिर मैंने बताया मैं निहारिका हूँ और अब तो तुमने डिवोर्स दे दिया है राध्या को, तो फिर क्यों इतना परेशान हो रहे हो
1: भाई। प्रथम ने तो बात घुमा दी और निहारिका को ये यकीन दिला दिया कि अब वो राध्या से प्यार नहीं करता। लेकिन निहारिका बीइंग निहारिका, उसे तो अब भी शक है। वो तो प्रथम का लैपटॉप भी चेक करती है, लेकिन शुक्र है कि लैपटॉप चेक करने से पहले ही लैपटॉप बंद होता है, जिसके चलते निहारिका को सबूत नहीं मिलता और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे में ये सब देखते हुए प्रथम प्लानिंग करता है, पुलिस को वीडियो कॉल करके आगाह भी करता है। लेकिन जब निहारिका का भेद खुलने वाला था तो सारा केस ही उल्टा हो गया। खैर, अब देखना होगा कि प्रथम आगे कौन सा ऐसा खेल खेलेगा ताकि निहारिका जीती जागती पुलिस के सामने आ जाए और जो प्रथम के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा है वो हट जाए। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: देख रहे हैं आप इन फ्रूट्स को मेरे आसपास, और इनमें है कितनी सारी वैरायटी। उसी तरह है हमारे पास एंटरटेनमेंट की वैरायटी, जिसे लेकर हाजिर है हमारी सास बहू अल्पेटिया की एयरलाइन। यहाँ तो खुले हैं एंटरटेनमेंट के सभी द्वार, तो आप कर लीजिए हमारी एयरलाइन का बोर्ड और बांध लीजिए एंटरटेनमेंट की पेटी।

0: टीवी के सीरियल वसुधा में चंद्रिका अपने पैरों पर चलकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई है और ये बात देखकर वसुधा काफी खुश है क्योंकि धीरे धीरे चंद्रिका ठीक जो हो रही है। तभी तो देखिए आज वसुधा की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। ऐसे में स्टाफ बताता है कि खुद चंद्रिका अपने पैरों पर चलकर यहाँ पर बैठी है जिस वजह से करिश्मा को तो जोर का झटका लग गया है और देखिए कैसे वो तिल मिला गई है। इसी बात को लेकर घर में छिड़ गई है बहस और हो रहा है नया तमाशा।
1: मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दरवाजे से अंदर आई और आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अरे पर ऐसे कैसे हो सके है, मतलब ले बने एक कदम भी ना चल सके है। अगर उन्हें कोई खड़ा कर दे तो वो खड़ी रह जावे, अगर बिठा दे तो बस बैठ ही रह जावे। कोई हाथ पकड़ उन्हें दाए ले जाए तो दाए चली जाएगी, बाहर ले जाए तो बाहर चले जाएगी। देव और वसु इन्हें हाथ पकड़ के नहीं तो अपने घर के मंदिर रहे थे। मैं कसम खा के कह रही वसु, तो तुम बिना सहारे के अंदर आई है और आकर अपनी कुर्सी पर कह रही कुछ बोलिए ना, तुम्हारे कान भाई का आवाज सुनने के लिए तरस गए। कुछ बोलिए ना देवी को,
0: चंद्रिका अब ठीक हो रही है। अब देखना होगा कि वसुधा चंद्रिका को पूरी तरह ठीक करने के लिए क्या कुछ करती है।
2: ये क्या हो गया गुंजन को, क्या हुआ बीबी?
3: सच क्या है जगदात्री, गुंजन को चोट कैसे लगी?
4: माया जी कुछ पूछ रही है जगदात्री।
0: जी टीवी के सीरियल जगदात्री में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। माया ने जड़ दिया है जगदात्री को थप्पड़। असल में गुंजन का एक्सीडेंट हो गया है और जिसका इल्जाम लग गया है जगदात्री पर। ऐसे में शुरू हो गया है यहाँ पर तमाशा।
2: ये क्या हो गया गुंजन को, क्या हुआ बीबी?
3: सच क्या है जगदात्री, गुंजन को चोट कैसे लगी?
4: माया जी कुछ पूछ रही है जगदात्री।
2: गुंजन को मार्केट लेकर गए थे, गुंजन को एक खिलौना चाहिए था। माया ताई प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए।
5: बताने के लिए बचा ही क्या है,
2: मुझे ये बताओ उसे ये चोट कैसे लगी? गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही थी और
4: गुंजन का एक्सीडेंट हो गया कार से, और तुम्हारी वजह से गुंजन का एक्सीडेंट हो गया।
0: दूसरी तरफ अपनी बेटी गुंजन को लेकर माया काफी परेशान है। देखिए कैसे उसे अपने गोद में लिए हुए है।

तो उसी तरफ माया का पति शरद भी घायल है, उसके पैर में भी चोट लगी है जिस वजह से वो चल नहीं पा रहा। ऐसे में शिवाय और जगधात्री लेते हैं फैसला कि वो शरद का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, वो भी माया से छुपकर।

0: हो ये रहा है कि मैं गुंजन को बचाते हुए हमें चोट लग जाती है, गुंजन के हाथ में चोट लगती है, मेरे पाँव में और सर में चोट लगती है, तो जगदात्री मुझे घर में ले आती है जहाँ वो रहते हैं, देशमुख हाउस में, जहाँ मेरी एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। तो हम छुप छुपा के यहाँ रह रहे हैं और आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर, मैं यहाँ रहना नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो माया को सहन नहीं होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग अलग हैं फिलहाल। तो यही सीक्वेंस चल रहा है मेरा। क्या है ना कि मुझे पता है सिचुएशन, मुझे पता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ एज सुन एज पॉसिबल। पर वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको पता है कि मैं अकेला हूँ, मैं चल नहीं पाऊँगा, मैं अपनी केयर नहीं कर पाऊँगा, तो इसीलिए वो दोनों मेरी बहुत केयर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं यहाँ रुकूँ, पर सिचुएशन वो हमें अलाउ नहीं कर रही है।
1: तो भाई अब जब माया को ये सच पता चलेगा तो कौन कौन से नए ड्रामे होंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा।

0: टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में होने जा रहा है कुनिका जी का ऑपरेशन, लेकिन आरंभी नहीं चाहती कि ये ऑपरेशन हो, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि डॉक्टर विश्वास और अवंतिका चाल चलने वाले हैं। ये ऑपरेशन को बिगाड़कर आरंभी को फंसाना चाहते हैं, इसीलिए तो वो जैसे न जैसे बहाने से कुनिका को ये बात बता रही है, और कुनिका भी कर रही है बहाने ऑपरेशन न करने के।
1: मैम, मुझ सबको आपकी कंडीशन के बारे में पता चली है। उन्होंने एक घंटा वेट करने के लिए कहा है, वो सीधे यहीं आएंगे।
2: उसके पीछे राज ये है कि एज यू नो, जैसे कि आप देख रहे होंगे सीरियल में, डॉक्टर अवंतिका और डॉक्टर विश्वास, इन दोनों का अफेयर है, और इसको लक्ष्मी क्या नाम है, हाँ, आरंभी को पता चल चुका है, और ये उसको फंसाना चाहते हैं कि ये इसका इलाज ठीक से ना कर पाए मेरा, और ऊपर से उसको बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, जो कि उसको पता चल जाता है। तो वो अवंतिका उसे दोनों तरफ से फंसाने की कोशिश करती है कि ये यहाँ मेरे सर्जरी के लिए फंस जाए, और उधर से उसका बच्चा किडनैप हो जाए, और ये बच्चे को बचाने के लिए जा ना पाए। ये सारी स्कीम डॉक्टर अवंती की है। तो अभी लेकिन वो बता नहीं पा रही है लक्ष्मी को, सॉरी आरंभी को पता चल गया है इस बात का कि इनका ये प्लान है, और वो मुझे नहीं बता पा रही है, क्योंकि जैसे ही बताने जाती है तो वो कभी अवंतिका आ जाती है, कभी वो मेरा वो पीए कुलदीप आ जाता है। तो जैसे ही वो दोनों को फोन आता है, वो मुड़ते हैं, तो झट से वो थैली में से पर्ची निकाल के मुझे इशारे से कहते हैं कि पढ़, और मैं पढ़ लेती हूँ कि उसमें लिखा है कि आपकी जान खतरे में है और मेरे बेटे को किडनैप कर लिया हुआ है, तो आप इस मतलब सर्जरी के लिए हाँ मत करिए, और हो सके तो इनसे पिंड छुड़ाइए।
0: भाई, अवंतिका तो चाल पर चाल चले जा रही है, ऑपरेशन की तैयारियां चल रही है, और इतना ही नहीं, अवंतिका ने तो आरंभी का फोन भी ले लिया है, और अब आरंभी काफी परेशान है, क्योंकि आरंभी का बेटा किडनैप जो हो चुका है। तो एक तरफ बेटे की चिंता और दूसरी तरफ कुनिका की चिंता, अब क्या करेगी आरंभी, ये देखना होगा।
3: या नोटिफिकेशन या वाइब्रेशन की वजह से तो पेशेंट के लिए घातक हो सकता है, और आप रिस्क भी ले सकते हैं।

0: What is wrong with you?
1: आप कहाँ जा रहे हैं? बात है क्या जो पहले नहीं कही?
2: आज तो अपने शो सास बहू और बेटिया में हमने करवा दी ना आपकी इन अलग अलग फ्रूट से मुलाकात। उसी तरह यहाँ हमारी टीम सास बहू और बेटा ने भी की है मीठी सी मुलाकात आपके फेवरेट सितारे से। कौन है ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी आपको, सीधा लेकर चलते हैं आपको इनके पास और करते हैं ये प्यारी सी मुलाकात।

0: सृष्टि का पैम्परिंग डे। कुलकी का खुद को बर्थडे का गिफ्ट। होगा गुलकी का ट्रांसफॉर्मेशन। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है सोनी सबके सीरियल हुई गुम यादे में डॉक्टर सृष्टि का किरदार निभाने वाली गुलकी जोशी, जिन्हें आप मैडम सर में भी देख चुके हैं। भाई इनका दबंग अंदाज तो आपने मैडम सर में देखा ही था, और अब डॉक्टर वाला अंदाज देख रहे हैं इनके सीरियल हुई गुम यादे में। लेकिन आज गुलकी को मिल गई है छुट्टी, और इस छुट्टी वाले दिन का सदुपयोग करने के लिए गुलकी जोशी पहुंच गई है सनी एयरपोर्ट करने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन। भाई जल्द ही गुलकी का बर्थडे आने वाला है, और खुद को बर्थडे सरप्राइज कुछ यूं दिया है गुलकी ने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। ये यहाँ पहुँची है, तो भाई आज हेयर केयर होगा, हेयर कलर होगा, हेयर स्पा होगा और हेयर कट भी, जिसके लिए गुलकी काफी एक्साइटेड है। भाई गुलकी को अलग अलग लुक्स अपनाना काफी पसंद है, और आज कुछ न्यू लुक ट्राई करने के लिए ये सैलून में पहुंची है। तो चलिए गुलकी से ही जानते हैं कि आज वो कौन सा लुक अपनाएंगी, और इस लुक के लिए वो कितने एक्साइटेड है, क्योंकि सीरियल की कंटिन्यूटी का भी तो ध्यान रखना है। इसीलिए डॉक्टर सृष्टि ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकती है, हाँ लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस अलाउड है।
1: आज बहुत ज्यादा खुशी तो नहीं है मुझे बर्थडे की, क्योंकि पहले हम बड़े हो रहे होते थे ना, अब हम बूढ़े हो रहे हैं। बट आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी, आई एम हियर। आज मैं अपना डे ऑफ मनाने आई हूँ, मुझे आई थिंक कम से कम 10-12 दिन बाद छुट्टी मिली है, तो मैंने सोचा कि आई शुड पैम्पर माई सेल्फ। कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं ना जो मुझे पैम्पर करे, गिफ्ट करे, तुम्हारा है?
2: नहीं,
1: बताइए, तो हम ही आपस में खुद ही को जो है पैम्पर करेंगे। सो आई एम हियर एट सनी एयरपोर्ट। मैंने इनके बहुत सारे इंस्टा पे रील्स देखे, ये बहुत वायरल है, एंड आई रियली लव वो जो पूरा ट्रांसफॉर्म करते थे बालों को। तो मैंने कहा कि चलो लेट्स गो हियर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू बर्थडे गर्ल। देखो मन तो मेरा था अपने बाल रेड करने का, बट ऑफकोर्स वो नहीं कर सकते बिकॉज मैं एक शो कर रही हूँ, एंड सो आई कांट डू दैट। बट हाँ, जो थोड़े से जो ऐसे जो फ्रिजी हो गए हैं, जो जंगलियों की तरह जो उग गए हैं मेरे बाल, एटलीस्ट आई होप कि वो थोड़े से नॉर्मल इंसानों वाले हो जाए, दैट्स इनफ। बर्थडे का बहुत मीनिंग ये होता था कि कहीं पार्टी कर लें, कहीं चले जाएं, कहीं दोस्तों से मिल रहे हैं, कुछ घूम लें। अब आई थिंक बर्थडे का मतलब है सुनो, मुझे ना अपने बाल कलर करने दो, मुझे एक मसाज लेने दो, मुझे अच्छी से एक फिल्म देखने दो और मुझे सो जाने दो। आई थिंक नाउ इट इज चेंजिंग टू दैट, लाइफ इज बिकमिंग स्लाइटली लेस ड्रामेटिक एंड क्वाइटर, एंड आई लव दैट। आइए हम आपको लेके चलते हैं सनी एयरपोर्ट।
0: तो भाई ये पहुंच गई है सनी एयरपोर्ट में, और यहाँ इनकी मुलाकात हुई सनी से, जो इनका हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जिससे गुलकी का लुक ही बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आज क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है।
1: Hi, so let me introduce you to Sunny. Hi, Sunny.
3: Hi, ma'am. How are you?
1: I'm good. How are you?
3: All good.
1: So as I was saying before, ki I have seen this place, I've seen your reels, and I see the kind of work that you do. And please, yari, mere jhaadu hai, jaise baalon ka kuch acha kar do, mera birthday aa raha hai. मैं कुछ बहुत ज्यादा क्रेजी कलर या ऐसा कुछ नहीं कर सकती बिकॉज आई एम डूइंग अ शो, तो वो कंटिन्यूटी में मैं फंस जाऊंगी। बट व्हाट यू थिंक कैन बी डन, ओवर टू यू।
3: नहीं, डेफिनेटली पहले एक बार चॉइस देखूंगा आपको कि आपको कैसा चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी कलर है, सो आई थिंक डिमांड भी हो सकती है डार्कर की भी, लाइटर की भी, एंड लेट्स सी लाइफस्टाइल कैसा है, हेयर कितना ऑब्जर्व कर सकता है,
1: स्टाइल कैसा है,
3: तो बाल काफी ड्रायर काफी ज्यादा होता है या जैसा है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर सजेस्ट करता हूँ।
0: तो भाई हेयर स्टाइलिस्ट सनी ने बताया गुलकी को कौन सा लुक अपनाना चाहिए, कैसा हेयर कट कराना चाहिए और कैसा हेयर कलर, साथ ही दे रहे हैं ये कुछ टिप्स भी।
1: सो ये जो नीचे से जो ऐसे सब, ये बहुत रफ हो गया ना, ऑफ कोर्स दिस इज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ ब्लो ड्राइंग एंड स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग, तो वो आई वांट देम टू लुक अ लिटिल मोर हेल्दियर, नॉट वेरी शॉर्ट बिकॉज ऑफ कोर्स वो कंटिन्यूटी में फंसी हुई हूं मैं। एंड कलर वाइज आई लव दिस कलर, सो बट what do you think, like I can go slightly lighter
3: pictures mein ya videos mein bahut zyada light ho jata agar over kar do to
1: हाँ थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। बहुत अंडा लगाती हूँ बालों में।
3: सो देखो अब इसमें क्या है ना कि जैसे आप ब्राउन कलर की मैं बात करता हूँ,
1: ओके
3: ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ब्राउन भी अच्छा जाएगा, थोड़ा कैरेमल भी अच्छा जाएगा और थोड़ा सा बेज एश भी अच्छा जाएगा। ये मतलब दो तीन ऑप्शन बता रहा हूँ जो मैं रीड कर पा रहा हूँ स्किन पर,
1: ओके
3: ठीक है। बट आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें क्या है कि जितना आप ज्यादा ब्राइटर कलर लोगे उतने ही बालों में ड्राइनेस ज्यादा आएगी, है ना। और समहाउ कभी कभी बाल बहुत ज्यादा गोल्डन दिखता है, कभी बहुत ज्यादा ऑरेंज भी दिखता है, कभी व्हाइट भी दिखता है। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप थोड़ा क्लासी कलर कराओ जो आपकी स्किन टोन के साथ बिल्कुल मैच हो जाए।
1: परफेक्ट।
3: सो मैं दो कलर सजेस्ट करूंगा, एक आपका स्किन टोन के हिसाब से और एक आपके आईज कलर के हिसाब से।
1: अरे अरे ये सब भी होता है।
3: जी जी बिल्कुल। और सेकंड चीज की जो मेन इम्पोर्टेंट की रूट्स पे हम कलर नहीं लगाएंगे,
1: ओके,
3: स्कैल्प को नहीं टच करेंगे,
1: परफेक्ट,
3: ताकि ग्रेजुअली इतना ब्लेंड हो जाए वो ऐसा लगे कि बिल्कुल क्लोज टू रूट्स ही आए।
1: परफेक्ट।
3: दो कलर ब्राउन फैमिली के, एक ब्राइटर एक नेचुरल, ठीक है। और ब्लीचिंग पैटर्न नहीं यूज करेंगे,
1: जस्ट अ नाइस कट एंड कलर कट, ऐसा कि मुझे आई डोंट लाइक ब्लो ड्राइंग माय हेयर और स्टाइलिंग माय हेयर इन इन रियल लाइफ। सेट पे तो क्योंकि करना ही होता है, तो मुझे ऐसा हेयर कट चाहिए कि नेचुरली धूप में जैसे सूख के दे फॉर्म देयर ओन लेयर एंड दे आर स्टाइलिश ऑन इट्स ओन।
3: तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली,
1: ठीक है,
3: और तो हम कुछ मैजिक क्रिएट करते हैं। अच्छा
0: तो भाई इस पैम्परिंग डे की शुरुआत हो चुकी है, इस छुट्टी वाले दिन को आज ये खूब एंजॉय करने वाली है। तो शुरुआत हुई हेयर वॉश से, क्योंकि उसी के बाद तो हेयर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनके नए लुक के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेयर वॉश से।
1: सबसे पहले तो बाल धुलेंगे, आई थिंक वैसे तो गंदे नहीं है, बट आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज वॉशिंग द हेयर, शैम्पूइंग माय हेयर एंड देन मूविंग फॉरवर्ड।

0: याद है कि उसके बाद एक हफ्ते तक कोई मेरे आसपास नहीं भटकता
1: नहीं है।
0: मेरी हेयर वाली भी मास्क लगा के बाल बनाती है फॉर रियल। बट बाल अच्छे रहते हैं उससे तो ठीक है। अंडा लगाओ बाल में। हाँ बहुत बनाई बचपन में, मैं दो चोटी बना के ही स्कूल जाती थी। जब छोटे बाल थे तो यहाँ पे फाउंटेन बनाती थी, क्योंकि बहुत छोटे बाल थे तो यहाँ पे एक ऐसा फाउंटेन होता था, मुझे स्कूल में फाउंटेन बोलते भी थे इस वजह से। और जब थोड़े से लंबे हो गए बाल तो ऐसे दो चोटी रेड कलर का रिबन लगा के, बालों को ब्लू कलर करवाया है, ग्रीन कलर करवाया है, फिर ब्लू का बाद में पिंक किया था, पर्पल किया था, रेड रेड नहीं कराया अभी तक मैंने, वो बाद में जब कर

0: मैं बहुत रिलैक्स्ड हो बीन मैं इनफैक्ट मैं ऑलमोस्ट सोई गई थी मसाज में एंड या इट्स अ गुड डे. क्या पूछा था और क्या पूछ रही थी. हाँ वेटिंग टाइम पे क्या किया. आई थिंक मैं नैप लेने वाली थी बट मैंने बैठकर अपने एपिसोड्स देख लिए क्योंकि मुझे अदरवाइज देखने का टाइम नहीं मिलता. सो आई वॉज वॉचिंग माई ओन शो सीइंग कि सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं. और अभी तो फिलहाल मैं मसाज के नशे में हूँ. तो सबसे पहले हमने शैम्पू किया बाल अच्छे से साफ किए सो दैट देयर इज नो एनी डर्ट और पोल्यूशन एनीथिंग. उसके बाद हमने हेयर कलर किया उससे 45 मिनट्स रखा वापस शैम्पू किया. अब हम हेयर मास्क लगा रहे हैं फॉर एक्स्ट्रा स्मूथनेस. जस्ट ऑयलिंग माई हेयर एंड जब छुट्टी मिलती है तो उस दिन गेट अ हेयर स्पा डन. अगर स्पा जाने का टाइम नहीं है तो पुट दही एंड एग्स दैट्स इट. 100 चीज़ें नहीं करनी. दिख रहा है कलर दिख रहा है.
1: दही और एग इनका मैं बंद करा दूंगा.
0: क्यों
1: इनको बोलूंगा खाने के लिए और जो हेयर के लिए चीजें हैं खाने की वो मैं इनको दूंगा. ये अभी तक तो ये अपनी चला रहे थे लेकिन अब नहीं. अब इनको मेरी सुननी पड़ेगी कहीं ना कहीं.
2: भाई हेयर कलर तो हो गया लेकिन अब लुक को और भी ज्यादा अच्छा लुक देने के लिए हेयर कट भी तो जरूरी है. वैसे गुलकी को तो शॉर्ट हेयर पसंद है लेकिन सीरियल के चलते अपने बालों को ज्यादा छोटा नहीं कर सकती इसीलिए इनके हेयर को ये हेयर कट देकर अलग ही लुक दिया जाएगा. वैसे इसी के साथ साथ गुलकी और सनी दोनों ही अपने बालों का कैसे ख्याल रखें इसके टिप्स भी दे रहे हैं.
0: देखो खाना तुम अच्छा एकदम पौष्टिक खाना खाते हो
1: लेकिन जो भी ये चीज कर रहे हैं ना एग और ये सब चीजें ये कलर्ड हेयर के लिए ठीक नहीं है.
0: अब नहीं कर सकते ना.
1: ऑयलिंग
0: ऑयलिंग भी नहीं कर सकते.
1: ऑयलिंग आपने करना है तो जस्ट स्कैल्प.
0: अच्छा ओके
1: लेंथ पे ठीक है.
0: ठीक है
1: लेंथ में जितना आप ऑयल लगाओगे उसको जब आप वॉश करोगे तो आपको उतना ही हार्ड शैम्पू यूज करना पड़ता है.
0: करेक्ट.
1: दो दो बार शैम्पू यूज करना पड़ता है. उससे आपके कलर में फेडेज में प्रॉब्लम ज्यादा आती है.
0: ठीक है
1: फेडेज तो होता ही होता है उसके साथ आपका हेयर का अंडरटोन भी ऑरेंज भी हो जाता है कई बार गोल्ड भी हो जाता है तो उस चीज का ध्यान रखना.
0: ठीक है
1: हेयर कट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. ठीक है
0: आप कौन है. मुझे सनी

0: चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले सनी थे।
1: मैं सनी नहीं हूँ।
0: नहीं आप सनी नहीं हो।
1: अरे कैप की वजह से बोल रहे हो क्या आप?
0: हाँ आप कौन हो?
1: अच्छा मैं ही सनी हूँ।
0: रुको मैं सनी नहीं हो।
1: दूसरे रूप में आता हूँ।
0: Yes, yes. Now the sunny's magic begins.
1: वो कैप पहनने से ना मेरे अंदर अलग एनर्जी आती है।
0: हाँ नहीं ये बेस्ट है।
2: क्या लगता है बिल्कुल कैसा देने वाले और कैसा कलर लग रहा है?
0: कलर मुझे अभी देख के तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई कांट वेट फॉर द एक्चुअल रिजल्ट्स। पर बस मुझे लग रहा है कंटिन्यूटी जर्क तो नहीं हो जाएगा है? आधा सीन शूट करके आई हूँ मैं, आधा सीन बचा है।
1: सो मैं इतना लेंस शॉट कर रहा हूँ।
0: हाँ थोड़ा सा और कर सकते हो?
1: करूँ थोड़ा सा?
0: हाँ हाँ थोड़ा और कर सकते हो। शॉर्ट हेयर एनी डे ईजियर टू मेंटेन, दे लुक हेल्दी। और शॉर्ट हेयर की एक अलग फ्रेशनेस होती है। ऑफ कोर्स लंबे हेयर बाल भी अच्छे लगते हैं पर बहुत मेंटेन करने पड़ते हैं।

0: सनी मुझे न्यूट्रिशन वाइज बताइए, खुश रहने के अलावा मैं और क्या खा सकते हो फॉर बेटर हेयर?
1: खुश रहना ही सबसे बड़ी ताकत है आपकी। अगर आप खुश हो अंदर से, सब कुछ परफेक्ट है। जहाँ आपने स्ट्रेस लेना स्टार्ट किया, वहाँ अपने आप कमी आना स्टार्ट हो जाएगी।
2: स्ट्रेस दिया अगर अब जाए
1: तो उसकी भी तो बेचारी की हालत
0: उसके बाल झड़ेंगे फिर।

0: और मेरा यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस भी इसीलिए है क्योंकि मैं ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करता हूँ।
1: तो दिस इज ब्लो ड्राई प्राइमर, ये पहली बार मैं यूज कर रही हूँ इससे। आई थिंक अच्छा, बट ये हीट प्रोटेक्टर भी होता है ना, मतलब इसे खराब भी नहीं होंगे।
2: तो भाई हेयर कट हुआ पूरा, अब बारी ब्लो ड्राई और हेयर स्टाइलिंग की।
3: नाइस, मैंने आप लगा लेता।
1: हाँ अच्छा ठीक है, नाइस।

0: तो भाई स्टाइलिंग के बाद आ गया है सामने डॉक्टर सृष्टि यानी कि गोल्की का नया नवेला लुक। और इस नए लुक को पाकर तो गोल्की तो खुशी से फूले नहीं समा रही, क्योंकि इन्हें ये लुक काफी ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि इन्होंने खुद को ये बर्थडे गिफ्ट जो दिया है, जो पाकर ये सातवें आसमान पर है।
1: Now I know what magic everybody talks about, Sunny. Thank you. This is amazing. मैं खुद को ही देख के शर्माने वाली हूँ।

0: खुश, मेरी स्माइल नहीं बता रही, मुझे कितना पसंद है, मेरे पास सब कुछ नहीं है बोलने को. Now I know what the magic is and the hair feels also much better, healthier, softer. Quiet birthday करूंगी, but I think मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ कि मुझे थोड़ी सी पार्टी तो करनी पड़ेगी. So yeah, maybe I'll call a few friends and go out and you know flaunt my new hair. Thank you so much guys for being with me through this entire journey. And as you can see how happy this makes me. And I hope you aapko dekhkar bhi maza aaya ho. Thank you.
1: To dekha aapne kuch is tarah Gulki Joshi yani Dr. Srishti ka to look hi badal gaya hai. Aur ab birthday ki party to banti hai jo Gulki zarur karengi. To bhai hamari taraf se bhi Gulki ko janmdin ki dher sari badhaiyan. और हम तो यही कहेंगे कि यूं ही गुलकी अलग अलग किरदारों से अपने फैंस का मनोरंजन करती रहे. मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
2: अब आपको एक बात बताऊं, हम सबका झुकाव तो है वेस्टर्न डाइट की तरफ. अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एग्जॉटिक फ्रूट्स की. अगर हम ग्रेन्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किनोआ की. बट हमारे पास एक ऐसा फ्रूट है जो है अमरूद, जी हाँ गुआवा, जिसमें होता है भरपूर विटामिन सी. अगर आप गुआवा डेली खाते हैं तो आपको कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी और आप हमेशा रहेंगे हेल्दी. इस बात को गांठ बांध लीजिए और गुआवा को बनाइए अपने डाइट का पार्ट. और उसके साथ साथ हम भी लेकर हाजिर हैं आपके लिए ये अगली खबर जो कंप्लीट कर रही है हमारे शो सास बहू और पेटिया को. कैसे? ऐसे

0: सीख जिंदगी का बेहतर।
1: लेडी सिंघम बनी आकांक्षा, जिंदगी का बेहतर दिखा विदिशा का अनोखा अंदाज। नई सीरीज, नया टशन, सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान है आकांक्षा चमोला, जो बहुत जल्द नजर आने वाली है बुलेट ऐप के आने वाली सीरीज असली कातिल मैं हूँ में, जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रही है। तो देख लीजिए कैसा है आकांक्षा का ये टशन। पुलिस की वर्दी, आंखों पर चश्मा और बाइक पर होकर सवार, अब ये कातिल को ढूंढेंगी, केसेस सॉल्व करेंगी और दिखाएंगी अपना स्वैगर। भाई पहली बार है जब आकांक्षा ऐसा दबंगी रोल कर रही है, जिसे करने में उन्हें काफी मजा आ रहा है।

0: सो जैसे कि आपने बहुत करेक्टली पूछा कि मैं एक्साइटेड तो नॉर्मली बहुत रहती हूँ, बट सीरियस रोल करना, वो भी इतना रिस्पॉन्सिबल सीरियस रोल करना, ये मेरे लिए फॉर द फर्स्ट टाइम था. फॉर द फर्स्ट टाइम मैं एक कॉप का रोल प्ले कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आप सब मेरे को जानते ही हो, मैं बहुत ही बबली हूँ, बहुत वाइब्रेंट हूँ. मैं कभी यू नो लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ, बट ऐसा रोल जब मुझे मिला तो मैंने सोचा वाई नॉट, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं. तो ये मेरी कोशिश थी कि मैं कॉप का रोल बहुत ही अच्छे से और रिस्पॉन्सिबली प्ले कर पाऊँ. डबल कन्फेशन, इस सीरीज में आपको एक नहीं कई सारे कन्फेशंस मिलेंगे, बट हाँ अभी आई मीन इस सीरीज में मेरा काम है यू नो ये क्राइम के को सॉल्व करना, और ये जो भी सिचुएशन है उसके एंड तक जाके सब कुछ कुरेद कुरेद के बाहर निकाल के सबके सामने लेकर आना.
1: तो भाई ये आकांक्षा यानी कि विदिशा संग करते हैं उनके इस पुलिस स्टेशन की सैर, जहां वो बता रही हैं कि कैसे मुजरिमों को यहाँ रखा जाता है, उनकी पिटाई होती है और ड्रामा भी बहुत सारा होता है, क्योंकि ये तो सीरियल वाला सेट है ना.
2: तो जैसे कि आप जानते हो हमारे साथ है लेडी सिंगम यानी कि आकांक्षा, और अब आकांक्षा हमें रील वाला पुलिस स्टेशन घुमाने ले जाने वाली है. तो आकांक्षा, हाउ डज इट फील?
0: अभी रियल वाला तो हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि हम पुलिस स्टेशन घूमे, बट रियल वाले में आपको मैं घुमा कर बताऊंगी कैसे लग रहा है. देखो, ये रहा मेरा प्यारा सा पुलिस स्टेशन जहाँ पे मैं अपने सारे क्राइम सॉल्व करती हूँ, और ये वाला मर्डर भी मैं यही सॉल्व करूंगी. तो असली कातिल को हम यहाँ पकड़ने वाले. आइए, कितना ग्रैंड ऑफिस है मेरा, प्लीज देखिए. ये मेरी चेयर है, यहाँ पे बैठकर मैं सबको ऑर्डर्स झाड़ती हूँ, और आई थिंक क्रिमिनल्स को भी मैं यहीं पे बैठ के झाड़ती हूँ. तो यस, हाउ डज इट लुक, हाउ डज इट लुक? एंड वहाँ पे हम लोग ने लॉकअप बना के रखा है, तो जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं हम सब वहाँ पे उन सबको बंद करके रख देते हैं. अगर आप पुलिस हो तो आप इमोशनली नहीं सोच सकते हो ना, आपको रैशनल रहना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, वरना फिर आपका जॉब अच्छे से कैसे करोगे. तो नहीं, सब कुछ बहुत रैशनली सोच समझ के हम करते हैं, और बड़ा ही देखो कितने कितना अच्छा सेल है हमारा. देखो देखो देखो कितना साफ सुथरा, नीट और टाइडी, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो. हाँ, डंडे पड़ेंगे वो अलग है. देखो, डंडे के लिए भी हमने अच्छा स्पेस बना के रखा है, ताकि हम अच्छे से खातिरदारी कर सके, सच बाहर निकाल सके. तो दिस इज इट, आप सभी का स्वागत है मेरे जेल में, आइए. यू आर अरेस्टेड.

0: मैं यही कहना चाहूंगी कि आई थिंक आई एम रियली लकी एंड आई एम रियली ब्लेस्ड, क्योंकि जैसे आप कह रहे हो हर एक्टर को नहीं मिल पाता है ऐसा मौका कि आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके, वर्सेटैलिटी अपनी दिखा सके. एंड मुझे इतने कम टाइम में इतना मौका मिल गया है. जैसे सब जानते भी है मैंने बीच में बहुत लंबा ब्रेक लिया था, उसके बाद जब मैंने कम बैक किया तो उसके बाद मैं रेगुलरली जय श्री राम भगवान की दया से कंटिन्यूसली मैं काम कर रही हूँ. एंड लाइक यू मेंशन, जितने रोल्स है वो एकदम पोल्स अपार्ट है, मतलब नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव से लेकर थ्रिलर से लेकर. अभी तक शायद मैंने एक्शन ट्राई नहीं किया, तो अभी मेरा एक एक्शन वाला जॉनर बाकी है. तो लेट्स सी, वेरी सून आई थिंक मैं एक्शन करते हुए भी आप सबको दिख जाऊंगी, बट फिलहाल के लिए हम ये वाले एक्शन कर रहे हैं. आप लोगों का रिश्ता तो बहुत पुराना है मेरे साथ, मुझे हमेशा बड़ा मजा आता है आप सबके साथ ऐसे आपके इंटरव्यूज में दिखना, आप सबको अपने हर सेट का टूर कराना तो बहुत ही फन एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा लगता है. आप लोगों का सपोर्ट, प्यार, सब कुछ मुझे फील होता है. मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूंगी कि इसी तरह आप मुझे प्यार करते रहे, मुझे सपोर्ट करें, मेरे सारे काम को आप इस तरह से अप्रिशिएट करें तो मुझे भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच मी एज विदिशा, जो कि मेरे सीरीज का नाम है, असली कातिल मैं हूं, जो आने वाला है बुलेट माइक्रो ड्रामा ऐप पर, राइट?
1: तो भाई कुछ ऐसा होने वाला है ये माइक्रो ड्रामा जिसमें है ट्विस्ट एंड टर्न्स अनलिमिटेड. तो आप भी हो जाइए तैयार आकांक्षा का विदिशा वाला ये अंदाज देखने के लिए. इस सीरीज में मुंबई से पायल रूपानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
2: रीत, आप भी डिजर्व करती हैं एक अच्छा सा ब्रेक. एंड प्रेजेंटली जो आपकी हेल्थ कंडीशन है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप डिजर्व करती हैं अ बिग बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि ये देंगे आपको मच एडेड न्यूट्रिशन और आपको देंगे कुछ हेल्थ वाली गुड न्यूज. हम तो चाहते हैं कि जल्दी से गुड न्यूज आ जाए आपकी कहानी से. तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको जाने अनजाने हम मिले के सेट पर और देखते हैं कैसे आगे बढ़ रही है आज ये कहानी.
1: कौशल्या का रीत पर वार. ध्रुव ने थामा उन्नति का हाथ. सीरियल में बदलती रिश्तों की कहानी. जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में रीत और राघव अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच गए हैं मंदिर लेने ऊपर वाली का आशीर्वाद. ऐसे में पंडित जी इन्हें बताते हैं कि आज का दिन बहुत खास है और आज के दिन ही अपने बच्चों के लिए पूजा करनी चाहिए. बस फिर क्या, इस बात को मानते हुए बुआ जी और फूफा जी दोनों पहुँच गए पूजा करने के लिए. उसके बाद पूनम और उनके पति देव ने अपनी बेटी के लिए दुआ मांगी और फिर बारी आई रीत और राघव की. दोनों ने अपने होने वाले बच्चे के लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद लिया. इसी के बाद जैसे ही उन्नति अपने होने वाले बच्चे के लिए पूजा करने के लिए आगे बढ़ी तो पंडित ने मना कर दिया, क्योंकि ये पूजा जोड़ी के साथ होनी चाहिए. ऐसे में उन्नति वहाँ से जाने लगी और ध्रुव ने उन्नति को रोक लिया, उसका हाथ थाम कर इतना ही नहीं उसे शादी का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन उन्नति उसने साफ साफ इनकार किया है.
3: मंदिर में सबके सामने
1: खैर उन्नति तो अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली गई। ऐसे में ध्रुव की चाची ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो उन्नति को अपने घर की बहू नहीं बनाएगी। इतना ही नहीं, रीत भी अपने भाई का साथ देते हुए चाची से बात करती है, लेकिन चाची है कि मानने को तैयार नहीं। ऐसे में पूरे परिवार में बहस चल ही रही थी कि तभी हो जाती है वहाँ पर कौशल्या की एंट्री, जो ताली मारते हुए रीत को ताने कसना शुरू कर देती है। ऐसे में राघव रीत की ढाल बनता है, लेकिन कौशल्या उसे भी नहीं छोड़ती। अब रीत ने अल्टीमेटम तो दिया है, लेकिन कौशल्या का गुस्सा सातवें आसमान पर है, इसीलिए उन्होंने रीत का हाथ थामकर उसे धक्का दे दिया। वो तो शुक्र है कि राघव ने रीत को गिरने से बचा लिया। ऐसे में फूफा जी को आ गया गुस्सा और देखिए कैसे वो सभी के सामने कौशल्या के ऊपर भड़क रहे हैं, और तो और बुआ जी भी उनका साथ दे रही है। भाई रीत को दिखाने के लिए शारदा ने नकली नाटक तो किया, लेकिन रीत ने फूफा जी को फोन करने से रोक लिया, क्योंकि वो कौशल्या का दर्द समझ रही है। ऐसे में फूफा जी ने रीत की बात मान ली, लेकिन कौशल्या उनके तो आंसू बह रहे हैं, क्योंकि उनके दोनों ही बच्चे अब उनसे दूर हैं। देखना होगा क्या ये नफरतें कहानी में नया मोड़ लेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: आज तो फ्रूट्स के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, तो हमारी रूहानी ने भी हमसे कहा है कि हमारे देश भारत में हम सबके लिए सबसे पॉपुलर और सबसे इजीली अवेलेबल फ्रूट है बनाना। एक्चुअली ये देता है हमें कितना सारा न्यूट्रिशन, फुल ऑफ पोटेशियम एंड गुड मिनरल्स, और उसके साथ साथ अफोर्डेबल एंड इतने इजीली हम उसे खा सकते हैं। बस बनाना के छिलकों को इधर उधर ना फेंके, हो सकता है किसी की सेहत के लिए हानिकारक। लेकर चलते हैं आप सबको इस चुनूनी के सेट पर।
1: शुरू हुई रूहानी और गुरु के रिश्ते की परीक्षा।
3: आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
1: रूहानी पर दादी माँ के जुल्म।

0: सच्चाई के लिए रूहानी की बगावत।
1: मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी, अगर आप ये केस रीओपन नहीं करवाते ना, तो मैं कभी भी अपने ससुराल वाले और मायके वालों की जो आपको भी पर्दा है उसे हटा नहीं पाऊंगी।
0: दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज रूहानी और रूहानी की जेठानी जस्सी को लगा है जोरदार झटका, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि गुरु आया है खून से लथपथ होकर। ऐसे में उसे यूं खून से लथपथ देख रूहानी परेशान हो जाती है और दौड़कर गुरु के पास जाती है और देखने की कोशिश करती है कि कहीं गुरु घायल तो नहीं है। इतना ही नहीं, वो तो ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या है।
2: ठीक है, हम वो रास्ते में एक बच्चा खून से सना हुआ पड़ा था, कोई गाड़ी वाला उसे मार गया, बस उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में ये उसका खून लग गया।
0: खून को देखकर रूहानी की इस बेचैनी ने नागेश्वर को हंसने पर मजबूर कर दिया, और तो और वो सभी के सामने रूहानी को सुना भी रहे हैं कि डॉक्टर होकर वो खून से डरती है। लेकिन तभी गुरु ने नागेश्वर और सभी घर वालों को दिया जोरदार झटका, ये बताकर कि परेशानी अब शुरू होने वाली है, क्योंकि रूहानी के भाई ने अपने ऊपर हुए हमले का केस फिर से ओपन कर दिया है। बस फिर क्या, ये सुनकर क्या नागेश्वर और क्या दादी दोनों ही रूहानी पर नाराज हो रहे हैं।
3: अभी के अभी अपने भाई के चाहे अपने भाई को वो फैसला बदलने से रोके, नहीं तो हम वही जंग शुरू कर देंगे फिर से जिसका अंत हमने तुझे शादी में किया था।
4: मृतक की भीख नहीं मांग रहे हैं, आदेश है हमारा। फोन उठाओ पर अपने भाई को घुमाओ।
0: अब गुरु ने केस के पेपर्स को रूहानी के हाथों में थमा दिया, और दादी के आदेशों का पालन करते हुए रूहानी ने अपने भाई को कॉल भी लगा दिया और रख दिया लाउड स्पीकर पर। ऐसे में उसका भाई गुरु के लिए चार बातें करने लगा। बस फिर क्या, गुरु को भी गुस्सा आया, लेकिन रूहानी ने यहाँ पर गुरु का ही साथ दिया है।
1: भैया गुरु ने मुझसे पानी करवाया, मैं बस आपको ये बताना चाहती कि जो गलत फहमी गुरु के लिए मेरे मायके वालों को है, मेरे ससुराल वाले भी गुरु को गलत ही समझते हैं।
5: क्या मतलब?
1: मतलब मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी, अगर आप ये केस रीओपन नहीं करवाते ना, तो मैं कभी भी अपने ससुराल वाले और मायके वालों की जो आपको भी ये पर्दा है उसे हटा नहीं पाऊँ, ये भरम का पर्दा हटा नहीं पाऊँ। थैंक यू सो मच भाई।
0: भाई रूहानी को गुरु पर पूरा विश्वास है कि गुरु ने रूहानी के भाई पर हमला नहीं किया है, इसीलिए उसने अपने भाई को ही टशन दिखाया, लेकिन उसका टशन दादी को रास नहीं आया, और देखिए कैसे गुस्से में आकर दादी ने रूहानी पर ही डंडा उठा दिया।
4: क्या बदतमीजी है, हमने तुमसे कहा था अपने भाई से कहो कि उसका डंडा वापस ले ले, बजे उसने तो उसका धन्यवाद कर रही हो। आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?

0: अधिक दीजिए। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आपको जो फैसला करना है कर लेना। बस 2 मिनट।
1: फिलहाल तो गुरु ने रूहानी और उसके भाई की मदद लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो तो रूहानी से नाराज है। लेकिन देखना होगा कि कैसे इस केस के जरिए रूहानी गुरु के दिल तक पहुंचेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: नाहर और रूही, आज तो फ्रूट्स के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें। आपको पता है, आज सुबह सुबह मैंने शुरुआत की है मीठे मीठे चीकू से, और उसके साथ साथ खाई मैंने गाजर। आई नो ये काफी अलग कॉम्बिनेशन है, बट मेरे लिए तो थी मेरी मॉर्निंग किक स्टार्ट। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको नाहर और रूही के पास उनके शो मन सुंदर के सेट पर, और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है इस कहानी में। अब
1: युवराज पर रूही का पलटवार, सिखाया अग्नि को सबक, युवराज और अग्नि से रूही लेगी बाहर का बदला। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में रूही को नाहर का पता चल चुका है, और साथ ही उसे ये भी पता चल गया है कि युवराज और अग्नि मिले हुए जो उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में आज युवराज काफी गुस्से में है, तभी वहाँ पर रूही पहुँच जाती है, और वो तो रूही पर भी हमला करने वाला होता है। देखिए कैसे रूही ने युवराज को बराबर सबक सिखाया उसे चोट पहुँचाकर। युवराज चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया, इसी के साथ रूही ने दे दी है युवराज को चेतावनी कि वो अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे, क्योंकि अब वो सच का पर्दाफाश कर ही रहेगी।

0: फैन होकर इंसाफ के इतने कच्चे निकलो। मैंने तुमसे इंसाफ की मदद मांगी और तुमने क्या किया, जाकर बेईमानी से ही हाथ मिला लिया। लगता है अम्मी ने तुम्हारी कोई कमजोरी पकड़ ली। आखिर इन चीजों में तो वो माने, पर खैर गलती उसकी भी नहीं, गलती मेरी कि मैंने एक अजनबी पर भरोसा किया। पर अब उस गलती को सुधारने का समय आ गया है। आज से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो मिस्टर सहानी।
1: You listen to me.

0: अभी तो सिर्फ हल्की सी चोट है, शुरुआत इससे करें।
1: वहीं दूसरी तरफ रूही पहुंच गई है अग्नि के पास भी और देखे कैसे वो उस पर बॉल फेंक रही है और उसको भी चेतावनी दे रही है कि उसे सच पता चल चुका है और अब रूही युवराज अग्नि को जेल भेज कर ही रहेगी।

0: भी आपने सीन में देखा होगा पिछले कुछ एपिसोड में कि युवराज और अग्नि एक हो चुके हैं और वो एक होकर रूही को परेशान कर रहे थे और रूही घर से चली गई थी और जब वो वापस आई तो उसके कुछ रंग ही बदले बदले से लग रहे थे, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही बोल्ड। तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि रूही को क्या हो गया, अचानक से इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो गई। तो मैं पता लगाने जाती हूँ रूही के पीछे। तो आज जो अभी आपने सीन देखा वो वही था कि मैं रूही का पीछा कर रही थी, पता लगा रही थी कि आखिर ये कर क्या रही है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है जो ये इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है। अब आपको बाकी एपिसोड में पता चलेगा कि मुझे मिला या नहीं मिला। मैं और युवराज जो है वो एक हो गए और रूही को ये बात पता है, तो वो अभी हम दोनों को ये नहीं छोड़ने वाली है। और उसने ऐसा धमकी भी दिया हमें कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी।
1: इसके बाद अब अग्नि टेंशन में आ गई है कि आखिरकार रूही के हाथ ऐसा क्या लगा है जिससे वो इतनी कॉन्फिडेंट है। इसीलिए तो रूही का पीछा कर रही है ताकि वो सच जान सके। तो भाई अब देखना होगा कि क्या रूही अपने प्लान्स में कामयाब होगी या फिर अग्नि और युवराज मिलकर इस प्लान को फेल कर देंगे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: आप गए फ्रूट मार्केट फ्रूट्स खरीदे, लेकर आए अपने लिए ताजा ताजा फ्रूट्स, इनफैक्ट ले आए हर वैरायटी का फ्रूट, है ना, ये कितना रॉकिंग। लेकिन याद रखिए फ्रूट्स की भी होती है शेल्फ लाइफ, क्योंकि वो तो हो जाएंगे कुछ ही दिनों में खराब और हो जाएगा आपके लिए शॉकिंग। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। देख लीजिए वसुधा के सेट से ये बिहाइंड द सीन नज़ारे, जहां पर सभी लोग काफी खुश हैं और प्रिया ठाकुर अपने फैंस को दे रही है फ्लाइंग किस। भाई शो लगातार 2 हफ्ते से नंबर 1 जो है, ऐसे में सेलिब्रेशन और खुशी बांटना तो बनता है।
3: यही काफी है,
4: खुश
3: है। अरे बिल्कुल होना चाहिए, हमारा शो है भाई।
1: ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है मुगले आजम वाला ट्रैक, जहां पर अरमान और अभीरा बने हैं सलीम अनारकली। देख लीजिए इनकी ये तस्वीरें जहां ये गेटअप में है।
5: अपनी जुबान पे ताला लगा लेना, पर नफरी फंड का ज्ञान देने वालों को ना मैं अपनी चूती की नोक पे रखता हूँ।
1: इसी के साथ सीन में मनाया जाएगा दादी का बर्थडे और सेलिब्रेशन में आएगा ट्विस्ट।
5: अपनी जुबान पे ताला लगा लेना, पर नफरी फंड का ज्ञान देने वालों को ना मैं अपनी चूती की नोक पे रखता हूँ।
6: क्रिश और जमाइसा से माफी मांगो।
7: इसने जो बदतमीजी दिशा के साथ की है उसकी बेइज्जती की है। अगर इसने अभीरा के साथ की होती ना तो मैं इसको चौक पे ले जाकर मारता।
8: वायलेंस आखिरी हथियार होता है, मजबूरी होती है और सिर्फ तभी जस्टिफाइड होता है जब सामने वाला भी वायलेंट हो रहा हो, वरना वायलेंस गलत है।
1: मौनी रॉय ने अपने सोशल मीडिया के जरिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है अपने और सूरज के साथ उनके डिवोर्स की, साथ ही उन्होंने प्राइवेसी की रिक्वेस्ट भी की है।

अविनाश मिश्रा ने शेयर की है ये गुड न्यूज, जहां पर उन्होंने खरीद लिया है अपना नया घर जिसकी पूजा हुई। वैसे अविनाश की इस खुशी में शामिल हुई उनकी दोस्त ईशा सिंह।

जल्द आने वाला है नया रियलिटी शो जिसका नाम है माँ है ना, जिसमें नजर आने वाली है मनीषा रानी अपने पापा के साथ। इसी के साथ बीती शाम माँ है ना के सेट के बाहर नजर आए शिल्पा शेट्टी। तानिया मित्तल, उर्वशी ढोलकिया और कई और सितारे।

0: खबरों की माने तो स्टार प्लस लेकर आ रहा है नया शो, जिसमें नजर आ सकते हैं हर्षित चोपड़ा, जेनिफर विंगेट और श्वेता तिवारी और रोनित रॉय, ऐसा सुनने में आ रहा है।
1: सीधा सीधा सीधा चलो चलो मम्मी चलो।
2: कौन सा तेल लगाए,
3: कितना बॉस मार रहा
0: है। माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की नई फिल्म आने वाली है, जिसका नाम है माँ बहन। देख लीजिए इस फिल्म का ट्रेलर।

शाहरुख खान की फिल्म किंग में अभिषेक बच्चन का ये लुक होने वाला है, जो कि हो गया है रिवील। अर्शद वारसी और शर्मन जोशी ने रिक्रिएट किया गोलमाल से अपना ये आइकॉनिक सीन। देख लीजिए ये मीम।

0: भी गौतम पहुंची इनॉग्रेशन में, जहां पर ओपन हुआ है ये हॉस्पिटल जो कि है स्पेशलाइज्ड वुमेन हेल्थ केयर के लिए।
1: सच बोलवा के रहूंगी, कहाँ है तेरी पाँच पाँच डिग्रियाँ, सारी की सारी अभी के अभी जला।
0: नजर डालीजिए उड़ने की आशा के इस नए प्रोमो पर, जहाँ पर रेणुका हो जाएगी गुस्सा और कहानी में आएगा ट्विस्ट।
2: वो जो करना चाह रही है वही छोड़ा है इस घर में।
3: हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि वो गलत है?
4: मुझे लगता है कल्याणी का झूठ पकड़ने का एक तरीका है।
0: पुष्पा इम्पॉसिबल में आने वाला है नया ट्विस्ट, जहां पर बिखर जाएगा पुष्पा का परिवार।
5: तुझे शायद कोई गलतफहमी हुई है।
6: ये तो क्या कर रहे
7: हैं? मम्मी तू ही से हमारी जिंदगी में लेकर आई थी ना,
8: अब इसे जिंदगी भर की सजा दूंगा मैं।
5: तुझे जिंदगी भर की नहीं, सात जन्मों की।
9: नफरत ने की सारी हदें पार, पुष्पा कैसे संभालेगी अपना घर परिवार?
0: बीती शाम हुआ मराठी Z5 का सेलिब्रेशन, जिसमें नजर आए ऋतुजा बागवे, नेहा पेंसे और कई और सितारे जो हुए इस जश्न में शामिल।

वैसे ये जो अनार है ये भी एक ऐसा फ्रूट है ना जो लेकर आता है हमारी जिंदगी में ट्विस्ट. अब आप पूछेंगे कैसे. अब देखिए ऊपर से देखने पर तो पता नहीं लगता कि वो अंदर से कैसा निकलने वाला है. ऊपर से दिखता है वो ताजा ताजा लाल लाल, लेकिन कभी कभी जब हम उसे खोलते हैं तो निकलता है वो रॉटन. ओ माय गॉड, आ जाता है जिंदगी में ट्विस्ट. कुछ ऐसे ही ट्विस्ट आते हैं यहाँ पर हमारी एंटरटेनमेंट की कहानियों में जो लेकर आते हैं उनमें एंटरटेनमेंट का मसाला. सो लेट्स ट्विस्ट.

0: एक्ट्रेस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा का लव यू जिंदगी कैफे फिर से ओपन हो गया है। ऐसे में आज उस कैफे का उद्घाटन हो रहा है और अनुपमा पहुंच गई है अपने पूरे परिवार के साथ। इतना ही नहीं, उद्घाटन की जिम्मेदारी बा और बाबूजी को दी है। ऐसे में बा और बाबूजी दरवाजे पर खड़े होकर कैफे की पूजा करते हैं और नारियल फोड़कर कैफे के अंदर एंट्री करते हैं।
1: जय श्री कृष्णा।
2: जय श्री कृष्णा।

0: birkaç minute. Peki.
1: Birkaç minute, ha?
2: Bolo laddu gopal ki.
3: Jai.
2: Krishna kanhaiya lal ki.
3: Jai.
4: भाई अनुपमा तो बहुत खुश है कि उसका कैफे फाइनली ओपन हो गया है और तो और वो पूरे परिवार के साथ मिलकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती है, आरती उतारती है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि श्रुति ने चाल चली है। जरा देखिए कैसे श्रुति भी पूरे परिवार को सरप्राइज देने के लिए लेकर आ गई है उसी गलियारे जहाँ पर अनुपमा का लव यू जिंदगी कैफे है। और तो और जैसे ही घर वाले आँखों से पट्टी हटाते हैं और बाहर आते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं। ऐसे में श्रुति सभी को देती है सरप्राइज कि उसने कैफे खोला है। इतना ही नहीं, कैफे के नाम से वो पर्दा भी हटाती है और सामने होता है अनुज कैफे। इसी के साथ श्रुति राही और प्रेम को जिम्मेदारी देती है उस कैफे की। श्रुति की बात मानते हुए प्रेम और राही उस कैफे को ओपन करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
2: आ जाइए सब लोग, पहले पंछियों के लिए खाना रखते हैं, फिर डॉगी के लिए, बिल्ली के लिए और गौवंश के लिए रोटियां बनती हैं।

0: श्रुति को लगा था कि वो बाजी मार ले जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अनुपमा ने यहाँ पर भी जीत हासिल की है, क्योंकि उसके कैफे के सामने उसके अनुज का नाम जो है। ऐसे में उसने अपने बेटे और दामाद दोनों को आशीर्वाद दिया ताकि उनका कैफे और बढ़े और कामयाबी की बुलंदियाँ छुए। लेकिन वहीं दूसरी ओर दिग्विजय हैरान है और उसे पता है कि श्रुति ये सब क्यों कर रही है।
1: आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही हैं, क्योंकि लड़ाई अगर किसी और रिश्ते में हो तो ऐसा लगता है कि आप अपनों से लड़ रहे हैं, लेकिन सामने अगर संतान हो तो ऐसा लगता है कि अपने आप से लड़ रहे हैं। हारेंगी तो भी दुख होगा, जीतेंगी तो भी अफसोस,
2: लेकिन लड़ना तो पड़ेगा।
3: महादेव एंड सन्स।
0: कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में गलतफहमी ने कर दिया है रज्जी और धीरज के बीच प्यार का इजहार। असल में दोनों शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लिफाफे पर लिफाफे बना रहे हैं। इसी बीच रज्जी के हाथों लगता है कागज जिसमें लिखा हुआ है आई लव यू। ये देखकर रज्जी हैरान हो जाती है, हिचकिचा भी जाती है। उसे लगता है कि ये धीरज ने लिखा है। बस फिर क्या, वो पहुंच जाती है वो पेपर लेकर धीरज के पास, जिसे पढ़कर धीरज भी हैरान है और ये आई लव यू की गलतफहमी ने दोनों के बीच बहसबाजी कर दी है।
4: आई लव यू क्या बकवास है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये क्या लिख के दे रही हो मैं?
5: ये हमने लिखा है, ये तुमने लिखा है।
4: दिमाग का फ्यूज उड़ गया क्या तुम्हारा? या तो ये मिसाइल किसी और का था और गलती से तुम्हारे पास आके लैंड हो गया, या फिर तुम इस पे लिख करके ना जबरदस्ती अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रही हो उनसे। सुनो रज्जी, तुम्हारे जान में फंसने वाले नहीं हम, लो इसे आगे बढ़े।
5: ये ना हमारे सामने भोलेपन का नाटक मत करो, ये स्कूल कॉलेज के लफंडर लड़कों वाली हरकत ना तुम ही कर सकते हो, हमें पता है तुमने किया ये।
4: कर सकते हैं हरकत, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, बाकी और लड़कियों के लिए। शकल देखी तुमने?

अब धीरज और रजी माने न माने लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और ये तब नजर आता है जब रजी साज श्रृंगार कर धीरज के सामने आती है और धीरज की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो एक टुक रजी को देखते ही रह जाते हैं।

0: कह रहे थे तुम उससे कि हमें जाके आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। वैसे हम तुम्हें बता दें कि अभी अभी आईने में हमारी शक्ल देख के ही आ रहे हैं, और हमें ये तो पता है कि हम ऐसे लग रहे हैं कि कोई भी हमें देखता रह जाए, उसका मुंह खुला का खुला रह जाए, जैसे कि तुम्हारा।
1: तो देखा आपने, इन फ्रूट्स की तरह आपको भी तरोताजा कर दिया ना हमारी एंटरटेनमेंट की कुछ न्यूज ने। लेकिन क्या करें, अब तो घड़ी कर रही है इशारा की, वक्त आ गया है आपको बाय बाय कहने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
5: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
4: to live sports action.
6: To the near side corner, to wrap around, he scores!
4: And your favorite music.
7: You and I stargazing.
4: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
16: विदेश दौरे पर अबुधाबी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर, डिफेंस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हुए कई अहम समझौते। उत्तराखंड में बद्री विशाल के दर्शन के साथ लोग पर्यटन का भी उठा रहे लुत्फ। चीन सीमा से सटे खूबसूरत देवताल का नजारा कर रहा आकर्षित, चारों तरफ बर्फ का श्वेत श्रृंगार। केदारनाथ धाम में बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए अच्छी खबर, दर्शन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, मंदिर समिति ने जारी किए निर्देश। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी पर अयोध्या में उमड़ा सकर जनसैलाब, श्री ईश्वरनाथ सिद्ध शिवालय में भक्त कर रहे जलाभिषेक, रामलला के दर्शन के लिए लगी कतारें। नीट यूजी परीक्षा को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी, 2026 की परीक्षा अगले साल से पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड होगा एग्जाम। देश के डिफेंस सेक्टर से शानदार खबर, आंध्र प्रदेश में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं का शुभारंभ, रक्षा मंत्री और सीएम नायडू ने वैदिक मंत्रों के बीच में किया भूमि पूजन। गोरखपुर में रामगढ़ ताल की लहरों पर दिखा रोइंग का रोमांच, अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ, विभिन्न राज्यों की 16 टीमें ले रही हिस्सा। कान फिल्म फेस्टिवल में लगा पंजाबी तड़का, पंजाबी मॉडल और एक्ट्रेस रूपी गिल की तस्वीरें वायरल, सफेद आइवरी सूट, डायमंड एमराल्ड ज्वेलरी में दिखा शानदार अंदाज।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
16: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आज 27वां दिन, अभी तक लगभग 13.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम पर उमड़ रहा भक्तों का समंदर, कल 26,500 से ज्यादा लोगों ने किए बाबा केदार के दर्शन। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हुई करीब 3.5 लाख, कल लगभग 20,000 श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। अब तक 2,21,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई यमुनोत्री में मां यमुना के द्वार पर हाजिरी, कल 13,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। करीब 2,20,000 श्रद्धालु पहुंचे गंगोत्री धाम, कल 12,000 से ज्यादा भक्तों ने किए मां के दर्शन। केदारधाम में बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए अच्छी खबर, दर्शन में मिलेगी प्राथमिकता। केदारनाथ में दर्शन के लिए बुजुर्ग और दिव्यांगों को नहीं लगना पड़ेगा लाइन में, मंदिर समिति ने जारी किए निर्देश। केदारनाथ में बन रहा दर्शन का नया रिकॉर्ड, अभी तक 5.5 लाख से ज्यादा यात्री कर चुके बाबा केदार के दरबार में दर्शन। पंच केदारों में चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया भी हो गई शुरू, चल विग्रह मूर्ति को मंदिर परिसर में किया विराजमान। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में 2 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद 17 मई को रवाना होगी भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली, 18 मई को खोले जाएंगे ये कपाट। बद्री विशाल के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, ठंड के बावजूद मौसम बना हुआ सुहाना। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की यात्रा के साथ अब देवताल मार्ग की तरफ रुक कर रहे सैलानी, चीन सीमा से सटा खूबसूरत देवताल इलाका। इन दिनों बर्फ से सराबोर देवताल की वादियां, चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, सफेद चादर ओढ़ी घाटी नजर आ रही। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के मौके पर अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, श्री ईश्वरनाथ सिद्ध शिवालय में जलाभिषेक कर रहे लोग। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी पर रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, भीड़ को देखते हुए बढ़ाई सुरक्षा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाकाल की दिव्य भस्म आरती, मासिक शिवरात्रि के शुभ मौके पर दिखा श्रद्धालुओं का उत्साह। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आज शुभ संयोग आयुष्मान योग के साथ बन रहे कई खास योग। मासिक शिवरात्रि के मौके पर आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग, अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त जैसे शुभ संयोग भी। आज वृषभ संक्रांति पर बन रहा दुर्लभ संयोग, वृषभ राशि में सूर्य देव का प्रवेश दूसरे सौर माह के आरंभ का प्रतीक। मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा की नई तारीख का एनटीए ने कर दिया ऐलान, लाखों परीक्षार्थियों के लिए गुड न्यूज। अब 21 जून को देश भर में दोबारा करवाई जाएगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा, 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हो सकते शामिल। एनटीए ने सोशल मीडिया और दूसरे स्रोतों पर दी परीक्षा की नई तारीख की जानकारी, फोन नंबर ईमेल भी किया जारी। 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए 14 जून को जारी होंगे एडमिट कार्ड, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। परीक्षा में छात्रों को मिलेगा 15 मिनट अतिरिक्त समय, लाखों छात्रों के लिए राहत देने वाली न्यूज़।

दिल्ली में आज 40 से 42 डिग्री के बीच रह सकता है अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री रहने के आसार। दिल्ली में गुरुवार को दर्ज किया गया मई महीने का सबसे गर्म दिन, आने वाले दिनों में तापमान में फिर हो सकता है बदलाव। दिल्ली में कल 40.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा अधिकतम तापमान, 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। राजस्थान में 18 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी, कई जिलों में 48 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। राजस्थान में जयपुर समेत कई इलाकों में हीट वेव के हालात, गर्मी से सावधान रहने की अपील। तेज धूप, गर्मी, लू से बचाव के लिए महाराष्ट्र के अमरावती में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को दिए गए एयर कूल जैकेट्स, गर्मी से बचेंगे। देश में 26 मई को हो सकती है मॉनसून की एंट्री, मौसम विभाग के मुताबिक महीने के आखिर तक बंगाल की खाड़ी में मॉनसून की शुरुआत की संभावना। गुवाहाटी में हुई भारी बारिश, जगह जगह भर गया पानी। विदेश यात्रा के पहले पड़ाव में यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री, हुआ भव्य स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत और यूएई के बीच सामरिक रक्षा साझेदारी पर समझौता, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व एलपीजी की सप्लाई को लेकर बनी अहम सहमति। आज से 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी, यूएई के बाद नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली में होंगे अहम समझौते। इंडिया यूरोप रिश्तों को नई मजबूती देंगे प्रधानमंत्री मोदी, व्यापार, रक्षा, एआई, ग्रीन एनर्जी पर रहेगा फोकस। इटली, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, ऊर्जा, निवेश, टेक्नोलॉजी, साझेदारी को मिलेगा बढ़ावा। आंध्र प्रदेश के पुट्टपार्थी में आज रखी गई 16,000 करोड़ के एरोस्पेस और डिफेंस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला। साइकिल की सवारी करते नजर आए दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा, ईंधन बचाने का संदेश दिया। बिहार के बांका में जिला और सत्र न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य ने पेश की अनोखी मिसाल, साइकिल पर सवार होकर दफ्तर पहुंचे। यूपी के महाराजगंज में लोगों को सौगात, 208 करोड़ से ज्यादा की लागत की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। गढ़ताल राइफल्स के वीर जवानों के परिजनों ने रेजिमेंटल म्यूजियम को सौंपा गैलेंट्री अवार्ड्स के मेडल, आम लोग कर सकेंगे दीदार। यूपी के बरेली में नाथ कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ, 7 प्रमुख प्राचीन शिव मंदिरों को जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद। यूपी सरकार का फैसला, आंधी तूफान आकाश बिजली से हुई जनहानि में प्रभावित परिवारों को सहायता मिलेगी। उत्तरी 24 परगना के आदरितो पॉल ने पश्चिम बंगाल बोर्ड परीक्षा में किया टॉप। हरियाणा के सिवानी के गांव खेड़ा की रहने वाली दीपिका ने हरियाणा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में टॉप किया। हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी, 91.64% लड़कियां पास। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन अलर्ट, तीर्थयात्रियों की सेहत की स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के खास इंतजाम। नॉर्थ गोवा में स्वामी समर्थ मठ में अरविंद केजरीवाल ने की पूजा अर्चना, पार्टी के कई नेता रहे साथ। बटाला में आयोजित धार्मिक समागम में पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, महाराज दर्शन दास डेरे में टेका मत्था। जम्मू कश्मीर के रामबन में नशा मुक्त भारत अभियान के सिलसिले में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रामबन में प्रशासन ने किया पदयात्रा, जागरूकता रैली का आयोजन, नशे के खिलाफ चलाई मुहिम। कान फिल्म फेस्टिवल में लगा पंजाबी तड़का, पंजाबी मॉडल और एक्ट्रेस रूपी गिल की तस्वीरें वायरल हुई। रूपी गिल ने कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर लूटा सबका दिल, सफेद आइवरी सूट, डायमंड, एमराल्ड ज्वेलरी में दिखी। कान 2026 में रूपी गिल ने किया अपना डेब्यू, पहले ही अपीयरेंस में बिखेरा जलवा। नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस एमी बरवा ने भी कान 2026 में बिखेरी छटा, नॉर्थ ईस्ट की पारंपरिक पोशाक में नजर आई। एक्टर ताहा शाह बदुशा भी कान 2026

0: 26 में शामिल हो रहे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
4: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
3: Smartless.
5: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
3: Marketplace.
6: The big three on the program today, or, you know, the big three of the...
3: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है, तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है, तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में, गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद। यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है, मसों में ये गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: न आदि न अंत ताकत है अनंत देसी तकनीक से तैयार महाशक्ति वाला हथियार भारत ने बना लिया भविष्य का ब्रह्मास्त्र देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
6: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस विजिट SRMUP.in
7: विदेश दौरे पर अबुधाबी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर डिफेंस एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हुए कई अहम समझौते उत्तराखंड में बद्री विशाल के दर्शन के साथ लोग पर्यटन का ले रहे लुत्फ चीन सीमा से सटे खूबसूरत देवताल का नजारा कर रहा आकर्षित चारों तरफ बर्फ का श्वेत श्रृंगार केदारनाथ धाम में बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए अच्छी खबर दर्शन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन मंदिर समिति ने जारी किए निर्देश ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का जनसैलाब श्री ईश्वरनाथ सिद्ध शिवालय में भक्त कर रहे जलाभिषेक रामलला के दर्शन के लिए लगी कतारें नीट यूजी परीक्षा को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा अगले साल से पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड होगा एग्जाम देश के डिफेंस सेक्टर से शानदार खबर आंध्र प्रदेश में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं का शुभारंभ रक्षा मंत्री और सीएम नायडू ने वैदिक मंत्रों के बीच किया भूमि पूजन गोरखपुर में रामगढ़ ताल की लहरों पर दिखा रोइंग का रोमांच अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ विभिन्न राज्यों की 16 टीमें ले रही हिस्सा कान फिल्म फेस्टिवल में लगा पंजाबी तड़का पंजाबी मॉडल और एक्ट्रेस रूपी गिल की तस्वीरें वायरल सफेद आइवरी सूट डायमंड एमराल्ड ज्वेलर में दिखा शानदार अंदाज
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम
8: नमस्कार आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव कल शनि देव की जयंती मनाई जाएगी देखिए मान्यता है कि इस दिन शनि देव से वरदान मांगा जा सकता है अपनी कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है देखिए कहते हैं कि शनि जयंती की शाम किए गए उपायों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं शनिराज पौराणिक कथा है कि ज्येष्ठ महीने में शनिवार की अमावस्या के दिन सूर्य की पत्नी छाया ने शनिदेव को जन्म दिया ज्योतिषी मानते हैं कि इस दिन शनिदेव की उपासना प्रभावशाली हो जाती है

0: शनिवार और शनि जयंती का दुर्लभ संयोग। शनेश्वरी अमावस्या पर कीजिए ज्योतिषीय महाप्रयोग। शनि जयंती पर विधि विधान से करें शनिदेव की भक्ति। पीपल की परिक्रमा और दीपदान दिलाएगा शनि दोष से मुक्ति। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि शनि जयंती हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसीलिए स्थिति को शनि अमावस्या या शनेश्वरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार का संयोग इसलिए भी खास बन गया है क्योंकि शनिवार और अमावस्या एक साथ पड़ रहे हैं। इस दिन श्रद्धालु शनि मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, तेल चढ़ाते हैं और शनि मंत्रों का जाप करते हैं। माना यह जाता है कि इस तिथि पर शनिवार की पूजा करने से शनि की साढ़े साथी ढैया और शनि दोष के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि शनि जयंती की शाम को अगर शनिदेव की आराधना अपने पूरे मन से कर ली जाए तो शीघ्र ही शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं शनि जयंती का महत्व क्या है।
1: कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाते हैं। ऐसा पुराणों में कथा आता है कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भगवान शनि का जन्म हुआ। भगवान सूर्य के यह पुत्र हैं और भगवान सूर्य की दो पत्नियां, दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र हुए। भगवान सूर्य की जो एक पत्नी छाया थी उनसे भगवान शनि का जन्म हुआ और भगवान सूर्य की जो दूसरी पत्नी संज्ञा थी उनसे भगवान यम का जन्म हुआ। इसीलिए ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को शनि जयंती मनाते हैं।
0: शनिदेव की जयंती ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन शनिदेव का प्राकट्य हुआ था। इस दिन शनि संबंधी उपाय करने से विशेष लाभ होता है। इस दिन अगर उपवास रखकर संध्याकाल में उपाय किया जाए तो निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। शनि को कर्म फलदाता और न्याय के देवता के रूप में भी जाना जाता है, जो मनुष्य को उनके कर्मों के मुताबिक फल देते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शनि जयंती की तिथि पर शनिदेव की विशेष पूजा करने से हर तरह की समस्या का समाधान होता है। तो शनि जयंती पर कैसे करें शनिदेव की उत्तम आराधना?
1: शनि जयंती पर शनि भगवान की उपासना के लिए आप विशेष रूप से भगवान शनि के मंदिर जाएं या पीपल के वृक्ष के नीचे सायंकाल के समय सरसों तेल का दीपक जलावें और काला वस्त्र काला धागा भगवान को अर्पण कर धूप दीप नैवेद्य गंध आदि से भगवान शनि का पूजन करें और ओम संशनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शनि का पूजन करने से शनि भगवान अति प्रसन्न होंगे और जीवन में अत्यधिक खुशहाली प्राप्त होगी।
0: शनि जयंती पर संध्या काल में पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है। शनि जयंती पर संध्या काल में स्नान करें, शनिदेव का स्मरण करके पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके बैठें, फिर शनिदेव के मंत्र का और उनके स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी निर्धन को अन्न वस्त्र और धन का दान करें। इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें, चाहे तो इस दिन उपवास भी रख सकते हैं। सनातन संस्कृति में हर देव का स्वरूप और शक्तियाँ अलग मानी गई हैं। मान्यता यह है कि शनि की आंखों में सीधा नहीं देखना चाहिए क्योंकि उनकी दृष्टि को वक्र यानी टेढ़ी माना जाता है। मान्यता है कि उनकी आंखों में सीधा देखने से जीवन में कष्ट मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए पूजा करते समय नजरें नीचे और चरणों में रखना शुभ माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे है शनिदेव का स्वरूप।
1: हाँ, नीलांजलम समाभासम रविपुत्रम इमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चर। भगवान शनि के बारे में कहा जाता है कि जो उनका स्वरूप है नीलांजलम, नीले स्वरूप के हैं, समाभासम रविपुत्रम और रवि के पुत्र हैं, और छाया मार्तंड माँ, उनकी माँ का नाम छाया है, छाया संभूतम तम नमामि शनिश्चर। ऐसे सुंदर स्वरूप के भगवान शनि को हम प्रणाम करते हैं।
0: शनि के सर में स्वर्ण मुकुट और गले में माला है, शरीर पर नीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये कौओं की सवारी करते हैं। इनके हाथ में धनुष, बाण और त्रिशूल रहता है। शनि को सूर्य का पुत्र भी माना जाता है। यम, यमुना और भद्रा शनि के भाई बहन हैं। शनिदेव की माता का नाम छाया है। कहते हैं कि जैसा करोगे कर्म वैसा ही फल देंगे शनि। लेकिन कई बार इंसान की तमाम समस्याओं का कारण भी शनि की खराब दशाएं ही होती हैं। तो आइए जानते हैं शनि के कारण किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं और इनके समाधान के लिए क्या विशेष उपाय किए जाने चाहिए।
1: देखिए, शनि न्यायप्रिय ग्रह है, वह न्याय का राजा है। जो व्यक्ति इस लोक में धर्माचरण नहीं करता, पापाचरण करता है, लोभ में, लालच में, ईर्ष्या में दूसरे का नुकसान करने के लिए हमेशा लगा रहता है, ऐसे समस्त प्राणी भगवान शनि के कुदृष्टि के पात्र हो जाते हैं।
0: आपको बार बार दुर्घटना का भय सताता हो और आपका वाहन बार बार खराब हो जाता हो, ऐसी दशा में आप शनि जन्मोत्सव शाम को एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें, सरसों के तेल में देखकर अपना छायादान करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इन तमाम परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शनि जयंती सबसे उत्तम दिन है। अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से घिरे हैं तो इन अचूक उपायों के जरिए कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आगे आपको बताएंगे शनि का साढ़े साथी और ढैया से कैसे बचाव करें। साथ ही जानेंगे कि आर्थिक बाधा को दूर कैसे किया जाए। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: देखिए, शनि की एक विशेषता है, जब वो सुख देते हैं तो वो अपार देते हैं, वो रंक से राजा बना सकते हैं आपको। लेकिन शनि को दंडकारी भी कहा जाता है, शनि पाप कर्मों की सजा भी देते हैं। तो जीवन खुशहाल रहे और किसी चीज की परेशानी ना हो, इसके लिए शनिदेव का प्रसन्न रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर शनि आपसे नाराज हैं और आपके बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं तो शनि जयंती पर उन्हें कैसे मनाएं, चलिए जानते हैं।

0: शनि जयंती पर बजरंग बली के समक्ष करें दीपदान। हनुमान चालीसा और सिंदूर करेगा समस्याओं का समाधान। शनि जयंती पर करें निर्धनों को दान। न्यायाधीश देव करेंगे आपका कल्याण। शनि जयंती पर करें श्री कृष्ण की उपासना। कष्ट और पीड़ा से नहीं होगा आपका सामना। शनि जयंती का महत्व उन लोगों के लिए ज्यादा बढ़ जाता है जिनकी जन्म कुंडली में शनि बुरे प्रभाव दिखा रहे हों। जिन्हें शनि की साढ़े साथी धैया चल रही हो, क्योंकि शनि संतुलन और न्याय करने वाले ग्रह हैं। जानबूझकर गलती करने वालों और बेईमान लोगों को पीड़ित करते हैं शनिदेव, लेकिन ईमानदार और परिश्रमी लोगों को पुरस्कृत भी करते हैं।
1: देखिए, जब भी जिस भी मनुष्य के ऊपर या कुंडली में शनि की साढ़े साथी या ढैया प्रारंभ हो, तो जिस समय से शनि की साढ़े साथी और ढैया प्रारंभ हो, उसी समय से ओम सन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और शनि के लिए जो औषधि या जड़ियां बताई गई हैं उसका सेवन करें, हनुमान जी की आराधना करें और अधिक से अधिक शनिवार के दिन गरीब लोगों में, भृत्य लोगों में, क्योंकि शनि को भृत्य भी कहा गया है, भृत्यों को में कुछ न कुछ दान करें। उसके दान करने मात्र से आप भगवान शनि के ढैया और साढ़े साथी से बच सकते हैं और आपका जीवन सुखमय हो सकता है।
0: ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शनि की टेढ़ी नजर का शिकार हो या फिर कुंडली में शनि के अशुभ प्रभाव के कारण किसी रोग से पीड़ित हो, उसे शनि की विशेष पूजा करनी चाहिए। इस स्थिति पर श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान पूजा भी कर सकते हैं। आप शनि संबंधी पीड़ाओं से मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए शनि जयंती से अच्छा कोई और दिन नहीं। इस दिन शनि से संबंधित कुछ महा उपाय करके शनिदेव की कृपा पाई जा सकती है।
1: शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे महा उपाय हनुमान जी की आराधना है, क्योंकि शनि भगवान के जब भी शनि क्रुद्ध होते हैं तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार या शनिवार के दिन लाल वस्त्र धारण करें और हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी को घी का दीपक जलावें, हनुमान जी के शरीर में सिंदूर और तेल अर्पण करें और हनुमान चालीसा आदि का पाठ करने से भगवान शनि प्रसन्न होंगे।
0: ज्योतिष के जानकारों की माने तो शनि जयंती के दिन कुछ विशेष ज्योतिषीय प्रयोगों से शनि की साढ़े साथी और ढैया के प्रकोपों से बचा जा सकता है। शनि की साढ़े साथी या ढैया के कारण काम बिगड़ रहे हो, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पा रही हो, शाम को शनि मंत्र का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः 11 माला का जप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। माना जाता है कि अगर आपके जीवन में नौकरी और रोजगार की समस्या है, तमाम कोशिशों के बावजूद आपकी नौकरी की समस्या खत्म नहीं हो पा रही है, आपको नई नौकरी ही नहीं मिल पा रही है, तो एक छोटे से महा उपाय से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो सकती है। शनि जयंती को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के 9 दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद पीपल की 9 परिक्रमा करें। शनि देव से प्रार्थना करें। शनि जयंती पर आर्थिक बाधा को दूर करने के भी विशेष प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक शनि देव प्रसन्न नहीं होंगे आपको धन की समस्या बनी रहेगी। तो आइए आपको शनि देव के वो उपाय बताते हैं जिससे आपको हो सकता है धन का लाभ। शनि जयंती को काले वस्त्र में रखकर सिक्कों का दान करें। इस दिन ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का 3 माला जप करें। शनि जयंती पर आप इन उपायों को ध्यान से कीजिए, फिर शनि देव आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी सारी विपदा दूर कर लेंगे। आगे हम आपको शनि देव से जुड़े कुछ रहस्य बताएंगे और साथ ही जानेंगे कि कैसे शनि की कृपा से जीवन में संकटों का अंत किया जा सकता है।
2: तो कल आप शनि देव के क्रूर नजरों से मुक्ति पा सकते हैं और उनको प्रसन्न करके उनकी कृपा हासिल कर सकते हैं। शनि जयंती एक ऐसा दिन है जब शनि प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और पूजा आराधना से जल्द ही खुश भी हो जाते हैं। अगर आप साढ़े साती या ढैया से परेशान हैं, आपकी जिंदगी में लगातार परेशानी आ रही है, तो शनि जयंती पर कुछ विशेष प्रयोगों से आपको राहत मिल सकती है।

0: शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, शनि कृपा से होगा आपका कल्याण। पशु पक्षी और प्रकृति की उपासना करें। दही और साढ़े साथी से नहीं होगा सामना। छल कपट और झूठ फरेब का करें त्याग। हनुमान जी की उपासना से मिलेगा सही मार्ग। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जीवन में खुशियों की सौगात पाने के लिए शनिदेव की कृपा पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि शनिदेव को ग्रहों में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के महा उपाय। माना जाता है कि अगर इन उपायों को शनि जयंती की तिथि पर कर लिया जाए तो आपकी तमाम बाधाओं का अंत शनि की कृपा से संभव है। जीवन में ईमानदार बने, सत्य बोले और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। तुलसी के पौधे में और पीपल में जल डालें। शनिवार सायंकाल सरसों के तेल का दीपक चौराहे या फिर पीपल के नीचे जलाएं। सूर्योदय के पूर्व जागे और शिव की उपासना करें। शनिदेव के मूल मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करें। शनि को प्रसन्न करने के लिए पहले हनुमान जी की उपासना करें। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय का जप भी कर सकते हैं। तिल उड़द भैंस लोहा काली गाय और काले वस्त्र का दान करें। कौए को प्रतिदिन रोटी खिलाएं। सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर दान करें। चलिए बाप को शनिदेव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताते हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि सूर्य राजा, बुध मंत्री, मंगल सेनापति, शनि न्यायाधीश और राहु केतु प्रशासक हैं। जब भी समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि उसको उसके बुरे कर्मों की सजा देते हैं। राहु और केतु दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शनि देव की अदालत में मुकदमा चलता है। शनि मंदिर में कभी भी शनि की प्रतिमा की सीध में खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही उनकी प्रतिमा को घर में स्थापित करना चाहिए। माना जाता है कि शनि की टेढ़ी नजर जिस पर भी पड़ती है उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। एक बार सूर्यदेव के कहने पर हनुमान जी शनि को समझाने गए। शनि नहीं माने और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध में हनुमान जी ने शनि को हरा दिया। इस युद्ध में शनि बुरी तरह से घायल हो गए। शनि के घावों को कम करने के लिए हनुमान जी ने उन्हें तेल दिया। इस पर शनि ने कहा कि जो कोई भी मुझे तेल अर्पित करेगा मैं उसकी पीड़ा हर लूंगा और उसके कष्टों को कम करूंगा। तब से शनि को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। शनि अंधकार का प्रतीक है और सूर्यास्त के बाद बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। शनि बिगड़ जाए तो जीवन में अंधकार छा जाता है। ज्योतिष मानते हैं कि शनिवार शाम को दीपक जलाने से जीवन का अंधकार भी दूर होता है। शनि देव सूर्य के पुत्र हैं। शनि का जन्म छाया और सूर्य के संयोग से हुआ। कथा ये भी है कि गर्भ में रहने के दौरान शनि देव सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाए, उनका रंग काला पड़ गया। शनि का रंग देखकर सूर्य ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। शनि से ये बात सहन नहीं हुई, तभी से शनि और सूर्य में शत्रुता है।
1: एक बार की बात है, भगवान शनि अपने पिता पे ही क्रोधित हो गए और भगवान सूर्य के ऊपर अपनी दृष्टि डाले। शनि की दृष्टि पड़ने मात्र से ही भगवान सूर्य के प्रभाव कम होने लगे। जब भगवान सूर्य ने ऐसा देखा तब से भगवान शनि को न्याय का न्यायप्रिय ग्रह अर्थात न्याय का राजा बनाया और तब से भगवान शनि को न्यायप्रिय ग्रह कहते हैं। यह जनमानस में न्याय के देवता के रूप में पूजित हैं।
0: शनि के क्रोध से बचना है तो दूसरों की बुराई करने, षड्यंत्र करने वालों से दूर रहें। मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार न रखें। किसी को हानि पहुंचाने के प्रयास न करें। किसी का हक छीनने का प्रयास न करें। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। सूर्यास्त के समय बिल्कुल न सोएं। तो आप भी इस उपाय को अपना लीजिए, शनि देव की पूजा उपासना कीजिए और अगर संभव हो तो शनि के मंत्रों का जाप कीजिए। फिर आपके जीवन से भी बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे और जीवन में खुशियों का आगमन होगा।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अच्छी सच्ची खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: क्या है शनि जयंती की महिमा, क्या है शनिदेव का पूजा विधान, शनि जयंती पर कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play tune in and start listening.
7: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। इनमें कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे, कुछ आपको इमोशनल कर देंगे।
2: कर्नाटक के एक बच्चे ओम एन ने अपने हुनर से बड़ों बड़ों को हैरान कर दिया। ओम ने दीवार के सहारे सिर के बल खड़े होकर यानी शीर्षासन मुद्रा में बेहद कठिन माने जाने वाले शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ किया। सिर्फ 8 साल की उम्र में ओम ने पूरे स्त्रोत को मात्र 3 मिनट 47 सेकंड में पूरा कर लिया। सिर के बल खड़े होकर संस्कृत में मंत्रों का इतना तेज और शुद्ध उच्चारण करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए सांसों पर जबरदस्त काबू और शरीर का संतुलन चाहिए होता है। ओम की इस उपलब्धि को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। फरारी एक ऐसी गाड़ी है जो चुनिंदा लोगों के पास ही होती है, इसलिए सड़क पर दिखते ही नजर एक बार तो पड़ ही जाती है। एक बच्चे के साथ भी यही हुआ, वो इस कार के साथ फोटो खिंचा रहा था, मगर फरारी का ओनर ये सब दूर से ही देख रहा था, लेकिन डांटने या हटाने के बजाय उन्होंने बच्चे का दिल खुश करने की सोची। उन्होंने बच्चे को सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाई। बच्चा शॉक में था और खुश भी था। जा सकता है कि शादी के मंडप में पूजा सामग्री रखी हुई है, मगर अचानक पता चल जाता है कि हवन में प्रयुक्त होने वाली लकड़ियां गायब थी। पुजारियों, मेहमानों और अनुष्ठानों के पहले से ही चल रहे होने के कारण घबराहट समारोह को बाधित कर सकती थी। इसके बजाय किसी ने 10 मिनट में किराने का सामान पहुंचाने वाली सेवा पर तत्काल ऑर्डर कर दिया। कुछ ही सेकंड के बाद डिलीवरी बॉय आ गया और तुरंत ही सबकी समस्या का समाधान कर दिया गया। वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि बारात आ चुकी है, स्टेज सज चुका है और बस दुल्हन की एंट्री का इंतजार हो रहा है। कुछ ही सेकंड में जैसे ही दुल्हन एंट्री लेती है, वो जमकर थिरकना शुरू कर देती है। दुल्हन का कॉन्फिडेंस और उसके कमाल के मूव्स देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दूल्हे के रिएक्शन की हो रही है। अपनी होने वाली पत्नी को इस अंदाज में नाचते देखकर बंदा बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो बिना पलक झपकाए और मुंह खोले बस एक टुक उसे निहारे जा रहा था।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: ना आदि ना अंत, ताकत है अनंत। देसी तकनीक से तैयार महाशक्ति वाला हथियार भारत ने बना लिया भविष्य का ब्रह्मास्त्र। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
5: La Que Buena.
4: ESPN Radio.
6: We know LeBron has to be the best player on the planet to
4: get The Daily.
7: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
4: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
12: अबूधाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पहुंचकर यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का को गले लगाया। डिफेंस, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कई अहम समझौते। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़े सैलानी। आध्यात्मिक यात्रा के साथ पहाड़ों की सुंदरता का उठा रहे लुत्फ। चीन सीमा से सटे खूबसूरत देवताल का नजारा बना आकर्षण का केंद्र। केदारनाथ धाम में बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए अच्छी खबर, दर्शन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। मंदिर समिति ने जारी किए निर्देश। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रीश्वरनाथ सिद्ध शिवालय में जलाभिषेक, रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें। नीट यूजी परीक्षा को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, 21 जून को दोबारा होगी परीक्षा। अगले साल से पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड होगा एग्जाम। देश के डिफेंस सेक्टर से शानदार खबर। आंध्र प्रदेश में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं का शुभारंभ। रक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया भूमि पूजन। कान फिल्म फेस्टिवल में लगा पंजाबी तड़का। पंजाबी मॉडल और अभिनेत्री रूपी गिल की तस्वीरें वायरल। सफेद आइवरी सूट, डायमंड और एमरल्ड ज्वेलरी में नजर आया ग्लैमरस लुक।

शनि दिलाएंगे राजयोग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चर्चा आज इसी को लेकर हम करेंगे। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर शनि देव का महाउत्सव यानी कि शनि जन्मोत्सव मनाया जाता है और मान्यता यह है कि अमावस्या के दिन शनि देव का जन्म हुआ था और इसीलिए इस तिथि को शनि अमावस्या कहा जाता है। और इस बार का संयोग इसलिए भी बहुत खास बन जाता है क्योंकि शनिवार और अमावस्या एक साथ पड़ रहे हैं, तो 13 साल बाद शनि जन्मोत्सव पर महासंयोग बन रहे हैं। शनि के कोप से राहत के क्या है उपाय, चर्चा जिसको लेकर करेंगे। न्याय की देवता को कैसे प्रसन्न करें, शनिदेव की कृपा कैसे पाएं और शनिदेव कैसे दिलाएंगे राजयोग, इसी पर आज होगी चर्चा। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद रहेंगे।

0: तो शनि जन्मोत्सव पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सबसे पहले वही आपको बता देते हैं, दरअसल मान्यता यह है कि इस दिन शनि देवता का प्राकट्य हुआ था। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में शनि देव का जन्म हुआ। यह जन्मोत्सव अमावस्या के दिन आता है। 13 साल बाद दुर्लभ योग बना है। शनि जन्मोत्सव का संयोग शनिवार को पड़ा है, तो ऐसे में भक्तों को उम्मीद है कि शनि देव संकटों से मुक्ति दिलाएंगे। अमावस्या तिथि शनिवार सुबह 5:11 से शुरू हो रही है, यानी शनि महाराज बताते चले कि शनि महाराज सूर्यदेव के पुत्र हैं और शनि देव के भाई बहन यमुना, यम और भद्रा हैं। शनि देव की माता का नाम छाया है। शनि महाराज कर्मफल दाता है, यानी जिस पर शनि देव की कृपा हो जाए समझिए कि उसके सब काम पूरे हो जाते हैं।
1: कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाते हैं। ऐसा पुराणों में कथा आता है कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भगवान शनि का जन्म हुआ। भगवान सूर्य के यह पुत्र हैं और भगवान सूर्य की दो पत्नियां, दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र हुए। भगवान सूर्य की जो एक पत्नी छाया थी उनसे भगवान शनि का जन्म हुआ और भगवान सूर्य की जो दूसरी पत्नी संज्ञा थी उनसे भगवान यम का जन्म हुआ। इसीलिए ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को शनि जयंती मनाते हैं।
0: बहुत से दुर्लभ योग भी बन रहे हैं इस दिन, चलिए उसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो इस साल शनि जन्मोत्सव को विशेष ये तमाम दुर्लभ संयोग बना रहे हैं। तो इस बार सूर्य और बुध के मेल से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। बुधादित्य योग से सफलता, समृद्धि और मान सम्मान में वृद्धि होती है। शनि जन्मोत्सव के अवसर पर शश महापुरुष राजयोग भी बन रहा है और शश राजयोग से शक्ति और स्थिरता का प्रतीक इसे माना जाता है। साथ ही साथ एक साथ केदार और सौभाग्य योग का निर्माण भी हो रहा है, जो आर्थिक समृद्धि उन्नति के कारक माने जाते हैं। यानी ये विशेष दिन बहुत खास है।
1: शनि जयंती पर शनि

0: भगवान शनि का पूजन करें और ओम सन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शनि का पूजन करने से शनि भगवान अति प्रसन्न होंगे और जीवन में अत्यधिक खुशहाली प्राप्त होगी।
1: चलिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वान्यारा जी हमारे साथ हैं, श्रुति खरबंदा जी और साथ ही साथ पंडित प्रकाश जोशी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे राज मिश्रा जी आप ही से, इस बार क्यों खास माना जा रहा है शनि जन्मोत्सव, किन मायनों में बहुत खास है?
2: धन्यवाद आपका नवजोत जी। सबसे पहले हमेशा कर्म के देवता न्यायाधीश कहे जाते हैं, कर्म और लाभ ज्योतिष में दोनों महत्वपूर्ण पद इनके हाथ में है, इसलिए इनका जन्मोत्सव हमेशा बहुत खास होता है। इस बार क्यों खास है इस पर चर्चा करेंगे, बट मैं एक बार पुनः धन्यवाद करूं आपका और जीएनटी का कि आप लोग हर जो महत्वपूर्ण विषय हैं धर्म के, ज्योतिष के, उनको समाज में दिखाते हैं और समाज से इसको लाभ होता है, समाज को इससे लाभ होता है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, भगवान शनि देव का मेरे साथ हाथ जोड़ करके स्मरण कर लीजिए ताकि उनकी कृपा जीएनटी के माध्यम से हम सभी पर, आप पर बनी रहे। और मैं सत्य कहता हूं यदि उनकी कृपा जीवन में बनी रही तो जीवन में काम में दिक्कत नहीं आएगी, अर्थ में दिक्कत नहीं आएगी, लाभ होता रहेगा। फिर आज की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ओम नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारदंड संभूतम तम प्रणमामि शनेश्वरम। बोले शनिदेव भगवान की जय। तो क्यों शनिदेव जी का जन्मदिवस बहुत महत्वपूर्ण है नवजोत जी? एक तो सबसे पहले धर्म के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट, जिनमें एक को जीव कहा जाता है, एक को लक्ष्मी कहा जाता है, एक देव के आचार्य दूसरे दैत्य के आचार्य बृहस्पति और शुक्र, जब दोनों एक साथ जाकर के बैठ जाएं उस समय पर की गई आराधना जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर के आने वाली होती है, क्योंकि इस टाइम शनि देव जो गोचर कर रहे हैं वो बृहस्पति के घर में यानी मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति स्वयं शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इस टाइम पर शनि देव की गई आराधना हमारे भाग्य को, हमारे कर्म को बेहतर बनाने वाली और हमारे जीवन के अंतर्गत जिस कामना को हमें प्राप्त करना है, जिस कामना के लिए हम उनकी आराधना कर रहे हैं, उस कामना को पूर्ण करने वाली होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि शनिवार को शनि देव का जन्मदिवस पड़ रहा है और शनि देव का जन्मदिवस भी कब पड़ रहा है, उनके प्रिय वार के अंतर्गत यानी शनिवार के अंतर्गत पड़ने जा रहा है, तो उसके कारण अपने आप में ये बहुत खास है। अगर उसके साथ देखा जाए, क्योंकि इस समय पर बुद्धादित्य योग का निर्माण है, इस टाइम पर सूर्य और बुध एक साथ गोचर कर रहे हैं वृष राशि के अंतर्गत और कारणवश चंद्र और मंगल शनि देव के जन्म दिवस पर चंद्र और मंगल का भी एक साथ गोचर रहेगा और वो भी काल पुरुष की पहली राशि के अंतर्गत रहेगा, बृहस्पति बुध का एक साथ गोचर होगा, राहु स्वयं शनिदेव की राशि में होकर के गोचर कर रहे होंगे, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जीवन का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण पार्ट है हाँ। तो जीवन के अंदर आदमी कहता कि धन मेरे पास खूब आता रहे, मेरा काम खूब चलता रहे और क्योंकि उसको शनिदेव ही रूल करते हैं, उन्हीं के पास वो अधिकार है, वो बृहस्पति के घर में है, बृहस्पति शुक्र के साथ है, तो इस वर्ष का ये जो समय है, इस वर्ष शनि का जन्मदिवस बहुत महत्वपूर्ण है नवजोत जी।
1: बिल्कुल वान्या जी, शनि की जब भी चर्चा होती है तो अक्सर लोगों के दिल में एक भय होता है, डर होता है, इतना डर क्यों है शनि को लेकर?
3: जी थैंक यू सो मच नवजोत जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। शनि की अगर हम बात करते हैं तो लोगों के मन में शनि का बहुत ज्यादा डर है और बहुत ज्यादा भय है, लेकिन मैं आप जीएनटी के माध्यम से आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि शनि जो है एक बहुत ही अच्छे कार्मिक टीचर है। तो जो लोग भी जिनको अपनी लाइफ में लगता है अपने कर्मों पर कॉन्फिडेंस है, जो शनि हमें लाइफ में क्या सिखाता है, शनि हमें लाइफ में डिसिप्लिन सिखाता है, शनि हमें लाइफ में पेशेंस रखना सिखाता है, इसके अलावा जो है शनि जो है हमें लाइफ में ह्यूमिलिटी जो है वो बहुत अच्छे से सिखाता है। तो अगर आप इन्हीं सब चीजों को फॉलो करते हैं, अपने कामों में कंसिस्टेंसी रखते हैं, शनि हमें लाइफ में हार्डवर्क करना सिखाता है, आप इन सब चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो आपको शनि से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंटेंशनली आप किसी को कभी लाइफ में हर्ट मत कीजिए। अपने कर्मास पर अगर आप लाइफ में एक बहुत ज्यादा क्लोज और खास चेक रखते हैं तो भी आपको शनि से डरने की बहुत बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब शनि जयंती का दिन है और ऊपर से शनिवार का दिन, तो यहाँ

0: पर आप देखिए कि इतने अच्छे अच्छे खास सहयोग जो है बन रहे हैं। अभी नवजोत जी आपने भी बताया, राज जी ने बताया, तो यहाँ पर जो है बुध आदित्य योग जो है ये बन रहा है। तो आज के दिन आपको कुछ खास करना है। शनि देव की मैं आपको अगर कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज बताऊं तो शनि हमेशा ये कहते हैं कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, जो भी आपके बुजुर्ग हैं। शनि एक कार्मिक टीचर है, तो बुजुर्ग आपके ताया हो गए, आपके दादा हो गए, या जो भी फादरली फिगर, जो ओल्ड वाले फिगर्स है, ग्रैंड फादर्स हो गए, और जो है आपके नाना नानी, ये सब हो गए, ग्रैंड मदर हो गई, तो इनकी अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी आप सेवा कीजिए। मैं ये मानती हूँ कि जीते जी आप जितना अपने एल्डर्स की सेवा करते हैं लाइफ में, उसका बहुत महत्व है। और स्पेशली आप पीपल के पेड़ पर दिया जो है वो आप जरूर जलाएं, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: कहते हैं कि पीपल के पेड़ में हमारे पूर्वजों का वास होता है। इस दिन पितृ तर्पण जो है वो आप जो है कर सकते हैं। शनिदेव मंदिर जाकर जो है आप वहां जो भी गरीब लोग बैठे हैं, आप उनको जरूर कुछ ना कुछ दें। उस दिन दिया जरूर जलाएं, ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। अपनी मदर के पैर छुएं, शनिदेव को अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार था। आप दशरथ कृत स्रोत का जो है पाठ कर सकते हैं। और लाइफ में जिनकी भी साढ़े साती ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतर दशा चल रही है, तो आप लोग प्लीज अपने कर्मास पर बहुत
1: जी
0: अच्छे से ध्यान दीजिए, आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो।
1: बिल्कुल, चलिए आगे आपसे जानेंगे कौन से वो उपाय हैं जो किए जा सकते हैं शनि जन्मोत्सव के दिन। लेकिन पंडित प्रकाश आपके पास आऊंगी, इसकी कथा क्या है?
2: देखिए, इसकी कथा जो है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा। इनकी कथा जो है, वैसे स्कंद पुराण के अंदर और ब्रह्म पुराण के अंदर इनके बारे में लिखा गया है। इनकी कथा के बारे में, कथा के बारे में लिखा गया है। जब शनि का, जैसे शनि अमावस्या और शनि जयंती में दोनों में अंतर होता है, ठीक
1: जी
2: है ना। शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या, शनि अमावस्या आती है, वो हर महीने आ सकती है संयोगवश, ठीक है ना। लेकिन शनि जयंती ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष के में जो अमावस्या पड़ती है, उस दिन शनि जयंती आती है और हर साल आती है। अब क्या है कि शनि जयंती एक तो आती है, उस पे शनिवार आ जाए तो कहने कहने वारे न्यारे हो गए। तो ये एक तरह का बहुत अच्छा योग उस दिन बन रहा है। साथ ही साथ ग्रह नक्षत्र में भी देखें तो बहुत अच्छा है। मंगल का रोचक योग उस दिन बन रहा है। बुध का, बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं तो बुधादित्य योग भी बन रहा है, और शुक्रदेव खुद मालव्य योग बना रहे हैं। और साथ ही साथ उस दिन, यानी 16 मई के दिन, वट सावित्री व्रत भी है। यानी कि एक तरफ पे आपका शनि जयंती भी है और शनि अमावस्या भी है, वट सावित्री व्रत भी है। और इसका जो पुराणों के अनुसार जो है, सूर्य और छाया के जो पुत्र थे वो शनि देव थे। और कहा जाता है कि पुराणों के अंदर ये लिखा है कि सूर्य देव पे भी इनकी वक्र दृष्टि हो गई थी कुछ समय के लिए। तो अपने पिता पे इनकी वक्र दृष्टि होने से, क्योंकि उनके माँ कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। तो कर्म के स्वामी कौन है? शनिदेव। जन्म पत्रिका तो हर कोई बाच लेता है, लेकिन कर्मों के स्वामी शनिदेव है। तो कहीं ना कहीं सूर्य पे इनकी वक्र दृष्टि हो गई थी, जिस वजह से सूर्य का भी जो शरीर है वो काला पड़ गया था। तब सूर्य देव ने भी अपने पुत्र यानी कि शिव के उपासक पुत्र शनिदेव की पूजा पाठ की थी, और शनि अमावस के दिन पूजा पाठ की थी, तब जाके उनकी चीजें ठीक हुई थी। इसी प्रकार से एक और वृतांत इसके अंदर आता है, राजा विक्रमादित्य, उनपे भी इनकी वक्र दृष्टि थी। गणेश जी पे भी इनकी वक्र दृष्टि थी, आप जानते ही जानते हैं, गणेश जी का दांत टूट गया था तो वहां पर भी इनकी वक्र दृष्टि थी, और राजा विक्रमादित्य पे भी इनकी वक्र दृष्टि थी। अब क्या होता है कि शनि अमावस्या, शनि जयंती के दिन आप अपने पूरे का जो कर्म आपने किए हैं, हम लोगों से कुछ ना कुछ गलतियां तो जीवन में हो ही जाती हैं, तो कुछ ना कुछ हमसे गलतियां ऐसी हो गई जिस वजह से शनिदेव साढ़े साती के दौरान, भैया के दौरान हम लोगों को कष्ट देता है। और उसके अंदर भी सबसे बड़ा कष्ट अगर देखा जाए तो वो होता है माता पिता की सेवा ना करना, गुरु की सेवा ना करना। तो ये सबसे बड़ा अपराध होता है, सबसे बड़ा कष्ट होता है। जो लोग माता पिता को कष्ट देते हैं, जो माता पिता को परेशान करते हैं, तो उनपे शनि देव बिल्कुल, उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो साढ़े साती है, बड़ी भारी होती है। इसी प्रकार से जो गुरु, जो जो आपके टीचर है, उनका सम्मान नहीं करता, उनपे भी शनि की साढ़े साती बहुत अच्छी नहीं होती।
1: बिल्कुल
2: शनि की जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी नहीं होती। तो
1: बिल्कुल
2: इसी प्रकार के हमें शनि अमावस्या में कुछ करें ना करें, एक तो अपने टीचर वेलविशर और अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए। शनि
1: बिल्कुल
2: की पूजा सार्थकता यही दिखाती है कि माता पिता की अगर आप सेवा करेंगे तो शनि की साढ़े साथी का प्रभाव आप पे नहीं आएगा, और मैंने कई बार देखा भी है।
1: बिल्कुल, चले लौटती हूँ आपके पास श्रुति खरबंदा जी, आपके पास आऊंगी। पूजा का विधि विधान क्या है इस दिन, क्योंकि कहते हैं कि सुबह नहीं शाम में पूजा की जाती है।
3: धन्यवाद नवज्योति। देखें बिल्कुल सही बात है कि सुबह नहीं शाम को पूजा करी जाती है, लेकिन पाठ और तपस्या करने के लिए ना समय नहीं देखा जाता, क्योंकि इस दिन जो मुहूर्त है या मैं कहूँ जो उस तरह के ग्रह संयोग बन रहे हैं वो इतने अच्छे हैं कि आप सुबह बैठ के भी, अगर आपको सुबह ऑफिस जाने से पहले भी समय मिले तो मैं कहूंगी कि दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें, या फिर ओम शम शनैश्चराय नमः, अगर आप ऐसा कोई पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। देखिए पूजा पाठ करने के लिए उसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले आप उस चीज को समझें। हम अपनी सीमित बुद्धि से, ज्योतिषी होने के नाते भी हम अपनी सीमित बुद्धि से जो जितनी कथाएं मिलती हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, पूजा करते हैं, और माइंडफुल होकर जब हम तपस्या करते हैं तो उसको अपने जीवन में जो है बेहतर तरीके से हम उतार पाते हैं। तो इस दिन जो है दो चीजें देखिए बड़ी चल रही है, मैंने फिर उसमें से डॉट कनेक्ट करके कुछ नया सा पैटर्न निकाल दिया। देखिए अगर आपको कुछ समझ में आए, आप सभी यहाँ पे विद्वान ज्योतिषगण यहाँ बैठे हैं, देखिए सत्यवान और सावित्री, बट सावित्री व्रत भी है इसी दिन, है ना। सावित्री जो ये शब्द है सविता से निकला है, सूर्य, ऋग्वेद में सूर्य को सविता का नाम भी दिया गया। तो सावित्री वो स्त्री जिसमें सूर्य का तेज हो, यमराज से सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई। सत्य जैसा तेज जिसमें होता है वही सूर्य समान जो है वो चमकता है। ये कुछ छोटे छोटे सिंबोलिज्म से अपने हिसाब से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम शनि देव की उत्पत्ति की बात करते हैं तो कहते हैं कि सूर्य देव की पत्नी संज्ञा जो है वो सूर्य देव का तेज नहीं ले पाई, क्या करने चली गई, तपस्या। शनि को फोकस ज्योतिष में कहते हैं कि फोकस यही रहते हैं, तपस्या करने गई, किनको छोड़ गई, छाया को। छाया के पुत्र हुए शनि, वहां डार्कनेस अगेन आ गई। तो यहाँ कहीं ना कहीं जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो एक जगह डार्कनेस है, एक जगह लाइट है, तपस्या है और तेज है। सूर्य यहाँ पे सूर्य पुत्र है शनि, वहां उस वट सावित्री की कथा में भी सावित्री जो है सूर्य से तेज वाली स्त्री है। तो इस तरह से जब आप कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लगता है कि आपको फोकस होना है और जिंदगी में बहुत तपस्या करनी पड़ती है ताकि आपकी जिंदगी में सूर्य सा जो वो तेज है वो आए। और शनि देव को ऐसा कहते भी है ना कि बहुत मेहनत करवाते हैं, कम उम्र में बड़ा कठिन होता है लोगों के लिए ना, साढ़े सती में बड़ी ट्रबल्स आती हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन बढ़ती उम्र में जब आप मैच्योर एज में आते हैं या वृद्धावस्था में होते हैं उन पे जो है शनि की मार कम पड़ती है। क्यों, आप मैच्योर हो चुके होते हैं, तपस्या कर चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं जीवन को, तो आप बड़े धैर्य से फोकस के साथ स्थिर होके जो है वो चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पूजा की, इसलिए कहा जाता है देखिए सांझ में शाम को पूजा करी जाती है, तपस्या करी जाती है। ऋषि मुनि भी रात को जागते हैं ना जब मेडिटेशन करते हैं, और अगले दिन फिर जो है सूर्य के साथ वो उठ के दुनिया को उस ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। तो इसलिए शाम को पूजा करी जाती है। और इस बार अगर आप पूजा करना चाहेंगे तो मैं कहूंगी देखिए तेल को तो हम थोड़ा सा बचा रहे हैं, आप छाया दान करें तो इस बार जल में, एक लोहे के पात्र में जल लेके उसमें चार काले तिल डाल के अपना छाया देख के फिर वो जल जो है पीपल के पेड़ को अगर अर्पित करें तो ये वाकई, क्योंकि पानी में वो एनर्जी होती है ना, कहते हैं आपकी सारी नेगेटिविटी जो है वो ले लेता है। तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ऑरा में जो भी कमी है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं वो हम देख सके और वो नेगेटिविटी निकले। तो ईश्वर से वो प्रार्थना करते हुए शाम के समय अगर पूजा अर्चना करेंगे तो ये बहुत उत्तम रहने वाला है, खास तौर पर इस बारी जब ग्रह गोचर भी इस तरह के है कि शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो समुद्र मंथन समुद्र की राशि है जिसको अगेन यू नो डीप बीनिथ डार्कनेस से कहा जाती है, तो चीजें खुल के बाहर अमृत पाने के लिए, तो मुझे लगता है शाम का समय ये बहुत अति उत्तम रहेगा और छायादान जल में जरूर करें।
1: चलिए आपकी राशि के हिसाब से भी हम आगे राज्य से जानेंगे, जिनकी साढ़े साथी चल रही, जिनकी ढैया चल रही है उनको क्या उपाय करना है वो भी आपको बताएंगे, और कौन से ऐसे दोष हैं जिनका निवारण आप इस दिन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब राजी आपसे जानना चाहूंगी। कहते हैं कि शनि मेहनत बहुत कराते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग मेहनत करते हैं और उसका फल फिर भी नहीं मिलता, क्या ये भी शनि की कोई दृष्टि है, और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिना शनि की कृपा के आपका कोई काम नहीं होगा।
4: एक बात ध्यान रखिए नवजोत जी, सबसे पहला क्योंकि काल पुरुष का जो दसवां घर जिसको कर्म का घर कहा जाता है, नौकरी का घर कहा जाता है, बिजनेस का घर कहा जाता है, कर्म फल का घर कहा जाता है, 11th हाउस को फाइनेंस का घर कहा जाता है, ये दोनों ही शनि के पास हैं काल पुरुष में। तो इस संसार का कोई भी कर्म का फल बिना शनि की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन अगर स्पेशल मैं कुछ चीजों को कैटेगराइज करने का प्रयास करूं, कुछ क्षेत्र वार में कहने का प्रयास करूं, तो सबसे पहले अगर बात की जाए, जितनी जगह पर मशीनरी का यूज होता है, मशीनरी के जो कारक हैं वो शनि हैं। जमीन के नीचे निकलने वाला जितना प्रोडक्ट है उसके कारक शनि हैं। पेट्रोलियम इत्यादि हो गया, इसके कारक हमेशा शनि हैं। नेट बोल्ट इत्यादि जितना है इसके कारक शनि हैं। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन सभी के कारक शनि हैं। लेबर वर्क जितना है उसके कारक शनि हैं। तो इन सभी क्षेत्र में बिना शनि की कृपा के रिजल्ट नहीं प्राप्त हो सकता है, ध्यान रखना चाहिए। इवन अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं, 11th हाउस के कारक हैं, तो बिना शनि की कृपा के वहां भी लाभ नहीं मिल सकता। जी
1: बिल्कुल, चलिए आगे आपसे राशियां पूछूंगी, लेकिन उससे पहले संक्षेप में जल्दी से वाना जी आपके पास आऊंगी। तीन ऐसी राशियां हैं जिन पर साढ़े साथी चल रही है, उनके लिए समय कैसा है और उनके लिए आप क्या उपाय बताएंगी एक एक करके?
0: जी, तो सबसे पहले नवजोत जी, अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो इनका साढ़े साथी का जो है वो अंतिम चरण चल रहा है, मीन राशि का जो है द्वितीय चरण चल रहा है, और वहीं जो है मेष राशि का प्रथम चरण चल रहा है, यानी कि जो इनकी साढ़े साथी है वो जस्ट अभी शुरू हुई है। तो आप लोगों के लिए मैं कहूंगी कि मीन राशि के लिए अभी थोड़ा सा टफ है। कुंभ राशि विल वेरी सून गेट अ साइन ऑफ रिलीफ स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर जून, विच इज 2027, और यहाँ पर मेष की साढ़े साथी जो है अभी शुरू हुई है। तो मैं आप तीनों राशियों के लिए सिर्फ कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि सैटर्न को अपनी लाइफ में आप कैसे एक्टिवेट करो कि जिससे जो है आपको शनिदेव के जो है कुछ भी नेगेटिव रिजल्ट ना मिले। अभी शनिदेव वैसे भी मीन राशि में है, जो कि एक मोक्ष की राशि होती है, गुरुदेव बृहस्पति की राशि होती है। देखिए, शनिदेव को हार्डवर्क पसंद है, आप जितना हार्डवर्क करते हैं, आप नॉनवेज जो है उसको जो है आप अगर बचते हैं नॉनवेज से, आप अल्कोहल से जो है बचते हैं, मांस मदिरा या कोई भी एडिक्शंस जो आपकी लाइफ में है, या आपकी किसी एडिक्शन से आपकी फैमिली इंपैक्ट हो रही है, आपकी किसी एडिक्शन से आपको हार्म हो रहा है, आपकी फैमिली को हार्म हो रहा है, शनि कहता है हार्डशिप्स स्ट्रगल, लेकिन हार्डवर्क के थ्रू, ग्रोथ थ्रू हार्डवर्क होता है शनि। तो आप जितना मेहनत करते हैं, आप जितना अपनी लाइफ में, जैसे आलस्य को जो है, अगर आप लगता है आप आलस्य को त्याग सकते हैं, आप जल्दी सुबह उठिए, आप डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, आप 8 के पैटर्न में अगर आप वॉक करते हैं, जैसे सपोज आप सुबह उठे, आप गए, मतलब आप कहीं वॉक करने जाते हैं, तो आप 8 के पैटर्न में करिए, कहीं भी आप वॉक कर रहे हैं तो ये इस तरह से आप अगर वॉक करते हैं। इन्फिनिटी सिंबल को आप अपनी लाइफ में एक्टिवेट कीजिए। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई एंड ही नहीं है, जिसका जो एक लूप में चलता है लेकिन जिसका कोई एंड कभी नहीं होता है। इसके अलावा जो है आप अपने बड़े बुजुर्गों की बहुत सेवा कीजिए, जरूरी नहीं है कि वो आपकी ब्लड लाइन हो, कोई भी हो सकता है, प्रकृति कहती है शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं सेवा से। जो आपके अंडर जो लो अंडर प्रिविलेज लोग हैं आप उनको खुश रखिए, जो आप खा रहे हैं वो आप उनको भी साथ में ऑफर कीजिए, उनको भी खिलाइए, उनको टेक केयर कीजिए, उनकी ब्लेसिंग से आप ग्रो करेंगे। आपके साढ़े साथी की जर्नी में, भैया की जर्नी में, जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रही है उनको जो है आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। शनि इज अ लॉर्ड ऑफ कार्मिक जस्टिस, तो अपने कर्मास पर बहुत ध्यान रखिए कि आपकी वजह से, आपके वर्ड्स, आपके शब्द वोकैबुलरी से कोई भी थर्ड पर्सन जो है किसी भी तरह से हर्ट ना हो, और सैटरडे को आप बिल्कुल नॉनवेज अल्कोहल ना लीजिए।
1: चलिए कुछ और उपाय ढैया और साढ़े साथी वालों के आगे जानेंगे, लेकिन पंडित प्रकाश आपके पास आते हुए जल्दी से, कौन से ऐसे दोष हैं जिनके निवारण के लिए इस दिन उपाय किए जा सकते हैं?
2: देखिए, इसमें जो दोष हैं, जैसे आप पितृ दोष का कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या है तो पितृ दोष के लिए आप जो है गंगा हरिद्वार में आप जाके ओम पितृ देवता भ्यो नमः ये मंत्र का जाप करते हुए, या वहां डुबकी लगा सकते हैं। अगर वैसा नहीं कर पाते तो समस्त तरीके के शनि के प्रकोप के लिए या शनि की बाधा के लिए, खासकर 6 राशियां हैं जिनको थोड़ा करना चाहिए, वो राशियां हैं मेष, सिंह और धनु, और आपका वृषभ, तुला और मीन राशि। ये जो 2 राशियां हैं यानी कि ये जो 6 राशियां हैं इनको क्या करना चाहिए, शनि अमावस्या के दिन या शनि जयंती कल है तो कल उड़द की दाल की खिचड़ी बना लें घर के अंदर, और थोड़ा सा जो भोग है वो कौवे को निकाल दें, पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें, इष्ट देवता के नाम से भोग लगा लें, और उसके बाद प्रार्थना करके इष्ट देव कुलदेव शनि देवता से प्रार्थना करके कि मेरे ऊपर जो भी कष्ट है, मेरे परिवार पे जो भी कष्ट है, हला वला दुख बीमारी कुछ भी है वो हमारे ऊपर से निकल जाए। तो इस प्रकार से आप जो उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई है उसको बांटे भी और स्वयं परिवार में भी ग्रहण कर सकते हैं। तो उड़द की दाल की खिचड़ी अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी रेमेडी होती है, और खासकर ये करनी चाहिए शनि अमावस्या के दिन या शनि जयंती के दिन।
1: बिल्कुल। एक उपाय श्रुति जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या किया जा सकता है इस दिन?
3: देखिए, इस दिन मैं कहूंगी कि शनि के दुष्प्रभाव जो है उनको दूर करने के लिए शाम के समय आप एक दीपक जरूर जलाएं, दक्षिण मुखी कहूंगी कि दक्षिण की ओर मुख करके अपने घर में ही, अगर आप मंदिर ना जा सके तो, वरना पीपल के पेड़ पे या शनि देव को जो है वो दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा जो है शिव जी की पूजा उपासना जो है इस दिन बहुत अच्छी मानी जाती है, ताकि आपकी सारी नेगेटिविटी, जितनी बाधाएं आ रही हैं जीवन में, क्योंकि शनि देखिए मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, और शनि उच्च के कहाँ होते हैं, तुला राशि में, जो कि संतुलन की राशि है, धर्म कांटा जहाँ पे न्याय की राशि कहते हैं। तो शनि के लिए मुझे लगता है कि जब आप ये उपाय करते हैं तो बैलेंस्ड जो सबसे अच्छा फल जो देते हैं वो वही तुला राशि के जातकों को ही देते हैं, जो लग्जूरियस लाइफ जैसे कहा जाता है ज्योतिष में कि ये लोग बहुत जीते हैं। आप बैलेंस्ड होके चलेंगे तो क्या करेंगे, देखिए उपाय के रूप में ना कि सिर्फ आप दक्षिण की ओर जो है वो एक दिया जलाएंगे सरसों के तेल में, लेकिन इसके अलावा मैं ये भी कहूंगी कि जितने भी मेहनत कश लोग हैं, कामगार लोग हैं आपके आस पास, जो भी इंडस्ट्री शनि गवर्न करता है, जैसे ऑयल इंडस्ट्री है आपका, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम वगैरह, तो जितने आपके कामगार हैं अगर आप उनकी उनकी तरफ जो है थोड़ी सेवा का भाव रखते हैं, ह्यूमैनिटेरियन संतुलित भाव रखते हैं, क्योंकि मेहनत तो शनि देता है लेकिन यहाँ पे आपको न्याय तर्क वो दोनों लगाने होते हैं, तो आपको बैलेंस रहना होता है वहां पे कि जहां जरूरत है वहां किया, जहां जरूरत है नहीं किया, स्वार्थ का त्याग भी यहाँ पर करना होता है, वो करना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। हम अक्सर जो है कहते चले जाते हैं कि आप इनकी सेवा करिए और इनकी बात मानिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है ना कि रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से चलते हैं, कभी कभी आपको माफ करना होता है, सैक्रिफाइस, हाँ तो सैक्रिफाइस कभी आपको करना पड़ता है, कभी वहां से भी चाहिए होता है, वरना संतुलन बिगड़ जाएगा और वो टूट जाएगा। तो न्याय का, जो कि तुला राशि जहाँ पे शनि उच्च के होते हैं, न्याय का उपयोग यहाँ जरूर करना है, संतुलित जो है संतुलन में चलना है, भय में नहीं आना है, ना बहुत ज्यादा यू नो होपफुल होना है, ना बहुत ज्यादा डिप्रेस होना है। ये करते हुए अगर आप एक, मैं कहूंगी ध्यान में रखते हुए, खासतौर पे जितने भी शनि से जुड़े हुए बिजनेस है, चाहे वो कबाड़ के होंगे, मेटल्स के होंगे, ऑयल के होंगे, वो लोग अगर ये ध्यान करते हुए जो मेहनत कश कामगार लोग हैं उनको बैलेंस करके अपने आसपास चलेंगे, आपके घर में भी जो हाउस हेल्प आती है अगर आप उनके साथ उनकी सेवा कर दें, उनको कुछ दान कर दें, या अपनी टीम को फोकस में रखना अपने हाथ में बड़ी विजन के, वो एक बैलेंस बना के अगर आप चलते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी दक्षिण की ओर एक दीपक जरूर जलाना, सरसों के तेल में चार काले तिल।
1: ठीक है, लौटूंगी आपके पास कुछ और उपायों के लिए, लेकिन राजमिश्रा जी चलिए राशियों की शुरुआत करते हैं। पहली 3 राशियां इस दिन क्या उपाय वो कर सकते हैं ताकि शनि की कृपा उनको मिले?
4: जी बिल्कुल, मेष राशि के लिए बहुत शानदार समय है। मैं कह सकता हूं कि शनि का पूजन आपके स्वास्थ्य में आ रही बहुत दिन की दिक्कतें दूर करने वाला होगा। इस बार शनि अपने जन्म दिवस पर आपके स्वास्थ्य का बेहतरी का आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, समाज में आपके इंप्रेशन को सुंदर बनाने के लिए तैयार हैं। बस आपको करने की क्या आवश्यकता है कि शनि देव पर तिल का तेल ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना है और श्रद्धा से शनि देवता को प्रणाम कर लेना। राशि वृष को लेकर के बात कर लेते हैं, शनिदेव आप पर क्या कृपा करने जा रहे हैं? शनिदेव कहते हैं कि अगर इस बार आप मेरे जन्मदिन पर मेरी आराधना करेंगे तो आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो मामले हैं उसमें मैं बचा लूंगा, वहां पर आपको न्याय दिलवा दूंगा। विदेश में अगर आप रह रहे हैं, आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज हैं, या विदेश आप जाना चाहते हैं, गांव से, जिला से, प्रदेश से बाहर निकलना चाहते हैं या नींद की समस्या से जूझ रहे हैं या बेकार का खर्च बहुत अधिक हो रहा है, तो मैं अपनी कृपा से इन सभी चीजों में आपको बेहतर फल प्रदान करूंगा। लेकिन आपको करना क्या होगा, उड़द की दाल चढ़ाना होगा। ध्यान रखिएगा, उड़द नहीं, उड़द की दाल, ताकि वो व्हाइट जो पार्ट है उड़द का वो भी साथ में दिखता रहे। छिलका जरूर होना चाहिए, लेकिन उड़द की दाल अगर अर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। राशि मिथुन के लिए शनिदेव कहते हैं कि इस बार आप मेरी आराधना मेरे जन्मदिन पर श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो मैं आपके घर में धन की वृद्धि कर दूंगा, आर्थिक परिस्थिति अच्छी कर दूंगा। अब क्या क्या उसमें अच्छा हो जाएगा, शेयर मार्केट की बात की जाए, लॉटरी सट्टा की बात की जाए, या बहुत दिन से आपको लगता था कि आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, नीला वस्त्र ले जाकर कि नीलांबर धारी नाथ भैंसे की सवारी, ये शनिदेव की आरती में है, ले जाकर के शनिदेव को अर्पण करेंगे। मैं निश्चित कह सकता हूं कि शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। जी नौ
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए राज जी।
4: मैं कर्क राशि ले सकता हूँ?
1: नहीं नहीं, हम अगली राशियों की बात आगे करेंगे। पहली तीन राशियों की हमने बात की, मेष, वृषभ और मिथुन की बात की है, बाकी राशियों का जिक्र आगे करेंगे। साढ़े सात ही ढैया और जिन और क्या क्या उपाय कर सकते हैं, किस समस्या के लिए क्या विशेष उपाय हो सकता है, ये सब जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: है शनि जयंती की महिमा क्या है शनि देव का पूजा विधान शनि जयंती पर कैसे होगा समस्याओं का समाधान जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में
2: शनि दिलाएंगे राजयोग शनि जन्मोत्सव पर आप क्या उपाय कर सकते हैं ये जान रहे तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए ब्रेक पर जाने से पहले पहली तीन राशियों का जिक्र किया था अगली तीन राशियां कर्क सिंह कन्या राजमिश्रा जी
3: नवजोत जी शनिदेव कहते हैं कि इस बार अगर मेरे जन्मदिन पर कर्क राशि वाले आराधना करेंगे तो मैं उनको क्या प्रदान करूंगा सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ को इस बार शनिदेव सुंदर बनाना चाहते हैं आपको उनकी श्रद्धा से आराधना करनी है आपकी नौकरी आपका बिजनेस आपका प्रमोशन आपका नई नौकरी प्राप्त करना रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ जो भी हार्डल्स आ रहे हैं जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको दूर करने का सबसे सुंदर तरीका सबसे सुंदर समय आपको मिलने जा रहा है शनिदेव के जन्मदिवस पर क्या करेंगे कर्क राशि वाले क्या कैसे ठीक किया जा सकता है सबसे पहले चीज नारियल आप सभी लोग देखते हैं जटा वाला जो नारियल हम लोग कलश पर यूज करते हैं उस नारियल पर मोली बांध करके भगवान शनिदेव के आगे जाकर के श्रद्धा पूर्वक आपको चढ़ा देना है और प्रणाम कर लेना है आप पर शनिदेव की कृपा निश्चित रूप से होगी राशि सिंह की बात कर लेते हैं जहां पर आपका इस बार शनिदेव की पूजन से शनिदेव कहते हैं कि मैं आपके भाग्य को खोल दूंगा आपके भाग्य की वृद्धि कर दूंगा आपका धर्म इत्यादि में मन लगा दूंगा तो यदि आपको भी बार बार ये विचार आता है कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है मुझे वो नहीं मिल रहा है जिसको मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं यहां बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितने भी अपने भाग्य को लेकर के चिंताएं हैं जितना भी आपको शिकायत है भगवान से और भाग्य से उसको शनिदेव के सामने इस बार प्रार्थना करने से वो शिकायतें दूर हो जाएंगी लेकिन उसके बदले में करना क्या होगा सरसों का तेल शनिदेव को श्रद्धा पूर्वक आपको जाकर के चढ़ाना होगा सरसों का तेल प्राप्त करके शनिदेव आपके कर्म को बेहतर बनाने का आशीर्वाद आपको प्रदान करने जा रहे हैं राशि कन्या की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर शनिदेव कहते हैं कि यदि इस बार आप मेरी पूजा करेंगे तो मैं घर का सुख और आपके घर में सुख प्रदान कर दूंगा आपने कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि किया है वहां आपका पैसा फंस गया है तो मैं उसकी वृद्धि करा दूंगा कर्ज उतार दूंगा बैंक बैलेंस इत्यादि बेहतर हो ऐसा आशीर्वाद दे दूंगा लेकिन आपको क्या करना होगा भगवान शनिदेव को नीला वस्त्र जरूर अर्पण करना होगा नीला वस्त्र अर्पण करने से शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी जी नवजोत
2: बिल्कुल बाकी राशियों का जिक्र आगे लेकिन वान्या जी आपके पास आते हुए जो राशियां जिन पर ढैया चल रही है उनको क्या करना है ग्रह गोचर के हिसाब से
4: थैंक यू नवजोत जी तो अभी सिंह राशि और धनु राशि जिन पर भी शनि की ढैया चल रही है ढैया इज अ पीरियड ऑफ ढाई साल एक ढाई साल का एक पीरियड होता है तो आप लोगों को क्या करना है इस पूरे ढाई साल में आप जितना कठिन परिश्रम करते हैं कठिन मेहनत करते हैं ओम प्राम प्रेम प्रोम सा शनिचराय नमा का आप जाप करते हैं ओम शंख शनिचराय नमा का अगर आप जाप करते हैं आप रेगुलर जो है शनि मंदिर जाते हैं एवरी सैटरडे और अगर आपके लिए नहीं पॉसिबल है तो आप अपने ही घर में शांत मन से बैठकर शनि चालीसा जो है आप जरूर कर लें इसके अलावा जो है आप जो है अभी जो है जब आप शनिवार के दिन जो है आपने क्या करना है अपने घर के चौरा मतलब घर के मेन एंट्रेंस पर जो है आपको एक चौमुखी दीपक जो है आज के दिन जो है आपको जलाना है ये आपके लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है कुछ गरीब लोगों को आप जरूर कुछ जो है देकर आए। आप सात मुखी रुद्राक्ष जो है वो भी आप धारण कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपके कुंडली में शनि की पोजिशन जो है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो है आप अपनी लाइफ में सैटर्न को एक्टिवेट करते हैं, तो आप किसी भी मीटिंग में जहां आपको जाना है 10 बजे वहां आप 9:50 पर पहुंचिए। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी को जो है अपनाइए। काली उड़द का दान कर सकते हैं, चाय पत्ती का दान कर सकते हैं। शनिदेव के मंदिर पर जो है सेसमे सीड्स, जो ब्लैक सेसमे सीड्स होते हैं, आप उनको पर उसमें डाल के दीपक जला सकते हैं। शिवलिंग पर आप जल चढ़ा सकते हैं। कहते हैं साढ़े साती या ढैया में जो भी इवेंट्स आपके जीवन में नहीं भी हुए होते तो उसका डर जो है हमें अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लगता है। तो साढ़े साती और ढैया वालों को मैं बोलूंगी कि प्लीज आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इल्यूजन्स इस टाइम पर बहुत ज्यादा होते हैं, वो इवेंट्स का डर होता है जो कभी होंगे भी नहीं, लेकिन साढ़े साती और ढैया आपको डराती है। आपके कर्म अच्छे हैं, आप बिल्कुल भी मत डरिए, पॉजिटिव रहिए और दूसरे लोगों को भी आप जितना पॉजिटिव करते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। मेहनत कीजिए और माँ वसुंधरा की ब्लेसिंग्स जो है, क्योंकि शनिदेव जमीन से जुड़े हुए वस्तुओं का कारक है, तो माँ वसुंधरा की ब्लेसिंग लीजिए और धरती माता को जो है साफ रखिए और अर्थ एलिमेंट को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करिए और प्राणायाम जो है वो जरूर कीजिए क्योंकि इसका कनेक्शन वायु तत्व से है।
2: बिल्कुल पंडित प्रकाश, आपके पास आते हुए कार्य में बाधा भी क्या शनि की कृपा अगर ना मिले उस वजह से आती है?
5: कार्य में बाधा और दूसरी चीज ये कि शनि से ना हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दो चीजें होती है जीवन के अंदर, पहला होता है व्यक्ति का अपना टैलेंट और एक होता है किस्मत। अब क्या होता है जब भी शनि की साढ़े साती चलती है या शनि की का इफेक्ट पड़ता है साढ़े साती ढैया के रूप में, ऐसे में क्या हो जाता है कि शनि उसको टेक ओवर कर लेता है आपकी कुंडली को, तो आपके जितने भी राजयोग हैं, जितना भी लक योग है, जितना भी सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं शनि के द्वारा उसको टेक ओवर कर लिया जाता है, जिस कारण जो वही व्यक्ति याद रखिएगा व्यक्ति को कार्य करने में एक तो कठिनाई होती है, साथ ही साथ वही व्यक्ति जीत पाता है जो अनुशासन में चलता है, जिसके अंदर टैलेंट होता है। तो शनि की जब भी साढ़े साती चलती है तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि राजा भी बने, अभी शुभेंदु अधिकारी बंगाल के बने, उनके ऊपर भी शनि की साढ़े साती है। एक तरफ से ममता जी है तो ममता दीदी की भी शनि की ढैया चल रही है तो वो हट गई। तो कहने का मतलब है कि शनि उत्तराधिकारी को देता है, शनि आदमी को कुंदन को तपाता है, तपाने के बाद सोना आपको बनाता है। यानी कि अगर शनि आपके ऊपर आ गए हैं और आपको बहुत ज्यादा कष्ट जीवन में चल रहा है शनि की साढ़े साती शनि की के ढैया के दौरान, तो समझ लीजिए कि शनि चाहता है कि आप कठोर हो जाएं क्योंकि जीवन में आगे चल के आप कामयाब हो गए। जो ये 2.5 साल, जो ये 7.5 साल आप जो मेहनत करेंगे, जो आप अच्छा सीखेंगे, जो आपके साथ विश्वासघात होगा यकीन मानिए ये जीवन भर काम आने वाला है। तो शनि की जब भी साढ़े साती लगती है, ढैया लगती है, व्यक्ति जीवन भर उससे सचेत रहता है और जीवन में कामयाबी का रास्ता यहीं से खुलता है।
2: बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली तीन राशियों की बात कर लेते हैं। तुला वृश्चिक धनु राज जी,
3: तो शनि इस बार कहते हैं कि यदि आप उनके जन्मदिन पर उनकी आराधना करेंगे तो शनि आपको क्या प्रदान करेंगे। शनि कहते हैं कि मैं एक तो आपको विवाह का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, यानी अगर विवाह नहीं हो रहा है तो आपका विवाह शनिदेव की आराधना से हो जाएगा, शनिदेव अपना आशीर्वाद देकर के आपका विवाह करवा देंगे। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है तो शनिदेव उस समस्या को दूर करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ श्रद्धा से आप उनकी शरण में जाइए। जीवन साथी के जीवन में प्रॉब्लम चल रही है और आप उसको लेकर के चिंतित हैं कि उनके जीवन की समस्या दूर हो जाए, तो उसके लिए इस बार शनिदेव के पास जाइए, वो आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। शनिदेव इन समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार हैं, समाज में आपके इंप्रेशन को बेहतर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा। शनि का वैदिक और पौराणिक दोनों मंत्र है, वैदिक मंत्र जप करना साधारण व्यक्ति के लिए मुश्किल है, लेकिन पौराणिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, इस मंत्र का कोई भी जप कर सकता है, उनके सामने जाकर कीजिए, लाभ होगा। राशि वृश्चिक पर आगे चलते हैं, जहां पर शनिदेव स्वास्थ्य में आपके लाभ देने के लिए तैयार है। कहते हैं कितनी भी मुश्किल बीमारी होगी जिसका इलाज आप नहीं ढूंढ पा रहे होंगे, बीमारी नहीं पकड़ में आ रही होगी, मैं सब कुछ दुरुस्त करने के लिए तैयार हूं, आपको रोग मुक्त करने के लिए तैयार हूं, आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से निजात दिलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको क्या करना होगा, काले रंग की मिठाई, गुलाब जामुन इत्यादि या कोई भी मिठाई जो काले रंग की है, वो ले जाकर के श्रद्धा से शनिदेव के सामने चढ़ा दीजिए। और जो भी आपने अपने जीवन में कर्म किया है, यदि याद है कोई पाप कर्म, तो उसको याद करके क्षमा मांगिए, नहीं तो बोलिए जाने अनजाने में जो भी भूल उसको क्षमा कीजिए, शनिदेव कृपा करेंगे। राशि धनु की अगर हम बात कर लेते हैं, शनिदेव कहते हैं संतान का सुख, संतान से सुख, और संतान के जीवन में यदि कोई कष्ट है तो उसका निवारण मैं करने के लिए तैयार। धनु राशि के लिए शनिदेव का कहना है कि आपके विद्या अध्ययन में आ रही प्रॉब्लम को दूर करूंगा, संतान के जीवन में आ रहे कष्ट को दूर करूंगा, आपको संतान निश्चित रूप से प्रदान करूंगा, शेयर मार्केट इत्यादि से आपको लाभ दिलाऊंगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, एक सूखा गोला ला करके, नारियल का जो सूखा गोला जो हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं हवन में, उसको ले जाकर के शनिदेव को श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर देना होगा। तो बस सिर्फ श्रद्धा से साधारण उपाय कर लीजिए, शनिदेव सदैव कृपालु हैं, कृपा करते हैं, आपको सिर्फ आवश्यक है श्रद्धा से उनके शरण में जाने की।
2: जी चलिए श्रुति जी आपके पास आती हूँ, धन की स्थिति को ठीक करने के लिए एक उपाय बताइए, क्या किया जा सकता है शनि जन्मोत्सव के दिन?
4: देखिए शनि जन्मोत्सव के दिन ग्रह गोचर को देखते हुए कि सूर्य बुध जो है, बुध अस्त है और ये दोनों जो है वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं और शनि जो है मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और जो इसी दिन जो है अपना नक्षत्र भी बदल रहे हैं, तो मुझे लगता है धन वृद्धि के लिए, कि आपने सवाल इतना अच्छा पूछा है क्योंकि इसी दिन वो ऐसे ग्रह के नक्षत्र से गोचर करेंगे पूरे एक साल के लिए, जो कि धन का आवागमन जितना लिक्विड कैश केंद्र है उसको रूल करता है। करना क्या है, शनि की चीजों को ना बेसिकली लाइफ में अवॉइड करता है, काला रंग ज्यादा अवॉइड करता है। अगर आप साढ़े सती या ढैया या अष्टम शनि किसी से मतलब पीरियड से सैटर्न के जो है आप उसकी दशा भुक्ति में अगर आप चल रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि शनिवार के दिन जब आप स्नान करते हैं तो पानी में थोड़ा सा सुरमे का एक टुकड़ा, पत्थर होते हैं सुरमे के, अगर आप वो डाल के जो है स्नान करेंगे और उसके बाद उस पत्थर को कचरे में फेंक देंगे, तो वो जो है आपकी ऊर्जा में जितनी भी नकारात्मकता है, जो प्रभाव है, जो नेगेटिव प्रभाव है, उसको दूर रखने में मदद करेगा। और शनिवार के दिन जो है वो बाहर जाकर जितने मेहनत कश लोग हैं जो भी आपके आसपास हैं उनको कुछ ना कुछ दान जरूर करके आइए। धर्म में तो देखिए अक्सर कहा जाता है कि काले कपड़े हैं या बैंगन की सब्जी या चना जो है उसका कुछ सात्विक प्रसाद बना के जो है आप उनको जरूर उसमें वितरण करें, ये जरूर है। लेकिन अगर आप ये नहीं भी करते हैं तो भी अगर आप कुछ भी मीठा आप दान करके आते हैं तो ये भी जो है आपके लिए एक बहुत एंटी डिप्रेसिंग एक्सरसाइज जो आपको अपने लिए करनी है, ताकि धन का आगमन जो है वो लगातार बना रहे। पश्चिम दिशा में घर की कोई कूड़ा कबाड़ अगर कोई बंद घड़ी या कुछ ऐसा रखा है तो उसको तुरंत वहां से हटा दीजिए, ये एक साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण।
2: चलिए आखिरी तीन राशियां जल्दी से जान लेते हैं राजभूषण जी।
3: अगर मैं राशि मकर की बात करता हूँ, शनिदेव कहते हैं कि इस बार यदि मेरी पूजा करेंगे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड आशीर्वाद आपको दे दूंगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। लेकिन करना क्या होगा, खिचड़ी बना करके आपको श्रद्धा से मेरा भोग लगाना होगा। बड़ा साधारण उपाय, खिचड़ी बनाइए, लगाइए और अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाइए। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि, और शनिदेव कहते हैं भाई आप अगर एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, नेगेटिविटी में हैं, फोबिया में हैं और आपके लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, तो सब कुछ मैं दूर करने के लिए इस बार तैयार हूं, बस श्रद्धा से आपको उनकी शरण में जाना, ये सारी दिक्कतें दूर कर देंगे शनिदेव, ये उनका वादा है। लेकिन क्या करना होगा, लोहे की कोई भी वस्तु, लोहे की कील, लोहे का चाकू, कोई भी लोहे की वस्तु ले जाकर के शनिदेव को श्रद्धा पूर्वक आपको अर्पण करना होगा। राशि मीन के लिए शनिदेव का आशीर्वाद है कि परिवार में जितनी दिक्कतें चल रही हैं उनको मैं दूर करने के लिए तैयार हूं, इंटरव्यू इत्यादि में सफलता नहीं मिल रही है तो उसको दूर करने के लिए तैयार हूं, आपके शब्दों में मिठास लेकर के आने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको क्या करना है, एक मिरर मुझे प्रदान करना है, एक शीशा मुझे प्रदान करना है, एक शीशा लीजिए, शनिदेव ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर दीजिए, और जो भी आपके जीवन की कामना अपने परिवार घर के लिए है उसके लिए श्रद्धा से कीजिए, निश्चित रूप से दूर होगा, आपका जीवन सुखमय होगा, शनिदेव की कृपा होगी। जी नवजोत,
2: ठीक है, एक जल्दी से उपाय पंडित प्रकाश आपके पास आते हुए, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व बताया गया है। एक साधारण सा दान जो हर कोई कर सकता है, जिसमें राशि देखने की जरूरत नहीं है, ढैया साढ़े साथी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है।
5: जी, आप एक साधारण सा दान कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 8 रुपए के सिक्के ले लीजिए और 1.25 किलो उड़द की दाल ले लीजिएगा साबुत, और 8 रुपए के सिक्के आप लेके और दोनों को अपने पास रखिएगा, काले कपड़े में बांध के अपने ऊपर से और अपने परिवार के ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज 7 बार उतार दीजिए सारे के सारे सदस्य। और उसके बाद किसी मजदूर को, किसी कर्मचारी को अगर आप दान दे सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। तो अगर आप ये उपाय अगर कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत, कोई भी अला बला या कोई भी दिक्कत है वो आपकी निकल जाएगी। इसके लिए आपको 1.25 किलो उड़द की दाल लेनी है और 8 रुपए के सिक्के। साथ ही साथ अगर ये तो मैंने बताया, साथ ही साथ आप शनि जयंती के दिन शनिदेव की 8 पत्नियां हैं उनका नाम भी आप ले सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं जो उनकी 8 पत्नियों का नाम है, ध्वजनी धामनी चैवा कंकाली कलाह प्रिया और कंठ की तुरंगी महिषी अजा, ये इनकी 8 पत्नियां हैं। इनका नाम आप किसी भी कागज, किसी भी बोर्ड पे लिखकर आप अपने सराहने के नीचे रखेंगे, अपने बेडरूम में रखेंगे तो प्यार बढ़ेगा, अपने बच्चे के 8 आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं पर इनकी 8 पत्नियों के नाम, और वो आप काले पेन से या लाल पेन से किसी भी कोरे कागज पे लिख के आप बच्चे के सराहने के नीचे रखेंगे तो उनकी विद्या बढ़ेगी। किसी की साढ़े साथी चल रही है, किसी की ढैया चल रही है तो वो अपने पास रखेंगे या अपने सिराने के नीचे या अपने पॉकेट में रखेंगे तो वहां भी इनको लाभ मिलेगा। तो ये दो सरल उपाय,
2: छोटे से सरल उपाय हैं, कीजिए शनि जयंती के दिन और इस दिन मिलेगी फिर शनि की कृपा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से
2: एक बार फिर फ्राइडे आया है और इस बार ये शुक्रवार लाया है फिल्मों की लंबी फहरिस्त. पति पत्नी और वो पार्ट 2 से टकराएगी आखिरी सवाल. तो ओटीटी पर धुरंधर दिखाएगी कमाल. कौन सी फिल्म पड़ेगी किस पर भारी, चलिए जानते हैं.
6: आज से हो रही है वीकेंड की शुरुआत और ये वीकेंड अपने साथ लेकर आया है एंटरटेनमेंट की भरमार. बॉक्स ऑफिस से लेकर ओटीटी तक आज कई बड़े सितारे मेगा बजट फिल्मों के साथ फैंस का दिल जीतने आ रहे हैं. पति पत्नी और वो दो, सबसे पहले बात हंसी का फुल डोज लेकर आ रही आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो पार्ट 2. ये फिल्म कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर है. फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वमिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह जैसे सितारे हैं. यानी ग्लैमर के साथ साथ फुल और एंटरटेनमेंट का डबल नहीं ट्रिपल डोज मिलने वाला है. इस फिल्म में आयुष्मान तीन तीन हीरोइंस के साथ इश्क फरमाते नजर आ रहे हैं. ऐसे में जाहिर है कि तीन हीरोइंस के बीच फुल ड्रामा और कंफ्यूजन होने वाला है. फिल्म का एक और हाई पॉइंट है विजय राज, जिनके दमदार एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग से हर कोई वाकिफ है. ये फिल्म साल 2017 में आई हिट फिल्म पति पत्नी और वो का सीक्वल है. पिछली फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला था, ऐसे में इस बार भी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं. आयुष्मान की इस जबरदस्त कंफ्यूजन को टक्कर दे रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त. आज संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल पर्दे पर रिलीज हो रही है, जिसके बाद संजू एक बार फिर पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरने को तैयार हैं. पहले ये फिल्म 8 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट में देरी की वजह से इसकी रिलीज डेट को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया। ये फिल्म आरएसएस की 100 सालों की यात्रा और उसकी सोच कैसे बदली, इस पर आधारित है। इस मूवी में संजू बाबा के साथ समीरा रेड्डी, अमित साध और नीतू चंद्रा ने अहम किरदार निभाया है। बॉक्स ऑफिस के साथ संजू बाबा ओटीटी पर भी छाएंगे। उनकी रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 सिल्वर स्क्रीन के बाद आज से ओटीटी पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। धुरंधर 2 को सिनेमा घरों में रिलीज हुए 56 दिन हो चुके हैं। इस फिल्म ने इस दौरान धुआंधार परफॉर्म किया और छप्पड़ फाड़ कमाई की। अब आदित्य धर निर्देशित ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है और फिर रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप के लिए तैयार है। लंबे समय से चर्चा का विषय रही एक्टर सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म कर्तव्य भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। क्राइम थ्रिलर कर्तव्य में सैफ अली खान एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी और परिवार की सुरक्षा के बीच फंसे हुए हैं। इसमें रसिका दुग्गल और संजय मिश्रा ने भी अहम रोल प्ले किया है। ये फिल्म शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है। यानी इस वीकेंड आपके मनोरंजन के लिए बॉलीवुड का भरपूर मसाला मौजूद है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दर्शकों को कौन सी फिल्म पसंद आती है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
8: Jack, you're killing me.
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
9: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.

0: ना आदि ना अंत, ताकत है अनंत। देसी तकनीक से तैयार महाशक्ति वाला हथियार, भारत ने बना लिया भविष्य का ब्रह्मास्त्र। देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में, और चर्चा में चर्चे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कान फिल्म फेस्टिवल के हो रहे हैं, और आज उसकी चर्चा भी हम करेंगे क्योंकि हिंदुस्तानी छाए हुए हैं। आलिया के बाद अब कल्याणी प्रदर्शन ने भी अपना जलवा बिखेरा, तो वहीं कृष्ण भक्ति में रमी आरती क्षेत्रपाल ने भी कान की महफिल लूटी है। तो कैसे कान्स में नजर आ रहा है हिंदुस्तान का रंग, इसकी तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे।
8: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए कान की तो बात हम करेंगे, लेकिन बात हम रणवीर की भी करेंगे, जो कि रामायणम में भगवान राम के किरदार में नजर आने वाले हैं। उन्होंने इस रोल के लिए केवल भगवान की सौम्यता को ही नहीं अपनाया, बल्कि राम का शहर भी अपना लिया है। कहा जा रहा है कि अब रणवीर भी अयोध्यावासी हो गए हैं। कैसे, ये पूरी खबर आपको आज बताएंगे।
7: नमस्कार, मैं गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात मौसम की भी करेंगे, जिसका अंदाज तूफानी बना हुआ है। दिन में तेज धूप होती है, देर शाम होते होते तमाम शहरों में आंधी बारिश का दौर जारी है। तो आज समझेंगे कि मौसम को आखिर हुआ क्या है, और आने वाले दिनों के लिए कैसा रहने वाला है देश के मौसम का मिजाज, इसकी बात करेंगे।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो देखिए आगे बात देश के बचत सत्याग्रह की भी हम करेंगे, और आपको दिखाएंगे छोटी छोटी बचत के कैसे बड़े बड़े जुगाड़ जो हैं वो खोजे जा रहे हैं, कैसे पेट्रोल डीजल के बजाय ईवी पर शिफ्ट हो रहा है मंत्रियों का काफिला, और कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बैलगाड़ी से निकली है बारात। ये सारी तस्वीरें आपके सामने होंगी, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्द मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मॉनसून, समय से पहले दस्तक दे रहा मॉनसून। बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता। अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी, द सरयू प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़े सैलानी, आध्यात्मिक यात्रा के साथ पहाड़ों की सुंदरता का उठा रहे लुत्फ। चीन सीमा से सटे खूबसूरत देवताल का नजारा बना आकर्षण का केंद्र। केदारनाथ धाम में बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए अच्छी खबर, दर्शन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, मंदिर समिति ने जारी किए निर्देश। अबुधाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पहुंचकर यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को लगाया गले, डिफेंस, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कई अहम समझौते। कान फिल्म फेस्टिवल में लगा पंजाबी तड़का, पंजाबी मॉडल और अभिनेत्री रूपी गिल की तस्वीरें वायरल, सफेद आइवरी सूट, डायमंड और एमरल्ड ज्वेलरी में दिखा ग्लैमरस अंदाज। मच अवेटेड कॉमेडी फिल्म वेलकम 3 का टीजर रिलीज, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और सद्वारसी सहित 34 बॉलीवुड सितारे लगाएंगे हंसी का तड़का। 26 जून को सिनेमाघरों में आएगी वेलकम टू द जंगल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
8: चलिए चाय पर चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की, लेकिन आज भी बात सिर्फ और सिर्फ कान फिल्म फेस्टिवल की। रेड कार्पेट लगा हुआ है और शानदार एक के बाद एक बॉलीवुड के सितारे जिस तरह से वहां पर धमाल कमाल कर रहे हैं, वाकई पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है और तारीफ के पुल बांध रही है। अभी तक आपको शगुफ्ता अगर आप कहें, अब भाई दिन बढ़ते जा रहे हैं, आलिया की तारीफ तो हमने बहुत कर दी, लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी अब वो दूसरी एक्ट्रेस है जिसका लुक आपको बहुत अच्छा लगा वहां?
12: Can I say आलिया अगेन for the number of time, infinity times, but again, खेत्रपाल की तस्वीरें भी आई हैं, उन्होंने वृंदावन की वो पेंटिंग्स और कृष्ण की तस्वीरें उस पे, हाँ, कृष्ण भक्ति में डूबी हुई नजर आई है, मुझे वो बहुत प्यारा लगा। मुझे ऐसे लगता है कि देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करने का ये अनूठा सा तरीका है और कान प्लेटफॉर्म तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट।
13: देखिए एक चीज हमें यहाँ पर तारीफ करनी होगी हमारे तमाम डिजाइनर्स की, जिन्होंने तमाम ड्रेसेस बनाए, चाहे वो किसी भी एक्ट्रेस की रही हो, आलिया के 5 लुक्स आपने देख लिए, उन्होंने हिंदुस्तान की कल्चर संस्कृति को वहां पर रिप्रेजेंट किया है। मुझे रूपी गिल का डिजाइन बहुत पसंद आया, कल भी हमने उसकी चर्चा की थी, उन्होंने एकदम पंजाबी एंड फ्यूजन तड़का वो दिया है। देखिए कैसे उन्होंने, पता है आपको पुराने जमाने में ना हम लोग, आई स्टिल रिमेम्बर, हमारे यहाँ ना शरारा गरारा टाइप पहना जाता था, तो उसकी चोली इतनी लंबी होती थी, उन्होंने बिल्कुल वैसी चोली पहनी, नीचे स्कर्ट और उसके नीचे जरदोजी वाली सलवार और फिर उस पर जो जरदोजी टांका है।
8: अगर हम सादी सा दिखा भी सके, अगर हम उस लुक को दिखा सके तो मुझे लगता है कि चर्चा और इंटरेस्टिंग होगी, लोग समझ भी पाएंगे कि एग्जैक्टली हम किस लुक की बात कर रहे हैं, तो जरा वो भी दिखाएं और बताएं।
13: आपने उनका नेकलेस अगर देखा हो तो एमरल्ड का नेकलेस है उनका बिल्कुल, और उनका आई थिंक उनकी ड्रेस उन्होंने ही डिजाइन, सेम डिजाइनर जो लास्ट ईयर शायद दिलजीत की डिजाइनर थी, सेम डिजाइनर है, तो लास्ट ईयर दिलजीत महाराजा पटियाला के लुक में आए थे और इस बार।
8: और अभी रूपी गिल के बारे में ये भी है कि चूंकि उनकी फिल्म आ रही है चर्दी का, वो रिलीज होने वाली है, इसीलिए कल जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि उनके हाथ में जो स्लीव्स है उसमें उन्होंने लिखा था, तो वो इस वजह से भी है क्योंकि अपनी फिल्म को वो प्रमोट भी कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ खेत्रपाल की जो इन्फ्लुएंसर है वृंदावन की रहने वाली है,
12: बहुत सुंदर,
8: अमेजिंग, मुझे लग रहा है कि उनका बहुत ही अमेजिंग, मतलब पूरा वृंदावन अगर आप उनको देखेंगे ना, पूरा वृंदावन उनके लहंगे में नजर आ जाएगा, और वृंदावन यानी कि वो कुंज गलियां वृंदावन की, अगर हम वृंदावन की बात करते हैं तो कुंज गलियां वो नजर आएंगी आपको, समय के जो मंदिर है छोटे छोटे मंदिर वो नजर आएंगे, और कृष्ण भक्ति में अगर उनके गले में आप देखेंगे तो हरे राम हरे कृष्ण लिखा हुआ वो है, और साथ ही साथ वो कृष्ण की पोटली जो होती है जिसपे आप माला जप करते हैं, यूजुअली लोग जप करते हैं, वो पोटली लिए हुए, यानी कि पूरा हिंदुस्तान आध्यात्म लपेटे जो वो दिख रही है, दैट वॉज

0: महान आध्यात्म लपेटे जो वो दिख रही हैं, दैट वाज अमेजिंग. आपसे
1: मैं सम अप करूंगी क्योंकि मुझे लगता है आरती खेत्रपाल ऑब्वियसली जिस तरीके से उन्होंने संस्कृति को प्रदर्शित किया, आलिया भट्ट क्योंकि कॉन्स्टेंटली जिस स्टैचर की वो सेलिब्रिटी है, भारत की संस्कृति झलकती थी उनके तमाम आउटफिट्स में, और साथ ही में रूपी गिल तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी. आपने मुझे कल उनके लुक्स दिखाए और मुझे लगता है अपनी जड़ों को साथ लेकर इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब आप आते हो ना, तो देशभक्ति की जो भावना होती है वो झलकती है, और हम ये कहते हैं अपने आउटफिट्स के जरिए दैट वी लव आवर कंट्री.
0: एग्जैक्टली, और वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ आवर कंट्री और यहाँ के कल्चर से. आप भी देखिए तस्वीरें.
2: कैन के रेड कार्पेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर नहीं, भारतीय सिनेमा संस्कृति और स्टाइल का शानदार संगम भी देखने को मिला. जहां एक ओर सितारों ने अपने फैशन से दुनिया का ध्यान खींचा, तो वहीं कुछ चेहरों ने अपनी मौजूदगी से भारतीय पहचान को भी खास अंदाज में पेश किया. तारा के बाद अब कैन के मंच पर मलयालम सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन ने भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई. फिल्म लोका से देश भर में पहचान बनाने वाली कल्याणी ने कैन 2026 में अपने पहले ही अपीयरेंस से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. फ्रांस के खूबसूरत शहर में सजे इस भव्य फिल्म महोत्सव में कल्याणी का अंदाज बेहद शालीन, क्लासी और इंटरनेशनल फैशन से भरपूर नजर आया. जैसे ही उनकी तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी सादगी और एलिगेंस की खूब तारीफ शुरू कर दी. और अब आपको दिखाते हैं कैन फिल्म फेस्टिवल में सनातन की झलक. जब रेड कार्पेट पर हाथ में गीता और गले में तुलसी माला लिए पहुंची ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगर आरती खेत्रपाल, कैन जैसे ग्लोबल मंच पर आरती ने सिर्फ फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था को भी पूरे गर्व के साथ पेश किया. गोल्डन शेड के कस्टम मेड लहंगे में नजर आई आरती के आउटफिट पर वृंदावन की खूबसूरत झलक देखने को मिली. मंदिरों, आध्यात्मिक स्थलों और कृष्ण भक्ति से सजे इस लहंगे ने रेड कार्पेट पर हर किसी का ध्यान खींच लिया. देसी अंदाज और आध्यात्मिक संदेश का ये अनोखा मेल लोगों को काफी यूनिक लगा. मलयालम भट्ट तो लगातार अपने फैशन स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियों में बनी ही हुई हैं. रेड कार्पेट से लेकर ग्लैमरस फोटोशूट तक आलिया का हर अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हाल ही में सामने आए उनके नए लुक में वो मरून ऑफ शोल्डर कॉर्सेट गाउन में बेहद रॉयल और स्टर्निंग दिखी. आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर इवेंट की कई तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, प्यारे दोस्तों अब अलविदा कहने का समय आ गया है, यानी कैन 2026 को आलिया ने स्टाइलिश अंदाज में गुड बाय कह दिया. लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ फैशन ही नहीं अपने आत्मविश्वास और स्क्रीन प्रेजेंस से भी फैंस का दिल जीत लिया. और अब आपको लेकर चलते हैं कैन फिल्म फेस्टिवल की सबसे हटके और मजेदार पार्टी में, जहां ग्लैमर के बीच नजर आया फैशन का एक अलग ही रंग. जी हाँ, कैन में हुई चर्चित पजामा पार्टी में कई सितारे स्टाइलिश पजामों, ड्रेसिंग गाउन और नाइटवेयर में दिखे. इस पार्टी का खास ड्रेस कोड ही पजामा था. दिलचस्प बात ये रही कि इस एक्सक्लूसिव पार्टी में शामिल होने के लिए लोगों को लॉटरी सिस्टम से गुजरना पड़ा. इस साल सिर्फ 300 टिकटों के लिए करीब 1800 लोगों ने आवेदन किया था. यानी कैन में अब रेड कार्पेट के साथ साथ पजामा फैशन भी चर्चा का हिस्सा बन चुका है. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
3: चलिए नेक्स्ट इज आवर पंजाबियां दी शान रूपी गिल. सेम डिजाइनर जो लास्ट टाइम दिलजीत दोसांझ के थे, उन्होंने इस बार रूपी की आउटफिट को डिजाइन किया, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी काफी कर भी चुके हैं.
4: कल से कर रहे हैं इनफैक्ट चर्चा. मुझे लगता है कि इतनी प्राउडली जब आप अपनी संस्कृति अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, वो फीलिंग कितनी अलग होती होगी ना. यू फील सो नाइस.
0: उस समय मैं किसी को सुन रही थी, उसने कहा कि जब हम इस स्टेज पर होते हैं तो उस वक्त हम नहीं होते, हम इंडिया होते हैं.
4: एग्जैक्टली.
0: तो ये बहुत बड़ी बात है. और जिस तरह से हमारे तमाम सितारे, तमाम जितने भी बॉलीवुड के सेलेब्स अभी तक गए हैं, वो हमेशा अपने से बढ़कर हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है.
4: वहाँ इंडिविजुअल एंटिटी नहीं
1: है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है ना शगुफ्ता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या पहनकर वहां पर उतर रहे हैं. क्योंकि वहां पर जैसे आपने कहा, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. और इस बार आप देखेंगे ना, कोई भी मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं दिखाई जा रही है भारत की तरफ से कांस में, तो चढ़ती कला उसी को रिप्रेजेंट कर रही है. रूपी गिल की जो शरारा, आइवरी शरारा आउटफिट, पूरी आउटफिट, मुझे लगता है इसीलिए काफी खास हो जाता है.
3: चलिए आपको वही तस्वीरें दिखाते हैं.

0: फ्रेंच रिवेरा की चमक, कान का ग्लैमरस रेड कार्पेट, सोशल मीडिया पर इन दिनों जिस देसी बाला की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं, वो है पंजाबी मॉडल और अभिनेत्री रूपी गिल। व्हाइट आइवरी सूट, डायमंड और एमरल्ड ज्वेलरी में रूपी का अंदाज इतना एलिगेंट दिखा कि हर कोई बस उन्हें देखता रह गया। कान 2026 में रूपी गिल ने अपना डेब्यू किया। रुपिंदर कौर गिल यानी रूपी गिल ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक वीडियो यारियां च फिक से की थी। इसके बाद साल 2018 में फिल्म अश्के से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। फिल्म में नूर के किरदार में उनकी दमदार एक्टिंग को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। यही वजह रही कि उन्हें पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। अब रूपी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को पूरी तरह से तैयार हैं। 29 मई को एमी वर्क के साथ उनकी नई फिल्म चढ़दी कला रिलीज होने जा रही है। दिलजीत दोसांझ से लेकर अमरिंदर गिल, प्रेम ढिल्लो और अखिल जैसे कई बड़े पंजाबी सितारों के म्यूजिक वीडियोस ने नजर आ चुकी रूपी गिल अब कान के मंच पर पंजाब का नाम रोशन कर रही हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि इस बार कान के रेड कार्पेट पर सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि पंजाबी संस्कृति की चमक भी खूब दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए जीएनटी मतलब गुड न्यूज टुडे वाली फील तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक और फेस्टिवल्स अगर आपको देखने हैं, ये नजरिए से अगर आपको इस चैनल को देखना है तो ये बेस्ट प्लेस है। चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि हम अयोध्या चलते हैं, हमारे बहुत सारे साथी वहां पर जा चुके हैं, कई बार इन्होंने विजिट किया है। ये इसलिए अब दोबारा से रीहब बनता जा रहा है निवेश के लिहाज से, क्योंकि बॉलीवुड स्टार्स आगे आए हैं और वो इसको बूस्ट कर रहे हैं। उस लिहाज से ज्यादातर फिल्मों के प्रमोशंस हो रहे हैं अयोध्या में, विच इज सो नाइस।
2: बिल्कुल, पहले अमिताभ बच्चन की खबर आई थी जब वहां पे मंदिर बना था, तो सबसे पहले वहां पे उन्होंने जमीन ली थी। हाँ। और उसके बाद अब जो खबरें आ रही है कि रणबीर कपूर, और ये रेलिवेंट और इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि देखिए उनकी फिल्म रामायणम आने वाली है, और ऐसे में रामायणम आने से पहले जिस तरह से अयोध्या में इन्होंने जमीन ली है, बताया जा रहा है लगभग 3.3 करोड़ की इन्होंने जमीन ली है, तो ये चर्चा एकाएक और ज्यादा इस चीज को रेलिवेंट भी बनाती है और चर्चा का विषय भी हो गया है।
1: नवजोत,
3: देखिए ये तो बात आपने सही की अमिताभ बच्चन के बाद रणवीर, लेकिन हाँ अयोध्या के बारे में एक और चीज हम कह दें कि निवेश का सबसे अच्छा शहर एक तरीके से वो बन गया है, स्पेशली आफ्टर राम मंदिर के बनने के बाद, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं और भी गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त वहां पर आने वाले हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज भी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं। तो उस नजरिए से देखा जाए तो कमर्शियली रणवीर का एक बहुत अच्छा मूव है भी,
1: और फिल्म को प्रमोट करने का एक तरीका।
4: हाँ वो भी है, वो भी एक अच्छा तरीका है। और आप देखिए ना, जो धार्मिक दृष्टिकोण से हम अयोध्या को देखते आए हैं अब तक, उस दृष्टिकोण को बदलने की भी दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इसे एक स्पिरिचुअल टूरिज्म के हब के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। और जैसे आपने कहा श्वेता कि इससे पहले हमने देखा कि अमिताभ बच्चन ने खुद वहां पर प्लॉट खरीदा और अब रणबीर कपूर ने प्लॉट खरीदा, तो सेलिब्रिटीज इस दिशा में जो बड़े कदम ले रहे हैं लोगों को भी प्रेरित करेगा, और ऑब्वियसली डेवलपमेंट जो है उसकी भी रफ्तार अयोध्या में बढ़ेगी।
2: देखिए आप देखिए ना, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी, वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे है, और यूपी गवर्नमेंट भी खुद अयोध्या को बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र के रूप में, एक जगह के रूप में डेवलप कर रही है। ऐसे में एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम। आपको बता दें रणबीर कपूर असल जिंदगी में भी रामनगरी अयोध्या से खास रिश्ता जोड़ चुके हैं। दरअसल खबरें हैं कि रणबीर ने अयोध्या में 2134 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा है, जिसकी कीमत करीब 3.31 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये जमीन सरयू नदी के किनारे विकसित की जा रही है। 75 एकड़ के शानदार प्रोजेक्ट द सरयू का हिस्सा है जिसे तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर लग्जरी क्लब हाउस, 35 से ज्यादा प्रीमियर सुविधाएं और 5 एकड़ में फैला भव्य शाकाहारी होटल द लीला भी बनाया जा रहा है। फिलहाल तो अयोध्या में जमीन खरीदने के फैसले पर रणबीर कपूर बोले कि उन्हें लगता है कि जैसे अयोध्या ने खुद उन्हें चुना है, क्योंकि अयोध्या भारतीय संस्कृति और इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है और यहाँ लिया गया ये ठिकाना उनके परिवार की विरासत का हिस्सा बनेगा।
4: वहीं नितेश तिवारी की रामायणा में माता सीता का किरदार निभा रही साई पल्लवी इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में बनी हुई हैं। देखिए खबर है कि फिल्म के मेकर्स उनकी आवाज अब डब करवाने पर विचार कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, देखिए वजह उनका हिंदी उच्चारण बताया जा रहा है, जिसे लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी काफी ट्रोलिंग भी हुई थी।
5: अगर ये बात सही साबित हुई तो रामायण में सीता का किरदार निभा रही साउथ इंडियन एक्ट्रेस साई पल्लवी की ऑन स्क्रीन आवाज बदल दी जाएगी। मतलब पर्दे पर दिखेंगी तो साई पल्लवी, लेकिन उनके डायलॉग कोई और डब करेगा। वजह है साई पल्लवी का हिंदी उच्चारण। खबर है कि रामायण के मेकर्स साई पल्लवी की हिंदी डायलॉग डिलीवरी को लेकर थोड़ा चिंतित बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रामायण के मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म के किरदारों की भाषा ज्यादा साफ, शुद्ध और न्यूट्रल लगे, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर की और सांस्कृतिक महत्व वाली फिल्म है, लिहाजा क्वालिटी से किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। सवाल है कि साई पल्लवी के हिंदी उच्चारण को लेकर सस्पेंस की वजह क्या है। हाल ही में साई पल्लवी की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म एक दिन रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल दिखा नहीं पाई। दिक्कत तब शुरू हुई जब फिल्म के प्रमोशनल वीडियोज वायरल होने लगे। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने साई पल्लवी के टूटी फूटी हिंदी बोलने पर सवाल उठाए। हिंदी उच्चारण को लेकर साई पल्लवी को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन में साई पल्लवी का किरदार एक तमिल लड़की का था, इसलिए वहां उनका एक्सेंट फिट बैठता था, लेकिन रामायण में माता सीता के किरदार के लिए ज्यादा साफ उच्चारण और निखरी हुई हिंदी की जरूरत है। साई पल्लवी ने खुद भी पहले इस मुद्दे पर बात की थी। अपनी खराब हिंदी के लिए उन्होंने माफी तक मांगी थी। उन्होंने माना था कि शुरुआत में उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने को लेकर काफी झिझक थी। साई पल्लवी ने कहा था कि मुझे नहीं लगता था कि मैं इसके लिए बनी हूँ। कई बार लगा कि शायद मैं इस रोल के लिए सही नहीं हूँ। मुझे लगता था कि इस किरदार के लिए किसी नए चेहरे को लाना चाहिए था जिसमें थोड़ा ज्यादा फ्लैम्बॉयंस हो। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद अब खबर है कि रामायण में साई पल्लवी के डायलॉग्स डब किए जा सकते हैं ताकि भाषा ज्यादा साफ और बेहतर लगे, क्योंकि वो इस पौराणिक फिल्म में मां सीता का किरदार निभा रही हैं। ऐसे में मेकर्स हिंदी पर खास ध्यान देना चाहते हैं। हालांकि इस खबर की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार रामायण के पहले पार्ट की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम जारी है, जिसमें डबिंग भी शामिल है। रामायण पार्ट 1 इसी साल दीपावली पर रिलीज की जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
6: देखिए आजकल ना नन्हे मुन्ने इतना कमाल कर दे रहे ना कि उनको देख के हैरानी होती है। अब मुझे इसके पीछे का कारण नहीं पता। जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि बच्चों के पास बहुत सारी चीजें, एक्सपोजर बहुत है, कहीं ना कहीं मोबाइल का भी असर ही है, सोशल मीडिया का।
7: पेरेंटिंग बहुत हद तक इन चीजों को मोटिवेट करने में, इस डायरेक्शन में ले जाने में, आई थिंक पेरेंट्स का तो योगदान होता ही है।
2: पेरेंट्स का होता है, और अब आप ज्यादा भी बेहतर बताएंगे, बच्चे छोटी है तो आप अभी कुछ देर पहले ही बात कर रही थी कि आपके यहाँ बच्चे बहुत जल्दी, आपकी बच्ची बोलने लगी इसलिए बिकॉज वो बहुत जल्दी अपने पीयर ग्रुप के बीच जाने लगी है।
4: एब्सोल्युटली, डे केयर जा रही थी,
2: डे केयर, तो उसमें एक फर्क तो पड़ता है।
7: वो डांस भी बहुत अच्छा,
4: डांस भी कर लेती है, बोल भी लेती है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत जल्दी बच्चा सोशलाइज करता है ना। हालांकि रिपोर्ट्स तो कहती है कि जो जेन अल्फा है तो वो तो थोड़ा सा डिलेड है उनका डेवलपमेंट, बट वो उलट रहा है आजकल। यानी छोटे बच्चे अब ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, प्रोडिजी बन गए, उन्हें ज्यादा आता है।
6: देखिए इस बच्चे से मिलिए अब आप, है उम्र 4 साल की, लेकिन इतना कमाल का इंटेलिजेंट बच्चा है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको हम आज का चमकता सितारा कह सकते हैं। नन्हे बच्चे को सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम ग्रहों उपग्रहों की पूरी जानकारी है। आपको मिलवाते इसी नन्हे कलाकार से।
8: Big planet. It's a Mercury, it's a small planet.
5: 4 साल का रुद्र, जिसकी नजरों में छुपा है एक बड़ा आसमान। इस छोटी सी उम्र में वो खेल खेल में बखूबी जानता है ग्रहों और उपग्रहों के नाम। तभी तो रुद्र की प्रतिभा, उसकी ग्रहों को लेकर नॉलेज पेरेंट के साथ ही लोगों को हैरान कर रही है। ग्रेटर नोएडा के नन्हे रुद्र राणा ने सोलर सिस्टम की जानकारी से एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी कम उम्र में रुद्र न केवल ग्रहों के नाम बल्कि उनकी विशेषताएं भी बेहद आसानी से बता रहे हैं। रुद्र अभी ABCD भी ठीक से लिख नहीं पाते, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के रंग, उनके आकार की जानकारी को महज 1 मिनट 5 सेकंड में बता देते हैं, जो एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड है।
9: नन्हे से रुद्र ने बड़ा कमाल कर दिया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 4 साल के रुद्र का नाम दर्ज हो गया है। रुद्र महज 1 मिनट 5 सेकंड में सभी 8 ग्रहों को पहचान लेते हैं, और सिर्फ पहचानते नहीं बल्कि उनके बारे में उनकी क्या विशेषता है ये भी बताते हैं।
5: रुद्र की माँ बताती हैं कि कुछ महीने पहले ही यूट्यूब किड्स को देखते हुए रुद्र का ग्रहों के बारे में इंटरेस्ट जागा। वो उनसे बहुत सारे सवाल करता था।
10: एक चैनल है ब्लिपी, उससे इसने ग्रहों को देखा। प्लैनेट्स को देखने के बाद इसे बड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। एक दिन मून रेड हुआ था तो इसने बोला, मम्मा सी मार्स। और तब मुझे लगा कि वाओ, इसकी क्यूरियोसिटी और लव देखा मैंने सोलर सिस्टम के लिए। तो उसके बाद मैंने इसे बताना शुरू किया कि जुपिटर क्या है, मरकरी क्या है। तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे से ये इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत अच्छे से सीख रहा है।
5: ABCD से भले ही अभी रुद्र की दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन ग्रहों के साथ मास्टर रुद्र का तालमेल बड़ा दिलचस्प है, जिसे बनाए रखने में रुद्र की माँ का बड़ा रोल रहा।
10: इसको सबसे पहले मैंने कलर्स बताए, जैसे मरकरी ग्रे कलर का होता है, और मैंने इसको हर फॉर्मेट में बताया। लाइक मैंने इसको फोन में दिखाया, गूगल पे दिखाया, अलग अलग कार्टून फॉर्म में दिखाया, और फ्लैश कार्ड के थ्रू दिखाया। तो उसने उसको ऐसे विजुलाइज कर लिया कि ग्रे कलर मतलब मरकरी, और प्लैनेट्स ब्लू, तो जैसे ब्लू होता है वाटर, वाटर होता है ठंडा, तो उसने उस तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया।
5: जब बेटा पढ़ने की उम्र तक आया, ऐसे में बच्चे को शुरुआती पढ़ाई से रूबरू करवाने, उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए ही रुद्र की माँ ने जॉब छोड़ी। लेकिन नौकरी का सेक्रीफाइस कुछ ऐसे रंग लाएगा ये ज्योति ने नहीं सोचा था। वहीं इतनी कम उम्र में अपने बेटे की याददाश्त, समझ और ऐसी असामान्य उपलब्धि देख पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं।
11: मेरे लिए तो पूरा सरप्राइज है, बिकॉज मुझे पता भी नहीं था कि ये सब उसने रजिस्टर कर लिया। सो द क्रेडिट गोज टू हर ओनली, इनकी मम्मा ने ही सब कुछ इनको पढ़ाया और प्लान किया।
5: जाहिर है रुद्र की उम्र भले ही 4 साल की अभी प्यारी है, लेकिन उसकी काबिलियत लोगों के लिए सबसे न्यारी है। तभी तो रुद्र के पेरेंट्स ने अपने बेटे की इस असामान्य उपलब्धि को लेकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। मगर वो इस बात का ख्याल जरूर रख रहे हैं कि उनके बेटे पर रिकॉर्ड या किसी और चीज का कोई दबाव ना हो, और वो भी सामान्य बच्चों की तरह अपने बचपन को खुलकर जिए।
9: कम उम्र में भले ही बड़ा रिकॉर्ड आया है, लेकिन रुद्र ने अभी, रुद्र के ऊपर उनके पेरेंट्स कम से कम कोई बर्डन नहीं डाले कि अब मेरा बेटा ये भी करेगा वो भी करेगा। जो फिलहाल उसके हिस्से में अचीवमेंट आई है, फिलहाल घर वाले उसी को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। और यही सबसे खूबसूरत बात है कि छोटे से बच्चे ने भले अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन उसके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी आगे के लिए नहीं है, मतलब उसका बचपन आगे भी ऐसे ही मजे से कटता रहेगा। बाय बोल दो सबको,
8: बाय।
9: कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
1: गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक लोक संगीत कार्यक्रम यहां हुआ, इस दौरान हुए एक वाकये ने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल जूनागढ़ के मालिया हाटीना में जब ये म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा था, मंच पर भजनों और लोक संगीत की धुन गूंज रही थी। उसी दौरान सामने बैठे लोग नोटों की बारिश कर रहे थे। यहाँ लोग थैलों और बोरियों में भरकर रुपए लुटाते हुए नजर आए।
4: दो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, हर जगह इसके चर्चे हैं। करीब 1.5 से 2 घंटे तक मंच पर लगातार रुपयों की बारिश होती रही। हालांकि आयोजकों का ये कहना है कि कार्यक्रम में उड़ाई गई पूरी राशि को धार्मिक और सेवा कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। अब मकसद इसका कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल तो संगीत का ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आखिर आधे भारत में मौसम इतना तूफानी क्यों है।
12: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
7: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
7: भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्द मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मॉनसून, समय से पहले दस्तक दे रहा मॉनसून। बॉलीवुड एक्टर्स को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता। अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी, द सरयू प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़े सैलानी, आध्यात्मिक यात्रा के साथ पहाड़ों की सुंदरता का उठा रहे लुत्फ। चीनी सीमा से सटे खूबसूरत देवताल का नजारा बना आकर्षण का केंद्र। केदारनाथ धाम में बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए अच्छी खबर, दर्शन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, मंदिर समिति ने जारी किए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई, रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देश।
10: तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम लगातार हम सभी को कंफ्यूज कर रहा है और लगातार अपना रंग बदल रहा है। देखिए देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का मिजाज सभी को हैरान कर रहा है। कहीं तो मौसम तूफानी बना हुआ है, तो कहीं हीट वेव ने कई मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहाल कर दिया है।
0: 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल तो राहत की खबर यह है कि अब तक जो मौसमी हालात बने हुए हैं उस हिसाब से मॉनसून वक्त से पहले ही दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को मॉनसून केरल के तट से टकराएगा।
7: तो देखिए जाहिर सी बात है मॉनसून की मेहरबानी होने में अभी थोड़ा वक्त है। इसी बीच आंधी तूफान के साथ गर्मी फिलहाल तो परेशान कर ही रही है।
11: बिल्कुल, और ऐसे में आपको बता दें हीट वेव से तो हमें और आपको मुकाबला करना ही है, साथ ही बीच बीच में तूफानी मौसम से भी दो चार होते रहना है।

0: ये तूफानी तस्वीर हर मोबाइल में है, सोशल मीडिया पर छाई है और सबके जहन में बस यही सवाल है कि हवा में उड़ते इस शख्स का आखिर हुआ क्या। दरअसल जिस तरह तूफान ने नन्हे मियां नाम के इस शख्स को उड़ाया, उसके बाद शायद ही किसी को यकीन था कि नन्हे मियां बच पाएंगे। लेकिन जिस अंदाज में तूफान ने नन्हे मियां को उड़ाया, उतनी ही नजाकत से उन्हें खेतों ने समेट लिया। बस एक दो हड्डियां इधर उधर हुई, बाकी नन्हे मियां सही सलामत हैं और अपनी तूफानी उड़ान के बारे में लोगों को तफसील से बता रहे हैं।
1: आंखें मिच गई, हमें पता नहीं है कैसे गए, हमें ना पता। हम तो जब ऊपर गए थे तो आंखें मिच गई थी, हमें ना पता कितने गिरे, कहाँ गिरे जाएंगे, बहुत दूर हमारे पास होश ही कहाँ था। आंखें मिच गई तो वहां पड़े हुए थे, वो वहां देख रहा था, भाग के आया था, उन्होंने उठाया था।
0: दरअसल बरेली में दो दिन पहले जो तूफानी मंजर गुजरा, वैसा ही तूफानी मौसम देश के तमाम हिस्से से भी गुजर रहा है। तूफान ने न केवल जिंदगियों पर धावा बोला है, बल्कि बड़े बड़े दरख्तों को भी जड़ों से उखाड़ दिया है। मौसम के इस तरह तूफानी होने की एक नहीं कई वजह हैं। दरअसल केरल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक करीब 3000 किलोमीटर का थंडर स्टॉर्म बेल्ट एक्टिव है, जिसकी वजह से दिन में धूप और शाम होते होते आंधी तूफान का दौर चल पड़ा है। तपिश की वजह से जमीन गर्म है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौजूद नमी मैदान के बड़े हिस्से तक आंधी बारिश की वजह बन रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो मौसम की धूप छांव जारी है, यहां की दोपहर तप रही है तो वहीं शाम या रात में आंधी बारिश से पारा संभल रहा है। आज की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है, मतलब गर्मी से परेशान लोगों को शुक्रवार को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में देर शाम तेज हवा, गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम की चाल जहां यूपी बिहार में तूफानी बनी हुई है, तो वहीं राजस्थान मौसम की सबसे भीषण अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। ये तस्वीर जयपुर की है, जहाँ सड़कों से धार निकल रही है। लू से दो दो हाथ करने के लिए लोगों ने मुंह ढक रखे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य के 10 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है, जबकि 3 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है।
2: सुबह और दोपहर गर्मी तो शाम होते होते ही आंधी और बारिश, कुछ ऐसा ही मौसम है इस वक्त राजस्थान का, जहां पर सुबह से लेकर दिन तक तेज गर्मी और धूप रहती है, लू चलती है, तो वहीं शाम होते होते आंधी चलने लगती है और हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की जाती है। दो दिन से ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है, पर फिर भी टेम्परेचर्स में कोई गिरावट नहीं है। अभी भी टेम्परेचर्स 45 पार हाईएस्ट दर्ज किया गया है, जो कि फलौदी का है। एग्जैक्ट टेम्परेचर 45.2 डिग्री सेल्सियस फलौदी में दर्ज किया गया, और वहीं मिनिमम टेम्परेचर की मैं भी बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस सीकर में दर्ज किया गया है। हालांकि शाम को जो बारिश होती है, उससे महसूस ये किया जाता है कि गर्मी में राहत आई है, पर फिर भी टेम्परेचर्स में बदलाव नहीं देखने को मिलता है। और हाईएस्ट बारिश कल यानी कि गुरुवार को जयपुर में दर्ज की गई है, वो बारिश 13 mm की रही है। इस समय भी मौसम विभाग का यही कहना है कि यही हाल शुक्रवार को यानी कि आज भी रहेगा। आज भी जिस तरह से दिन में तपती गर्मी है, वहीं शाम को आंधी और बारिश होने की संभावना है, पर फिर कल से लेके अगले एक हफ्ते तक यानी कि 16 तारीख से अगले एक हफ्ते तक तेज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है।
0: जाहिर है अगर आप मौसम से किसी बड़ी मेहरबानी की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको अभी लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि राहत वाला मॉनसून अभी दूर है। हालांकि अच्छी खबर है कि अब तक जो परिस्थितियां बनी हैं, उस हिसाब से मॉनसून वक्त से पहले ही दस्तक दे सकता है। अभी की बात करें तो आंधी तूफान के साथ गर्मी अभी और परेशान करेगी। हीट वेव से तो हमें मुकाबला करना ही है, साथ ही बीच बीच में तूफानी मौसम से भी टकराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार आने वाले मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी क्या दी है। सबसे पहले बता दें कि एमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 इस बार 26 मई को केरल के तट से टकरा सकते हैं। वैसे आमतौर पर मॉनसून 1 जून को केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार खबर यह है कि 6 दिन पहले ही मॉनसून दस्तक दे रहा है।
4: देखिए आईएमडी का कहना है कि पिछले 21 सालों में उसका मॉनसून पूर्वानुमान ज्यादातर सही साबित हुआ है। केरल में मॉनसून की एंट्री को पूरे भारत में मॉनसून की शुरुआत का बड़ा संकेत माना जाता है।
5: देखिए आईएमडी ने बताया है कि मॉनसून की तारीख तय करने के लिए 6 बड़े मौसम संकेतकों का अध्ययन हुआ है और इसमें मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मॉनसून समय से पहले आता है तो दक्षिण भारत में बारिश जल्दी शुरू हो सकती है और तापमान में गिरावट आ सकती है।
4: हालांकि विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि केरल में जल्दी मॉनसून पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में मॉनसून भी तेजी से आगे बढ़ेगा। मॉनसून की आगे की चाल कई वैश्विक और क्षेत्रीय मौसम परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। तो चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां के अमरावती में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
6: बिल्कुल, देखिए लेकिन अमरावती पुलिस ने अपने जवानों के लिए खास जैकेट की खरीदारी की है, जिसके चलते उनको ड्यूटी करने में आसानी होने लगी है। पुलिस की इस पहल की हर तरफ चर्चा भी की जा रही है। जैकेट की खासियत क्या है, दिखाते हैं।
7: महाराष्ट्र के अमरावती शहर में गर्मी चरम पर है, तापमान 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसे में लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करने में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। गर्मी के इस मौसम में जहां आम लोग घर में रहकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं शहर की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले पुलिस के जवान दिन भर चौराहों पर खड़े रहते हैं। लेकिन अब अमरावती पुलिस ने अपने जवानों के लिए एक अनोखी पहल की है और करीब 500 पुलिस कर्मियों को एयर कूल जैकेट दिए गए हैं। एयर कूल जैकेट मिलने से पुलिस कर्मियों को भीषण गर्मी के मौसम में भी ड्यूटी करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अमरावती के लोग जब ट्रैफिक पुलिस के जवानों को इस सफेद रंग के जैकेट में देखा तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई, लेकिन जब उनको जैकेट के बारे में जानकारी मिली तो वो भी अधिकारियों के फैसले से सहमत दिखाई दिए।
8: 24 घंटे जो है सेवा में तत्पर ही रहते हैं, इतने धूप में और इतने गर्मी के अंदर हम कुछ छाव का सहारा ले रहे सर, और 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके अंदर उनको सहायता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देश हित में देश सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर।
7: हमारी पुलिस सिर्फ जनता को लेकर ही संवेदनशील नहीं है, बल्कि अपने कर्मचारियों का भी भरपूर ध्यान रखती है, इसलिए जवानों के हक में फैसला लिया गया।
9: एयर कूल जैकेट की वजह से धूप में जो ड्यूटी कर रहे वो हाथों कंबलदार हैं, उनके लिए बहुत ही सुसह्य हो गया है और वो अच्छे तरह से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
7: अब आपको बताते हैं कि आखिर इस जैकेट में ऐसा क्या है जिससे जवानों को गर्मी में बीच सड़क राहत महसूस हो रही है। सफेद रंग के जैकेट पर रिफ्लेक्टर लगे हैं, पीछे 2 छोटे पंखे लगे हैं, 10,000 mAh पावर बैंक से ये चलते हैं। जैकेट के अंदर हवा सर्कुलेट होती है जिससे शरीर ठंडा रहता है और लू से बचाव होता है। जहां तक कीमत की बात है तो ये करीब 7,000 प्रति जैकेट के हिसाब से खरीदा गया है।
9: ये जैकेट में पिछले साइड दोनों बाजू में फैन दिए गए हैं और वो बैटरी ऑपरेटेड है, तो बैटरी जो है रिचार्जेबल है और वो कनेक्ट करने के बाद में अंदर से दोनों फैन चालू होते हैं, उनका पूरा शरीर जो है वो टेम्परेचर जो है कम होता है, इसीलिए धूप में उनको काम करने के लिए आसान होता है।
7: अमरावती पुलिस की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। किसी भी शहर में यातायात व्यवस्था संभालना अपने आप में चुनौती वाला काम है, और अगर तापमान 46 डिग्री के आसपास हो तो ये काम और मुश्किल हो जाता है, लेकिन अमरावती पुलिस की इस पहल को हर कोई सलाम कर रहा है। अमरावती से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
5: देश में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईंधन बचाने के दिशा में अपने काफिले को कम कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में पर्यावरण सुरक्षा और ईंधन बचत के लिए हाइड्रोजन बस सर्विस शुरू की गई है, जिसे केंद्रीय शहरी आवास विकास मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से इंट्रोड्यूस किया गया है। 35 सीटों वाली ये 2 मॉडर्नाइज्ड हाइड्रोजन बसें हैं जो कि सेंट्रल विस्टा इलाके में दौड़ने भी लग गई है।
3: तो वहीं मंत्रियों का काफिला भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सिमटता नजर आ रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी दूल्हे राजा बैलगाड़ी से अपनी दुल्हन लेने पहुंचे। जाहिर है कि ऐसी कई और तस्वीरें पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर वाकई सराहनीय हैं।
10: दिल्ली की सड़कों पर अब हाइड्रोजन जादुई शक्ति दिखेगी। इससे न सिर्फ पेट्रोल की बचत होगी बल्कि राजधानी की हवा भी शुद्ध रहेगी। दिल्ली के वीवीआईपी सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली शटल बस सर्विस शुरू हो गई है। अभी फिलहाल 2 हाइड्रोजन बसेस चलाई जा रही हैं।
11: टुडे इज द डे ऑफ द हाइड्रोजन बसेस, दे एंजॉय द राइड एंड यू नो लेट अस कम टुगेदर टू सेव फ्यूल।
10: इस बस सेवा से केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी ताकि सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों की दफ्तरों तक आवाजाही आसान हो सके। इससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता भी कम होगी। ये बसें सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेंगी। हर 30 मिनट में 1 बस उपलब्ध होगी। सबसे बड़ी बात, इन बसेस में GPS ट्रैकिंग और CCTV सिस्टम भी लगाए गए हैं और किराया 10 और 15 रुपए रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुजरात में मंत्री पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। कई मंत्री तो इलेक्ट्रिक स्कूटर से मंत्रालय पहुंचे। सभी का मकसद एक ही है कि मुश्किल के इस घड़ी में तेल की खपत कम की जाए। मंत्रियों के साथ मिलकर आम पब्लिक भी प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर काम कर रही है।
12: आज गुजरात सरकार के काफी मंत्री जो हैं ईवी व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। हमारे साथ पर्यावरण मंत्री हैं प्रवीण माली, वो भी जो हैं ईवी व्हीकल पे आए हैं और एक्टिवा लेकर आए हैं, उनसे बात करते हैं। आज आप कैबिनेट में जो है टू व्हीलर लेके पहुंचे, आमतौर पे मंत्री गाड़ी में घूमते हैं, क्या वजह है क्या प्रधानमंत्री की अपील का, और सिर्फ एक दिन के लिए रहेगा या कंटिन्यू रहेगा?
13: ब्रिजेश जी, मैं आगे भी फॉसिल फ्यूल कम करने के लिए, मेरी रूटीन था कि मैं साइकिल लेकर भी आता हूँ, ईवी भी चलाता हूँ, लेकिन जब देश के बड़ा प्रधान श्री ने अपील की है, जब ये वॉर की परिस्थिति जैसे चल रही है ईरान में और जो फॉसिल फ्यूल हमें जो कम मिल रहा है, तो उसको रिक्वेस्ट को देखते हुए आज ईवी लेकर आना हुआ है। और जब अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है तब उसका यूज करना चाहिए, ऐसा मेरा सबको रिकमेंड।
12: मंत्री जो है वो ईवी व्हीकल यूज कर रहे हैं, पर्यावरण मंत्री जो है जिन्होंने जो है वो टू व्हीलर यूज किया, काफी सारे मंत्री अपनी जो ईवी थी वो लेके आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो पर्सनल गाड़ियां हैं, क्योंकि सरकारी गाड़ियां जो है वो ईवी नहीं है। वैसे में आज जो कैबिनेट होनी है उसमें फैसला हो सकता है कि सरकार इस पे कोई फैसला करे कि क्या सभी मंत्री ईवी व्हीकल यूज करेंगे या फिर ईंधन बचाने के लिए कौन से प्रयास किए जाते हैं उस पर सबकी नजरें रहेंगी। गांधीनगर से कैमरा जनवास के साथ ब्रिजेश दोषी है।
4: तो देखिए, पेट्रोल डीजल की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से बचत की अपील की। उसका असर धीरे धीरे अब नजर आने लगा है। एक बेहद प्यारी सी आपको तस्वीर दिखाते हैं हम, जिसमें दूल्हे राजा बैलगाड़ी से दुल्हन के घर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का ये वीडियो है, जहां दिखावे से उलट बेहद सादगी के साथ एक बारात निकाली गई। बैलगाड़ी वाली ये बारात सोशल मीडिया पर खासतौर से चर्चा का विषय भी बनी हुई है और जमकर वायरल भी हो रही है। देखिए, बताया जा रहा है कि ये शादी का वीडियो नारायणपुर SP के गनमैन की शादी का है। ये शादी और उसकी सादगी मौजूदा दौर के लिए भी एक मिसाल बन रही है।
14: ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे एक और इंच छोड़ अचार डालने लगे IIT के स्टूडेंट।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
4: क्या है शनि जयंती की महिमा, क्या है शनि देव का पूजा विधान, शनि जयंती पर कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: सबसे मशहूर इमारतों में शामिल एफिल टावर अब सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि इसे खरीदने का मौका भी मिल रहा है। एफिल टावर की ओरिजिनल सीढ़ियों का एक हिस्सा नीलामी में रखा गया है।
7: सोचने वाली बात है कि कौन खरीदेगा इसको। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आखिर क्या है इसकी खासियत और क्यों करोड़ों में बिकती है ये सीढ़ियां, देखिए इस खास रिपोर्ट में।

0: पेरिस की पहचान एफिल टावर, दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में शामिल। हर साल लाखों सैलानी यहां पहुंचते हैं, लेकिन कोई लिफ्ट से ऊपर जाता है तो कोई सीढ़ियां चढ़कर इतिहास को करीब से महसूस करता है। अब इसी इतिहास का एक हिस्सा पेरिस में नीलामी के लिए रखा गया है। ये एफिल टावर की ओरिजिनल घुमावदार सीढ़ियों का हिस्सा है, जिसे 1889 में टावर बनने के वक्त लगाया गया था। आर्ट क्यूरियल पेरिस में रखी गई ये सीढ़ियां 14 स्टेप्स वाली हैं, करीब 9 फीट ऊंची और लगभग 1400 किलो वजनी है। 1983 में एफिल टावर कंपनी ने टावर को मॉडर्न बनाने और वजन कम करने के लिए पुरानी सीढ़ियों को हटाया था। करीब 160 मीटर लंबी सीढ़ियों को अलग अलग हिस्सों में काट कर नीलाम कर दिया गया।
1: On peut aujourd'hui acheter des morceaux de Tour Eiffel de façon tout officielle grâce à cette vente qui a lieu en 1983 où la société de la Tour Eiffel a décidé d'alléger, de moderniser ses escaliers.
0: नीलामी में रखे गए इस हिस्से की कीमत 1,20,000 से 1,50,000 यूरो यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत सिर्फ लोहे की नहीं है, बल्कि इतिहास, दुर्लभता और एफिल टावर से जुड़ी भावनाओं की है।
1: Nous l'avons estimé au regard de son état, puisque ce tronçon d'escalier a été conservé pendant plus de 40 ans à l'abri. Dans la même collection. Ensuite...
0: इससे पहले भी एफिल टावर की सीढ़ियों के हिस्से रिकॉर्ड कीमतों में बिक चुके हैं। 2008 में एक हिस्सा करीब 5.5 लाख यूरो यानी करीब 6,20,00,000 में बिका था। आज दुनिया के कई देशों में एफिल टावर की पुरानी सीढ़ियों के हिस्से सजाए गए हैं, लेकिन पेरिस में होने वाली ये नीलामी एक बार फिर इतिहास प्रेमियों का ध्यान खींच रही है। एफिल टावर जो 137 साल बाद भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है, अब उसकी पुरानी सीढ़ियां इतिहास और विरासत की सबसे खास निशानी बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: ग्यारह मई को अपनी वडोदरा विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी एरिया को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की अपील की थी। अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी अथॉरिटी भी स्टैचू ऑपरेटिव एरिया को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की ओर बढ़ रहा है।
3: आपको बता दें कि चूंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी उद्घाटन के बाद से ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित हो चुका है, अब पारंपरिक और आधुनिक शादियों के लिए भी लोग यहां पर आ रहे हैं, और ऐसे में अगर ये डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तैयार होता है तो जाहिर है पर्यटकों को जगह की ऐतिहासिकता के साथ ही एक नया अनुभव भी होगा।

0: जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। जब यहां वेडिंग करते हैं ना, तो हमारे पूर्वजों की मिट्टी भी हमें आशीर्वाद देती है। और मैं तो आप सब पाटीदार भाइयों को तो कहूंगा, आपको तो अब शादी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वहीं पर जाके करनी चाहिए। आपकी हर शादी में सरदार साहब खुद आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे। और वहीं पर आपने जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में आप शांति के लिए जगह बना रहे हैं ना, वैसे ही आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में शादी के लिए जगह बना दीजिए।
1: वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लोगों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर देखने की अपील की थी, जिसके पीछे वजह यही है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अब दिन ब दिन देश की एक बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित हो रहा है। ऐसे में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बन सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया में टेंट सिटी 1, टेंट सिटी 2 और कई बेहतरीन होटल्स मौजूद हैं। यही नहीं, गुजरात के बाहर दूसरे राज्यों जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग शादी करने के लिए यहां आने लगे हैं, जिसकी मुख्य वजह इस लोकेशन की खूबसूरती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सीईओ भी अब इस लोकेशन में डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर काफी संभावनाएं देख रहे हैं।
2: अथॉरिटी का भी प्रयास है कि हम लोग वेडिंग्स को फैसिलिटेट कर सकें। कुछ पब्लिक एरियाज हैं जो हम वेडिंग के लिए दे सकें। तरह के सभी प्रयास अथॉरिटी के द्वारा किए जा रहे हैं, साथ साथ प्री वेडिंग फोटोशूट वगैरह के लिए भी जो भी रिक्वायरमेंट है, हम हर तरीके से प्रवासियों को फैसिलिटेट करने।
1: स्थानीय होटल के टेंट संचालक मानते हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, ऐसे में अगर इस एरिया को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया जाता है तो ये जगह भविष्य में पारंपरिक और आधुनिक शादी के लिए एक अच्छी खूबसूरत और शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगी।
3: गुजरात टूरिज्म के साथ मिलकर इस डेस्टिनेशन को हमने बहुत बहुत सक्सेसफुल लेवल पे ऑपरेट किया है और मैं चाहता हूं अब इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक वेडिंग डेस्टिनेशन की तरह लोग देखें।
1: 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा।
4: और चाय पर चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि खबरें यहां भी जारी है।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds with artists like James Bay, Norah Jones, Daniel Caesar, and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
5: कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
14: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के छात्रों ने साबित कर दिया कि इंजीनियर सिर्फ मशीनों और फॉर्मूला के उस्ताद नहीं होते, देसी हुनर में भी उनका कोई मुकाबला नहीं। कैंपस में तेज आंधी की आई, पेड़ों से कच्चे आमों की बरसात हो गई। अब आम लोग शायद सफाई या नुकसान की बात करते, लेकिन IIT के इन छात्रों ने मौके को यादगार बना दिया। लैब और लेक्चर को छोड़कर हॉस्टल के आंगन में देसी आम का अचार मिशन शुरू यहां पर हो गया।
15: बिल्कुल, देखिए छात्र अजय पटेल ने जब अपने दोस्त नारायण का ये अचार वाला अंदाज सोशल मीडिया पर शेयर किया तो वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। कोई अखबार पर आम सुखा रहा था तो कोई राई मेथी और मसालों का परफेक्ट मिक्स तैयार कर रहा था। सरसों के तेल की खुशबू, हल्दी नमक में लिपटे आम और दोस्तों की मस्ती, पूरा नजारा ऐसा लग रहा था जैसे अचानक IIT का हॉस्टल किसी गाँव के पुराने आंगन में तब्दील हो गया।
16: एक्चुअली इस बार आम ज्यादा हुआ नहीं है, पर जितना हुआ नारायण ने ये अचार बनाने की कोशिश किया है। जब बन जाएगा तो खा के दिखाएंगे,
17: तब पूरा उसको बाटली दिखाएंगे आपको।
16: ठीक आज कितना है।
9: तो वीकेंड की शुरुआत हो रही है, एंजॉय योर वीकेंड। मंडे आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे चाय पर, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. So thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
14: भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्द मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मानसून, समय से पहले दस्तक दे रहा मानसून। बॉलीवुड एक्टर्स को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता। अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी, द सरयू प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़े सैलानी, आध्यात्मिक यात्रा के साथ पहाड़ों की सुंदरता का उठा रहे लुत्फ। चीन सीमा से सटे खूबसूरत देवताल का नजारा बना आकर्षण का केंद्र। केदारनाथ धाम में बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए अच्छी खबर, दर्शन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, मंदिर समिति ने जारी किए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई। रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत ने दिशा निर्देश जारी किए। कान फिल्म फेस्टिवल में लगा पंजाबी तड़का, पंजाबी मॉडल और एक्ट्रेस रूपी गिल की तस्वीरें वायरल हुई, सफेद आईवरी सूट, डायमंड एमरल्ड ज्वेलरी में दिखा ग्लैमरस अंदाज। मच अवेटेड कॉमेडी फिल्म वेलकम ट्री का टीजर रिलीज, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी समेत 34 बॉलीवुड सितारे लगाएंगे हंसी का तड़का। 26 जून को सिनेमाघरों में आएगी वेलकम टू द जंगल।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मशहूर शायर निदा फाजिल ने कभी लिखा था, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने को चार किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, ये हमारे जैसे नहीं है, बल्कि ये इतने सुपर टैलेंटेड और कमाल के फनकार हैं कि ये हमारे जैसे नहीं, बल्कि आप और हम इनके जैसे होना चाहेंगे। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा साउंड करता है, क्यों? चलिए आपको दिखा देते हैं।

0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उम्र है 2, संस्कृत जोरदार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार स्पेस एक्सपर्ट हैं, उम्र है 4।
1: स्मॉल प्लैनेट इसो सैटर्न एफ बिट फोर रिंग्स इसो जुपिटर इसो बिग प्लैनेट।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 2 साल के गूगल नॉलेज शानदार।
2: परशुराम कौन से अवतार है विष्णु भगवान के?
3: छठे अवतार।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 7 की उम्र में पार्क स्ट्रीट तैर कर

ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 14 की उम्र, 44 वाद्यों की फनकार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 9 की उम्र में स्विमर जोरदार।

चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर की रहने वाली 2 साल की जीनियस के साथ। 2 साल के बच्चे ठीक से बोलना तक नहीं जानते हैं, लेकिन प्रशा उन बच्चों में से नहीं है। 2 साल की प्रशा को 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र आते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स 1 से लेकर 100 तक गिनती, सूर्य नमस्कार और भी ना जाने क्या क्या जानती हैं और क्या क्या करती है ये छोटी सी गुड़िया।

0: sonau. जोर से बोले ऐसे करके कंधे पे ऐसे ऐसे ही रखे हो अच्छे से ओम नमः शिवाय आईज क्लोज करके
1: ओम नमः शिवाय
2: ओम क्या कम यामें छोगा दीम पट्टी बनाया हुए वामें बनाया में तू मुझे माता
3: जो ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी वेदों की वही भाषा पुराणों की वही बाणी जयपुर में मौजूद इस घर के आंगन में गूंज उठी
2: ओम बोल बुआ जय तो छतु बजे हम पयो देव से देव यो या

0: Eu tô banhando pra eu levar esse tema e olhar pra Julia.
1: मानो माँ सरस्वती बाल रूप में उतर आई और खेल खेल में अपनी तोतली जुबान में हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता संस्कृति और संस्कारों की कहानियाँ सुना रही हूँ।
0: यारे भी
1: दो साल की उम्र जब बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते तब तुतलाती जुबान में श्लोक और मंत्रों का ऐसा उच्चारण कि सुनने वाला सुनता रह जाए। जयपुर की रहने वाली दो साल की प्रिशा आज 30 से ज्यादा मंत्रों और श्लोकों का स्पष्ट उच्चारण कर लेती है। जहाँ बड़े बड़े लोग भी संस्कृत श्लोकों और मंत्रों को सही तरह से उच्चारित नहीं कर पाते वहीं ये नन्ही बच्ची इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुंच गई है। अपनी अद्भुत याददाश्त और प्रतिभा के दम पर जयपुर की प्रिशा आज सुपर टैलेंटेड किड कहलाने लगी है।
2: आज के टेक सेवी जमाने में जहाँ हर एक बच्चा फोन या स्क्रीन्स के पीछे भागता है या फिर उससे ज्यादा अडिक्टेड हो जाता है वहीं जयपुर की एक नन्ही सी बच्ची है जिसने महज 2 साल की उम्र में अपने नाम पे इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है और वो नाम सुपर टैलेंटेड किड के नाम से दर्ज हुआ है। ये नन्ही सी बच्ची है जयपुर की प्रिशा जो संस्कृत में 2 साल की उम्र में 30 से ज्यादा श्लोक बोल सकती है।
1: बेटियाँ यूं भी दुआओं की तरह मिलती हैं। अपनी खिलखिलाहट मासूमियत और खनकती हंसी से घर के कोनों को भिगोती हुई लेकिन गुड़िया रानी अगर प्रिशा जैसी प्रतिभा लेकर पैदा हो तो हैरानी की बात नहीं कि परिवार उसे ईश्वर का उपहार और आशीर्वाद मानता है। प्रिशा के माता पिता का भी कुछ ऐसा ही मानना है।
3: जब इसे ना हम रोज मॉर्निंग में मॉर्निंग प्रे करवाते थे जब ये बोलना स्टार्ट नहीं करी थी तो सुनती थी पर एकदम से जब हमने देखा कि एक दिन ये खुद से बोल रही थी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये खुद से बोल सकती है। हमें लगा कि हाँ धीरे धीरे याद करेगी पर ये खुद से बोलने लग गई थी तब हमें रियलाइज हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है शायद इसमें।
1: सिर्फ 24 महीने की उम्र में प्रिशा को 30 से ज्यादा संस्कृत मंत्र और श्लोक याद है। वो न उनका स्पष्ट उच्चारण करती हैं, बल्कि कई श्लोकों का अर्थ समझने की कोशिश भी करती हैं। सभी देवी देवताओं को पहचानते हुए उनके बारे में काफी कुछ जानती हैं। प्रिशा खुद 80 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स पहचान सकती हैं। सारे अल्फाबेट्स और 100 तक गिनती भी प्रिशा को बखूबी याद है। साथ ही ये बच्ची सूर्य नमस्कार कर सकती है हाथों के बल चलने का अभ्यास करती है और अपने से 3 गुना ऊंची ग्रिल पर भी अपने आप चढ़ जाती है। आज जहाँ आम घरों में छोटे बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते वहाँ प्रिशा का मोबाइल से मानो कोई वास्ता ही नहीं है।
3: इसने कभी फोन नहीं देखा आज तक नहीं कभी नहीं। मैं अगर सुनाती भी हूँ तो स्पॉटिफाई पे बंद करके तो इसे पता है फोन में सुनना है देखना नहीं है। बताती है आइस खराब हो जाती है फोन देखने से और हमको भी नहीं देखने देती। हम भी चला रहे होते तो मम्मा फोन मत देखो आइस खराब हो जाएगी ऐसे बोलती है।
1: प्रिशा की माँ के मुताबिक उनके घर में सुबह की शुरुआत ही भजन और मंत्रों के साथ होती है। शायद यही माहौल धीरे धीरे उनकी बेटी के व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है और वे ये सब खुशी खुशी सीख रही है। प्रिशा की प्रतिभा और सीखने की ललक वाकई एक मिसाल है। इस नन्ही मुन्ही जीनियस से बच्चे तो क्या बड़े बड़े भी कई सबक सीख सकते हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए अब रीवा के गूगल बॉय की करते हैं। रीवा का विराज महज 2 साल 11 महीने का है। छोटा सा विराज डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे और मुश्किल अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड्स में आसानी से सुना सकता है और फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं फाइटर जेट हेलीकॉप्टर मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर लेता है। इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया है ना कमाल।
5: विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं?
6: 10
5: और परशुराम कौन से अवतार हैं विष्णु भगवान के?
6: छठे अवतार।
5: छठे अवतार और परशुराम के पास क्या होता है?

0: अच्छा।
1: ये नन्हा चैंपियन अविराज है जिसे लोग गूगल बॉय के नाम से जानते हैं। ये मध्य प्रदेश में रीवा की धरती पर जन्मा एक चमकता सितारा है जिसने अपनी अद्भुत प्रतिभा से दुनिया को चौंका दिया है।
0: रावण कहाँ लेके गया था सीता माता को?
2: अशोक वाटिका।
0: अशोक वाटिका कहाँ है?
2: लंका में।
0: और लंका कौन जला दिया था? लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कैसे? जोर से बोलो, हनुमान जी कैसे लंका जलाए थे?
2: अपनी टेल से।
1: इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे। उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया।
2: टाइगर।
1: ये डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे खतरनाक अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड में फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर सकता है।
0: परशुराम के पास क्या होता है?
3: फरसा।
0: और परशुराम अपने फरसे से किसका टस्क तोड़ दिए थे?
3: गणेश जी का
0: टस्क तोड़ दिए थे। और विष्णु भगवान का पावरफुल वेपन क्या है?
3: सुदर्शन।
1: अविराज अभी 2 साल 11 महीने के हैं। इस उम्र में बच्चे अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पाते, मगर मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाला ये नन्हा उस्ताद बाकी बच्चों से जुदा है। लोग इसे रीवा का गूगल बॉय कहते हैं क्योंकि इसने अपनी मेमोरी और नॉलेज से सभी को हैरान किया हुआ है। इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है और शब्द सुनते ही दिमाग में फीड हो जाते हैं। इसी अद्भुत प्रतिभा की वजह से अविराज अभी तक कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुका है।
0: इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, जीनियस में है, कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड है, और इंटरनेशनल है, इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऐसे करके कई 7-8 रिकॉर्ड्स मतलब है।
1: अविराज को जानवर ही नहीं कई पक्षियों के नाम भी याद हैं। वो 42 देशों की राजधानी और 36 देशों के झंडे की पहचान कर सकता है। भारत के कई राज्यों की राजधानी उसे जुबानी याद है, जबकि ग्रहों और सोलर सिस्टम की तो उसे पूरी समझ है। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग और देवी देवताओं के वाहन तक बता सकता है। शास्त्र और पुराण की उसे अच्छी खासी जानकारी है और भगवान विष्णु के सभी अवतार उसे जुबानी याद हैं।
0: हम तीनों लोग, उसके दादाजी, नाना जी और हम लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो वहाँ की कैपिटल से स्टार्ट किया कि छत्तीसगढ़ की क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है, हम हैदराबाद में हैं तो तेलंगाना की क्या है, तो वो कैपिटल्स बताए। पीएम कौन है हमारे, तो वो भी उसको या मतलब ठीक से बता पाया वो। फिर उसके बाद वो 3 स्टेट से हम 52 कंट्रीज़ की भी बता पाता है, 28 स्टेट्स की भी बता पाता है, यूनियन टेरिटरीज़ जो हमारी 8 है उनकी भी कैपिटल्स बता पाता है।
1: अब मध्य प्रदेश से उठी ये चमक विदेश तक रोशनी फैला रही है। ये कहानी सिर्फ अविराज की नहीं है, बल्कि नए भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डे टुडे।
4: अब बात ग्रेटर नोएडा के लिटिल जीनियस की, जिसके टैलेंट की चमक ने आज उसे स्टार बना दिया है। 4 साल का रुद्र राणा सोलर सिस्टम के हर ग्रह और उपग्रह की जानकारी रखता है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की बदौलत रुद्र का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है।
5: Beautiful rings. This is Jupiter's big planet. This is Mercury's small planet.
1: 4 साल का रुद्र, जिसकी नजरों में छुपा है एक बड़ा आसमान। इस छोटी सी उम्र में वो खेल खेल में बखूबी जानता है ग्रहों और उपग्रहों के नाम। तभी तो रुद्र की प्रतिभा उसकी ग्रहों को लेकर नॉलेज पेरेंट के साथ ही लोगों को हैरान कर रही है।
5: इसे
1: ग्रेटर नोएडा के नन्हे रुद्र राणा ने सोलर सिस्टम की जानकारी से एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी कम उम्र में रुद्र न केवल ग्रहों के नाम बल्कि उनकी विशेषताएं भी बेहद आसानी से बता रहे हैं। रुद्र अभी ABCD भी ठीक से लिख नहीं पाते, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के रंग, उनके आकार की जानकारी को महज एक मिनट महीने पहले ही यूट्यूबी भी ठीक से लिख नहीं पाते लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के रंग उनके आकार की जानकारी को महज एक मिनट पाँच सेकंड में बता देते हैं, जो एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। रुद्र की माँ बताती हैं कि कुछ महीने पहले ही YouTube किड्स को देखते हुए रुद्र का ग्रहों के बारे में इंटरेस्ट जागा। वो उनसे बहुत सारे सवाल करता था। ABCD से भले ही अभी रुद्र की दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन ग्रहों के साथ मास्टर रुद्र का तालमेल बड़ा दिलचस्प है, जिसे बनाए रखने में रुद्र की माँ का बड़ा रोल रहा। जब बेटा पढ़ने की उम्र तक आया, ऐसे में बच्चे को शुरुआती पढ़ाई से रूबरू करवाने, उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए ही रुद्र की माँ ने जॉब छोड़ी, लेकिन नौकरी का सेक्रीफाइस कुछ ऐसे रंग लाएगा ये ज्योति ने नहीं सोचा था। वहीं इतनी कम उम्र में अपने बेटे की याददाश्त, समझ और ऐसी असामान्य उपलब्धि देख पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं। जाहिर है रुद्र की उम्र भले ही 4 साल की अभी प्यारी है, लेकिन उसकी काबिलियत लोगों के लिए सबसे न्यारी है। तभी तो रुद्र के पेरेंट ने अपने बेटे की इस असामान्य उपलब्धि को लेकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, मगर वो इस बात का ख्याल जरूर रख रहे हैं कि उनके बेटे पर रिकॉर्ड या किसी और चीज का कोई दबाव ना हो और वो भी सामान्य बच्चों की तरह अपने बचपन को खुलकर जिए।
6: कम उम्र में भले ही बड़ा रिकॉर्ड आया है, लेकिन रुद्र ने अभी, रुद्र के ऊपर उनके पेरेंट्स कम से कम कोई बर्डन नहीं डाले कि अब मेरा बेटा ये भी करेगा वो भी करेगा। जो फिलहाल उसके हिस्से में अचीवमेंट आई है, फिलहाल घर वाले उसी को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं, और यही सबसे खूबसूरत बात है कि छोटे से बच्चे ने भले अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन उसके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी आगे के लिए नहीं है, मतलब उसका बचपन आगे भी ऐसे ही मजे से कटता रहेगा। बाय बोल दो सबको।
5: बाय
6: बाय। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
4: अब बात एक नन्ही म्यूजिकल जीनियस की, एक ऐसी टैलेंटेड बच्ची जो सिर्फ 14 साल की है और 44 अलग अलग वाद्य यंत्र बजाना जानती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की पकड़ कमाल की है। ना केवल नियति इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजा लेती है, बल्कि इनसे जुड़े कई कमाल के रिकॉर्ड्स नियति ने अपने नाम किए हैं।

0: संगीत के साथ ये गहरा रिश्ता अब एक विश्व कीर्तिमान के साथ पूरी दुनिया में नियति का नाम रोशन कर रहा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में नियति ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों को पहचान कर नियति ने इतिहास रच दिया। लेकिन नियति का हुनर सिर्फ वाद्य यंत्रों को पहचानने तक सीमित नहीं है। इस छोटी सी उम्र में ही नियति 44 वाद्य यंत्र बजा लेती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की कमाल की पकड़ है। नियति को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां ने हर कदम पर उनका सहयोग किया। संगीत के प्रति नियति के लगाव को उन्होंने बहुत कम उम्र में पहचान लिया था। नियति जब महज 6 महीने की थी तभी मां ने कीबोर्ड और जाइलोफोन से नियति को रूबरू कराया। 4 साल की उम्र में नियति ने काबिलियत हासिल कर ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले भी नियति कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। में नियति ने आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो पर शिव तांडव स्त्रोत बजाया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। 2023 में नियति ने 65 सेकंड में 15 वाद्य यंत्रों पर राष्ट्रगान बजाया। इस उपलब्धि पर उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। संगीत के साथ नियति साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, एनिमेशन और रैप क्रिएशन में भी माहिर है। हिंदी और अंग्रेजी में कविता और गीत लिखने वाली नियति को अब तक 17 देशों में सम्मान मिल चुका है। संगीत में रुचि के साथ ही नियति पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही हैं। बचपन में एक छोटे से खिलौने के साथ शुरू हुआ संगीत का ये सफर आज नियति को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा चुका है और उनकी ये कामयाबी आज की नई पीढ़ी के लिए एक नई मिसाल बन गई है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात उन लिटिल मास्टर्स की जिन्होंने सीधे समंदर को चुनौती दी है। 7 साल का ईशांक और 9 साल के नैया ने स्विमिंग के ऐसे जोरदार रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं जो आज बड़े बड़े अनुभवी तैराक उन्हें सलाम कर रहे हैं।
2: माइकल फेल्प्स, केटी लेडेकी, मार्क स्पिट्स, पानी की मौजूदगी के चलते अब तक ब्रह्मांड का इकलौता नीला ग्रह है हमारी धरती। और उसी धरती के ये वो 3 तैराक हैं जिन्होंने धरती के पानी पर फतह पाई है। धरती के सबसे सफल स्विमर इन 3 अमेरिकी स्विमर्स में से हर एक ने ओलंपिक में तैराकी के इतने मेडल जीत रखे हैं कि आप अपनी उंगलियों पर गिन नहीं सकते। लेकिन ये गुजरे हुए कल की तस्वीर है। आने वाले कल की तस्वीर कैसी हो सकती है ये आपको हम दिखाते हैं। पानी पर तैरती उम्मीदों की तस्वीर है, वो तस्वीर जो सपना दिखाती है, वो सपना जो अभी तक अधूरा है लेकिन कल पूरा हो सकता है। ओलंपिक में भारत के लिए स्विमिंग का मेडल लाने का सपना, और इस उम्मीद को पंख लगा रखे हैं इन दोनों टैलेंटेड यंग स्विमर्स ने। इनमें से एक है 9 साल की अनैया जगदीश कुंती कारकर और दूसरे 7 साल के मास्टर ईशांक। इन दोनों नन्हे तैराकों ने हाल ही में स्विमिंग के ऐसे जोरदार रिकॉर्ड बनाए हैं कि हर कोई हैरान है। रांची के रहने वाले 7 साल के मास्टर ईशांक ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत बड़े बड़े तैराक नहीं कर पाते। इस बच्चे ने लहरों से लड़ते हुए 29 किलोमीटर का सफर 9 घंटे 50 मिनट में तय करके इतिहास रच दिया है। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि समंदर के जिस रास्ते को ईशांक ने तय किया है वो समंदर में सबसे मुश्किल रास्तों में एक माना जाता है। इस कामयाबी ने ईशांक को दुनिया का सबसे कम उम्र का 5 स्ट्रेट तैराक बना दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि हिम्मत, अनुशासन और जुनून का एक लंबा सफर है। समंदर की लहरों से टकराने का जुनून ईशांक के लिए नया नहीं है। ईशांक ने बहुत छोटी उम्र से ही पानी से दोस्ती कर ली थी। रोजाना घंटों की प्रैक्टिस, कड़ी ट्रेनिंग और मानसिक मजबूती, इन सब ने मिलकर ईशांक को आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तैराकों में से एक बना दिया है। समंदर में जिस रास्ते को ईशांक ने नापा है वो रास्ता दुश्वारियों से भरा है। यहाँ समंदर की लहरें तैराक का कड़ा इम्तिहान लेती हैं, तेज धाराएं उसका रास्ता रोकती हैं और मौसम उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेता है। ऐसे में इन सब का सामना करने के लिए केवल शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है जो ईशांक में साफ दिखाई देती है।
3: शिवाजी महाराज की
2: ईशांक की इस उपलब्धि की अहमियत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पार्क स्ट्रीट वो जगह है जहां पहले तमाम अनुभवी तैराक भी हार मान चुके हैं। ऐसे में 7 साल के बच्चे का इसे पार करना अपने आप में असाधारण है। कुछ ऐसा ही असाधारण करके दिखाया है मुंबई की रहने वाली अनैया जगदीश कुंती कारकर ने। खेलने कूदने की उम्र में इस 9 साल की बच्ची ने स्विमिंग में जोरदार रिकॉर्ड कायम किया है। मुंबई की अनैया ने समंदर में 17 किलोमीटर की दूरी तैर कर पार की। आपको बता दें कि समंदर के रास्ते अटल सेतु उल्वा से गेटवे ऑफ इंडिया की दूरी 17 किलोमीटर है जिसे अनैया ने 4 घंटे में पार कर इतिहास रच दिया। 1 मई की रात करीब 2 बजे अनैया ने अटल सेतु के पास उल्वे से तैरना शुरू किया और सुबह करीब 6 बजे वो गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गई, यानी संकल्प के जरिए अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। ईशांक और अनैया ने ये साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, सही जज्बा, कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन हो तो छोटी उम्र में भी बड़े बड़ों के रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं। रांची से आकाश कुमार और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: शनि जयंती की महिमा क्या है, शनि देव का पूजा विधान, शनि जयंती पर कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: परिणाम भी अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
2: भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्द मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मानसून। समय से पहले दस्तक दे रहा मानसून। बॉलीवुड एक्टर्स को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता। अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरे में खरीदी प्रॉपर्टी। दसरयू प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़े सैलानी। आध्यात्मिक यात्रा के साथ पहाड़ों की सुंदरता का उठा रहे लुत्फ। चीन सीमा से सटे खूबसूरत देवताल का नजारा बना आकर्षण। केदारनाथ धाम में बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए अच्छी खबर। दर्शन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। मंदिर समिति ने जारी किए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई। रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत ने दिए दिशा निर्देश। कान फिल्म फेस्टिवल में लगा पंजाबी तड़का। पंजाबी मॉडल और एक्ट्रेस रूपी गिल की तस्वीरें वायरल। सफेद आइवरी सूट, डायमंड एमराल्ड ज्वेलरी में दिखा ग्लैमरस अंदाज। मच अवेटेड कॉमेडी फिल्म वेलकम 3 का टीजर रिलीज। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी समेत 34 बॉलीवुड सितारे लगाएंगे हंसी का तड़का। 26 जून को सिनेमाघरों में आएगी वेलकम टू द जंगल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: भीषण गर्मी में देश भर के लिए राहत की खबर। 26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। मौसम विभाग ने दी जानकारी, निर्धारित समय से 6 दिन पहले पहुंच सकता है मानसून। मानसून के पहले आने से किसानों को होगा फायदा। खरीफ फसलों की बुआई के लिए अनुकूल बनेगा मौसम। केरल में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 2 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इस साल मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश की आशंका। IMD का अनुमान, देश में हो सकती है लगभग 80 सेंटीमीटर बारिश। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम की यात्रा। अब तक करीब 13 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन। केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अब तक 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम में 3,24,000 के पार पहुंचे श्रद्धालु। विधि विधान से किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। यमुनोत्री में धाम में अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख के पार। चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रही वाहनों की आवाजाही, श्रद्धालुओं की संख्या में हो रहा इजाफा। केदारनाथ धाम में बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए अच्छी खबर। दर्शन में मिलेगी प्राथमिकता। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए बुजुर्ग और दिव्यांगों को नहीं लगना पड़ेगा लाइन में। मंदिर समिति ने जारी किए निर्देश। केदारनाथ में बन रहा दर्शन का नया रिकॉर्ड। अभी तक 5.5 लाख से ज्यादा यात्री कर चुके दर्शन। पंच केदारों में चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया हो गई शुरू। चल विग्रह मूर्ति को मंदिर परिसर में किया विराजमान। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में 2 दिन तक पूजा अर्चना के बाद 17 मई को रवाना होगी भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह टोली। बद्री विशाल के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। ठंड के बावजूद मौसम बना हुआ सुहाना। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की यात्रा के साथ अब देवताल मार्ग की ओर रुक कर रहे सैलानी। चीन सीमा से सटा है खूबसूरत देवताल इलाका। इन दिनों बर्फ से सराबोर देवताल की वादियां, चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, सफेद चादर ओढ़े घाटी नजर आ रही। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के पावन मौके पर अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्री ईश्वरनाथ सिद्ध शिवालय में जलाभिषेक किया लोगों ने। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी पर रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। भीड़ को देखते हुए बढ़ाई सुरक्षा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाकाल की दिव्य भस्म आरती, मासिक शिवरात्रि के शुभ मौके पर दिखा श्रद्धालुओं का उत्साह। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आज शुभ संयोग आयुष्मान योग के साथ बन रहे कई खास योग। मासिक शिवरात्रि के मौके पर आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग, अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त जैसे शुभ संयोग भी। आज वृषभ संक्रांति पर बन रहा दुर्लभ संयोग, वृषभ राशि में सूर्य देव का प्रवेश दूसरे सौर माह के आरंभ का प्रतीक। वृंदावन पहुंचे प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर, संत प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद। भोलेनाथ के भजन से गूंजा वृंदावन, प्रेमानंद महाराज के सामने कैलाश खेर ने गाए भजन।
3: तो दासी जन्म जन्म बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति कर तुम्हें छोड़।
2: कैलाश खेर बम लहरी वाला पाठ।
3: बोली गवर जा तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव कावर।
2: राधा के लिए कुंज आश्रम में गायक कैलाश खेर ने मीराबाई के भजन भी गाए, संत प्रेमानंद जी महाराज ने की सराहना।
3: सखियों में खेलन जायरी सुन राणा बाई खेले तो।
2: सिंगर कैलाश खेर को प्रेमानंद महाराज ने बताई नाम जप की महिमा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी रहे मौजूद। गुजरात के जूनागढ़ में लोक संगीत कार्यक्रम बना आकर्षण का केंद्र, प्रसिद्ध लोक कलाकारों पर हुई नोटों की बरसात। 500 रुपए के नोटों से पटा नजर आया मंच, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। लोक संगीत कार्यक्रम में मिला धन लोक कल्याण के लिए होगा इस्तेमाल, बेटियों के लिए धनराशि से बनाया जाएगा हॉस्टल। पीएम मोदी की ईंधन बचत की अपील को लेकर गाजियाबाद डीएम रविंद्र की पहल, बाइक से पहुंचे कलेक्ट्रेट। मिर्जापुर में भी दिखा प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत अपील का असर, उद्यान अधिकारी साइकिल से पहुंचे ऑफिस। गुजरात के नर्मदा में बायोगैस प्लांट लगाने का काम तेज, अब तक 665 आदिवासी परिवारों के रसोई धुआं मुक्त। ईंधन संकट के बीच गोबर से बन रही गैस, बच रहा सिलेंडर का खर्चा। ईंधन के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में नो व्हीकल डे, नैनीताल में मुख्य न्यायाधीश समेत सभी जज पैदल पहुंचे हाईकोर्ट। तीर्थ क्षेत्र को मिली 22 करोड़ रुपए की सौगात, धार्मिक पर्यटन हब बनाने की दिशा में माना जा रहा बड़ा कदम। कासगंज में 16 घाटों का होगा सौंदर्यकरण, झील को भी इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड का टिहरी बना एडवेंचर और धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र, देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। टिहरी लेक को मिल रही एडवेंचर टूरिज्म स्थान के रूप में नई पहचान, जेट स्की बोटिंग पर्यटकों को आकर्षित कर रही। मैदानों पर बढ़ती गर्मी के चलते सैलानी कर रहे टिहरी गढ़वाल का रुख, ठंडी वादियों का मजा ले रहे। कूनो नेशनल पार्क में छोड़ी गई दो और मादा चीता, जंगल में घूम रहे चीतों की संख्या बढ़कर 16 हुई। बोत्सवाना से लाई गई दो मादा चीतों को क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद खुले जंगल में छोड़ दिया गया। मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा की नई तारीख का एनटीए ने ऐलान कर दिया, लाखों परीक्षार्थियों के लिए गुड न्यूज। अब 21 जून को देशभर में दोबारा करवाई जाएगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा, 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हो सकते शामिल। एनटीए ने सोशल मीडिया और दूसरे स्रोतों पर दी परीक्षा की नई तारीख की जानकारी, फोन नंबर और ईमेल भी जारी किया। 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए 14 जून को जारी होंगे एडमिट कार्ड्स, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। परीक्षा में छात्रों को मिलेगा 15 मिनट अतिरिक्त वक्त, लाखों छात्रों के लिए राहत देने वाली न्यूज। छात्रों को मिलेगा अपने पसंद के शहर में एग्जाम देने का मौका, आर्थिक बोझ ना पड़े उसका ख्याल रखा जाएगा। अगले साल से ऑनलाइन होगी नीट परीक्षा, ओएमआर शीट की जगह कंप्यूटर बेस्ड कर दिया जाएगा एग्जाम। सरकार का ऐलान, छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं, एनटीए में किए जाएंगे सुधार। एनटीए ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों से की अपील, परीक्षा के बारे में केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यमों पर ही करें भरोसा। पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दी थी 3 मई को हुई परीक्षा, अब नए सिरे से होगा एग्जाम। उत्तर प्रदेश के बरेली में नाथ कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ, 7 प्रमुख प्राचीन शिव मंदिरों को जोड़कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद। यूपी सरकार का फैसला, आंधी तूफान आकाश बिजली से हुई जनहानि में प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी। उत्तरी 24 परगना के आदरितो पॉल ने पश्चिम बंगाल बोर्ड परीक्षा में किया टॉप, परिवार के लोगों में खुशी की लहर। हरियाणा के सिवानी के गांव खेड़ा की रहने वाली दीपिका ने हरियाणा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में किया टॉप, राज्य में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी, 91.64% लड़कियां पास हुई। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन अलर्ट, तीर्थयात्रियों की सेहत की स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के लिए किए गए खास इंतजाम। नॉर्थ गोवा में स्वामी समर्थ मठ में अरविंद केजरीवाल ने की पूजा, पार्टी के कई और नेता रहे साथ। बटाला में आयोजित धार्मिक समागम में पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, महाराज दर्शनदास डेरे में टेका मत्था। जम्मू कश्मीर के रामबन में नशा मुक्त भारत अभियान के सिलसिले में रक्तदान शिविर, लोग पहुंचे। रामबन में प्रशासन ने की पदयात्रा जागरूकता रैली का आयोजन, नशे के खिलाफ ये मुहिम। गुजरात सरकार की शानदार पहल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास के क्षेत्र को एक प्रमुख डेस्टिनेशन वेडिंग स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास से टेंट सिटी 1 को तैयार करवाया जा रहा। नर्मदा नदी के तट पर और सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है ये जगह, जिससे विवाह समारोह के लिए मिलता है एक सुंदर वातावरण। इस पहल से विदेशों के बजाय भारत में ही शादी प्लान करने के लिए लोगों का मोटिवेट होना इसका मुख्य उद्देश्य माना जा रहा। अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का किया था उद्घाटन, अब तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आ चुके 3 करोड़ से ज्यादा लोग। कान फिल्म फेस्टिवल में लगा पंजाबी तड़का, पंजाबी मॉडल अभिनेत्री रूपी गिल की तस्वीरें वायरल हुई। रूपी गिल ने कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर लूटा सबका दिल, सफेद आइवरी सूट, डायमंड एमराल्ड ज्वेलरी में दिखी। कान 2026 में रूपी गिल ने किया अपना डेब्यू, पहले ही अपीयरेंस में बिखेरा जलवा। नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस एमी बरुआ ने भी कान 2026 में बिखेरी छटा, नॉर्थ ईस्ट की पारंपरिक पोशाक में नजर आई। एक्टर ताहा शाह बदुशा भी कान 2026 में शामिल हो रहे डैशिंग लुक में नजर आए। वेलकम टू द जंगल का टीजर आउट, 34 सितारों की टोली संग अक्षय ने लगाया कॉमेडी का तड़का। पीटर विल्सन की फिल्म ऑब्सेस का ट्रेलर जारी, वायलेंस और थ्रिलर से भरपूर है ये फिल्म। भारत में 4 जून को होगा धुंधर 2 ग्रैंड डिजिटल प्रीमियर, 5 जून को जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे सभी। तेलुगु फिल्म महाकाली का हिस्सा बने एक्टर रोहित सर्राफ अक्षय खन्ना संग, साउथ में करेंगे डेब्यू। रामायण की रिलीज से पहले रणबीर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, अमिताभ के बाद सरयू में जमीन खरीदने वाले दूसरे एक्टर। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2026 में एक्टर अनुपम खेर को मिला सम्मान, फिल्म कैलोरी के चुने गए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। लोकेश की बहुचर्चित तमिल फिल्म डीसी का ट्रेलर जारी, वामिका गब्बी और संजना कृष्णमूर्ति मुख्य किरदार में। अपकमिंग तमिल कॉमेडी ड्रामा फिल्म कौन सिटी का नया वीडियो जारी हुआ, फिल्म में अर्जुन दास, अन्ना बेन, योगी बाबू आएंगे नजर। पार्श्व गायिका नेहा भसीन का नया पंजाबी सॉन्ग ब्याह रिलीज हुआ, प्यार पाने और माँ की हाँ की मीठी चाहत को समर्पित ये गाना। 13 साल की हुई एक्टर राजपाल यादव की बेटी हर्षिता यादव, राजपाल ने सोशल मीडिया पर यादगार तस्वीरें शेयर की। क्रोएशिया की कंपनी वर्न ने लॉन्च की दुनिया की पहली रोबो टैक्सी, राजधानी जागरेब में 10 सेल्फ ड्राइविंग कारों से हुई सर्विस। यूरोप की पहली कमर्शियल ड्राइवरलेस टैक्सी सेवा है रोबो टैक्सी, फिलहाल 90 वर्ग किलोमीटर इलाके में चल रही रोबो टैक्सी। यात्री वर्न ऐप से टैक्सी कर सकते हैं बुक, पिकअप और ड्रॉप दोनों मिलेगा। सुरक्षा के लिए अभी हर कार में सेफ्टी ऑपरेटर मौजूद, अगले चरण में सेफ्टी ऑपरेटर हटाने की तैयारी की जा रही। रोबो टैक्सी में एआई और सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वर्न का लक्ष्य 30 नए शहरों तक विस्तार करना है। लंदन में अलाइव लैब्स ने काई वाली लिविंग वॉल टेक्नोलॉजी पेश की, शहरों की दीवारों को जीवित इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलना है इसका मकसद। स्काई से ढके पैनल हवा साफ करने में मदद करते हैं। ये तकनीक शहरों में शोर कम करने का भी काम करती है। पैनल घनी आबादी वाले इलाकों में बढ़ाएंगे हरियाली। कंपनी ने इसका बायो रिसेप्टिव कॉन्क्रीट बनाया। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह लगाए जा सकते हैं। पैनल्स नमी सोखकर छोटे जीवों के लिए जगह बनाते हैं। मॉस पैनल। कंपनी ने इसे बताया कार्बन नेगेटिव और आग्रोधी। पारंपरिक ग्रीन वॉल्स की तुलना में रखरखाव काफी हो सकता है सस्ता। यांगजू रेस्टोरेंट चीन की डिप्लोमेटिक रसोई का बड़ा केंद्र बना। बोले रेस्टोरेंट के शेफ लू खाना भी चीन की सॉफ्ट पावर। हुआयांग व्यंजन चीनी राज्य के भोजों की पहचान बना हुआ है। ये व्यंजन हल्के स्वाद और बारीक चाकू कला के लिए पॉपुलर। विदेशी मेहमानों के लिए निकाल दिए जाते हैं मछली के सभी कांटे। इस व्यंजन में संतुलन और मौसमी सामग्री पर रहता है खास जोर। बीजिंग में चीन का ऐतिहासिक मंदिर बना आकर्षण का केंद्र। 600 साल पुराने मंदिर को देखने विदेशी सैलानियों की उमड़ी भीड़। पर्यटकों ने पारंपरिक चीनी कपड़ों में खिंचवाई फोटो। चीनी वास्तुकला से खासे प्रभावित नजर आए विदेशी सैलानी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
4: पश्चिम बंगाल में हंगामा क्यों है बरपा? बंगाल में निशाने पर टीएमसी कार्यकर्ता, शरीर पर मोबाइल रखकर नागरिकता की जांच। मासूम बहाने ने जीते लाखों दिल। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
6: Thank God I get to wake
5: and everything else. Hear it all here, commercial free on TuneIn.
7: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
8: somebody save me,
7: to timeless favorites,
9: life is like a song,
7: and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
10: You and I, so much more than a history.
11: रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: शनि जयंती की महिमा, क्या है शनिदेव का पूजा विधान, शनि जयंती पर कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: कान फिल्म फेस्टिवल में इंडियन रीजनल फिल्मों की धूम मची हुई है। ऐसे में पंजाबी सिनेमा ने भी इस ग्लोबल मंच में धमाकेदार एंट्री की, जहां एमए विर्क और रूपी गिल की फिल्म चढ़दी कला का विशेष प्रीमियर आकर्षण का केंद्र बना। इस दौरान एक्ट्रेस रूपी गिल ने देसी पंजाबन का लुक लेते हुए कान फेस्टिवल में डेब्यू कर खूब सुर्खियां बटोरी। वैसे ये पहली बार है जब ग्लोबली पंजाबी फिल्मों को इतना बड़ा सम्मान मिला हो।
3: फ्रेंच रिवेरा की चमक, कान का ग्लैमरस रेड कार्पेट, सोशल मीडिया पर इन दिनों जिस देसी बाला की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं, वो है पंजाबी मॉडल और अभिनेत्री रूपी गिल। व्हाइट आइवरी सूट, डायमंड और एमरल्ड ज्वेलरी में रूपी का अंदाज इतना एलिगेंट दिखा कि हर कोई बस उन्हें देखता रह गया। कान 2026 में रूपी गिल ने अपना डेब्यू किया। रुपिंदर कौर गिल यानी रूपी गिल ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक वीडियो यारियां चाफिक से की थी। इसके बाद साल 2018 में फिल्म अश्के से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। फिल्म में नूर के किरदार में उनकी दमदार एक्टिंग को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। यही वजह रही कि उन्हें पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। अब रूपी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को पूरी तरह से तैयार हैं। 29 मई को एमी वर्क के साथ उनकी नई फिल्म चढ़दी कला रिलीज होने जा रही है। दिलजीत दोसांझ से लेकर अमरिंदर गिल, प्रेम ढिल्लो और अखिल जैसे कई बड़े पंजाबी सितारों के म्यूजिक वीडियोज ने नजर आ चुकी रूपी गिल अब कान के मंच पर पंजाब का नाम रोशन कर रही हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि इस बार कान की रेड कार्पेट पर सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि पंजाबी संस्कृति की चमक भी खूब दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: ना आदि ना अंत, ताकत है अनंत। देसी तकनीक से तैयार महाशक्ति वाला हथियार, भारत ने बना लिया भविष्य का ब्रह्मास्त्र। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: नाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्द मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मानसून, समय से पहले दस्तक दे रहा मानसून। बॉलीवुड एक्टर्स को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता। अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी, द सरयू प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़े सैलानी, आध्यात्मिक यात्रा के साथ पहाड़ों की सुंदरता का उठा रहे लुत्फ। चीन सीमा से सटे खूबसूरत देवताल का नजारा बना आकर्षण का केंद्र। केदारनाथ धाम में बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए अच्छी खबर, दर्शन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, मंदिर समिति ने जारी किए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई, रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देश। कान फिल्म फेस्टिवल में लगा पंजाबी तड़का, पंजाबी मॉडल और अभिनेत्री रूपी गिल की तस्वीरें वायरल, सफेद आइवरी सूट, डायमंड और एमरल्ड ज्वेलरी में दिखा ग्लैमरस अंदाज। मच अवेटेड कॉमेडी फिल्म वेलकम 3 का टीजर रिलीज, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी सहित 34 बॉलीवुड सितारे लगाएंगे हंसी का तड़का। 26 जून को सिनेमाघरों में आएगी वेलकम टू द जंगल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके पर।
13: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और यात्रा में एक अलग ही उत्साह और उमंग है। देवभूमि में इन दिनों आस्था का रंग चढ़ा हुआ है, ऐसे में हमारी आज की पहली गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है, और वो है बाबा केदार के द्वार आस्था अपार। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों आस्था अपने चरम पर है। हर हर महादेव और जय बद्री विशाल के जय घोष से पूरा हिमालय आस्था के रंग में रंगा है। कहीं बाबा केदार के दर पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं, तो कहीं बद्रीनाथ धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है।

0: हिमालय की गोद में बसे बाबा केदार का बुलावा आया तो भक्तों का सैलाब देवभूमि की ओर उमड़ पड़ा। कड़ी चढ़ाई, मुश्किल रास्ते और बदलता मौसम भी श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा नहीं पा रहा। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब से अब तक 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन का पुण्य लाभ ले चुके हैं। केदार धाम में अब तो यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। रिकॉर्ड संख्या में भक्त बाबा केदार के धाम में पहुंच भी रहे हैं।
1: प्रत्येक दिन बाबा केदार के दरबार में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है और हर रोज लगभग 25,000 तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार दोपहर 2 बजे तक भक्तों को बाबा केदार के स्पर्श दर्शन हो रहे हैं, तो वहीं दोपहर बाद भक्तों को बाबा केदार के श्रृंगार दर्शन कराए जा रहे हैं।
0: हर रोज 25,000 से ज्यादा लोग केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जबकि अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल हो चुके हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो केदारनाथ धाम में 14 मई को 26,505 श्रद्धालु पहुंचे और कपाट खुलने के बाद से अब तक बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए तो ये संख्या 6 लाख तक पहुंच चुकी है। वहीं बद्रीनाथ धाम में 14 मई को 19,752 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। इस तरह से अभी तक बद्रीनाथ धाम में 4 लाख तक श्रद्धालु आशीर्वाद ले चुके हैं।
2: इस बार यात्रा पिछले जितने सारे रिकॉर्ड थे वो रिकॉर्ड टूट चुके हैं और 5.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने जो है केदार बाबा के दर्शन कर लिए हैं।
0: केदारनाथ धाम हो या बद्री विशाल का धाम, हर दिशा में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। मंदिर परिसर में उमड़ी भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त भक्तों का उत्साह कितना है, लेकिन इस उत्साह और भीड़ के बीच ITBP के जवान भी लगातार सक्रिय हैं। भारी भीड़ में भी सभी भक्तों पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा हो या स्वास्थ्य, हर दिशा में ये जवान एक्टिव हैं।
3: बहुत भीड़ और क्राउड था, तो उसमें अचानक से सेपरेशन से उनको बेहोशी आ गई, लेकिन सुरेश और लाशी जी ने जो SDRF से है, इन्होंने पता नहीं कहाँ से उनको कब नोटिस किया है और तुरंत उनको अपनी टीम के साथ बचाया, हल्दिया के मेडिकल जो कैंप है वहाँ ले गए और वहाँ पे उनका शुगर BP चेक करवाया।
0: देवभूमि में आस्था और भक्ति के इस उत्सव में पर्यटन को भी खूब बढ़ावा मिल रहा है। जो लोग चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं वो आसपास के घूमने वाले क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, पहाड़ों की खूबसूरती का अनुभव ले रहे हैं। इसमें से एक देवताल भी है जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है और इस खूबसूरती को अपनी यादों में समेटने के लिए बड़ी संख्या में लोग देवताल का रुख कर रहे हैं।
4: बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु अब देवताल का भी रुख कर रहे हैं। देवताल जो पवित्र सरोवर है वो भारत चीन सीमा पर माणा से 52 किलोमीटर दूर भारत चीन सीमा पर मौजूद है। यहाँ जाने के लिए विशेष अनुमति ऑनलाइन इनर लाइन परमिट के बाद श्रद्धालु जो हैं वो माणा पास का रुख कर रहे हैं।
0: देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों यात्रा महोत्सव चल रहा है जिसमें श्रद्धालुओं को पहाड़ों में भगवान के दर्शन के साथ साथ पहाड़ों की खूबसूरती को भी करीब से देखने का मौका मिल रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: इस साल नीट की परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों के लिए गुड न्यूज है। सरकार ने नीट परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। सरकार ने 21 मई को नीट परीक्षा का ऐलान किया है। इससे पहले इस साल 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी जिसमें गड़बड़ी के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है आ गई नीट की नई तारीख 21

0: सवाल हैं और 12 तारीख को एजेंसियां साथ मिलकर इनपुट्स आने के बाद सरकार ये तय करती है कि नीट की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। अब 21 जून को ये परीक्षा दोबारा होगी। अच्छी बात यह है कि छात्रों को फिर से मौका दिया जा रहा है कि वो अपने चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर को चुन सके। 7 दिनों का समय दिया जाएगा अपने हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर का शहर चुनने के लिए और इसके साथ साथ 14 जून तक उनको एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। 21 जून को परीक्षा होगी, उस दिन ये संभावना जताई जा रही है कि किस तरह से एक वॉर रूम जैसी स्थिति बनाकर AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर CCTV कैमरे के थ्रू सारे एग्जामिनेशन प्रोसेस पर नजर बना के रखी जाएगी।
1: उत्तर प्रदेश की बरेली में एक हैरतअंगेज घटना घटी। यहां पर आए एक चक्रवाती तूफान में एक बारात घर की छत हवा में उड़ गई। हैरानी की बात यह है कि इस टीन की छत के साथ एक इंसान भी 50 फीट ऊपर तक उछल गया। हालांकि उस इंसान की जान बच गई। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। तूफान में मौत को मात देने वाला इंसान। आपको बता दें कि बरेली में आए तूफान में एक व्यक्ति 50 फीट हवा में उछल गया। हालांकि वो व्यक्ति उड़कर पास के गन्ने के खेत में गिरा जिसमें उसको चोट तो लगी लेकिन उसकी जान बच गई।

0: बरेली में आया चक्रवाती तूफान, तेज तूफान में उड़ गई टीन की शेड, शेड के साथ हवा में उड़ा आदमी, 50 फीट हवा में उछला शख्स, खेत में गिरकर घायल हुआ शख्स, जिसने ये मंजर देखा उसने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस तरह हवा में एक तिनका उड़ता है, उसी तरह से एक व्यक्ति हवा में उड़ता दिखाई दे रहा था। ये घटना बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र की है। दरअसल यहाँ पर बुधवार को चक्रवाती तूफान आया, आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही मिनटों में तूफान ने विकराल रूप ले लिया। यहाँ एक बारात घर के बाहर बने टीन शेड के नीचे कुछ लोग तेज तूफान से बचने के लिए खड़े थे। अचानक हवा की रफ्तार इतनी तेज हुई कि बारात घर की छत का टीन शेड उखड़कर हवा में उड़ गया। उसी टीन शेड के साथ नीचे खड़ा एक व्यक्ति भी हवा के साथ आसमान में 50 फीट ऊपर तक उछल गया।
1: जो आंधी आई थी, तूफान था, बिल्कुल आंधी गया थी, काली काली घटा एकदम आंधी आई थी। और भाई काम पे थे, सुबह को अपना काम करते हैं, सुबह निकल जाते हैं काम पे। उस बाद में वो बरात घर था, उसमें टीन उन पड़ी थी, तो वहाँ पर कुछ लड़के बांध रहे थे कि बांध लो इसके लिए उड़ जाएगी ये, तो बांधने लगे। इन्हें वो एंगल पकड़ लिया तो हवा का जैसे झोंका काली घटा चाहिए तो झोंका आया था, वो उड़ा के ले गई।
0: हालांकि इतने ऊपर उड़कर गिरने के बाद भी उसे कुछ खास चोट नहीं आई। दरअसल वो व्यक्ति जिसकी पहचान नन्हे मियां के रूप में हुई है, वो इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पास के खेतों में गिर गया। नन्हे को हाथ और पैर में चोट आई है लेकिन उसकी जान बच गई।
2: हम तीन के साथ ही एंगल पकड़े थे तो हम संगे चले गए, जाने के बाद में ऊपर हाथ हमारे छूट गए, क्या हुआ अल्लाह जाने, तो हमें नहीं पता था। जाने के बाद में जो करीब 80 फीट दूरी पे गिरे हैं।
0: वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसे फर्जी या एआई से बनाया हुआ बताया, लेकिन स्थानीय लोगों और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर इस घटना की पुष्टि की। घटना के तुरंत बाद नन्हे मियां को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नन्हे मियां का इलाज चल रहा है और अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर है।
3: जब काफी तेज जो है आंधी आई उस समय बमियाना गांव के रहने वाले हैं, तो यहाँ अभी मतलब एक टीन शेड उड़ा और उसी के साथ मतलब वीडियो हमने देखा कि ये भी उड़ गए उस तेज हवा में और काफी दूर जाकर गिरो, तो इसीलिए जो है ये जानकारी करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं कि इनको मतलब क्या क्या समस्या है इस समय, और इसमें जो है शासन द्वारा जो निर्धारित सहायता है वो भी हम इनको उपलब्ध कराए।
0: एक कहावत है, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, यानी जिसकी

0: की रक्षा ईश्वर करते हैं, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नन्हे मियाँ के मामले में भी ऐसा ही हुआ, जब 50 फीट तक हवा में उछलने के बावजूद भी उनकी जान बच गई, जिसे लोग अब चमत्कार मान रहे हैं। कृष्ण गोपाल राज, बरेली, गुड न्यूज टुडे।
1: महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में गर्मी से सड़क पर रह रहे काम करने वाले ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस को एक विशेष जैकेट सौंपी गई है, जो कि उनके शरीर को ठंडक पहुंचा रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। वह है 46 डिग्री तापमान में पुलिस की कूल ड्यूटी। आपको बता दें कि अमरावती पुलिस को गर्मी से बचाने के लिए मिला है एयर कूल जैकेट, जो कि 46 डिग्री की तपिश में भी उन्हें कूल रखता है। इस खास जैकेट की कीमत करीब 7,000 रुपए है।
2: महाराष्ट्र के अमरावती शहर में गर्मी चरम पर है, तापमान 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसे में लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करने में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। गर्मी के इस मौसम में जहां आम लोग घर में रहकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं शहर की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले पुलिस के जवान दिन भर चौराहों पर खड़े रहते हैं। लेकिन अब अमरावती पुलिस ने अपने जवानों के लिए एक अनोखी पहल की है और करीब 500 पुलिस कर्मियों को एयर कूल जैकेट दिए गए हैं। एयर कूल जैकेट मिलने से पुलिस कर्मियों को भीषण गर्मी के मौसम में भी ड्यूटी करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अमरावती के लोग जब ट्रैफिक पुलिस के जवानों को इस सफेद रंग के जैकेट में देखा तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई, लेकिन जब उनको जैकेट के बारे में जानकारी मिली तो वो भी अधिकारियों के फैसले से सहमत दिखाई दिए।
3: 24 घंटे जो है सेवा में तत्पर ही रहते हैं, इतने धूप में और इतने गर्मी के अंदर हम कुछ छाव का सहारा ले रहे सर, और 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं, इसके अंदर उनको सहायता होना बहुत जरूरी है।
2: हमारी पुलिस सिर्फ जनता को लेकर ही संवेदनशील नहीं है, बल्कि अपने कर्मचारियों का भी भरपूर ध्यान रखती है, इसलिए जवानों के हक में फैसला लिया गया।
4: एयर कूल जैकेट की वजह से धूप में जो ड्यूटी कर रहे वो हाथों कम्बलदार हैं, उनके लिए बहुत ही सुसह्य हो गया है और वो अच्छे तरह से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
2: अब आपको बताते हैं कि आखिर इस जैकेट में ऐसा क्या है जिससे जवानों को गर्मी में बीच सड़क राहत महसूस हो रही है। सफेद रंग के जैकेट पर रिफ्लेक्टर लगे हैं, पीछे दो छोटे पंखे लगे हैं, 10,000 mAh पावर बैंक से ये चलते हैं। जैकेट के अंदर हवा सर्कुलेट होती है जिससे शरीर ठंडा रहता है और लू से बचाव होता है। जहां तक कीमत की बात है तो ये करीब 7,000 प्रति जैकेट के हिसाब से खरीदा गया है। किसी भी शहर में यातायात व्यवस्था संभालना अपने आप में चुनौती वाला काम है, और अगर तापमान 46 डिग्री के आसपास हो तो ये काम और मुश्किल हो जाता है। लेकिन अमरावती पुलिस की इस पहल को हर कोई सलाम कर रहा है। अमरावती से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
1: सिर्फ 4 साल की उम्र, ग्रहों का ऐसा ज्ञान कि लोग चकित रह जाएं। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के रहने वाले खास बच्चे रुद्र राणा की, जिसे 4 साल की छोटी उम्र में सोलर सिस्टम का पूरा ज्ञान है। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है 4 साल की उम्र में सोलर सिस्टम का ज्ञान। ग्रेटर नोएडा के नन्हे रुद्र राणा ने सोलर सिस्टम की जानकारी से रिकॉर्ड बना दिया। ग्रहों, उपग्रहों और अंतरिक्ष से जुड़े सवालों के जवाब रुद्र इतनी तेजी और सटीकता से देते हैं कि हर कोई उनकी प्रतिभा का कायल हो गया है।
5: चार साल का रुद्र, जिसकी नजरों में छुपा है एक बड़ा आसमान, इस छोटी सी उम्र में वो खेल खेल में बखूबी जानता है ग्रहों और उपग्रहों के नाम। तभी तो रुद्र की प्रतिभा, उसकी ग्रहों को लेकर नॉलेज पेरेंट के साथ ही लोगों को हैरान कर रही है। ग्रेटर नोएडा के नन्हे रुद्र राणा ने सोलर सिस्टम की जानकारी से एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी कम उम्र में रुद्र न केवल ग्रहों के नाम बल्कि उनकी विशेषताएं भी बेहद आसानी से बता रहे हैं।
6: नन्हे से रुद्र ने बड़ा कमाल कर दिया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 4 साल के रुद्र का नाम दर्ज हो गया है। रुद्र महज 1 मिनट 5 सेकंड में सभी 8 ग्रहों को पहचान लेते हैं।
5: रुद्र की माँ बताती हैं कि कुछ महीने पहले ही यूट्यूब किड्स को देखते हुए रुद्र का ग्रहों के बारे में इंटरेस्ट जागा। वो उनसे बहुत सारे सवाल करता था।
7: एक चैनल है ब्लिपी, उससे इसने ग्रहों को देखा। प्लैनेट्स को देखने के बाद इसे बड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। एक दिन मून रेड हुआ था तो इसने बोला मम्मा सी मार्स, और तब मुझे लगा कि वाओ, इसकी क्यूरियोसिटी और लव देखा मैंने सोलर सिस्टम के लिए। तो उसके बाद मैंने इसे बताना शुरू किया कि जुपिटर क्या है, मरकरी क्या है।
5: जब बेटा पढ़ने की उम्र तक आया, ऐसे में बच्चे को शुरुआती पढ़ाई से रूबरू करवाने, उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए ही रुद्र की माँ ने जॉब छोड़ी। लेकिन नौकरी का सेक्रीफाइस कुछ ऐसे रंग लाएगा ये ज्योति ने नहीं सोचा था। वहीं इतनी कम उम्र में अपने बेटे की याददाश्त, समझ और ऐसी असामान्य उपलब्धि देख पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं।
8: मेरे लिए तो पूरा सरप्राइज है, बिकॉज मुझे पता भी नहीं था कि ये सब उसने रजिस्टर कर लिया। सो द क्रेडिट गोज टू हर ओनली।
5: रुद्र के पेरेंट्स ने अपने बेटे की इस असामान्य उपलब्धि को लेकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, मगर वो इस बात का ख्याल जरूर रख रहे हैं कि उनके बेटे पर रिकॉर्ड या किसी और चीज का कोई दबाव ना हो।
6: कम उम्र में भले ही बड़ा रिकॉर्ड आया है, लेकिन रुद्र ने अभी, रुद्र के ऊपर उनके पेरेंट्स कम से कम कोई बर्डन नहीं डाले कि अब मेरा बेटा ये भी करेगा वो भी करेगा। फिलहाल घर वाले उसी को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं, और यही सबसे खूबसूरत बात है कि छोटे से बच्चे ने भले अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन उसके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी आगे के लिए नहीं है। मतलब उसका बचपन आगे भी ऐसे ही मजे से कटता रहेगा। बाय बोल दो सबको।
9: बाय।
6: कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
1: गुजरात के जूनागढ़ में एक धार्मिक और लोक संगीत कार्यक्रम के दौरान ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे लोगों को हैरान कर दिया। भजनों और लोक संगीत के बीच मंच पर नोटों की ऐसी बारिश हुई कि लोग देखते रह गए। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। लोक संगीत कार्यक्रम में नोटों की बारिश। गुजरात के जूनागढ़ जिले के मालिया हटीना में प्रयागराज ग्रुप ने भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आयोजित किया, जिसमें रात में लोक संगीत और भजनों से महफिल सजी और प्रख्यात भजन गायक कविराज जिग्नेश ने श्री कृष्ण और दोस्ती पर आधारित भजनों की ऐसी प्रस्तुति दी कि पूरा माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण हो गया, और कार्यक्रम में मौजूद श्रोता भजनों की धुन पर झूमते नजर आए। इसी दौरान प्रसिद्ध लोक कलाकार माय भाई आहिर के बेटे जयराज आहिर भी मंच पर पहुंचे और उन्होंने अद्भुत प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शुरुआत में लोग हाथों में नोटों के बंडल उड़ाते दिखाई दिए, लेकिन जैसे जैसे दायरा रंग में आता गया वैसे वैसे लोगों ने थैलों और बोरियों में भरकर नोट उड़ाने शुरू कर दिए। करीब 1.5 से 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में मंच पर लगातार धनवर्षा होती रही। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम में उड़ाई गई पूरी राशि धार्मिक आयोजन और सेवा कार्यों के लिए दान के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इन दिनों पानी की लहरों पर रोमांच अपने चरम पर है। मौका है अस्मिता नेशनल वुमेन्स रोइंग लीग का, जिसमें देशभर से आई महिला खिलाड़ी अपना दमदार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है वो है गोरखपुर में अस्मिता रोइंग लीग का आगाज। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में चप्पू के रफ्तार और खिलाड़ियों के जोश ने माहौल को पूरी तरह से रोमांच से भर दिया है। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 12 से 16 मई तक यह भव्य रोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से आई महिला खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और ताकत का प्रदर्शन कर रही है।
10: पानी की सतह पर दौड़ती नावें, जीत के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी और हर मुकाबले को बेहद रोमांचक बनाती लहरें, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां रामगढ़ ताल में एक खूबसूरत नजारा देखने के लिए मिल रहा है। पानी की लहरों के साथ प्रतियोगी अपने सपनों की उड़ान भर रहे हैं। चप्पुओं की तेज रफ्तार, जीत का जुनून और खिलाड़ियों का शानदार तालमेल हर किसी को रोमांचित कर रहा है। दरअसल यहां पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का आयोजन किया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन और खेल विभाग ने गोरखपुर में प्रतियोगिता का आयोजन किया है। यहाँ अस्मिता नाम महिला खेलों से जुड़ा हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला खेल को बढ़ावा देने के लिए दिया है।
11: इसमें गोरखपुर का जो रामगढ़ ताल है वो उत्तर प्रदेश के लिए भारत के नौकायन के पटल में एक अपना मील का पत्थर साबित हुआ है। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यहाँ पे आयोजित की गई, उसके बाद सब जूनियर नेशनल हुआ और अब ये अस्मिता हो रहा है, उसके बाद सब जूनियर होगा।
10: अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का ये दूसरा साल है। इससे पहले हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। इस साल प्रतियोगिता को लेकर महिलाओं में बेहद उत्साह है। देश के 16 राज्यों से 275 महिला खिलाड़ी पहुंची हैं।
12: मैं उड़ीसा से कटक रोइंग क्लब को लेकर आ रखी हूँ यहाँ पे, जो कि सभी बच्चे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर सेंटर में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ सेकंड अस्मिता लीग्स जो चल रहा है, इससे पहले हैदराबाद में हुआ था, वो भी काफ़ी अच्छा था और ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ मैं अंडर 19 और सीनियर कैटेगरी की टोटल 8 इवेंट्स की टीमें यहाँ लेके आई हूँ।
10: कुल मिलाकर गोरखपुर की धरती पर इन दिनों रोमांचक प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतर रही हैं और उनमें हर मुकाबले में जीत का जज्बा और बेहतर प्रदर्शन की चाह साफ दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ 7 बजे 7 Good News में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
14: The Tailgate Top 20. Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of The Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
15: The Tailgate Top 20.
16: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
14: Try to keep up.
17: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
18: और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
1: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
0: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
2: You're listening to MSNBC.
0: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
4: It's your boy,
3: just
4: Jay-Z.
3: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
13: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर। नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन। न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत। नेफेड के जरिए 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी। किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगी रकम। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाएगी सीबीआई। सीबीआई ने बनाया नया पोर्टल, AI फीचर से लैस, नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम अभय लॉन्च। नकली दस्तावेजों को पकड़ना होगा आसान। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्दी मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मॉनसून। समय से पहले दस्तक दे रहा है मॉनसून।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब केवल अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी कर दी जाती है कि वो असलियत से कोसों दूर लगती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर आगे शेयर करने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज फैक्ट चेक में जिन दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में नई सरकार के गठन के बावजूद टीएमसी के लोगों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। बीच सड़क पर एक टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला किया गया, सच्चाई क्या है, आगे करेंगे पड़ताल। दूसरी खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुस्लिम ईसाइयों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। इस वायरल दावे की सच्चाई क्या है, करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
5: चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक का सफर। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर एक युवक दूसरे युवक को बुरी तरह से पीट रहा है, वहां पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इसे रोकने की कोशिश नहीं करता। वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में नई सरकार के गठन के बावजूद टीएमसी के लोगों पर हमला रुक नहीं रहा है, हर दिन उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
4: बंगाल में भगवा लहराने के साथ ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन में है। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार एक के बाद एक कड़े और कारगर फैसले ले रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को दूसरे युवक की पिटाई करते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग राज्य सरकार के नियत पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद भी राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला रुक नहीं रहा है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि सड़कों पर टीएमसी पर खुलेआम हमले हो रहे हैं, आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में एक युवक को दूसरे युवक की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। और इस वीडियो के जरिए लोग बंगाल की शुभेंदु सरकार की नियत पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद भी राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला रुक नहीं रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये मराठी में लगा, आप भी सुनिए इन आवाजों को। वायरल वीडियो बंगाल का होता है तो यहाँ पर बंगला आवाज सुनाई देती, लेकिन यहाँ पर बंगला मिश्रित हिंदी प्योर मराठी सुनाई दे रही है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने एक बार फिर से वायरल वीडियो के फ्रेम को गौर से देखा, और इस दौरान हमें वीडियो में एक स्कूटी नजर आई, और इस स्कूटी पर MH नंबर प्लेट है जो कि महाराष्ट्र का है। अगर वीडियो बंगाल का होता तो फिर जाहिर सी बात है कि यहां पर बंगाल नंबर प्लेट स्कूटी नजर आती, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट और बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन वहां पर भी वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए बंगाल में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही है। देखिए सच और झूठ क्या है।
4: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर मिला। इसे 15 अप्रैल 2026 को पोस्ट करते हुए लिखा गया था मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मोहम्मद जैद शेख पर ऑटो रिक्शा से आए 3-4 लोगों ने हमला किया। सूत्र के अनुसार यह हमला सुपारी देकर करवाया गया है। इस मामले में हुजैफा नाम के व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही हमलावर भेजे। ये घटना वर्सोवा के पास अंधेरी वेस्ट में हुई बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर और जांच की जा रही है। ऐसे मामले शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। सर्च के दौरान एक फेसबुक यूजर के अकाउंट पर वायरल वीडियो देखने को मिला। यह वीडियो 11 अप्रैल 2026 को साझा किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक अंधेरी वेस्ट में शख्स पर हमला, सुपारी देकर हमले का आरोप। अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में एक व्यक्ति पर हमला किए जाने की घटना सामने आई। इंस्टाग्राम यूजर ने भी 10 अप्रैल 2026 को इस वीडियो को शेयर करते हुए घटना को 8 अप्रैल की रात का बताया था। जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार है। महाराष्ट्र पुलिस की वेबसाइट पर इस मामले की FIR अपलोड है। वर्सोवा थाने में दर्ज केस के मुताबिक घटना 9 अप्रैल 2026 की रात की है। साफ है वायरल वीडियो मुंबई का है। अप्रैल 2026 की शुरुआत में अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया था। इस मामले की वीडियो को बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा का मामला बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सूरजुद्दीन मंडल के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों और ईसाइयों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जब वायरल वीडियो का सच और झूठ की पड़ताल की गई तो क्या कुछ सामने आया, देखिए हमारी रिपोर्ट।
14: बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा है कि शासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार का रोड मैप इस सरकार की प्राथमिकता होगी। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में सुरक्षा बल और पुलिस को लोगों की नागरिकता की जांच करते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद सुरक्षा बल और पुलिस के जवान मुस्लिमों और ईसाइयों के घर जाकर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटा रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद CRPF और पुलिस पश्चिम बंगाल में हर मुस्लिम और ईसाई के घर जाकर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटा रही है। ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है जिसका सामना भारत के अल्पसंख्यकों को रोज करना पड़ता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल बंगाल चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में कई वीडियोस को चुनाव से जोड़कर पेश किया जा रहा है। अब वहां पर ऐतिहासिक जीत के साथ ममता बनर्जी का वर्चस्व खत्म कर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो का सिलसिला अभी भी जारी है। और इस बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है जिससे दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां के मुसलमानों और ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटाया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें शक हुआ। हमारी नजर वीडियो में नजर आ रहे पुलिस अधिकारी के ड्रेस के कलर पर गई। ये खाकी रंग है, जबकि बंगाल पुलिस की वर्दी का रंग सफेद है, जो कि भारत के दूसरे राज्यों की खाकी वर्दी से अलग है। उसके बाद नागरिकता जांचने का एक पूरा प्रोसेस होता है, ऐसे में हमें वीडियो के दावे पर भी शक हुआ। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने पता लगाने की कोशिश की कि क्या नई सरकार के गठन के बाद पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ हो भी रहा है, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा होता तो फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट पर सुर्खियां बनी होती, लेकिन कहीं कुछ हमें मिला नहीं। लिहाजा हमने इस सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो वायरल हो रहा वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, देखिए सच और झूठ क्या है।
14: हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो और पोस्ट वायरल हुए हैं। फैक्ट चेक टीम ने लगातार इन वीडियोस और पोस्ट का फैक्ट चेक किया है। इस दौरान वायरल दावे गलत साबित हुए हैं और अब इसी कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। दावे की सच्चाई का पता लगाने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें इंटरनेट पर खंगाला। इसके जरिए हम एक वेबसाइट पर पहुंचे, जहां 1 जनवरी 2026 को प्रकाशित खबर में वायरल हो रहे वीडियो के कुछ हिस्से देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कौशाम्बी थाने के प्रभारी अजय शर्मा एक संदिग्ध शख्स की पीठ पर मोबाइल रखकर उसकी तथाकथित नागरिकता जांच करते दिख रहे हैं। आमतौर पर नागरिकता की जांच के लिए बायोमेट्रिक, पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। वायरल वीडियो 23 दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो एक चैनल के एक्स हैंडल पर भी देखने को मिला। यहां इसे 1 जनवरी 2026 को अपलोड किया गया था। एक वेबसाइट पर 2 जनवरी 2026 को छपी रिपोर्ट के मुताबिक कौशाम्बी थाना प्रभारी का वीडियो वायरल होने के बाद इंदिरापुरम के सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने उन्हें चेतावनी जारी की है। उन्होंने आगे से इस तरह की हरकत नहीं करने की बात भी कही। वीडियो कौशाम्बी में अस्थायी बस्ती और झुग्गी में रहने वाले निवासियों से पूछताछ और सत्यापन की प्रक्रिया का था। सर्च के दौरान एक और रिपोर्ट मिली। 2 जनवरी 2026 को छपी खबर में लिखा था कि वीडियो वायरल होने के बाद कौशाम्बी थाने के प्रभारी अजय शर्मा ने इसे एक मजाक बताया था। साफ है, वायरल हो रहे वीडियो के जरिए गलत दावा किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई नागरिकता जांच का वीडियो है। पाकिस्तानी यूजर ने प्रोपेगेंडा के लिए इसे बंगाल में मुसलमानों और ईसाइयों की नागरिकता की जांच का बताकर शेयर किया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
10: अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
5: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
17: ए?
18: मैं आपकी बात क्या मांगू, ये बताइए आपकी बात मैं क्या मांगू।
17: हालत खराब है, अम्मा नहीं रो पा रही हूं, प्लीज बस वापस ना लेके जाना, इतना मार जितना मारे उतना मार लीजिए, लेकिन वापस नहीं लेके जाना।
19: सोशल मीडिया पर बच्चों के मासूम वीडियो अक्सर लोगों का दिन बना देते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची क्लासरूम में अपनी टीचर के सामने ऐसे ऐसे बहाने बनाती नजर आ रही है कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं।
18: आप क्लास में अब्सेंट क्यों होती हो?
17: क्लास में स्पेंड
18: नहीं, अब्सेंट क्यों होती हो?
17: अच्छा बताती हूं।
18: हाँ बिल्कुल बताइए, रीजन बताइए मुझे आप।
19: वीडियो में बच्ची कभी रोती है, कभी अपनी बात समझने की कोशिश करती है और फिर अचानक टीचर से कहती है, मैम हंस के दिखा दीजिए फिर मैं खुश हो जाऊंगी।
17: हंस के दिखा दीजिए तो मैं चुप हो जाता हूँ। हंस के दिखा दीजिए तो मैं चुप हो जाता हूँ।
18: अच्छा मैं आपको हंस के दिखा दूँ? मैं स्टॉप लॉगिंग, मैं आपको हंस के क्यों दिखाऊं?
17: इसलिए फिर मेरा रोना बंद हो जाता है।
18: तो आप तो मेरे हंसने वाला वर्क कर ही नहीं रही हो, आप तो अपना टेस्ट कहाँ दे रही हो मुझे? आपको यही नहीं पता इन द स्काई में आपको क्या क्या दिखते हैं?
19: यही मासूमियत अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रही है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। लोग बच्ची की क्यूटनेस और उसके एक्सप्रेशन देख कर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि ऐसी हरकत देखकर बच्चों पर गुस्सा करना भी मुश्किल हो जाता है।
18: डे किससे हॉट होता है?
17: गर्मी।
18: गर्मी किससे होती है?
17: हॉट।
18: हॉट किससे? हॉट कैसे आता है? अभी स्काई में क्या ब्राइट हो रहा है?
17: अभी
18: स्काई में क्या ब्राइटनेस है? ये क्या है? मार दूंगी प्रिशा।
17: मैं जाने दो, कल पूरा याद करके आऊंगी मैं।
18: क्या जाने दूं मैं आपको? है
17: प्रिशा, मुझे जाने दीजिए प्लीज।
18: क्यों?
17: पसंद नहीं मुझे ऐसे आप डांटे कुछ करें, पता भी मैं बहुत मुझे डांटती आपसे भी।
19: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने दिल जीत लिया है। वीडियो में एक बच्चा नजर आ रहा है जिसने गांधी जी का लुक लिया हुआ है और एक जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा है। तभी वहां पर एक बच्ची आती है, वो जो खुद खा रही थी उसी में से एक टुकड़ा उस बच्चे को भी खाने के लिए ऑफर करती है। दोनों बच्चों की ये मासूमियत और बच्ची का उस बच्चे का ऐसा ख्याल रखना दिल जीत लेता है और इसी कारण वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मगर ये जानकारी नहीं मिल पाई कि वीडियो कब और कहां का है।

जहां एक तरफ देश में बोर्ड परीक्षा के नतीजों के बाद बच्चों पर अच्छे मार्क्स लाने का भारी दबाव होता है, वहीं मुंबई के एक परिवार ने अपने बेटे मोहम्मद जैद के 55% मार्क्स आने पर जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। जब जैद का रिजल्ट आया तो पता चला कि उसने 55% अंक हासिल किए थे। आमतौर पर ऐसे नतीजों के बाद घरों में या तो सन्नाटा पसर जाता है या फिर पड़ोसी के बच्चों और दोस्तों से तुलना शुरू हो जाती है, लेकिन जैद के घर का सीन बिल्कुल अलग था। परिवार ने जैद की उपलब्धि को छोटा नहीं समझा और उसकी मार्कशीट के डिजाइन वाला एक खास केक मंगवा कर इसे सेलिब्रेट किया। इस स्पेशल केक पर जैद की पूरी डिटेल थी, नाम, रोल नंबर और हर सब्जेक्ट के मार्क्स। वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि जैद जैसे ही कमरे में आता है परिवार के लोग तालियों से उसका वेलकम करते हैं। जैद के चेहरे की मुस्कान ये बताने के लिए काफी थी कि उसके माता पिता का ये सपोर्ट उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कितना जरूरी था।

0: दिल्ली स्टेशन पर एक इंडोनेशियाई महिला पर्यटक अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी गेट पर खड़े होकर कैमरा संभालते समय उसका पसंदीदा दुपट्टा प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच के गैप में जा गिरा। इसके बाद जो हुआ उसने इंटरनेट की जनता का दिल जीत लिया। दरअसल इंडोनेशिया की एक कंटेंट क्रिएटर हाल ही में भारत घूमने आई थी। दिल्ली स्टेशन पर जब वह ट्रेन का इंतजार कर रही थी तभी गेट पर खड़े होकर कैमरा संभालते समय उनका पसंदीदा दुपट्टा हाथ से फिसलकर सीधा प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच के खतरनाक गैप में जा गिरा। विदेशी महिला परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि चलती ट्रेनों के बीच पटरी पर उतरना जान जोखिम में डालने जैसा था। तभी वहां से गुजर रहे एक अंकल ने विदेशी महिला की परेशानी देखी। उन्होंने पहले हाथ से दुपट्टा खींचने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अपनी जान की परवाह किए बिना उस सकरे गैप में छलांग लगा दी। वहां खड़े लोग बस देखते रह गए। अंकल ने पटरी से दुपट्टा उठाया और उसे वापस महिला को थमा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि बच्ची एक जगह पर बैठी हुई है और अपना स्किन केयर कर रही है। उसे किसी का क्रीम मिल गया है और उसने लगभग पूरे शरीर पर उस क्रीम को लगा दिया है। पूरा चेहरा क्रीम से भरा हुआ है, हाथों में क्रीम लगी हुई है और साथ ही पैरों पर भी क्रीम लगा लिया है। वो अभी भी चेहरे पर क्रीम लगाती नजर आ रही है। वहीं चारों तरफ छोटे छोटे कागज पड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब किसी ने अचानक यह देखा और वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: है शनि जयंती की महिमा, क्या है शनि देव का पूजा विधान, शनि जयंती पर कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe, live from London on TuneIn.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर। नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन। न्यू जेनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत। निफेड के जरिए 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी, किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाएगा सीबीआई का नया पोर्टल। एआई फीचर से लैस नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम अभय लॉन्च, नकली दस्तावेजों को पकड़ना होगा आसान। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्दी मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मॉनसून, समय से पहले दस्तक दे रहा है मॉनसून। बॉलीवुड एक्टर्स को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता। अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी, द सरयू प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई। रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत ने दिए निर्देश। मच अवेटेड कॉमेडी फिल्म वेलकम 3 का टीजर रिलीज। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी सहित 34 बॉलीवुड सितारे लगाएंगे हंसी का तड़का। 26 जून को सिनेमाघरों में आएगी वेलकम टू द जंगल।
4: सब कर्म के अधीन है, यह मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार।
5: मत जाओ काना, तुम गए तो प्रेम चला जाएगा।
4: तोपे वारु उर्वशी, सुनो राधे के सुझाव, तू मोहन के उर्वशी, तू है उर्वशी समा।
5: गोपियों के घर से माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं।

0: का इतना महत्व केवल बताते हो या मानते भी हो?
1: कृष्ण के जीवन का सार है राधा।
2: नवजोत रंधावा, अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे बड़ी गुड न्यूज, और उस गुड न्यूज के जो मेन किरदार हैं वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में, जिनसे हम चर्चा करेंगे। कृष्णावतारम रिलीज हो चुकी है और किस तरीके से दर्शकों के दिलों पर छा गई है, ये सब आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि फिल्म की स्टारकास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले जय श्री कृष्णा।
3: जय श्री कृष्णा।
2: एक बार परिचय करा देती हूँ, सिद्धार्थ गुप्ता एक्टर, संस्कृति हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने सत्यभामा का किरदार निभाया, और संस्कृति की ये डेब्यू फिल्म है, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं साजन राज जी, ये प्रोड्यूसर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डेब्यू, और वो भी कृष्णा अवतारम में एक ऐसी फिल्म में जिसको खूब लोग पसंद भी कर रहे हैं, और बहुत आई थिंक उत्तर प्रदेश में तो टैक्स फ्री भी हो चुकी है।
4: यस, बस बहुत ओवरवेल्म्ड हूं। मैंने अगर सपना भी देखा होता तो ऐसा किरदार नहीं मिलता, तो इट्स जस्ट अ ड्रीम दैट आई एम लिविंग राइट नाउ।
2: आप बताइए कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? अच्छा लग रहा है?
3: बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था कि हम एक अच्छा ही फिल्म बना रहे हैं, एक अच्छे मैसेज के साथ, और हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा खुशी, इतनी ज्यादा प्रसन्नता, इतना ज्यादा अभिनंदन मिलेगा।
2: आज किसी ने रोक के आपसे सेल्फी भी लिया है ना, ये हमारे दर्शकों को बताइए आप।
3: तो हम कहीं जाते हैं प्रमोशन करने तो पता है क्राउड आएगा तो सेल्फी लेता है, बट स्पॉट करके हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, एक आंटी थी बाइक पे बैठी हुई अपने हस्बैंड के पीछे, और वो देखे जाए, ऐसे देखे जाए, कृष्ण अवतारम। सो वो आई थिंक मेरा मार्लिन मुनरो मोमेंट था कि आई गॉट स्पॉटेड, किसी ने मुझे स्पॉट किया बिकॉज ऑफ द वर्क आई हैव डन, जिस काम की वजह से हम इतना।
2: बिल्कुल, चलिए साजन जी अब मैं आपके पास आऊंगी। देखिए हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, पहले तो मैं आपको दर्शकों को ये बताते चले हम कि ये पार्ट वन है, और जो मुझे पता चला है पार्ट टू एंड पार्ट थ्री भी आने वाला है, जिसमें आप कृष्ण के जीवन की हर लीला को बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे। पार्ट वन की हम बात करते हैं क्योंकि अलग अलग फिल्में आ रही हैं, लेकिन आजकल मैथोलॉजिकल फिल्मों की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा है, पसंद भी कर रहे हैं लोग। अभी हाल फिलहाल में एक और फिल्म आई थी जिसको लेकर चर्चा भी हो रही थी, अब कृष्णावतारम वन आई है, और उसका रिस्पांस मतलब गुजरात में तो लोग, अच्छा आप तो गुजरात से ही, उस पर मैं आती हूँ, लेकिन गुजरात में तो लोग एक्चुअली इसको फील कर रहे हैं, शंकराचार्य हो, इस्कॉन कम्युनिटी हो, हर कोई बहुत पसंद कर रहा है इसको।
5: पहले तो ये माइथोलॉजी नहीं है हमारा। अच्छा। माइथोलॉजी शब्द हमारा जो है, और मेरे मैं हर किसी से आग्रह करूंगा कि ये हमारा इतिहास है, ये हमारी संस्कृति है। सो हम इनफैक्ट ये एक मुद्दा भी हम रख रहे हैं कि व्हाई शुड हिंदू बी माइथोलॉजी, राइट? इट इज अ हिंदू हिस्ट्री। कृष्ण भगवान हमारे है, वी हैव यू नो बेट द्वारका, हमारे जो द्वारका अंदर there's a lot of
2: प्रमाण
5: तो है। तो ये है इन टर्म्स ऑफ ये जो वर्ल्ड हम जो बिल्ड कर रहे हैं, कृष्ण अवतारम का वर्ल्ड, कृष्ण भगवान के बारे में आप जितने एपिसोड्स बनाए, जितने सिर्फ ट्रिलजी बनाओ, उससे कम ही पड़ेगा, राइट? मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से इसको रिसेप्शन मिला है, जब हम जैसे हम कितने बार थिएटर में जाते हैं, जब लोग देखते हैं तो साक्षात कृष्ण उनको नजर आता है, वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। हम कहीं ना कहीं हमारा कास्टिंग राइट किया हुआ है, हर एक कैरेक्टर के बारे में द वल्नरेबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ सत्यभामा इज़ वेरी क्लियर, लाइक जो राधा का जो वाइवेसिटी है दैट वॉज वेरी वेरी क्लियर, रुक्मिणी का जो एक रानी का जो भाव होता है इट वॉज वेरी वेरी क्लियर, सो एवरी बिट ऑफ दैट इज रियली, पीपल आर रियली प्लेइंग इट बैक। कितने बार आज मुझे इनफैक्ट कितने मैसेजेस आए कि माय मदर हैड गॉन देयर एंड शी ब्रोक डाउन एंड शी क्राइड एंड शी यू नो वॉच्ड द एंटायर थिंग, इट्स ब्यूटीफुल। लोग भावुक हो जाते पहले 7 मिनट में, जब जैसे आप घुस जाते फिल्म के अंदर, और जो लास्ट की जो 16 मिनट्स में द वे जो द्वारका का जो प्रलय है, आई हैव सीन पर्सनली सीन पीपल मेल्टिंग राइट इन द थिएटर। और ये एक नहीं, ये एक ऐसा स्पोरैडिक इंसिडेंट नहीं है, इट्स कंसिस्टेंटली मैडम ये होता जा रहा है, which is,
2: एक चीज आप जिस तरीके से जिन भावों की बात कर रहे हैं वो भाव दर्शकों के हैं, वो भाव दिख भी रहे हैं, और जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब आप इस पूरी फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे, आपने बिल्कुल फ्रेशर्स, आपकी तो शायद एक फिल्म आ चुकी है, इन दोनों का आपने बोला कि आपकी डेब्यू ही है, yeah. एक तरीके से, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं

0: तो उस तरह से हमने बनाया हुआ है, तो वो एक ऑप्टिमल वे से बनाया हुआ है. यंग यूथ जब देखते हैं ना, द ग्रैंडियर, वो जब देखते हैं वो स्केल में, हमारे यहाँ पे जब हम हैरी पॉटर देखते हैं या कुछ देखते हैं, वो एक अलग वर्ल्ड बन जाता है. ये वर्ल्ड के साथ यू नो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अगर वाकिफ कराना है तो उनको बिल्कुल वो ग्रैंडियर दिखाओ. जो हम बेडरूम्स बनाए, हमने जो शूट किया है वो 80 feet by 100 feet का बेडरूम, लाइक 35 feet टॉल, लाइक सो वो जो एक्सपैंस, वो स्पेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स गो इन टू स्टोरी टेलिंग, राइट. तो उसके ऊपर जब आप करेक्ट वीएफएक्स करते हैं, जब पानी, वे यू हैव टू गेट द वाटर राइट, राइट, यू नो व्हेन द यू नो वाटर सिमुलेशन जब करते हैं, गेटिंग ऑल दोज लिटिल डिटेल्स राइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दैट इज वेयर दे कनेक्ट. जो और इसमें क्या कि अगेन व्हाट संस्कृति जस्ट सेड, ये प्रीचे नहीं बनाया हमने, राइट. और ये एक इनफैक्ट जो एक इन फिल्म में है, एक गुरुजी बैठे हैं और वो कथा सुना रहे हैं. एक्चुअली वो कथा सुनाते वक्त एक बच्चा है, कंफ्यूज है, यंगस्टर आके बोलता है कि मुझे सब पता है कृष्ण भगवान के बारे में, मैंने तो महाभारत पढ़ी है. और वो जिस तरह से बोलते हैं ना, महाभारत पढ़ने से कृष्ण समझ में नहीं आते. और वो जिस तरह से उन्होंने वो एक एग्जाम्पल जिस तरह से लिखा हुआ है, इज ऑल यू नो कीपिंग देम इन माइंड, एक फ्रेंडली. You know, उनके फादर उनको टोकते हैं जब वो गुरुजी के साथ ऐसे बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करो. वो बोलते नहीं नहीं, डोंट वरी, यू नो. एंड विच इज व्हाट आर, हमारे यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चंस पूछना, ये संदेह करना, डाउट करना हर किसी का हक है. हम किसी को नीचे रोकते नहीं है, इसलिए हम भी बोलते थे कि इसमें क्वेश्चन करो हमको किसी भी चीज में, वी आर विलिंग टू ऑलवेज आंसर द एंटायर थिंग. ये क्या कृष्ण क्या है, एक भावना है इस देश की, राइट. इट्स नॉट वन कैरेक्टर, इट्स अ फीलिंग ऑफ दिस कंट्री. मणिपुर के कृष्ण अलग होते हैं, लाइक ओडिशा के कृष्ण अलग है, केरल में जो कृष्ण है वो अलग है, गुजरात के अलग है, राइट. हम कितने मथुरा के अलग हो जाते हैं, द्वारकाधीश हैं, क्या क्या नहीं है. तो ये जब बना रहे, यू नो दिस इज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी विद विच वी डू इट. वी हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग, एवरीथिंग इज रिसर्च.
1: बिल्कुल. और जितनी जिम्मेदारी से आपने इस फिल्म को बनाया है, आप पर तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप तो खुद उस किरदार में हैं.
2: जी जी जी. मैं सच्ची बोलूंगा, मैंने ज्यादा प्रेशर इस बात का लिया नहीं. मुझे लगा,
1: मुझे लग रहा है आपने गीता पढ़ ली. फिर गीता पढ़ने के बाद इन्होंने डायलॉग्स.
2: मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक्चुअल प्रोसेस है ये कि शुरू में मुझे ऐसा लगता है डर हटता तब है जब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल प्योर हो. जितना आप प्रिपेयर करते जाएंगे उतना डर आपका हटता जाएगा. तो मेरा एक रूटीन था, मैं पढ़ता था सोने से पहले 2 घंटे और उठने के बाद, और जितना मैं पढ़ता गया उतना मेरा डर हटता गया, जितना मुझे समझ आती गई उस कैरेक्टर की. और मुझे लगता है अगर आपकी प्रेपरेशन बहुत प्योर हो और बिना मैलिस हो, बिना कोई मिलावट हो, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो.
1: एक चीज और देखिए, आप जेन जी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप दोनों
2: जी,
1: क्योंकि आपने कहा कि आपने बहुत रिसर्च की और आपने इस बात का जवाब भी दिया कि श्री कृष्ण का किरदार प्ले करने से पहले वाले सिद्धांत और बाद वाले सिद्धांत में बहुत बदलाव आया.
2: जी जी.
1: आज के जेन जी को यहां से एक मैसेज दीजिए. आज के जेन जी को अगर हम कहें कि हमें श्री कृष्ण को समझना है,
2: हाँ जी,
1: तो जेन जी को कहां से शुरू करना चाहिए? हालांकि वो समझने का तो कोई अंत है ही नहीं, लेकिन शुरुआत कहां से करें?
2: मैं वही बोल रहा था कि आई थिंक जेन जी तक पहुंचने के लिए हमें ज्यादा प्रीची नहीं होना, क्योंकि वहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाता है. जब आप एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से आप श्री कृष्ण को इंट्रोड्यूस करेंगे, श्री कृष्ण एक सिर्फ भगवान नहीं, एक आइडिया भी है ऑफ लाइफ, सोचना, एक स्पिरिचुअलिटी. देखो, मैं स्पिरिचुअली अवेयर था, इंक्लाइंड नहीं था. आप इंक्लाइन कैसे करेंगे वो इस एंटरटेनमेंट के माध्यम से है. और इस वजह से भी मुझे ये फिल्म का हिस्सा होना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं एक अच्छा मैसेज प्रोपोगेट कर रहा हूँ. अब अगर यहाँ से आई एम प्रीटी श्योर, अगर जेन जी आके फिल्म देखेगी, मेरा अभी आने से पहले मेरे कजन से बात हो रही थी दुबई में, वो देख के आए फिल्म. उन्होंने कहा फिल्म देखते ही मैंने जाके चैट जीपीटी पे कृष्ण भगवान के बारे में और पढ़ा, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है.
1: नोटिस कीजिए, आई मीन आई वी शुड बी थैंकफुल टू यू कि कम से कम ऐसी फिल्में तो बन रही है. हमारा यूथ एटलीस्ट चैट जीपीटी से हमारे भगवानों को, हमारे इतिहास को नहीं समझ रहा है.
0: चैट जीपीटी सीख जाएगा सब कुछ.
1: सोचिए,
0: मैं आई एम वेरी हैप्पी विद इट.
2: ऐसे 10 लोगों ने बोला होगा मुझे कि हमने फिल्म देखने के बाद जाके और पढ़ा है 2-3 घंटे. तो हमारी तो विन है. हम वो आइडिया एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट आर हिस्ट्री हम वो प्रोपोगेट करने में सफल हो रहे हैं.
1: मेरे ख्याल से आगे आप चैट जीपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी. 1-2 आप लेकर आइए, 2 and 3 भी लेकर आ रहे हैं. एक बार जल्दी से एक मैसेज हमारे यूथ के लिए कि अगर हम श्री कृष्ण को समझना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए.
3: मेरे लिए, मैं मेरी पर्सनल बात करूंगी, मेरे लिए आई थिंक मैं कृष्ण इन्फॉर्मेशन तो सब जगह पे, बुक्स पढ़ेंगे, ऐसे फिल्म देखेंगे, चैट जीपीटी, लोगों से बात करेंगे, पॉडकास्ट से, बहुत सारे कृष्ण पे सब कुछ है. बट ऑल्सो आई थिंक कृष्ण अंदर है.

0: दिल में है। तो मेरे लिए वो जर्नी वही थी कृष्ण भगवान को जानने की, कि मैं कैसे इंटरनली बिकमिंग अ बेटर पर्सन उनके पास जा पाऊँ और उनके वैल्यूज को फॉलो कर पाऊँ। हमने कृष्ण जन्मभूमि में हमारा ट्रेलर लॉन्च किया और उस दिन हमारा सेलिब्रेशन पूरा दिन यही था कि हम कृष्ण भगवान की वैल्यूज के काम करें। हम गौशाला गए, यशोदा माओं के बीच में गए। तो मुझे वही है कि अगर कृष्ण को समझना है तो उनकी वैल्यूज को समझना।
1: बिल्कुल, और उनको केवल एक, हम एक फिल्म तक सीमित नहीं रख सकते, और हम उम्मीद करेंगे कि 2 और 3 जल्दी आए और हमारे दर्शक बिल्कुल उनको समझ पाए, उनको जी पाए, उनको फील कर पाए। तो चलिए एक बार फिर से चलते चलते आपको दिखा देते हैं फिल्म का ये ट्रेलर।
2: मुझ पर लगा ये कलंक नहीं मिटा दे, मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा।
3: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा। हरी सभा में चीरहरण किया इन्होंने द्रौपदी का, और सारे धर्म अधिकारी चुप।
4: छोड़ो ये बंसी कृष्ण और उठाओ शस्त्र।
3: ये बंसी सब कर्म के अधीन है, यह मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार।
5: मत जाओ काना, तुम कहीं तो
1: प्रेमचंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करेंगे सेकंड और थर्ड में भी आपसे इसी तरीके से मुलाकात हो।
6: थैंक यू।
1: तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।
3: तू है उर्वशी समा।
5: गोपियों के घर से माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
10: Thank God I get to wake.
9: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे शनि जयंती की। शनि जयंती की महिमा क्या है, इसके उपाय क्या हैं और शनिदेव की कैसे पूजा करें ये आपको बताएंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक अचूक उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र शाम के 5:30 तक, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:46 तक, राहु काल का समय प्रातः 9:00 से 10:30 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, वैसे तो ज्योतिष में हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं लेकिन जयंती जो अलग से मनाई जाती है, 2 ही ग्रहों की जन्म जयंती सामान्यतः मनाई जाती है, सूर्य देव की और शनि देव की। तो शनि जयंती का महत्व क्या है? ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और लंबे समय तक अपना प्रभाव दिखाने वाले ग्रह शनिदेव माने जाते हैं, इसीलिए ग्रहों में शनिदेव की जयंती मनाई जाती है क्योंकि इनके अंदर पूरी तरीके से दुनिया को जीवन को बदलने की ताकत है। माना जाता है कि शनिदेव का प्राकट्य यानी जन्म हुआ था ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि को और इसी दिन शनिदेव की जन्म जयंती मनाई जाती है। शनि जयंती पर संध्या काल में जगह जगह पर देश दुनिया में शनिदेव की विशेष पूजा की जाती है और शनि कृपा प्राप्त करने के विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इस बार 16 मई को शनिदेव की जयंती मनाई जा रही है। 16 मई को संध्या काल में शनिदेव की विशेष पूजा होगी, तमाम तरह के उपाय किए जाएंगे, दान किए जाएंगे जिससे शनिदेव की कृपा हर व्यक्ति को प्राप्त हो पाएगी। मेष राशि, संतान का सहयोग और प्रेम आपको प्राप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, परिवार में शांति बनाए रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो शनि जयंती पर मुख्यतः शनि देव की पूजा होती है ताकि उनकी कृपा मिले, जीवन का संघर्ष कम हो, जीवन की बाधा दूर हो। तो शनि जयंती पर पूजा करने का सरल तरीका क्या होगा? शनि जयंती पर शनि देव की पूजा संध्या काल में ही करिएगा, सूर्यास्त के बाद। संध्या काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, काले नीले कपड़े मत पहनिएगा, सफेद या पीले या लाल कपड़े पहनिएगा। इसके बाद सबसे पहले भगवान शिव की या श्री कृष्ण की उपासना करिएगा, फिर शनि देव के मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा। सबसे सरल मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करिएगा, 3 माला 5 माला या 11 माला। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाइएगा। शनि देव से दीपक जला करके कृपा करने की प्रार्थना करें और सबसे अंत में निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का और बर्तनों का दान करिएगा। लोहे या स्टील के बर्तनों का दान करना अच्छा होगा। तो शनि जयंती पर शनि देव के मंत्र का जप करना है, पीपल के नीचे दीपक जलाना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को दान करना है। सिंह राशि, आज मन अच्छा बना रहेगा, परिवार के तनाव कम होते जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नया काम आपका शुरू हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आप नौकरी छोटी करें या बड़ी करें, बिना शनि कृपा के नौकरी मिलना संभव ही नहीं है, और अगर शनि की कृपा ना हो तो नौकरी में उन्नति भी संभव नहीं है। तो अगर नौकरी संबंधी कोई भी दिक्कत है, नौकरी मिल नहीं रही है, चल नहीं रही है, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे 3 सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। इसके बाद चाहे वहीं बैठ के मंत्र पढ़ें या दीपक जला के घर चले आएं, और उसके बाद 11 माला शनि देव का मंत्र पढ़ेंगे। कम से कम 11 माला पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद शनिदेव से प्रार्थना करिएगा कि आपकी नौकरी की समस्या हल हो जाए, और उसके बाद निर्धनों को, गरीबों को खाने पीने की चीज, कोई भी खाने पीने की चीज, रोटी सब्जी, हलवा पूड़ी, बिस्किट नमकीन, कुछ भी दान करिएगा। अगर शनि जयंती पर ऐसा कर देते हैं तो आपकी नौकरी संबंधी समस्या हल हो जाएगी। देखिए, अगर शनि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या देता है तो वो स्नायु तंत्र की, नर्वस सिस्टम की समस्या होती है, या लंबी चलने वाली बीमारी शनि की वजह से जीवन में आ जाती है। अगर स्वास्थ्य की कोई जटिल, कोई गहरी समस्या है, आप जूझ रहे हैं, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर एक लोहे का छल्ला ले आइएगा। इसको एक कटोरी में सरसों का तेल डालें थोड़ा सा, उसी में छल्ले को डुबो लें, यानी सरसों के तेल से शुद्ध करें। इसके बाद कटोरी को, जिसमें छल्ला है, अपने सामने रख लें और शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करें। जप करने के बाद शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपको रोगों बीमारियों से छुटकारा मिले, और इसके बाद लोहे का छल्ला राइट या लेफ्ट हैंड में, दाहिने या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण कर लें, और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को काले वस्त्र का दान कर दीजिएगा। काला कुर्ता, काला शर्ट, काले कपड़े, जैसा भी संभव हो वो किसी गरीब आदमी को दीजिएगा। अगर आप ऐसा शनि जयंती पर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी स्वास्थ्य की स्थिति में आने वाले समय में सुधार होना शुरू हो जाएगा। धनु राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा। परिवार में शांति बनाए रखें, धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अभी किसी भी तरह के परिवर्तन से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, शनि अगर आपकी कुंडली में निगेटिव है ना, पैसे रुपए को लेके बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और शनि अगर बहुत ज्यादा खराब हो तो आदमी को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे स्थिति में शनि जीवन में भयंकर संघर्ष बढ़ा देता है। तो अगर शनि की वजह से आर्थिक स्थिति खराब है, कोई धन संबंधी समस्या है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर एक काला कपड़ा ले लें, थोड़ा सा बड़ा कपड़ा ले लें, उसमें एक जटा वाला नारियल और कुछ पैसा जितना भी रख सकें, 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 11 रुपया वो रखिए। इसको अपने सामने रख लीजिए, पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिएगा और इस काले कपड़े में नारियल और पैसे को अपने सामने रख लीजिएगा। इसके बाद शनि मंत्र का जप करिएगा। अच्छा होगा कि कम से कम 11 माला जप करें, नहीं तो 5 माला मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। जप करने के बाद अपनी आर्थिक समस्या के दूर हो जाने की प्रार्थना करें कि मेरी धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएं, मेरी आर्थिक कठिनाई समाप्त हो। इसके बाद कपड़े में ही नारियल और पैसा जो रखा है, कपड़े के साथ सारा सामान किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। कोई नहीं मिलता है तो पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके चले आइएगा। अगर ये काम आप कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। देखिए, अगर आपकी 7.5 है, जैसे इस समय कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, या आपकी ढैया है, जैसे इस समय सिंह पर और धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती हैं। आमतौर पे जीवन में संघर्ष थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अगर 7.5 या ढैया आपकी चल रही है तो क्या उपाय करेंगे शनि जयंती पर? शनि जयंती की रात को उपाय करिएगा, एक घी का या तिल के तेल का दीपक पश्चिम दिशा की तरफ जलाइएगा और फिर खुद भी दीपक सामने रखकर पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिएगा। अपने सामने कोई फल या मिठाई या दोनों रख लीजिएगा। इसके बाद शनि देव के तांत्रिक मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए, या कम से कम 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और शनिदेव से प्रार्थना करिएगा कि आपके ऊपर कृपा करें, 7.5 या 2.5 का प्रभाव कम हो जाए। अगले दिन सुबह के समय फल और मिठाई का दान कर दीजिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को। ये छोटा सा उपाय अगर आप शनि जयंती की रात को कर लेते हैं तो 7.5 और 2.5 के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। देखिए, शनि जयंती पर सार्वजनिक स्थान में, पार्क में, सड़क के किनारे, जहां भी आपको उचित जगह दिखाई दे वहां एक पीपल का पौधा जरूर लगाइएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में संतान संबंधी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, अगर बेवजह आपको हमेशा चिंता रहती है, बेवजह की मानसिक चिंता आपको परेशान करती है, तो रोज सवेरे चांदी के गिलास से, चांदी की कटोरी या लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। डेली मॉर्निंग मंदिर जाके एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में या पीले धागे में अपने गले में पहनिए और रात को सोते समय जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो आपका मन शांत होगा, मन में रहने वाली हर समय की चिंता दूर हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
2: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: ना आदि ना अंत, ताकत है अनंत, देसी तकनीक से तैयार महाशक्ति वाला हथियार, भारत ने बना लिया भविष्य का ब्रह्मास्त्र। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर। नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन। न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत। नेफेड के जरिए 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी। किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाएगा सीबीआई का नया पोर्टल। एआई फीचर से लैस नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम अब है लॉन्च। नकली दस्तावेजों को पकड़ना होगा आसान। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्द मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मानसून। समय से पहले दस्तक दे रहा मानसून। बॉलीवुड एक्टर्स को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता। अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी। द सरयू प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश।

0: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई। रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देश। मच अवेटेड कॉमेडी फिल्म वेलकम 3 का टीजर रिलीज। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और सद्वारसी सहित 34 बॉलीवुड सितारे लगाएंगे हंसी का तड़का। 26 जून को सिनेमाघरों में आएगी वेलकम टू द जंगल। आइए शुरू करते हैं न्यूज पत्र सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा की भी है।
1: रामनगरी अयोध्या में सुहाने मौसम के बीच यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां सरयू तट पर स्नान ध्यान कर सभी रामलला के दर्शन कर भक्ति भाव से सराबोर हो रहे हैं। ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के अवसर पर अयोध्या के शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहां श्रद्धालु पूजा अर्चना के साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद लेते दिखे। ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि जो भी प्रदोष व्रत पर श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की पूजा करता है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और समस्याओं से निजात मिलती है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए यहां सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। CRPF, SSF, PAC, ATS कमांडो की भी यहां तैनाती कर दी गई है। साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम भी काम कर रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की है। यहाँ के मालिया हाटीना इलाके में आयोजित लोक संगीत और भजन के कार्यक्रम के दौरान जमकर नोटों की बारिश हुई। खम्भालिया गांव में आयोजित लोक डायरा कार्यक्रम में लोक कलाकार माया भाई अहिर और गोपाल साधु ने ऐसा समा बांधा जिस पर जमकर नोटों की बारिश की गई, जिससे एक समय दोनों कलाकार उसके ढेर में भी दब गए। श्रीमद् भगवत गीता कथा के दौरान आयोजित लोक संगीत के इस कार्यक्रम के दौरान उड़ाए गए नोटों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यक्रम के आयोजकों के मुताबिक इस राशि का इस्तेमाल अहमदाबाद में गुजरात अहिर गर्ल्स हॉस्टल और एक आधुनिक शैक्षणिक परिसर के निर्माण में किया जाएगा। एक ऐसे ही कार्यक्रम में कविराज जिग्नेश के भजनों की प्रस्तुति पर भी नोटों की बारिश की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आयोजकों के मुताबिक इस धनराशि का इस्तेमाल धार्मिक आयोजन और सेवा कार्यों के लिए किया जाएगा। यूपी के नोएडा का महज 4 साल का ये बच्चा रुद्र राणा इन दिनों चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। इतनी छोटी सी उम्र में रुद्र को सोलर सिस्टम यानी हमारे ग्रहों और अंतरिक्ष की अद्भुत जानकारी है। ये ग्रहों के नाम के साथ उनकी विशेषताएं भी बता देता है। हैरानी की बात तो ये है कि रुद्र अभी ABCD भी ठीक से लिखना नहीं जानता। ग्रहों को ये उनके रंग और आकार के जरिए पहचानता है। रुद्र की ये प्रतिभा इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी अप्लाई किया गया है। रुद्र की माँ के मुताबिक कुछ महीने पहले ही यूट्यूब किड्स देखते हुए रुद्र का ग्रहों के बारे में इंटरेस्ट जागा और बहुत सारे सवाल करने लगा और इसी तरह से उसमें ग्रहों से प्रतिभा विकसित हो गई। देश के कई हिस्सों में इन दिनों मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। यूपी के बरेली में 2 दिन लगातार चक्रवात देखने को मिला। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में व्यक्ति उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हवा में करीब 50 फीट ऊपर उड़ते व्यक्ति के फिल्मी अंदाज वाले वीडियो को देखकर इसके बनावटी होने की चर्चा तेज हो गई, लेकिन प्रशासन की ओर से भी इस बात की पुष्टि हो गई कि ये सच्ची घटना है। चक्रवाती तूफान के दौरान हवा में उड़े व्यक्ति की पहचान नन्हे मियां के रूप में हुई। बारात घर के ऊपर बने टीन शेड के साथ उड़े नन्हे मियां एक खेत में जाकर गिरे। अच्छी बात ये रही कि इस हैरान करने वाली घटना में उनकी जान पूरी तरह महफूज रही। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात के जामनगर में तेज हवाओं की वजह से एक कॉम्प्लेक्स का शेड उड़कर एक पेड़ पर जा अटका और फिर हवा में ही लटकता रहा। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और फिर हवा में लटके छप्पर को हटाने में जुट गई। इस घटना में अच्छी बात ये रही कि कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया।
0: और अब बात करते हैं कि क्या नीट अब होगा क्लीन। पेपली के बाद इस परीक्षा को लेकर लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। सरकार ने 21 जून को नीट यूजी री एग्जाम का ऐलान किया है। इस बीच री एग्जाम को लेकर उम्मीदवारों के मन में जो डर और अनिश्चितता थी उसे कम करने के लिए केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, साथ ही छात्र अपनी पसंद का सेंटर भी चुन पाएंगे। वहीं अगले साल गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी पैटर्न पर होगी।
2: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर लाखों छात्रों के मन में जो चिंता और आशंका थी वो आज दूर करने की कोशिश की गई। पेपर लीक के बाद उठ रहे तमाम सवालों के बीच एनटीए ने छात्रों को फिर से परीक्षा कराने का ऐलान किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए एनटीए ने कहा कि भारत सरकार की मंजूरी के बाद दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। एनटीए ने जानकारी दी, सरकार से मंजूरी के बाद ये जरूरी परीक्षा अगले महीने 21 जून को दोबारा होगी, यानी नीट परीक्षा की नई तारीख भी आ गई। 21 जून 2026 को नीट यूजी की पुनः परीक्षा होगी और परीक्षा के लिए छात्रों को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पहले जिन छात्रों ने फॉर्म भरा था वही इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। छात्र और उनके घर वालों पर आर्थिक बोझ न पड़े इसके लिए कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी और पहले से जमा फीस वापस की जाएगी, यानी दोबारा जो परीक्षा होने वाली है उसकी कोई फीस नहीं होगी। इतना ही नहीं, परीक्षा का समय भी बढ़ाया जाएगा जिसके बाद परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक होगी, यानी पेपर के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय छात्रों को मिलेगा ताकि छात्र आसानी से ओएमआर शीट यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट भर पाए।
3: अभी एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है, 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है।
2: इसके अलावा इस परीक्षा को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगले साल से नीट यूजी की परीक्षा ऑनलाइन करवाई जाएगी, यानी 2027 से नीट यूजी भी सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा।
3: अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज़ है।
2: 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा कई मायनों में अलग होगी। सरकार ने उम्मीदवारों की दिक्कतों को समझते हुए न सिर्फ परीक्षा शहर बदलने की छूट दी बल्कि राज्यों के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट यानी बस और ट्रेन की व्यवस्था करने पर भी विचार किया है। साथ ही जून की तपती गर्मी और प्री मानसून बारिश को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि दोबारा होने वाली ये परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित हो। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों और उनके घर वालों से अपील की है कि वो एनटीए की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। इसके लिए ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
4: नीट यूजी की परीक्षाएं अब भारत में दोबारा कराई जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि आखिरकार ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई। 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा होती है, 7 मई को जो इंटरनल सिस्टम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, उसके ग्रीवांस सिस्टम में मेल्स आने शुरू होते हैं, रेड फ्लैग्स आने शुरू होते हैं, जिससे समझ आ जाता है कि इस बार की परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर को लेकर कई सारे सवाल हैं। और 12 तारीख को एजेंसियां साथ मिलकर इनपुट्स आने के बाद सरकार ये तय करती है कि नीट की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। अब 21 जून को ये परीक्षा दोबारा होगी। अच्छी बात यह है कि छात्रों को फिर से मौका दिया जा रहा है कि वो अपने चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर को चुन सके। 7 दिनों का समय दिया जाएगा अपने हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर का शहर चुनने के लिए और इसके साथ साथ 14 जून तक उनको एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। 21 जून को परीक्षा होगी, उस दिन ये संभावना जताई जा रही है कि किस तरह से एक वॉर रूम जैसी स्थिति बनाकर AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर CCTV कैमरे के थ्रू सारे एग्जामिनेशन प्रोसेस पर नजर बना के रखी जाएगी। और यहां तक संभव है कि शिक्षा मंत्री खुद कलेक्टर्स और SPs को फोन कर करके रैंडमली दोबारा चेक करे, जैसा उन्होंने मई 3 को किया था।
2: के केंद्रीय शिक्षा मंत्री भले ही आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उन छात्रों का क्या जो सालों साल मेहनत करते हैं, ईमानदारी से डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सिस्टम की नाकामी उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है।
5: बस हम यही चाहते हैं कि मतलब इस तरीके की लापरवाही ना की जाए, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए कि कोई इतना मतलब दूर दूर दराज से आता है तैयारी करने के लिए और फिर ये दिन देखने को मिलता है।
6: मेरा नीट का पेपर बहुत अच्छा गया था, मैं बस मेरी एक्सपेक्टेड रैंक कितनी आई थी, मैं बस उसके ऊपर बस मैं सोच रही थी रैंक कितनी आएगी मतलब, पर ये इतना मास लेवल पे लीक हुआ। उसके बाद में जब पता चला कि अब नीट कैंसिल हो गया और वापस होगा, उसके बाद में वो मेंटल स्टेट में वापस आना कि अब पेपर है और मतलब उसको वापस देना पड़ेगा, उसके लिए मतलब हमारे सर ने हमारी बहुत हेल्प की। तो अब दो दिन के बाद में वापस उस मेंटल स्टेट में आई हूँ मैं कि हाँ वापस पढ़ना है, और अब मतलब उसी चीज को वापस एक बार पढ़ने में बहुत जोर आता है, पर उसको वापस पढ़ना पड़ेगा।
7: पहले वाला पेपर अच्छा था और मैंने जैसे डायरेक्टर वगैरह से भी बात की थी तो उन्होंने बोला कि इस बार हो जाएगा, पर बाद में जब रीनीट वाला आया तो अच्छा नहीं लगा था, बट अब ठीक है, काफी सही है, टीचर्स वगैरह ने मोटिवेट किया। तो
8: पहले मैंने शॉर्ट नोट से चालू किया बायोलॉजी के, और अब मैं धीरे धीरे चैप्टर्स पढ़ना चालू कर रहा हूँ। पहले टाइम कम रखा है पढ़ने का, अब धीरे धीरे उसे बढ़ाऊंगा मैं, और अब अभी मुझे स्टार्ट मेरा हो जाएगा।
2: हालांकि परीक्षा की नई तारीख सुनकर छात्र जहां खुश हैं, वहीं उन्होंने फ्री एंड फेयर एग्जाम की उम्मीद भी जताई है।
9: कंप्यूटर बेस्ड लाइक उसे ठीक ही बोल सकते हैं कि उसमें पेपर लीक का चांसेस कम हो जाएगा, उसमें लगातार हम लोग दे सकते हैं, टेंशन नहीं रहेगा कि एक कि शायद पेपर लीक हो जाए तो क्या होगा, पेपर टफ होगा इजी होगा, तो उस बात का एक प्रेशर नहीं बच्चे पे बना रहेगा कि हाँ ठीक है पेपर लीक हुआ तो पेपर हार्ड आ जाएगा, तो उससे थोड़ा सा वो जिसका प्रिपरेशन लेवल है वो गिर भी सकता है, इसलिए कंप्यूटर बेस्ड ठीक है।
10: डेट रिलीज हो गया है कि हम लोग को टाइम मिल रहा है, वो एक तरीके से सही है, लेकिन क्या गारंटी है कि अगले बार कुछ नहीं होगा। हम लोग सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं कि फिर से रीनीट का पेपर लीक है, वो ऐसे वैसे, तो नेक्स्ट ईयर का गारंटी थोड़ी है, और तीन साल में कंटिन्यू दूसरी बार ये हो रहा है कि हम लोग का पेपर फिर से लीक हुआ है, तो या तो गवर्नमेंट को कुछ अच्छा स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो बार बार रीनीट करते करते क्या ही होगा।
11: एग्जामिनेशन तो लेना ही था गवर्नमेंट को, चूंकि कैंसिल जब हुआ तो एक एग्जाम कंडक्ट करना था, लेकिन इसमें दोनों चीजें हैं, प्रॉस भी है कॉन्स भी है। जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स कम आया डेफिनेटली वो तो खुश है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा आया था, अब उनके लिए फिर से रीएनर्जाइज होकर के और फिर से प्रिपरेशन करना और उस लेवल पे वो दोबारा से मार्क्स लाएंगे कि नहीं, ये उनके लिए एक ट्रॉमा से कम नहीं होगा। और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि शायद ये नौबत ही नहीं आए, 24 के बाद अगेन 26, तो ऐसी चीजें क्यों हो रही है। एनटीए को डेफिनेटली इस पे सोचना चाहिए, एग्जामिनेशन कैंसिल करके री एग्जाम कंडक्ट करा देना ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उन लाखों छात्रों के भविष्य का क्या होगा जो अभी मेंटल ट्रॉमा की स्थिति से गुजर रहे हैं, और शायद वो अपने प्रिपरेशन को उस लेवल पे आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
2: 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा के लिए 14 जून तक एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर सरकार की कोशिश ये है कि नीट यूजी जैसी अहम परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित हो, जिससे दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य से दोबारा खिलवाड़ न हो सके। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: धार भोजशाला पर आया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
2: मध्य प्रदेश में धार भोजशाला मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला परिसर एक मंदिर है। हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर कमाल मस्जिद का विवादित क्षेत्र एक मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि इस परिसर की व्यवस्था के लिए सरकार प्रबंध करे। इस परिसर में अब केवल पूजा ही की जा सकती है। यहां सरस्वती मंदिर है। इस मामले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि इस परिसर में उनका कोई अधिकार नहीं है। हालांकि कमाल मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष सरकार से अलग से जगह की मांग कर सकता है। उत्तराखंड में पंच केदारों में चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने की प्रक्रिया आज पौराणिक परंपराओं के साथ शुरू हो गई। परंपराओं के तहत आज सुबह शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में पूजा अर्चना के बाद भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह मूर्ति को मंदिर परिसर में विराजित किया गया। दो दिनों तक पूजा अर्चना के बाद 17 मई को भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली सैकड़ों भक्तों के साथ उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित श्री रुद्रनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी, जिसके बाद 18 मई को विधि विधान से मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें घंटों तक बाबा केदार के दर्शनों के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों को श्री बद्री केदार मंदिर समिति धाम पहुंचने पर जल्द ही दर्शनों में प्राथमिकता मिलेगी। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है और अभी तक 23 दिनों में 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दरबार में दर्शन कर चुके हैं।
0: और अब बात बद्रीनाथ धाम के साथ देवताल पहुंच रहे पर्यटकों की। भारत की सीमा से सटा खूबसूरत देवताल इन दिनों बर्फीली वादियों से सराबोर है। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, सफेद चादर ओढ़े घाटी और शांत वातावरण पर्यटकों को लुभा रहा है। वहीं चारधाम यात्रा में देश भर से हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके चलते बद्रीनाथ धाम में जहां अब तक 3.5 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं, वहीं केदारनाथ धाम में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं।
12: देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत की चित्रकारी बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। बर्फ से ढकी इन खूबसूरत वादियों को कुदरत ने स्वयं उकेरा है। अगर एक बार किसी की नजर इन पर पड़ गई, जो मानो देखने वालों की नजर गड़ गई, यानी एक बार नजर पड़ने के बाद नजरें घुमाना बेहद मुश्किल है। चमोली जिले में चल रही बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बीच श्रद्धालु अब देवताल मार्ग की ओर भी रुक कर रहे हैं। भारत की सीमा से सटा ये खूबसूरत देवताल क्षेत्र इन दिनों बर्फीली वादियों से सराबोर है। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, सफेद चादर ओढ़े घाटी और शांत वातावरण पर्यटकों को मोहित कर रहा है। बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अब देवताल के लिए इनर लाइन परमिट भी ऑनलाइन आसानी से हासिल कर सकते हैं।
13: बद्रीनाथ धाम की यात्रा अब इन दिनों और अधिक बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में यात्रियों का सैलाब देखने को मिल रहा है। अभी तक लगभग 3.5 लाख श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। अभी भी लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो सड़कों पे गाड़ियों की जो कतार है वो बद्रीनाथ धाम को जा रही है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में जहाँ 19 से 23 हजार श्रद्धालु रोजाना अब बद्रीनाथ बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंचने लगे हैं, वहीं बद्रीनाथ धाम में चप्पे चप्पे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में

0: बड़ी संख्या में जो पर्यटक है, पहले यहाँ जाने नहीं दिया जाता था और जब से ये खुली है तो पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं।
1: देवताल तक जाने का रास्ता अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन पर्यटक बद्रीनाथ दर्शन के बाद घसतौली और कुछ दूर तक देवताल मार्ग पर जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देवताल मार्ग और पूरी घाटी अभी भी बर्फ की मोटी चादर में लिपटी हुई है। जगह जगह बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां मनमोहक नजारा पेश कर रही हैं। लिहाजा पर्यटक आधे रास्ते तक ही पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इतनी दूरी में भी जो कुदरत की सुंदरता दिखाई दे रही है वो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। भले ही इस समय देवताल तक पहुंचना संभव न हो, लेकिन घसतौली तक का मार्ग और आसपास की घाटी की अनुपम खूबसूरती हर किसी को यहां आने के लिए मजबूर कर रही है। चारधाम यात्रा में हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग हैं। भगवान बद्री विशाल के दरबार में आस्था उमड़ रही है, यानी उत्तराखंड के पहाड़ों में इन दिनों आस्था चरम पर है। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ हो या बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री हो या यमुनोत्री, हर जगह श्रद्धालुओं का हुजूम दिखाई दे रहा है।
2: बार यात्रा पिछले जितने सारे रिकॉर्ड थे वो रिकॉर्ड टूट चुके हैं और 5.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने जो है केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लिए।
1: हालांकि चारधाम यात्रा में शामिल भक्तों को कई बार मौसम की कठिन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, कभी बर्फबारी तो कभी बारिश। चारधाम यात्रा की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है और बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाला हर भक्त खुद को धन्य महसूस कर रहा है।
3: ये धरती में जैसे पांव रखते हैं ना, तो जो एक एहसास होता है वो एक अलग ही है, और बाबा के जो दर्शन, उनकी जो धजा के दर्शन हो जाते हैं ना, तो यानी आप समझो कि आप पूरा आपका जीवन का कल्याण हो गया सर। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, हर जगह यात्रियों की काफी संभाल रखी जाती है सर।
4: हमने शुरू किया था केदारनाथ की यात्रा के लिए पैदल चलना शुरू किया और बड़े प्रेम से हम यहाँ आए हैं। थोड़ा मौसम बीच में ऐसा रहा जिससे थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन भगवान भोलेनाथ का नाम लेते लेते हम यहाँ पे बड़े आराम से पहुंचे और बहुत अच्छे हमारे दर्शन यहाँ पे हो गए हैं। और शासन प्रशासन का यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर तरफ से खाने से पीने से और स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीजें हैं सबको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। किसी प्रकार के कोई किसी को समस्या नहीं आ रही।
1: केदारनाथ धाम में आए श्रद्धालुओं को यात्रा और दर्शन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैदी से काम कर रहा है। मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें हैं। मंदिर तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
5: मई के प्रथम सप्ताह में भी काफी बार बारिश और बर्फबारी हुई है, जिसको हमारी टीमों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। जब बर्फबारी होती है तो हमारी बर्फ अटकने की टीमें जो श्री केदारनाथ धाम में हैं, जो रास्ते खुलवाती हैं और वो तत्काल उसमें लग जाते हैं, और बारिश की स्थिति में सड़कों पर लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमारे जो लोक निर्माण विभाग है उनकी JCB लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में डिप्लॉय रहती हैं और कई बार कुछ लैंडस्लाइड के घटनाक्रम हुए भी, परंतु उसको तत्काल हमारी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रोड को खुलवा दिया गया है।
1: केदारनाथ धाम के साथ साथ बद्रीनाथ धाम में भी भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में यात्रा शुरू हुए 22 दिन हो चुके हैं और इन 22 दिनों में 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के साथ साथ श्रद्धालु गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के दर्शन करके अपनी चारधाम यात्रा संपन्न कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक केदारनाथ में 5.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, वहीं बद्रीनाथ धाम में 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, जबकि गंगोत्री धाम में करीब 2,10,000 श्रद्धालु पहुँच चुके हैं और यमुनोत्री धाम में भी 2,10,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा मार्ग से लेकर बद्रीनाथ धाम तक हर जगह श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और राहत की बात यह है कि इन दिनों बद्रीनाथ धाम में मौसम भी सुहाना बना हुआ है, जिससे भक्तों को बड़ी सहूलियत के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन हो रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों

0: के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
1: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 160 अंकों की गिरावट के साथ 75,237 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएससी निफ्टी 46 अंकों की गिरावट के बाद 23,643 पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत शुक्रवार को 96 रुपए से भी नीचे चली गई। आखिर में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 22 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 95.86 के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर बंद हुआ।
0: अक्षय कुमार की नई फिल्म का टीजर रिलीज, इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
2: फिल्म वेलकम टू द जंगल का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर की शुरुआत अक्षय कुमार के डायलॉग से होती है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं, सूचना, इस फिल्म के निर्माण में किसी भी जानवर का इस्तेमाल नहीं किया गया है सिवाय कुछ घोड़ों के और हम गधों के।
3: मेरे को नहीं करना ये फिल्म।
4: है भैया, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं।
3: हमेशा पैसे बीच में आ जाते हैं।
2: एक जगह सुनील शेट्टी अक्षय कुमार पर गन चलाते हैं और फिर पूछते हैं तू मरता क्यों नहीं। इस पर अक्षय कहते हैं मैं मरने में जान डाल रहा हूँ।
4: तू मरता क्यों नहीं,
3: मैं मरने में जान डाल रहा हूँ।
4: अरे मरने में कोई जान डालता क्या।
2: यह फिल्म वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किश्त है। अहमद खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ ही दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडिस, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, राजपाल यादव जैसे सितारे भी हैं। ये फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
3: मेरे को नहीं करना ये फिल्म।
4: है भैया, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं।
3: हमेशा पैसे बीच में आ जाते हैं।
2: साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म ऑब्सेस का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसमें पीटर विल्सन के साथ ईशा सिंह मुख्य किरदार में हैं। पीटर विल्सन ही फिल्म के निर्देशक भी हैं। ऑब्सेस के ट्रेलर की शुरुआत ईशा के आत्मविश्वासी और बेफिक्र किरदार से होती है, लेकिन कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब उनका सामना पीटर से होता है जिन्होंने क्रोधित और मनोवैज्ञानिक आघात से जूझ रहे परेशान व्यक्ति का किरदार निभाया है। उसके बाद देखते ही देखते दोनों की अप्रत्याशित मुलाकात सब कुछ बदल कर रख देती है। ये फिल्म 29 मई को हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक्टिंग और सिंगिंग के बाद राम पोथिनेनी अब डायरेक्शन में कदम रखने जा रहे हैं। अपनी 23वीं फिल्म रैपू 23 के साथ वो निर्देशन का जिम्मा संभाल कर फिल्म मेकर के तौर पर अपना डेब्यू करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा उनके जन्मदिन के मौके पर की गई, जो एक स्टाइलिश साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस मौके पर एक शानदार बर्थडे स्पेशल पोस्टर भी जारी किया गया जिसमें राम पोथिनेनी के किरदार वीरा से मिलवाया गया है। फिल्म की रेगुलर शूटिंग जून में शुरू होने वाली है जिसे दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज करने का प्लान है। आलिया भट्ट, उर्वशी रौतेला, तारा सुतारिया के अलावा और भारतीयों ने भी 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चमक बिखेरी। मलयालम सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन ने भी मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जिसमें उनका बेहद शालीन, क्लासी और इंटरनेशनल फैशन से भरपूर अंदाज नजर आया। कल्याणी के अलावा रेड कार्पेट पर हाथ में गीता और गले में तुलसी माला लिए ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगर आरती खेतरपाल भी नजर आईं, जिन्होंने इस ग्लोबल मंच पर सिर्फ फैशन ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था को भी पूरे गर्व के साथ पेश किया। इस इंटरनेशनल इवेंट में पंजाबी मॉडल और अभिनेत्री रूपी गिल ने भी चमक बिखेरी। व्हाइट और गोल्डन आउटफिट में रूपी का लुक पूरी तरह रॉयल और क्लासी नजर आया। उनके इस लुक में सिर्फ फैशन नहीं बल्कि पंजाब की मिट्टी की खुशबू भी दिखाई दी।
0: न्यूज पथ में खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
0: गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर। नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन। न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत। नेफेड के जरिए 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी। किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाएगा सीबीआई का नया पोर्टल। एआई फीचर से लैस नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम अब है लॉन्च। नकली दस्तावेजों को पकड़ना होगा आसान। न्यूज़पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
6: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा नजारा तो अब खत्म हो चुका है, ऐसा तो हमारे जमाने में हुआ करता था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी साइकिल पर दो बच्चों को बांधकर स्कूल लेकर आया है। आज के समय में कोई इस तरह से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हुए नहीं दिखता, और ये वो कारण है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने ये सुना ही होगा कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और इसके लिए कई तरीके भी बताए होंगे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि कोई खुद की इज्जत कैसे कर सकता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी बच्ची आपको बता देगी। वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची अपने ही पैर छूती दिख रही है। वो अपने ही पैर छूकर माथे से हाथ को लगाती दिखती है। अब बच्ची क्यों कर रही है ये तो वही जाने, मगर बच्ची इस प्यारी हरकत के कारण उसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक छोटी सी बच्ची पानी पूरी खा रही है, लेकिन इसमें खास बच्ची का कॉस्ट्यूम है। दरअसल बच्ची ने माता रानी का रूप धारण किया है, स्कूल में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, जिसके बाद वो घर जाते हुए पानी पूरी खा रही होगी और किसी ने वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे। वायरल हो रहे इस वीडियो में दो महिलाएं बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रील शूट कर रही थी। दोनों का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, चलने का तरीका और कैमरे के सामने खुद को पेश करने का अंदाज बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। एक महिला आगे चल रही थी, जबकि दूसरी उसके पीछे उसी अंदाज में कदम मिलाकर नीचे उतर रही थी। लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे वीडियो का माहौल ही बदल दिया। सीढ़ियों से उतरते समय आगे चल रही महिला का अचानक बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरते गिरते बची। ये पूरा नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें पूरा परिवार 36,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के अंदर बारात निकालता दिखाई दे रहा है। वीडियो में कोई सीट पर चुपचाप बैठा नहीं है, बल्कि म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं और पूरा माहौल किसी उड़ते हुए वेडिंग फंक्शन जैसा नजर आ रहा है। जिसने भी ये नजारा देखा वो हैरान रह गया। कुछ लोग सीटों के बीच खड़े होकर डांस कर रहे हैं, तो कुछ मोबाइल कैमरे में इस खास पल को रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहे हैं।

0: न्यूज़पथ के सफर में अब रुक करते हैं सोशल अड्डा का, जहां आज बात होगी प्रधानमंत्री मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने के लिए की गई अपील के बाद उठाए जा रहे कदमों के। विशेष तौर पर पेट्रोल डीजल की बचत के लिए देश के अलग अलग राज्यों में पहल की जा रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने भी पूरे राज्य के लिए बड़े कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद तमाम तरह के खर्चों में कटौती को लेकर 19 पॉइंट वाला एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राओं को रद्द करें, सरकारी विभागों में रोजाना के कामकाज के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्राथमिकता दें, ऑफिस वर्क के लिए आवाजाही में कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें और कार पूल जैसे विकल्प अपनाएं, सभी सरकारी कर्मचारी ऑफिस वर्क के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, वरिष्ठ अधिकारी सप्ताह में एक दिन मेट्रो, लोकल या फिर बस से ट्रैवल करें, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सेंटर्स बनाने के प्रस्तावों को तुरंत मंजूरी दी जाए, सभी तरह की बैठकें, ट्रेनिंग और सेमिनार ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से किया जाए, पुलिस विभाग पूरे राज्य में किसी भी तरह की बाइक रैली और गाड़ियों के जुलूस की अनुमति नहीं दे, सरकारी दफ्तरों में ज्यादातर काम नेचुरल लाइट में हो और बेवजह इलेक्ट्रिक लाइट का इस्तेमाल करने से बचे, ऑफिस वर्क खत्म होने के बाद सभी लाइट, फैन, कंप्यूटर, एसी और लिफ्ट बंद कर दिए जाए। इसके साथ ही सभी जगहों पर एसी सिस्टम का टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत पूरे राज्य में सोलर एनर्जी सिस्टम को लगाने पर जोर दें। सभी जगहों पर कैंटीन और मिड डे मील में खाने के तेल की खपत कम करने के लिए मेन्यू में बदलाव करें। सिलेंडर गैस की जगह पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए नए और प्रस्तावित कनेक्शन को तुरंत मंजूरी दें। मुंबई समेत राज्य के तमाम बड़े शहरों में चल रहे रेस्टोरेंट और होटल को पीएनजी का अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की समीक्षा कर गैस सिलेंडर पाने वाले फर्जी रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाए। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करने के लिए नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ावा दें। इसके अलावा सभी प्रशासनिक विभागों से अलग 6 महीनों के लिए सलाहकारों की नियुक्ति न करने के लिए भी कहा गया है। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी इस सर्कुलर में सभी विभागों, डिविजनल कमिश्नर, जिला कलेक्टर और नगर निगमों को निर्धारित कदम उठाने को कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार के इस आदेश को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो यह सोच रखी है कि ईंधन की बचत करनी चाहिए, यह बहुत अच्छी सोच है और प्रधानमंत्री जी के इस संदेश का सम्मान होना चाहिए। इससे देश का पैसा बचेगा और देश में प्रदूषण भी कम होगा और यह जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक नेता की नहीं है बल्कि हम सबकी है। लेकिन मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि इस कार्य में सभी नेतागण, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे या सिर्फ आम जनता ही इसे फॉलो करेगी। और मैं सारे नेतागण को, तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मैं इनकी सुरक्षा के साथ में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो अपनी सुरक्षा को बरकरार रखें क्योंकि ये हमारे देश के सम्मान की बात है। लेकिन जो बाकी सारे नेता हैं, मैं चाहती हूँ कि वो साइकिल से ट्रैवल करें जिससे उन्हें पता चले कि उन्होंने देश में रोड की क्या व्यवस्था कर रखी है और हमारी आम जनता क्या तकलीफें फेस कर रही है।
2: जिस प्रकार हमने सुना है कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि ईंधन बचाओ, मैं इसका समर्थक हूँ। सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि वे भी प्रधानमंत्री के इस कार्य को समर्थन करें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, जिससे ना कि हमारे देश के पैसे बचेंगे बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। लेकिन ये सिर्फ आम लोगों के लिए ही नियम बना है या ये सभी नेताओं के लिए भी यही नियम बना है? इस प्रकार मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, मैं सभी लोगों को यही कहूंगा कि सभी कंपनियों को कि अब वे अपने सभी एम्प्लॉयज को पब्लिक बस की सेवाएं दें ताकि लोग अपने पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन ना यूज करके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें।
3: हम सबको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए रेदर देन खुद के व्हीकल्स को बाहर निकालने से। ट्रैफिक भी होता है, पोल्यूशन भी होता है और साथ में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं वो भी हम सबकी एक प्रॉब्लम बन चुकी है। तो हम सबको इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो इसको फुली सपोर्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि आप सब भी इस चीज को सपोर्ट करें और एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूर यूज करें तो हम इंडिया को बेटर बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं शायद।
4: ये बहुत अच्छा कदम है और मैं इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि इससे हमारे देश का ही विकास होगा और हमारे देश की उन्नति में एक योगदान होगा। और यह मेरा मानना है कि हम आगे जाकर हम अपनी तेल पे निर्भरता को कम करें और जहाँ तक हो सके इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल का यूज करें।
0: रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात एक ऐसी पहल की जो कि महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस विभाग ने अपने ट्रैफिक कर्मियों के लिए की है। और कोई विभाग जब अपने कर्मियों के हित में कोई पहल करता है तो जाहिर है उससे काम भी बेहतर होता है, जो कि देश की प्रगति में योगदान देता है। अमरावती पुलिस की खास पहल के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
5: चाहे कड़ी धूप हो या बारिश या फिर कोई भी मौसम, शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में ट्रैफिक पुलिसकर्मी जुटे रहते हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस वक्त गर्मी अपने पूरे तेवर दिखा रही है। विदर्भ इलाके के अमरावती और अकोला जैसे शहर आग की तरह तप रहे हैं। इन शहरों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में आम लोग तो घर में रहकर खुद को गर्मी से महफूज रख सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को कड़ी धूप में भी चौराहों पर ड्यूटी के लिए तैनात रहना पड़ता है। इस भीषण गर्मी में उन्हें राहत दिलाने के लिए एक अच्छी पहल की गई है। ड्यूटी तो इन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को हर हाल में करनी है, लेकिन अब ये एयर कूल जैकेट इन्हें गर्मी से काफी राहत दिलाएगी।
6: ये जैकेट में पिछले साइड दोनों बाजू में फैन दिए गए हैं और वो बैटरी ऑपरेटेड है, तो बैटरी जो है रिचार्जेबल है और वो कनेक्ट करने के बाद में अंदर से दोनों फैन चालू होते हैं, उनका पूरा शरीर जो है वो टेम्परेचर जो है कम होता है, इसीलिए धूप में उनको काम करने के लिए आसान। अमरावती में जो धूप है वो ज़्यादा है और इस धूप में काम करना पुलिस अमलदार के लिए, वाहतूक अमलदार के लिए यानी आसान नहीं है, और ऐसे वातावरण में उनको एयर कूल जैकेट सरकार की तरफ से दिया गया है, DPDC की तरफ से दिया गया है, तो उनमें बहुत अच्छा एक काम करने का अच्छा वातावरण।
5: तेज धूप में ड्यूटी करने की वजह से कई ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को लू लगने के मामले सामने आ रहे थे, तो कई बीमार पड़ने से छुट्टी लेने को मजबूर हो रहे थे। इससे यातायात व्यवस्था का संचालन भी प्रभावित हो रहा था। इन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की परेशानी को महसूस करते हुए अमरावती पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से 500 पुलिस कर्मियों को ये एयर कूल जैकेट दिए गए हैं, जो जिला नियोजन समिति के फंड से खरीदे गए हैं। हर जैकेट की कीमत करीब 7,000 रुपए बताई गई है।
7: एयर कूल जैकेट से क्या फायदा हो रहा है? हमारे साथ पुलिस कर्मचारी है, इसका फायदा किस तरह से हो रहा है, क्या क्या है इसमें जरा बताएं मुझे, क्योंकि देखिए इसमें जो है ये दो फैंस लगे हुए हैं, ये जो दो फैंस है ये अंदर हवा, बाहर की हवा जो है वो अंदर खींचते हैं और अंदर जो है जो पसीना आता है वो जो है इस हवा के कारण कम होता है। और साथ ही ये फैन किस पर चलते हैं तो मुझे बताइए जरा। यहाँ
8: पावर बैंक दिए इसको, ये पावर बैंक दिए, पावर बैंक के साथ में अटैच किए उसको, और इसके इससे दोनों भी फैन चलते हैं, और उसके साथ में उसके बटन भी दिए उसकी स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए।
7: और ये बैटरी चार्ज कर,
8: हाँ ये बैटरी चार्ज करना पड़ता है उसको,
7: तो इससे अच्छा कूल होता है। देखिए अमूमन जो है जैकेट, यहाँ पर आप देखिए मैं ऐसा दबा रहा हूँ, यानी इसमें पूरी तरीके से अंदरूनी हवा भरी है और इसको पैकअप करने के लिए यहाँ पर इस तरीके का ये दिया गया है, मानो ये जो है ये पूरी तरीके से अंदर जो है इनके हवा है, जो पसीना इनको आ रहा है वो पसीना इस हवा के चलते नहीं आए।
5: अब इस एयर कूल जैकेट को पहनकर तेज गर्मी में भी ड्यूटी करने से ट्रैफिक पुलिसकर्मी बहुत राहत महसूस कर रहे हैं।
7: आपका ये जैकेट है, जैकेट से कितनी राहत है और पहले कैसा था?
8: पहले वो बहुत गर्म होता था, अभी दोनों साइड से फैन वगैरह है तो उसके बहुत अच्छा लग रहा है।
7: राहत नजर आ रही है इस एयर कूल जैकेट से?
9: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राहत नजर आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं धूप बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से जो पसीना बहुत आता था, तो ये जैकेट पहनने से अभी काफी राहत।
5: अमरावती पुलिस भी इन यातायात कर्मियों को ये जैकेट पहने देखकर बहुत राहत महसूस कर रही है, क्योंकि इससे शहर की ट्रैफिक को व्यवस्थित रूप से चलाने में काफी मदद मिल रही है।
10: माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने ट्रैफिक पुलिस को जो एयर कूल जैकेट दिए उसकी वजह से अभी हमारे कर्मचारी पूरे पॉइंट पर खड़े रह के ट्रैफिक का नियमन कर रहे हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जामिंग काफ़ी इसमें कम हो गई है और कर्मचारी भी बहुत राहत कर रहे हैं, ठंडा महसूस कर रहे हैं, उसकी वजह से धूप में ड्यूटी करने के लिए आगे पीछे नहीं कर रहे।
5: सड़क पर आते जाते लोग इन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ये जैकेट पहने देखकर उनके पास पहुंच रहे हैं और इस जैकेट की खासियत जानकर वो भी अपनी खुशी जता रहे हैं।
11: 24 घंटे जो ये सेवा में तत्पर ही रहते हैं, इतने धूप में और इतने गर्मी के अंदर हम कुछ छाव का सहारा ले रहे सर और 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके अंदर उनको सहायता होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो देश हित में देश सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
5: झुलसाने वाली गर्मी के बीच अमरावती पुलिस की ये पहल न सिर्फ अपने जवानों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दिखाती है बल्कि ये भी बताती है कि सही फैसले से ड्यूटी की बेहतरी के लिए अपने विभाग के कर्मियों की सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
13: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
14: Gone! Home run!
13: NHL. College basketball.
15: He shoots it immediately. Yeah.
13: Tennis, golf, and even top motorsports like NASCAR.
16: One lap to go.
13: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
17: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
18: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: कुछ दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
20: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है
19: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: ईशान किशन को मिला T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन का इनाम। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
2: क्रिकेटर ईशान किशन को बिहार सरकार ने किया सम्मानित। उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन और भारत की खिताबी जीत में अहम योगदान देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। ईशान T20 विश्व कप में 317 रन बनाकर टॉप रन स्कोरर्स में शामिल रहे। ईशान एक दिन पहले ही पटना पहुंचे थे, जहां क्रिकेट फैंस ने उनका शानदार स्वागत किया। अपने चहेते खिलाड़ी की झलक पाने के लिए फैंस में गजब का उत्साह देखा गया। भारत को 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले स्टार बल्लेबाज मनजोत कालरा ने अब एक नई पारी शुरू की है। कालरा अब श्रीलंका की T20 लीग LPL में टीम मालिक बन गए हैं। दिल्ली के रहने वाले मनजोत कालरा और कारोबारी मयंक गोयल की कंपनी स्पोर्ट्स कम्यून ने लंका प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी जाफना किंग्स में हिस्सेदारी हासिल की है। IPL 2026 का 59वां मुकाबला लखनऊ के एकाना स्टेडियम में है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच है। LSG ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि LSG पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इस मैच से पहले उसे अपने 11 मुकाबलों में महज 3 में ही जीत हासिल हुई, जबकि CSK अपने 11 मैचों में से 6 में जीत दर्ज कर चुकी है। यूपी के गोरखपुर में अस्मिता नेशनल विमेन रोइंग लीग का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के 16 राज्यों से आए प्रतिभागियों ने अपनी रोइंग प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में 275 महिला एथलीट्स ने हिस्सा लिया, जिसने देश में वाटर स्पोर्ट्स में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दिखाया है। चैंपियनशिप के दौरान एथलीट्स ने रोइंग की अलग अलग श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन किया। इस लीग का अहम मकसद उभरती हुई महिला रोइंग प्रतिभाओं को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टीवी।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: पर क्या होगा पूजा विधान, शनि देव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान, और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर। नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन। न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत दी। नेफेड के जरिए 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी, किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाएगी सीबीआई का नया पोर्टल। एआई फीचर से लैस नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम अब है लॉन्च, नकली दस्तावेजों को पकड़ना होगा आसान। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्दी मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मॉनसून, समय से पहले दे रहा है दस्तक। बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी लुभा रहा रामनगरी अयोध्या का भव्यता और दिव्यता। अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी। द सरयू प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई। रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देश। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ मंदिर में दिखा आस्था और विश्वास का संगम। भगवान कृष्ण के पावन धाम में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान। दान पेटियों के पहले चरण में 11 करोड़ से ज्यादा राशि की गणना।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं मौसम का अजब गजब मिजाज की। मई का महीना चल रहा है, शुरुआती दिनों में बारिश के बाद अचानक से गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही मौसम तूफानी रूप भी दिखा रहा है और इसी वजह से बरेली में एक शख्स की जान खतरे में पड़ गई। टीन शेड के साथ 50 फीट की ऊंचाई तक उड़ गए बरेली के नन्हे की जान कैसे बची, आज आपको हम विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही मॉनसून पर भी बात होगी, जो कि 6 दिन पहले केरल में दस्तक दे रहा है। जाहिर है कि मॉनसून आएगा तो फिर बादलों के साथ राहत भी आएगी, लेकिन अभी फिलहाल उत्तर भारत को गर्मी का रौद्र रूप देखना पड़ रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी का हाल क्या है आपको आगे बताएंगे, और साथ ही दिखाएंगे कि गर्मी से बचने के लिए अमरावती में किस तरह से जैकेट के अंदर पंखे का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं उस चमत्कार से जिसे देखकर हर कोई हैरान है। बरेली में तेज आंधी के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ और एक शख्स टिन शेड के साथ करीब 50 फीट तक हवा में उड़ गया। हवा में उड़ते बरेली के नन्हे मियां का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस हादसे की तस्वीर देखने के बाद लोगों के जहन में यही सवाल था कि शख्स सही सलामत है या नहीं। हम आपको बता दें कि नन्हे जख्मी तो हुए हैं लेकिन ठीक है। किस तरह उनकी जान बची, चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।

0: मौसम की ये बेचैन करवट दरअसल आने वाले मॉनसून की दस्तक है, जो बहुत जल्द गर्म धरती को बारिश की ठंडक देने वाला है। अरब सागर से उठ रही राहत की पहली आहट मिल चुकी है, लेकिन देश इस वक्त दो मौसमों के बीच खड़ा है। एक तरफ आग उगलती गर्मी है तो दूसरी तरफ उम्मीद लेकर बढ़ रहा मॉनसून। मौसम विभाग यानी IMD ने संकेत दिए हैं कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून इस बार तय समय से पहले केरलम पहुंच सकता है। IMD के मुताबिक 26 मई को मॉनसून केरलम में दस्तक दे सकता है, जबकि सामान्य तौर पर इसकी एंट्री 1 जून को मानी जाती है, यानी इस बार बारिश करीब 6 दिन पहले आ सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि इसमें 4 दिन आगे या पीछे का अंतर संभव है।
1: देश भर में गर्मी अपने चरम पर है, तापमान लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में बढ़ते तापमान के साथ लोगों को उम्मीद है कि कब राहत की बारिश जो है वो दस्तक देगी। तो मौसम विभाग की तरफ से ये राहत की खबर सामने आई है कि जो मॉनसून है भारत के जो दक्षिणी हिस्से में मॉनसून जो दस्तक देता है उसकी तारीख जो है वो ऐलान कर दी गई है। हालांकि 1 जून के आसपास जो है मॉनसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार 6 दिन पहले यानी 26 मई की जो तारीख है वो दी गई है कि मॉनसून जल्द ही भारत के दक्षिण हिस्से में जो है वो दस्तक देगा। और वहां की अगर हम बात करें तो लगातार वहां पे IMD द्वारा जो है अलर्ट जारी किए जा रहे थे, कभी ऑरेंज अलर्ट तो कभी येलो अलर्ट। वहां पे हॉट एंड ह्यूमिड की जो स्थिति थी वो लगातार बनी हुई थी, 45 डिग्री के आसपास जो है तापमान जा रहे थे और लोगों को चिलचिलाती गर्मी खूब परेशान कर रही थी। तो ऐसे में ये उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि सबसे पहले जो बारिश जो दस्तक देगी मानसूनी बारिश वो केरल के हिस्से में देगी और उसके बाद लगातार अलग अलग आगे के हिस्सों में जो है मानसून बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो वहां पर भी मॉनसून जल्द दस्तक दे सकता है। जहां पे जून के अंत में बारिश देखी जाती है तो वहीं अंदाजा है लोगों को कि 26 से 27 जून के आसपास जो है उत्तर भारत के राज्यों में भी जो है मॉनसून की बारिश जो है वो देखी जा सकती है।
0: अंडमान सागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटों के भीतर मानसूनी गतिविधियां तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। समुद्री हवाओं की दिशा, बादलों की सक्रियता और नमी का स्तर ये बता रहा है कि बारिश का सिस्टम धीरे धीरे ताकत पकड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मानसून तय समय के अनुसार जल्दी पहुँचता है तो दक्षिण भारत में तापमान तेजी से नीचे आ सकता है। केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक और आसपास के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। किसानों के लिए भी ये राहत की खबर मानी जा रही है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई समय पर शुरू हो सकेगी और दूसरी फसलें बेहतर स्थिति में लगाई जा सकेंगी।
2: गर्मी अभी तो बहुत पड़ रही है, कूलर एसी भी अभी काम नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से और पसीना पसीना हो रहा है। अच्छा देखिए, छाता लेकर चलना पड़ रहा है अभी इतनी गर्मी के अंदर। और सुबह 8 बजे से ये ना ऐसा लगता है जैसे सीधा दोपहर ही हो रही है, सूरज उगते ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है और हर जगह चलना भी मुश्किल हो रहा है।
0: हालांकि मौसम वैज्ञानिक ये भी साफ कर रहे हैं कि केरलम में जल्दी पहुंचने वाला मॉनसून पूरे देश में तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा, इसकी गारंटी नहीं होती। आगे की चाल कई वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। फिलहाल देश का बड़ा हिस्सा अभी भी भीषण गर्मी की गिरफ्त में है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू का असर लगातार बढ़ रहा है। पश्चिमी राजस्थान में 15 से 21 मई तक तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। 18 से 21 मई के बीच हालात और खतरनाक हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी तपिश लगातार बढ़ रही है। 16 से 21 मई तक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। खास तौर पर 18 और 19 मई को हालात ज्यादा गंभीर रहने की आशंका जताई गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी 17 से 21 मई तक गर्म हवाओं का असर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अकोला में गुरुवार को देश का सबसे ज्यादा तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान इस समय सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। जयपुर से लेकर बीकानेर और फतेहपुर तक सड़कों पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे धरती तप रही हो।
3: सुबह और दोपहर गर्मी तो शाम होते हो।

0: ही कहना है कि यही हाल शुक्रवार को यानी कि आज भी रहेगा। आज भी जिस तरह से दिन में तपती गर्मी है, वहीं शाम को आंधी और बारिश होने की संभावना है। पर फिर कल से लेके अगले एक हफ्ते तक यानी कि 16 तारीख से अगले एक हफ्ते तक तेज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है।
1: राजधानी दिल्ली और NCR में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिन में तेज धूप लोगों को झुलसा रही है, जबकि शाम ढलते ही आंधी और हल्की बारिश राहत दे रही है। शुक्रवार देर शाम दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम का ये मिला जुला अंदाज चुनौतियों के साथ है। दिन में गर्मी सता रही है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि लू के दौरान धूप में निकलने से बचें, लगातार पानी पीते रहें और ORS, नींबू पानी या छाछ जैसे घरेलू पेय का इस्तेमाल भी करें। अगर आंधी तूफान के हालात हैं तो पेड़ों के नीचे न खड़े हों। दिल्ली से मनीषा लड्डा, जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देश के दूसरे शहरों की तरह इन दिनों अमरावती में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ पारा नई ऊंचाई छू रहा है। हालात ये हैं कि लोगों को घरों से बाहर निकलना तो भर हो गया है, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी ट्रैफिक कर्मी अपनी ड्यूटी पर डटे हैं। और ऐसे में इन ट्रैफिक कर्मियों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए एक विशेष जैकेट दी गई है, जो 45 से 46 डिग्री की गर्मी में भी इन्हें कूल रखती है। कैसे ये जैकेट काम करती है, आइए दिखाते हैं आपको।
3: महाराष्ट्र के अमरावती शहर में गर्मी चरम पर है। तापमान 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसे में लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करने में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। गर्मी के इस मौसम में जहां आम लोग घर में रहकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं शहर की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले पुलिस के जवान दिन भर चौराहों पर खड़े रहते हैं। लेकिन अब अमरावती पुलिस ने अपने जवानों के लिए एक अनोखी पहल की है और करीब 500 पुलिस कर्मियों को एयर कूल जैकेट दिए गए हैं। एयर कूल जैकेट मिलने से पुलिस कर्मियों को भीषण गर्मी के मौसम में भी ड्यूटी करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अमरावती के लोग जब ट्रैफिक पुलिस के जवानों को इस सफेद रंग के जैकेट में देखा तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई, लेकिन जब उनको जैकेट के बारे में जानकारी मिली तो वो भी अधिकारियों के फैसले से सहमत दिखाई दिए।
4: 24 घंटे जो है सेवा में तत्पर ही रहते हैं, इतने धूप में और इतने गर्मी के अंदर हम कुछ छाव का सहारा ले रहे सर, और 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके अंदर उनको सहायता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देश हित में देश सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर।
3: हमारी पुलिस सिर्फ जनता को लेकर ही संवेदनशील नहीं है, बल्कि अपने कर्मचारियों का भी भरपूर ध्यान रखती है, इसलिए जवानों के हक में फैसला लिया गया।
5: एयर कूल जैकेट की वजह से धूप में जो ड्यूटी कर रहे वो हाथों कंबलदार हैं, उनके लिए बहुत ही सुसह्य हो गया है और वो अच्छे तरह से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
3: अब आपको बताते हैं कि आखिर इस जैकेट में ऐसा क्या है जिससे जवानों को गर्मी में बीच सड़क राहत महसूस हो रही है। सफेद रंग के जैकेट पर रिफ्लेक्टर लगे हैं, पीछे दो छोटे पंखे लगे हैं, 10,000 mAh पावर बैंक से ये चलते हैं। जैकेट के अंदर हवा सर्कुलेट होती है जिससे शरीर ठंडा रहता है और लू से बचाव होता है। जहां तक कीमत की बात है तो ये करीब 7,000 प्रति जैकेट के हिसाब से खरीदा गया है।
5: ये जैकेट में पिछले साइड दोनों बाजू में फैन दिए गए हैं और वो बैटरी ऑपरेटेड है, तो बैटरी जो है रिचार्जेबल है और वो कनेक्ट करने के बाद में अंदर से दोनों फैन चालू होते हैं। उनका पूरा शरीर जो है वो टेम्परेचर जो है कम होता है, इसीलिए धूप में उनको काम करने के लिए आसान होता है।
3: अमरावती पुलिस की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। किसी भी शहर में यातायात व्यवस्था संभालना अपने आप में चुनौती वाला काम है, और अगर तापमान 46 डिग्री के आसपास हो तो ये काम और मुश्किल हो जाता है। लेकिन अमरावती पुलिस की इस पहल को हर कोई सलाम कर रहा है। अमरावती से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
2: में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
10: देव की जयंती पर क्या होगा पूजा विधान? शनि देव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान? और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: दिल्ली NCR में प्रदूषण घटाने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा फैसला, बिना PUC वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल, 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। गुजरात में अहमदाबाद धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉड गेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन, न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत, नेफेड के जरिए 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी, किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: मेवाड़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर खोली गई दान पेटियां। पहले चरण की गणना में निकले 11,30,00,000 रुपए, 18 मई को होगी अगली गिनती। मंदिर मंडल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई गणना, भक्तिमय जयकारों से गूंजा पूरा परिसर। सांवलिया सेठ में श्रद्धालुओं की अपार आस्था, भक्तों का मानना है सांवलिया सेठ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। श्री सांवलिया सेठ मंदिर में हर महीने आता है करोड़ों का चढ़ावा, देश भर से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु।
7: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 13 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, अब तक 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में 3,24,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, विधि विधान से की भगवान बद्री की पूजा अर्चना। यमुनोत्री धाम में अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने दर्शन किए, गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालु की संख्या पहुंची 2 लाख के पार। चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रही वाहनों की आवाजाही, श्रद्धालु की संख्या में हो रहा है लगातार इजाफा। केदारनाथ धाम में बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए अच्छी खबर, दर्शन में मिलेगी प्राथमिकता। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए बुजुर्ग और दिव्यांगों को नहीं लगना होगा लाइनों में, मंदिर समिति ने जारी किए निर्देश। केदारनाथ धाम में बन रहा दर्शन का नया रिकॉर्ड, अभी तक 5.5 लाख से ज्यादा यात्री कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। पंच केदारों में चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया भी शुरू, चल विग्रह मूर्ति को मंदिर परिसर में किया गया विराजमान। श्रीकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में 2 दिन तक पूजा अर्चना के बाद 17 मई को रवाना होगी भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली, 18 मई को खोले जाएंगे रुद्रनाथ धाम के कपाट। बद्री विशाल के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, ठंड के बावजूद मौसम बना हुआ सुहावना। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की यात्रा के साथ अब देवताल मार्ग की ओर भी रुक कर रहे सैलानी, चीन सीमा से सटा खूबसूरत देवताल इलाका। इन दिनों बर्फ से सराबोर है देवताल की वादियां, चारों तरफ बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं चोटियां, सफेद चादर ओढ़े घाटी और शांत वातावरण सैलानियों को कर रहा आकर्षित। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के पावन अवसर पर अयोध्या में उमड़ रही श्रद्धालु की भीड़, श्री ईश्वरनाथ सिद्ध शिवालय में जलाभिषेक कर रहे लोग। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी पर रामलला के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे श्रद्धालु, भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाकाल की दिव्य भस्म आरती, मासिक शिवरात्रि के शुभ अवसर पर दिखा श्रद्धालुओं का उत्साह। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आज शुभ संयोग, आयुष्मान योग के साथ बन रहे कई खास योग। शिवरात्रि के अवसर पर आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग, अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त और जैसे शुभ संयोग, भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन। आज वृषभ संक्रांति पर बन रहा दुर्लभ संयोग वृषभ राशि में सूर्य देव का प्रवेश, दूसरे सौर मास के आरंभ का प्रतीक। वृंदावन पहुंचे प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर, संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। भोलेनाथ के भजन से गूंजा वृंदावन, प्रेमानंद महाराज के सामने कैलाश खेर ने गाया।
11: जन्म जन्म बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी।
7: राधा के लिकुंज आश्रम में गायक कैलाश खेर ने मीराबाई के भजन भी गाए, संत प्रेमानंद महाराज ने की सराहना।
11: पायरी सुन राणा बाई खेले तो पायरी मीराया कांगना हो।
7: सिंगर कैलाश खेर को प्रेमानंद महाराज ने बताई नाम जबकि महिमा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत अपील के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब सोमवार और शुक्रवार को होगी सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, कार पूलिंग करने के लिए सहमत हुए सुप्रीम कोर्ट के जज। ईंधन संरक्षण को लेकर गुजरात सरकार की पहल, इलेक्ट्रिक वाहनों से विधानसभा पहुंच रहे मंत्री। बिहार में भी दिखा प्रधानमंत्री की ईंधन बचत अपील का असर, सैर समय पैदल दफ्तर पहुंचे जिलाधिकारी दीपेश कुमार। हरियाणा के सरसा रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब के लिए दौड़ी विशेष ट्रेन, सीएम नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। सीबीआई के अभय हेल्प बॉट लॉन्च, साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट से लोगों को बचाना है लक्ष्य। सिस्टम के जरिए नागरिक खुद किसी भी नोटिस की कर सकेंगे जांच, नकली दस्तावेजों को पकड़ना होगा आसान। गुजरात में अहमदाबाद के धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन। न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम, लगभग 134 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर 200 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। प्याज किसानों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी राहत, नेफेड के जरिए 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे जाएंगे प्याज, किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगी राशि। गुजरात के जूनागढ़ में लोक संगीत कार्यक्रम बना आकर्षण का केंद्र, प्रसिद्ध लोक कलाकारों पर हुई नोटों की बारिश। ₹500 के नोटों से पटा नजर आया मंच, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। लोक संगीत कार्यक्रम में मिला धन लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल होगा, बेटियों के लिए इस धनराशि से बनाया जाएगा हॉस्टल। पीएम मोदी की ईंधन बचत की अपील को लेकर गाजियाबाद डीएम रविंद्र मानर की पहल, बाइक से पहुंचे कलेक्ट्रेट। मिर्जापुर में भी दिखा प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत अपील का असर, उद्यान अधिकारी साइकिल से पहुंचे ऑफिस। गुजरात के नर्मदा में बायोगैस प्लांट लगाने का काम तेज, अब तक 665 आदिवासी परिवारों की रसोई धुआं मुक्त हुई। ईंधन संकट के बीच गोबर से बन रही गैस, बच रहा सिलेंडर का खर्च। ईंधन संरक्षण के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में नो व्हीकल डे, नैनीताल में मुख्य न्यायाधीश समेत सभी जज पैदल कोर्ट पहुंचे। सौरव तीर्थ क्षेत्र को मिली 22 करोड़ रुपए की सौगात, धार्मिक पर्यटन हब बनाने की दिशा में माना जा रहा है एक बड़ा कदम। कासगंज में सौरव घाटों का होगा सौंदर्यकरण, झील को भी इको टूरिज्म के रूप में किया जाएगा विकसित। उत्तराखंड का टिहरी बना एडवेंचर और धार्मिक पर्यटन का केंद्र, देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। टिहरी लेक को मिल रही एडवेंचर टूरिज्म स्थान के रूप में नई पहचान, जेट स्की बोटिंग पर्यटकों को कर रहे आकर्षित। मैदानों पर बढ़ती गर्मी के चलते सैलानी कर रहे हैं टिहरी गढ़वाल का रुख, ठंडी वादियों का ले रहे हैं मजा। कुनो नेशनल पार्क में छोड़ी गई दो और मादा चीता, जंगल में घूम रहे चीतों की संख्या बढ़कर हुई 16। बोत्सवाना से लाई गई दो मादा चीतों को क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद खुले जंगल में छोड़ा गया, एडवांस रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम से दोनों चीतों पर रखी जा रही नजर। मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा की नई तारीख का एनटीए ने कर दिया ऐलान, लाखों परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर। अब 21 जून को देश भर में दोबारा कराई जाएगी नीट यूजी 2026 परीक्षा, 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हो सकते शामिल। एनटीए ने सोशल मीडिया और दूसरे स्रोतों पर दी परीक्षा की नई तारीख की जानकारी, फोन नंबर और ईमेल भी जारी किए। 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए 14 जून को जारी होंगे एडमिट कार्ड, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी। परीक्षा में छात्रों को मिलेगा 15 मिनट अतिरिक्त समय, लाखों छात्रों के लिए राहत देने वाली खबर। छात्रों को मिलेगा अपने पसंद के शहर में एग्जाम देने का मौका, आर्थिक बोझ ना पड़े उसके लिए रखा जा रहा है ख्याल। अगले साल से ऑनलाइन होगी नीट परीक्षा, ओएमआर शीट की जगह कंप्यूटर बेस्ड कर दिया जाएगा एग्जाम, सरकार का बड़ा फैसला। सरकार का ऐलान, छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं, एनटीए में किए जाएंगे सुधार। एनटीए ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों से की अपील, परीक्षा के बारे में केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यमों पर ही करें भरोसा। पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने रद्द कर दी थी 3 मई को हुई परीक्षा, अब नए सिरे से कराया जाएगा एग्जाम। भीषण गर्मी में देश भर के लिए राहत भरी खबर, 26 मई को केरला में दस्तक दे सकता है मानसून। मौसम विभाग ने दी जानकारी, निर्धारित समय से 6 दिन पहले पहुंच सकता है मानसून। मानसून के पहले आने से किसानों को होगा फायदा, खरीफ फसलों की बुआई के लिए अनुकूल मिलेगा मौसम। केरला में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 2 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इस साल मॉनसून सीजन में सामान्य से कम बारिश की आशंका, आईएमडी का अनुमान, देश में हो सकती लगभग 80 सेंटीमीटर बारिश। कान फिल्म फेस्टिवल में लगा पंजाबी तड़का, पंजाबी मॉडल अभिनेत्री रूपी गिल की तस्वीरें वायरल। रूपी गिल ने कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर लूटा सबका दिल, सफेद आइवरी सूट, डायमंड और एमरल्ड ज्वेलरी में नजर आई। 2026 में रूपी गिल ने किया अपना डेब्यू, पहले ही अपेयरेंस में बिखेरा शानदार जलवा। नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस एमी बरुआ ने भी कान 2026 में बिखेरे जलवे, नॉर्थ ईस्ट की पारंपरिक पोशाक और ज्वेलरी में की शिरकत। एक्टर ताहशाह बदुशा भी कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में शामिल हुए, डैशिंग लुक में नजर आया था ताहशाह। वेलकम टू द जंगल का टीजर आउट, 14 सितारों की टोली संग अक्षय ने लगाया कॉमेडी का तड़का, फिल्म 26 जून को रिलीज होगी। पीटर विल्सन की फिल्म ऑब्सेस का ट्रेलर जारी, वायलेंस और थ्रिलर से भरपूर, 29 मई को थिएटर्स में दस्तक देगी।
12: बदतमीज,
7: भारत में 4 जून को होगा धुरंधर 2 ग्रैंड डिजिटल प्रीमियर, 5 जून को जियो हॉटस्टार पर दर्शक देख पाएंगे।
13: अब बिगाड़ने का वक्त आ गया है।
7: तेलुगु फिल्म महाकाली का हिस्सा बने एक्टर रोहित सराफ, अक्षय खन्ना संग साउथ में करेंगे डेब्यू, हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग शुरू। रामायण की रिलीज से पहले रणबीर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, अमिताभ बच्चन के बाद सरयू में जमीन खरीदने वाले दूसरे एक्टर बने।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
14: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य
6: कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण घटाने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा फैसला। बिना पीयूसी वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल, 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर। नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन। न्यू जेनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत। निफ्ट के जरिए 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी। किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर होगा पैसा।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, शनि जयंती के बारे में आज के कार्यक्रम में बात होगी, क्योंकि शनि जयंती का पावन अवसर आ गया है। इसी दिन सूर्य और छाया पुत्र यानी शनिदेव महाराज का जन्म हुआ था। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो उसे किस तरीके से बलवान किया जा सकता है, किस तरीके से इस दिन पूजा उपासना कर शनि की कृपा आप पा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, शनि जयंती पर सार्वजनिक स्थान में, पार्क में, सड़क के किनारे, जहां भी आपको उचित जगह दिखाई दे, वहां एक पीपल का पौधा जरूर लगाइएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में संतान संबंधी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी।
0: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 16 मई 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 16 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, शाम के 5:30 तक चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 10:46 तक राहु काल का समय, प्रातः 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शनि जयंती के बारे में। यहाँ पर बात की जा रही है, शनि भगवान की उत्पत्ति हुई थी, जन्म हुआ था ये कहा जाता है। क्या महिमा है, क्योंकि अगर शनि देव की बात करें तो कर्म के देवता इन्हें माना जाता है। अगर कुंडली में शनि कमजोर है, किस तरीके से बलवान किया जा सकता है?
1: जी देखिए, वैसे तो ज्योतिष में हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, लेकिन जयंती जो अलग से मनाई जाती है, 2 ही ग्रहों की जन्म जयंती सामान्यतः मनाई जाती है, सूर्य देव की और शनि देव की। तो शनि जयंती का महत्व क्या है? ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और लंबे समय तक अपना प्रभाव दिखाने वाले ग्रह शनिदेव माने जाते हैं, इसीलिए ग्रहों में

0: बदलने की ताकत है। माना जाता है कि शनि देव का प्राकट्य यानी जन्म हुआ था ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि को, और इसी दिन शनि देव की जन्म जयंती मनाई जाती है। शनि जयंती पर संध्या काल में जगह जगह पर देश दुनिया में शनि देव की विशेष पूजा की जाती है और शनि कृपा प्राप्त करने के विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इस बार 16 मई को शनि देव की जयंती मनाई जा रही है। 16 मई को संध्या काल में शनि देव की विशेष पूजा होगी, तमाम तरह के उपाय किए जाएंगे, दान किए जाएंगे, जिससे शनि देव की कृपा हर व्यक्ति को प्राप्त हो पाएगी।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मेष राशि, संतान का सहयोग और प्रेम आपको प्राप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, परिवार में शांति बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो देखिए, शनि जयंती का मौका है, ऐसे में शनि जयंती पर किस तरह से शनि देव की उपासना कर आप उनकी कृपा पा सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: तो शनि जयंती पर मुख्यतः शनि देव की पूजा होती है ताकि उनकी कृपा मिले, जीवन का संघर्ष कम हो, जीवन की बाधा दूर हो। तो शनि जयंती पर पूजा करने का सरल तरीका क्या होगा? शनि जयंती पर शनि देव की पूजा संध्या काल में ही करिएगा, सूर्यास्त के बाद। संध्या काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, काले नीले कपड़े मत पहनिएगा, सफेद या पीले या लाल कपड़े पहनिएगा। इसके बाद सबसे पहले भगवान शिव की या श्री कृष्ण की उपासना करिएगा, फिर शनि देव के मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा। सबसे सरल मंत्र है ओम शं शनैश्वराय नमः, ओम शं शनैश्वराय नमः। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करिएगा, 3 माला 5 माला या 11 माला। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाइएगा। शनि देव से दीपक जला करके कृपा करने की प्रार्थना करें और सबसे अंत में निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का और बर्तनों का दान करिएगा। लोहे या स्टील के बर्तनों का दान करना अच्छा होगा। तो शनि जयंती पर शनि देव के मंत्र का जप करना है, पीपल के नीचे दीपक जलाना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को दान करना है।
1: बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आज मन अच्छा बना रहेगा, परिवार के तनाव कम होते जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो चलिए, अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न अनामिका शर्मा ने हमें लिखा है और अनामिका हमें मथुरा से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 8 अक्टूबर 2010, जन्म का समय रात में 9 बजे और जन्म का स्थान है मथुरा। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और बार बार उसको चोट चपेट लगती रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बेहतर रहे और वो स्वस्थ रहे। देखिए आपके पुत्र की कुंडली में जो मंगल और शनि की स्थिति है उसके गड़बड़ होने की वजह से आपके पुत्र को बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप मंगल के उपाय करें तो उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और वो चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। ऐसा करिए, आप अपने पुत्र के गले में एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डालकर मंगलवार को सुबह पहना दीजिएगा और अपने पुत्र के लिए सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा तो चीजें ठीक रहेंगी।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपके जीवन में कोई परेशानी है, दुख तकलीफ है, जिसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी को आप नोट कर सकते हैं और अपने सवाल इस पर लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न विशाखा ने हमें लिखा है। विशाखा मुंबई से मेल लिखती हैं। 28 जनवरी 1992 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। विशाखा कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, क्या मेरा विवाह आगे होने की संभावना है और क्या मैं विदेश जाकर के सेटल हो सकूंगी? विशाखा, आपकी कुंडली में विवाह होने की संभावना जरूर है और आपका विवाह साल 2027 के शुरुआती समय में होगा, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में बनती है। देखिए, विदेश जाकर कुछ समय तक तो आप रह सकेंगी या आती जाती रहेंगी, लेकिन विदेश में सेटलमेंट की संभावना मुझे नहीं लगती है। आपको अंततः वापस लौटना पड़ेगा। आपका विवाह शीघ्र हो, आपका करियर बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो अगर आपको अपने करियर में या फिर नौकरी संबंधित किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो शनि जयंती के मौके पे क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, आप नौकरी छोटी करें या बड़ी करें, बिना शनि कृपा के नौकरी मिलना संभव ही नहीं है और अगर शनि की कृपा ना हो तो नौकरी में उन्नति भी संभव नहीं है। तो अगर नौकरी संबंधी कोई भी दिक्कत है, नौकरी मिल नहीं रही है, चल नहीं रही है, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे 3 सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। इसके बाद चाहे वहीं बैठ के मंत्र पढ़ें या दीपक जला के घर चले आएं और उसके बाद 11 माला शनि देव का मंत्र पढ़ेंगे। कम से कम 11 माला पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद शनिदेव से प्रार्थना करिएगा कि आपकी नौकरी की समस्या हल हो जाए और उसके बाद निर्धनों को, गरीबों को खाने पीने की चीज, कोई भी खाने पीने की चीज, रोटी सब्जी हलवा पूड़ी बिस्किट नमकीन कुछ भी दान करिएगा। अगर शनि जयंती पर ऐसा कर देते हैं तो आपकी नौकरी संबंधी समस्या हल हो जाएगी।
1: तो अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर रही है तो शनि जयंती पर क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, अगर शनि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या देता है तो वो स्नायु तंत्र की नर्वस सिस्टम की समस्या होती है या लंबी चलने वाली बीमारी शनि की वजह से जीवन में आ जाती है। अगर स्वास्थ्य की कोई जटिल कोई गहरी समस्या है, आप जूझ रहे हैं, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर एक लोहे का छल्ला ले आइएगा, इसको एक कटोरी में सरसों का तेल डालें थोड़ा सा, उसी में छल्ले को डुबो लें, यानी सरसों के तेल से शुद्ध करें। इसके बाद कटोरी को जिसमें छल्ला है अपने सामने रख लें और शनि देव के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करें। जप करने के बाद शनि देव से प्रार्थना करें कि आपको रोगों बीमारियों से छुटकारा मिले और इसके बाद लोहे का छल्ला राइट या लेफ्ट हैंड में दाहिने या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण कर लें और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को काले वस्त्र का दान कर दीजिएगा। काला कुर्ता काला शर्ट काले कपड़े जैसा भी संभव हो वो किसी गरीब आदमी को दीजिएगा। अगर आप ऐसा शनि जयंती पर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी स्वास्थ्य की स्थिति में आने वाले समय में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
1: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है।
0: तुला राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नया काम आपका शुरू हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो अगर कोई धन संबंधित समस्या है तो शनि जयंती के मौके पे क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, अब उसके बारे में जान लेते हैं।
0: देखिए, शनि अगर आपकी कुंडली में निगेटिव है ना, पैसे रुपए को लेके बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और शनि अगर बहुत ज्यादा खराब हो तो आदमी को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे स्थिति में शनि जीवन में भयंकर संघर्ष बढ़ा देता है। तो अगर शनि की वजह से आर्थिक स्थिति खराब है, कोई धन संबंधी समस्या है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर एक काला कपड़ा ले लें, थोड़ा सा बड़ा कपड़ा ले लें, उसमें एक जटा वाला नारियल और कुछ पैसा जितना भी रख सकें, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया वो रखिए। इसको अपने सामने रख लीजिए, पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिएगा और इस काले कपड़े में नारियल और पैसे को अपने सामने रख लीजिएगा। इसके बाद शनि मंत्र का जप करिएगा। अच्छा होगा कि कम से कम 11 माला जप करें, नहीं तो 5 माला मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। जप करने के बाद अपनी आर्थिक समस्या के दूर हो जाने की प्रार्थना करें कि मेरी धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएं, मेरी आर्थिक कठिनाई समाप्त हो। इसके

0: मेरी आर्थिक कठिनाई समाप्त हो। इसके बाद कपड़े में ही नारियल और पैसा जो रखा है, कपड़े के साथ सारा सामान किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। कोई नहीं मिलता है तो पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके चले आइएगा। अगर ये काम आप कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा।
1: तो देखिए, अगर शनि के 7:30 या फिर ढैया चल रही है और लगातार परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो देखिए शनि जयंती है, ऐसे में शनि जयंती के मौके पर क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, अगर आपकी 7:30 है, जैसे इस समय कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर शनि की 7:30 चल रही है, या आपकी ढैया है जैसे इस समय सिंह पर और धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती हैं। आमतौर पे जीवन में संघर्ष थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अगर 7:30 या ढैया आपकी चल रही है तो क्या उपाय करेंगे शनि जयंती पर? शनि जयंती की रात को उपाय करिएगा, एक घी का या तिल के तेल का दीपक पश्चिम दिशा की तरफ जलाइएगा और फिर खुद भी दीपक सामने रखकर पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिएगा। अपने सामने कोई फल या मिठाई या दोनों रख लीजिएगा। इसके बाद शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए या कम से कम 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और शनिदेव से प्रार्थना करिएगा कि आपके ऊपर कृपा करें, 7:30 या ढैया का प्रभाव कम हो जाए। अगले दिन सुबह के समय फल और मिठाई का दान कर दीजिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को। ये छोटा सा उपाय अगर आप शनि जयंती की रात को कर लेते हैं तो 7:30 और ढैया के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा, परिवार में शांति बनाए रखें, धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य,

0: आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अभी किसी भी तरह के परिवर्तन से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न अभिषेक जी ने हमें लिखा है और अभिषेक जी हमें मेल लिखते हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1991, रात में 11:25, जन्म स्थान है महाराजगंज उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं गोरखपुर से। ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें चली आ रही हैं, लेकिन जांच में रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो मैं कब तक स्वस्थ हो पाऊंगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अभिषेक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके शरीर में कोई दिक्कत है ही नहीं। थोड़ी बहुत दिक्कत हड्डियों नसों की हो सकती है, लेकिन ज्यादातर आपकी दिक्कत साइकोलॉजिकल है, मानसिक है। किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करिए, उससे थोड़ा सुधार होगा। और दूसरे नंबर पे एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें, आपके जीवन में सुधार होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अंतिम यानी कि चौथा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न प्रभात अग्रहरी ने हमें लिखा है और प्रभात हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 मार्च 1982, जन्म का समय 9:00 बजे, जन्म का स्थान है लखनऊ। प्रभात कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मेरे ऊपर थोड़े बहुत कर्ज भी हो गए हैं, तो मेरी आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी? क्या मुझे लखनऊ छोड़ करके कहीं और बसने का प्रयास करना चाहिए? प्रभात, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका स्थान परिवर्तन अवश्य होगा। साल 2026 के अंत में या 27 के आरंभ में आप चेंज ऑफ प्लेस करेंगे और नई जगह पर जाना, नए जगह पर काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आने वाला समय आपका कुल मिला जुला के बेहतर हो जाएगा। दो उपाय करिए, रोज शाम को एक बार इंद्र कृत लक्ष्मी स्तोत्र, इंद्र कृत लक्ष्मी स्तोत्र रोज शाम को पढ़िए। और एक जरकन नाम का रत्न आता है, सफेद जरकन, 6 से 8 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। शुक्रवार की शाम को अगर आप धारण करें तो उससे आपके जीवन में सुधार होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनका जन्मदिन 16 मई को है, आप सभी को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 16 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव रह सकता है और अभी आपके विवाह के मामलों में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए, अब कार्यक्रम में समय हो गया है जानने का कि आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि अगर आपकी शनि की खराब दशा चले तो क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपकी शनि की खराब महादशा या अंतर दशा चल रही है तो रोज सवेरे जल में काला तिल डाल करके सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नियमित रूप से रोज शाम को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। तामसिक भोजन मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनि की महादशा या अंतर दशा का अशुभ प्रभाव आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 16 मई 2026 यानी कि दिन शनिवार का शुभ पहर आखिर कौन सा है।
0: दिनांक 16 मई 2026 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके कर्ज की और धन की समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 16 मई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि आखिर कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के लिए इस समय स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। आज की गुडलक राशि है तुला। इस समय स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन पेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खान पान में सावधानी बनाए रखेंगे।
1: और देखिए, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, देखिए, अगर बेवजह आपको हमेशा चिंता रहती है, बेवजह की मानसिक चिंता आपको परेशान करती है, तो रोज सवेरे चांदी के गिलास से, चांदी की कटोरी या लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाइए डेली मॉर्निंग मंदिर जाके। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में या पीले धागे में अपने गले में पहनिए और रात को सोते समय जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो आपका मन शांत होगा, मन में रहने वाली हर समय की चिंता दूर हो जाएगी।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके पे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे

0: सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: शनि देव की जयंती पर क्या होगा पूजा विधान? शनि देव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान? और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: सीआर में प्रदूषण घटाने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा फैसला, बिना पीयूसी वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल, 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन, न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत, नेफेड के जरिए 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी किसानों की। खासियार में प्रदूषण घटाने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा फैसला, बिना पीयूसी वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल, 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन, न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम।

Agu va Fesla. गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर. नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन. न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम. प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत. नेफेड के जरिए 12.35 रूपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी. किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा. डिजिटल अरेस्ट के नाम पर मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में दिखा आस्था और विश्वास का संगम. भगवान कृष्ण के पावन धाम में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान. दान पेटियों के पहले चरण में 11 करोड़ से ज्यादा राशि की गणना.

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं डीएनटी स्पेशल। मशहूर शायर निदा फाजिल ने कभी लिखा था, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने को चार किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, ये हमारे जैसे नहीं है, बल्कि ये इतने सुपर टैलेंटेड और कमाल के फनकार हैं कि ये हमारे जैसे नहीं, बल्कि आप और हम इनके जैसे होना चाहेंगे। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा साउंड करता है, क्यों? चलिए आपको दिखा देते हैं।

0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उम्र है 2, संस्कृत जोरदार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार स्पेस एक्सपर्ट हैं, उम्र है 4।
1: स्मॉल प्लैनेट इसो सैटर्न हैव ब्यूटीफुल रिंग्स इसो जुपिटर इज अ बिग प्लैनेट।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 2 साल के गूगल नॉलेज शानदार।
2: परशुराम कौन से अवतार हैं विष्णु भगवान के?
3: छठे अवतार।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 7 की उम्र में पार्क स्ट्रीट तैर कर

ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 14 की उम्र, 44 वाद्यों की फनकार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 9 की उम्र में स्विमर जोरदार।

चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर की रहने वाली 2 साल की जीनियस के साथ। 2 साल के बच्चे ठीक से बोलना तक नहीं जानते हैं, लेकिन प्रशा उन बच्चों में से नहीं है। 2 साल की प्रशा को 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र आते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स 1 से लेकर 100 तक गिनती, सूर्य नमस्कार और भी ना जाने क्या क्या जानते हैं और क्या क्या करती है ये छोटी सी गुड़िया।

0: सुनाओ।
1: गप्पू होएगा।

0: शिवाय।
1: जोर से बोले ऐसे करके, कंधे पे ऐसे ऐसे ही रख के हो अच्छे से। ओम नमः शिवाय। आईज क्लोज करके।
0: ओम नमः शिवाय।
2: दीम पट्टी बनाया में बनाया क्या माता है।
3: जो ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की वही भाषा, पुराणों की वही बानी, जयपुर में मौजूद इस घर के आंगन में गूंजती।
2: हम बोल बुआ जाए तो छतुर बजे हम पयो देवती देवा योया पचोलिया।
3: मानो माँ सरस्वती बाल रूप में उतर आई और खेल खेल में अपनी तोतली जुबान में हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की कहानियाँ सुना रही हूँ।
2: यारे भी चबूते चू छत्ती वो पैन छत्ती ता नमतते नमतते नमो नमा।
3: दो साल की उम्र जब बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते, तब तुतलाती जुबान में श्लोक और मंत्रों का ऐसा उच्चारण कि सुनने वाला सुनता रह जाए। जयपुर की रहने वाली दो साल की प्रिशा आज 30 से ज्यादा मंत्रों और श्लोकों का स्पष्ट उच्चारण कर लेती है। जहाँ बड़े बड़े लोग भी संस्कृत श्लोकों और मंत्रों को सही तरह से उच्चारित नहीं कर पाते, वहीं ये नन्ही बच्ची इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुँच गई है। अपनी अद्भुत याददाश्त और प्रतिभा के दम पर जयपुर की प्रिशा आज सुपर टैलेंटेड किड कहलाने लगी है।
4: आज के टेक सेवी जमाने में जहाँ हर एक बच्चा फोन या स्क्रीन्स के पीछे भागता है या फिर उससे ज्यादा अडिक्टेड हो जाता है, वहीं जयपुर की एक नन्ही सी बच्ची है जिसने महज 2 साल की उम्र में अपने नाम पे इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है और वो नाम सुपर टैलेंटेड किड के नाम से दर्ज हुआ है। ये नन्ही सी बच्ची है जयपुर की प्रिशा, जो संस्कृत में 2 साल की उम्र में 30 से ज्यादा श्लोक बोल सकती है।
3: बेटियाँ यूं भी दुआओं की तरह मिलती हैं, अपनी खिलखिलाहट, मासूमियत और खनकती हंसी से घर के कोनों को भिगोती हुई। लेकिन गुड़िया रानी अगर प्रिशा जैसी प्रतिभा लेकर पैदा हो तो हैरानी की बात नहीं कि परिवार उसे ईश्वर का उपहार और आशीर्वाद मानता है। प्रिशा के माता पिता का भी कुछ ऐसा ही मानना है।
5: जब इसे ना हम रोज मॉर्निंग में मॉर्निंग प्रे करवाते थे, जब ये बोलना स्टार्ट नहीं करी थी तो सुनती थी, पर एकदम से जब हमने देखा कि एक दिन ये खुद से बोल रही थी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये खुद से बोल सकती है। हमें लगा कि हाँ धीरे धीरे याद करेगी, पर ये खुद से बोलने लग गई थी, तब हमें रियलाइज हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है शायद इसमें।
3: सिर्फ 24 महीने की उम्र में प्रिशा को 30 से ज्यादा संस्कृत मंत्र और श्लोक याद है। वो न उनका स्पष्ट उच्चारण करती हैं, बल्कि कई श्लोकों का अर्थ समझने की कोशिश भी करती हैं। सभी देवी देवताओं को पहचानते हुए उनके बारे में काफी कुछ जानती हैं। प्रिशा खुद 80 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स पहचान सकती हैं। सारे अल्फाबेट्स और 100 तक गिनती भी प्रिशा को बखूबी याद है। साथ ही ये बच्ची सूर्य नमस्कार कर सकती है, हाथों के बल चलने का अभ्यास करती है और अपने से 3 गुना ऊंची ग्रिल पर भी अपने आप चढ़ जाती है। आज जहाँ आम घरों में छोटे बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते, वहाँ प्रिशा का मोबाइल से मानो कोई वास्ता ही नहीं है।
5: इसने कभी फोन नहीं देखा आज तक, नहीं कभी नहीं। मैं अगर सुनाती भी हूँ तो स्पॉटिफाई पे बंद करके, तो इसे पता है फोन में सुनना है देखना नहीं है। बताती है आइस खराब हो जाती है फोन देखने से, और हमको भी नहीं देखने देती। हम भी चला रहे होते तो मम्मा फोन मत देखो आइस खराब हो जाएगी ऐसे बोलती है।
3: प्रिशा की माँ के मुताबिक उनके घर में सुबह की शुरुआत ही भजन और मंत्रों के साथ होती है। शायद यही माहौल धीरे धीरे उनकी बेटी के व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है और वो ये सब खुशी खुशी सीख रही है। प्रिशा की प्रतिभा और सीखने की ललक वाकई एक मिसाल है। इस नन्ही मुन्ही जीनियस से बच्चे तो क्या, बड़े बड़े भी कई सबक सीख सकते हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और चलिए अब रीवा के गूगल बॉय की करते हैं। रीवा का विराज महज 2 साल 11 महीने का है। छोटा सा विराज डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे और मुश्किल अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड्स में आसानी से सुना सकता है और फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर लेता है। इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे, उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया, है ना कमाल।
0: विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं?
7: 10।
0: और परशुराम कौन से अवतार हैं विष्णु भगवान के?
7: छठे अवतार।
0: और परशुराम के पास क्या होता है?
3: ये नन्हा चैंपियन अविराज है, जिसे लोग गूगल बॉय के नाम से जानते हैं। ये मध्य प्रदेश में रीवा की धरती पर जन्मा एक चमकता सितारा है, जिसने अपनी अद्भुत प्रतिभा से दुनिया को चौंका दिया है।
0: रावण कहाँ लेके गया था सीता माता को?
7: अशोक वाटिका।
0: अशोक वाटिका कहाँ है?
7: लंका में।
0: और लंका कौन जला दिया था? लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कैसे, जोर से बोलो, हनुमान जी कैसे लंका जलाए थे?
7: अपनी
0: टेल से।
3: इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे, उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया।
7: टाइगर।
3: ये डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे खतरनाक अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड में फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर सकता है।
0: परशुराम के पास क्या होता है?
7: फरसा।
0: और परशुराम अपने फरसे से किसका टस्क तोड़ दिए थे?
7: गणेश जी का
0: टस्क तोड़ दिए थे। और विष्णु भगवान का पावरफुल वेपन क्या है?
7: सुदर्शन।
3: अविराज अभी 2 साल 11 महीने के हैं। इस उम्र में बच्चे अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पाते, मगर मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाला ये नन्हा उस्ताद बाकी बच्चों से जुदा है। लोग इसे रीवा का गूगल बॉय कहते हैं, क्योंकि इसने अपनी मेमोरी और नॉलेज से सभी को हैरान किया हुआ है। इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है और शब्द सुनते ही दिमाग में फीड हो जाते हैं। इसी अद्भुत प्रतिभा की वजह से अविराज अभी तक कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुका है।
0: इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, जीनियस में है, कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड है, और इंटरनेशनल है, इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऐसे करके कई 7-8 रिकॉर्ड्स मतलब हैं।
3: अविराज को जानवर ही नहीं, कई पक्षियों के नाम भी याद हैं। वो 42 देशों की राजधानी और 36 देशों के झंडे की पहचान कर सकता है। भारत के कई राज्यों की राजधानी उसे जुबानी याद है, जबकि ग्रहों और सोलर सिस्टम की तो उसे पूरी समझ है। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग और देवी देवताओं के वाहन तक बता सकता है। शास्त्र और पुराण की उसे अच्छी खासी जानकारी है, और भगवान विष्णु के सभी अवतार उसे जुबानी याद हैं।
0: हम तीनों लोग, उसके दादाजी, नाना जी और हम लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो वहाँ की कैपिटल से स्टार्ट किया कि छत्तीसगढ़ की क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है, हम हैदराबाद में हैं तो तेलंगाना की क्या है, तो वो कैपिटल्स बताई। पीएम कौन है हमारे, तो वो भी उसको या मतलब ठीक से बता पाया वो। फिर उसके बाद वो 3 स्टेट से हम 52 कंट्रीज की भी बता पाता है, 28 स्टेट्स की भी बता पाता है, यूनियन टेरिटरीज जो हमारी 8 है उनकी भी कैपिटल्स बता पाता है।
3: अब मध्य प्रदेश से उठी ये चमक विदेश तक रोशनी फैला रही है। ये कहानी सिर्फ अविराज की नहीं है, बल्कि नए भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: अब बात ग्रेटर नोएडा के लिटिल जीनियस की, जिसके टैलेंट की चमक ने आज उसे स्टार बना दिया है। 4 साल का रुद्र राणा सोलर सिस्टम के हर ग्रह और उपग्रह की जानकारी रखता है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की बदौलत रुद्र का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है।
2: Beautiful rings. This is a potato, sir. बिग प्लैनेट, ईसा मतलब स्मॉल प्लैनेट।
3: 4 साल का रुद्र जिसकी नजरों में छुपा है एक बड़ा आसमान, इस छोटी सी उम्र में वो खेल खेल में बखूबी जानता है ग्रहों और उपग्रहों के नाम। तभी तो रुद्र की प्रतिभा उसकी ग्रहों को लेकर नॉलेज पेरेंट के साथ ही लोगों को हैरान कर रही है। ग्रेटर नोएडा के नन्हे रुद्र राणा ने सोलर सिस्टम की जानकारी से एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी कम उम्र में रुद्र न केवल ग्रहों के नाम बल्कि उनकी विशेषताएं भी बेहद आसानी से बता रहे हैं। रुद्र अभी ABCD भी ठीक से लिख नहीं पाते, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के रंग, उनके आकार की जानकारी को महज 1 मिनट 5 सेकंड में बता देते हैं, जो एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। रुद्र की माँ बताती हैं कि कुछ महीने पहले ही YouTube किड्स को देखते हुए रुद्र का ग्रहों के बारे में इंटरेस्ट जागा। वो उनसे बहुत सारे सवाल करता था। ABCD से भले ही अभी रुद्र की दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन ग्रहों के साथ मास्टर रुद्र का तालमेल बड़ा दिलचस्प है, जिसे बनाए रखने में रुद्र की माँ का बड़ा रोल रहा। जब बेटा पढ़ने की उम्र तक आया, ऐसे में बच्चे को शुरुआती पढ़ाई से रूबरू करवाने, उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए ही रुद्र की माँ ने जॉब छोड़ी। लेकिन नौकरी का सेक्रीफाइस कुछ ऐसे रंग लाएगा ये ज्योति ने नहीं सोचा था। वहीं इतनी कम उम्र में अपने बेटे की याददाश्त, समझ और ऐसी असामान्य उपलब्धि देख पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं। जाहिर है रुद्र की उम्र भले ही 4 साल की अभी प्यारी है, लेकिन उसकी काबिलियत लोगों के लिए सबसे न्यारी है। तभी तो रुद्र के पेरेंट ने अपने बेटे की इस असामान्य उपलब्धि को लेकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। मगर वो इस बात का ख्याल जरूर रख रहे हैं कि उनके बेटे पर रिकॉर्ड या किसी और चीज का कोई दबाव ना हो और वो भी सामान्य बच्चों की तरह अपने बचपन को खुलकर जिए।
8: कम उम्र में भले ही बड़ा रिकॉर्ड आया है, लेकिन रुद्र ने अभी, रुद्र के ऊपर उनके पेरेंट्स कम से कम कोई बर्डन नहीं डाले कि अब मेरा बेटा ये भी करेगा वो भी करेगा। जो फिलहाल उसके हिस्से में अचीवमेंट आई है, फिलहाल घर वाले उसी को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। और यही सबसे खूबसूरत बात है कि छोटे से बच्चे ने भले अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन उसके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी आगे के लिए नहीं है। मतलब उसका बचपन आगे भी ऐसे ही मजे से कटता रहेगा। बाय बोल दो सबको।
2: बाय
8: बाय। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
6: अब बात एक नन्ही म्यूजिकल जीनियस की। एक ऐसी टैलेंटेड बच्ची जो सिर्फ 14 साल की है और 44 अलग अलग वाद्य यंत्र बजाना जानती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की पकड़ कमाल की है। ना केवल नियति इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजा लेती है, बल्कि इनसे जुड़े कई कमाल के रिकॉर्ड्स नियति ने अपने नाम किए हैं।

0: संगीत के साथ ये गहरा रिश्ता अब एक विश्व कीर्तिमान के साथ पूरी दुनिया में नियति का नाम रोशन कर रहा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में नियति ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों को पहचान कर नियति ने इतिहास रच दिया। लेकिन नियति का हुनर सिर्फ वाद्य यंत्रों को पहचानने तक सीमित नहीं है। इस छोटी सी उम्र में ही नियति 44 वाद्य यंत्र बजा लेती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की कमाल की पकड़ है। नियति को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां ने हर कदम पर उनका सहयोग किया। संगीत के प्रति नियति के लगाव को उन्होंने बहुत कम उम्र में पहचान लिया था। नियति जब महज 6 महीने की थी तभी मां ने कीबोर्ड और जाइलोफोन से नियति को रूबरू कराया। 4 साल की उम्र में नियति ने काबिलियत हासिल कर ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले भी नियति कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। चौबीस में नियति ने आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो पर शिव तांडव स्त्रोत बजाया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। 2023 में नियति ने 65 सेकंड में 15 वाद्य यंत्रों पर राष्ट्रगान बजाया। इस उपलब्धि पर उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। संगीत के साथ नियति साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, एनिमेशन और रैप क्रिएशन में भी माहिर है। हिंदी और अंग्रेजी में कविता और गीत लिखने वाली नियति को अब तक 17 देशों में सम्मान मिल चुका है। संगीत में रुचि के साथ ही नियति पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही हैं। बचपन में एक छोटे से खिलौने के साथ शुरू हुआ संगीत का ये सफर आज नियति को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा चुका है और उनकी ये कामयाबी आज की नई पीढ़ी के लिए एक नई मिसाल बन गई है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात उन लिटिल मास्टर्स की जिन्होंने सीधे समंदर को चुनौती दी है। 7 साल का ईशांक और 9 साल के नैया ने स्विमिंग के ऐसे जोरदार रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं जो आज बड़े बड़े अनुभवी तैराक उन्हें सलाम कर रहे हैं।
2: माइकल फेल्प्स, केटी लेडेकी, मार्क स्पिट पानी की मौजूदगी के चल

0: धरती के पानी पर फतह पाई है। धरती के सबसे सफल स्विमर, इन तीनों अमेरिकी स्विमर्स में से हर एक ने ओलंपिक में तैराकी के इतने मेडल जीत रखे हैं कि आप अपनी उंगलियों पर गिन नहीं सकते। लेकिन ये गुजरे हुए कल की तस्वीर है, आने वाले कल की तस्वीर कैसी हो सकती है ये आपको हम दिखाते हैं। ये पानी पर तैरती उम्मीदों की तस्वीर है, वो तस्वीर जो सपना दिखाती है, वो सपना जो अभी तक अधूरा है लेकिन कल पूरा हो सकता है। ओलंपिक में भारत के लिए स्विमिंग का मेडल लाने का सपना, और इस उम्मीद को पंख लगा रखे हैं इन दोनों टैलेंटेड यंग स्विमर्स ने। इनमें से एक है 9 साल की अनैया जगदीश कुंती कारकर और दूसरे 7 साल के मास्टर ईशान। इन दोनों नन्हे तैराकों ने हाल ही में स्विमिंग के ऐसे जोरदार रिकॉर्ड बनाए हैं कि हर कोई हैरान है। रांची के रहने वाले 7 साल के मास्टर ईशांक ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत बड़े बड़े तैराक नहीं कर पाते। इस बच्चे ने लहरों से लड़ते हुए 29 किलोमीटर का सफर 9 घंटे 50 मिनट में तय करके इतिहास रच दिया है। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि समंदर के जिस रास्ते को ईशांक ने तय किया है वो समंदर में सबसे मुश्किल रास्तों में एक माना जाता है। कामयाबी ने ईशान को दुनिया का सबसे कम उम्र का पाक स्ट्रेट तैराक बना दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि हिम्मत, अनुशासन और जुनून का एक लंबा सफर है। समंदर की लहरों से टकराने का जुनून ईशान के लिए नया नहीं है। ईशान ने बहुत छोटी उम्र से ही पानी से दोस्ती कर ली थी। रोजाना घंटों की प्रैक्टिस, कड़ी ट्रेनिंग और मानसिक मजबूती, इन सब ने मिलकर ईशान को आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तैराकों में से एक बना दिया है। समंदर में जिस रास्ते को ईशान ने नापा है वो रास्ता दुश्वारियों से भरा है। यहाँ समंदर की लहरें तैराक का कड़ा इम्तिहान लेती हैं, तेज धाराएं उसका रास्ता रोकती हैं और मौसम उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेता है। ऐसे में इन सब का सामना करने के लिए केवल शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है जो ईशान में साफ दिखाई देती है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज की।
0: ईशान की इस उपलब्धि की अहमियत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पार्क स्ट्रीट वो जगह है जहां पहले तमाम अनुभवी तैराक भी हार मान चुके हैं। ऐसे में 7 साल के बच्चे का इसे पार करना अपने आप में असाधारण है। और कुछ ऐसा ही असाधारण करके दिखाया है मुंबई की रहने वाली अनैया जगदीश कुंती कारकर ने। खेलने कूदने की उम्र में इस 9 साल की बच्ची ने स्विमिंग में जोरदार रिकॉर्ड कायम किया है। मुंबई की अनैया ने समंदर में 17 किलोमीटर की दूरी तैर कर पार की। आपको बता दें कि समंदर के रास्ते अटल सेतु उल्वा से गेटवे ऑफ इंडिया की दूरी 17 किलोमीटर है जिसे अनैया ने 4 घंटे में पार कर इतिहास रच दिया। 1 मई की रात करीब 2 बजे अनैया ने अटल सेतु के पास उल्वे से तैरना शुरू किया और सुबह करीब 6 बजे वो गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गई, यानी संकल्प के जरिए अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। ईशांक और अनैया ने ये साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। सही जज्बा, कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन हो तो छोटी उम्र में भी बड़े बड़ों के रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं। रांची से आकाश कुमार और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: क्या होगा पूजा विधान, शनि देव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान, और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Top 20. Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
2: The Tailgate Top 20.
3: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
1: Try to keep up.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण घटाने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा फैसला, बिना पीयूसी वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल, 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन, न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत, नेफेड के जरिए 12.35 रूपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी, किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाएगा सीबीआई का नया पोर्टल, एआई फीचर्स लैस नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम अब है लॉन्च, नकली दस्तावेजों को पकड़ना आसान। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्दी मिलेगी राहत, मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मॉनसून, समय से पहले दस्तक दे रहा है मॉनसून। बॉलीवुड एक्टर्स को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता, अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी, दसरी प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई, रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देश। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में दिखा आस्था और विश्वास का संगम, भगवान कृष्ण के पावन धाम में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान, दान पेटियों के पहले चरण में 11 करोड़ से ज्यादा राशि की गणना।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब केवल अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है, यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर हर वीडियो कुछ सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी कर दी जाती है कि वो असलियत से कोसों दूर लगती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर आगे शेयर करने लगते हैं, और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज फैक्ट चेक में जिन दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में नई सरकार के गठन के बावजूद टीएमसी के लोगों पर हमले रुक नहीं रहे हैं, बीच सड़क पर एक टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला किया गया, सच्चाई क्या है, आगे करेंगे पड़ताल। दूसरी खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुस्लिम ईसाइयों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर राज्य से बाहर निकाला जा रहा है, इस वायरल दावे की सच्चाई क्या है, करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक का सफर। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर एक युवक दूसरे युवक को बुरी तरह से पीट रहा है। वहां पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इसे रोकने की कोशिश नहीं करता। वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में नई सरकार के गठन के बावजूद टीएमसी के लोगों पर हमला रुक नहीं रहा है, हर दिन उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
2: बंगाल में भगवा लहराने के साथ ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन में है। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार एक के बाद एक कड़े और कारगर फैसले ले रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को दूसरे युवक की पिटाई करते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग राज्य सरकार के नियत पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद भी राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला रुक नहीं रहा है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि सड़कों पर टीएमसी पर खुलेआम हमले हो रहे हैं, आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक युवक को दूसरे युवक की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। और इस वीडियो के जरिए लोग बंगाल की शुभेंदु सरकार की नियत पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद भी राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला रुक नहीं रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये मराठी में लगा। आप भी सुनिए इन आवाजों को। वायरल वीडियो बंगाल का होता है तो यहाँ पर बंगला आवाज सुनाई देती, लेकिन यहाँ पर बंगला मिश्रित हिंदी प्योर मराठी सुनाई दे रही है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने एक बार फिर से वायरल वीडियो के फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में एक स्कूटी नजर आई और इस स्कूटी पर MH नंबर प्लेट है जो कि महाराष्ट्र का है। अगर वीडियो बंगाल का होता तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बंगाल नंबर प्लेट स्कूटी नजर आती, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट और बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन वहां पर भी वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए बंगाल में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही है। देखिए सच और झूठ क्या है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ कीफ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर मिला। इसे 15 अप्रैल 2026 को पोस्ट करते हुए लिखा गया था, मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मोहम्मद जैद शेख पर ऑटो रिक्शा से आए 3-4 लोगों ने हमला किया। सूत्र के अनुसार यह हमला सुपारी देकर करवाया गया है। इस मामले में हुजैफा नाम के व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही हमलावर भेजे। ये घटना वर्सोवा के पास अंधेरी वेस्ट में हुई बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर और जांच की जा रही है। ऐसे मामले शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। सर्च के दौरान एक फेसबुक यूजर के अकाउंट पर वायरल वीडियो देखने को मिला। यह वीडियो 11 अप्रैल 2026 को साझा किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक अंधेरी वेस्ट में शख्स पर हमला, सुपारी देकर हमले का आरोप, अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में एक व्यक्ति पर हमला किए जाने की घटना सामने आई। इंस्टाग्राम यूजर ने भी 10 अप्रैल 2026 को इस वीडियो को शेयर करते हुए घटना को 8 अप्रैल की रात का बताया था। जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार है। महाराष्ट्र पुलिस की वेबसाइट पर इस मामले की FIR अपलोड है। वर्सोवा थाने में दर्ज केस के मुताबिक घटना 9 अप्रैल 2026 की रात की है। साफ है वायरल वीडियो मुंबई का है। अप्रैल 2026 की शुरुआत में अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया था। इस मामले की वीडियो को बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा का मामला बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सूरजुद्दीन मंडल के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों और ईसाइयों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जब वायरल वीडियो का सच और झूठ की पड़ताल की गई तो क्या कुछ सामने आया, देखिए हमारी रिपोर्ट।
6: बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा है कि शासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार का रोड मैप इस सरकार की प्राथमिकता होगी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो बेहद तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में सुरक्षा बल और पुलिस को लोगों की नागरिकता की जांच करते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद सुरक्षा बल और पुलिस के जवान मुस्लिमों और ईसाइयों के घर जाकर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटा रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सीआरपीएफ और पुलिस पश्चिम बंगाल में हर मुस्लिम और ईसाई के घर जाकर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटा रही है। ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है जिसका सामना भारत के अल्पसंख्यकों को रोज करना पड़ता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल बंगाल चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में कई वीडियोस को चुनाव से जोड़कर पेश किया जा रहा है। अब वहां पर ऐतिहासिक जीत के साथ ममता बनर्जी का वर्चस्व खत्म कर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो का सिलसिला अभी भी जारी है। और इस बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है जिससे दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां के मुसलमानों और ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटाया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें शक हुआ। हमारी नजर वीडियो में नजर आ रहे पुलिस अधिकारी के ड्रेस के कलर पर गई। ये खाकी रंग है जबकि बंगाल पुलिस की वर्दी का रंग सफेद है जो कि भारत के दूसरे राज्यों की खाकी वर्दी से अलग है। उसके बाद नागरिकता जांचने का एक पूरा प्रोसेस होता है, ऐसे में हमें वीडियो के दावे पर भी शक हुआ। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने पता लगाने की कोशिश की कि क्या नई सरकार के गठन के बाद पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ हो भी रहा है, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा होता तो फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट पर सुर्खियां बनी होती, लेकिन कहीं कुछ हमें मिला नहीं। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो वायरल हो रहा वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, देखिए सच और झूठ क्या है।
6: हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो और पोस्ट वायरल हुए हैं। फैक्ट चेक टीम ने लगातार इन वीडियोस और पोस्ट का फैक्ट चेक किया है। इस दौरान वायरल दावे गलत साबित हुए हैं और अब इसी कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। दावे की सच्चाई का पता लगाने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें इंटरनेट पर खंगाला। इसके जरिए हम एक वेबसाइट पर पहुंचे जहां 1 जनवरी 2026 को प्रकाशित खबर में वायरल हो रहे वीडियो के कुछ हिस्से देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कौशाम्बी थाने के प्रभारी अजय शर्मा एक संदिग्ध शख्स की पीठ पर मोबाइल रखकर उसकी तथाकथित नागरिकता जांच करते दिख रहे हैं। आमतौर पर नागरिकता की जांच के लिए बायोमेट्रिक, पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। वायरल वीडियो 23 दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो एक चैनल के एक्स हैंडल पर भी देखने को मिला। यहां इसे 1 जनवरी 2026 को अपलोड किया गया था। एक वेबसाइट पर 2 जनवरी 2026 को छपी रिपोर्ट के मुताबिक कौशाम्बी थाना प्रभारी का वीडियो वायरल होने के बाद इंदिरापुरम के सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने उन्हें चेतावनी जारी की है। उन्होंने आगे से इस तरह की हरकत नहीं करने की बात भी कही। वीडियो कौशाम्बी में अस्थायी बस्ती और झुग्गी में रहने वाले निवासियों से पूछताछ और सत्यापन की प्रक्रिया का था। सर्च के दौरान एक और रिपोर्ट मिली। 2 जनवरी 2026 को छपी खबर में लिखा था कि वीडियो वायरल होने के बाद कौशाम्बी थाने के प्रभारी अजय शर्मा ने इसे एक मजाक बताया था। साफ है, वायरल हो रहे वीडियो के जरिए गलत दावा किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई नागरिकता जांच का वीडियो है। पाकिस्तानी यूजर ने प्रोपेगेंडा के लिए इसे बंगाल में मुसलमानों और ईसाइयों की नागरिकता की जाँच का बताकर शेयर किया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
5: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
7: मैं आपके बात क्या मांगू, ये बताइए आपकी बात में क्या।
8: हालत खराब है, अम्मा नहीं रो पा रही हूँ, प्लीज बस वापस ना लेके जाना, इतना मार जितना मारे उतना मार लीजिए, लेकिन वापस नहीं लेके जाना।
9: सोशल मीडिया पर बच्चों के मासूम वीडियो अक्सर लोगों का दिन बना देते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची क्लासरूम में अपनी टीचर के सामने ऐसे ऐसे बहाने बनाती नजर आ रही है कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं।
7: क्लास में अब्सेंट क्यों होती हो?
8: क्लास में स्पेंड
7: नहीं, अब्सेंट क्यों होती हो?
8: अच्छा बताती हूँ।
7: हाँ बिल्कुल बताइए, रीजन बताइए मुझे। या
9: वीडियो में बच्ची कभी रोती है, कभी अपनी बात समझने की कोशिश करती है, और फिर अचानक टीचर से कहती है, मैम हंस के दिखा दीजिए फिर मैं खुश हो जाऊंगी।
7: अच्छा मैं आपको हंस के दिखा दूं? स्टॉप टॉकिंग। मैं आपको हंस के क्यों दिखाऊं?
8: इसलिए फिर मेरा रोना बंद हो जाता है।
7: तो आप तो मेरे हंसने वाला वर्क कर ही नहीं रही हो, आप तो अपना टेस्ट कहाँ दे रही हो मुझे? आपको यही नहीं पता इन द स्काई में आपको क्या क्या दिखते हैं?
9: यही मासूमियत अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रही है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। लोग बच्ची की क्यूटनेस और उसके एक्सप्रेशंस देखकर मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि ऐसी हरकत देखकर बच्चों पर गुस्सा करना भी मुश्किल हो जाता है।
7: डे किससे हॉट होता है?
8: गर्मी।
7: गर्मी किससे होती है?
8: हॉट।
7: हॉट किससे? हॉट कैसे आता है? अभी अभी स्काई में क्या ब्राइट हो रहा है?
8: अभी
7: स्काई में क्या ब्राइटनेस है? ये क्या है? मार दूंगी मैं प्रिशा।
8: मैंने जाने दो, कल पूरा ये पूरा याद करके आऊंगी मैं।
7: क्या जाने दूं मैं आपको? है
8: प्रिशा मुझे जाने दीजिए प्लीज।
7: क्यों
8: नहीं मुझे ऐसे आप डांटे कुछ करें, पता भी मैं बहुत मुझे डांटती आपसे भी।
9: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने दिल जीत लिया है। वीडियो में एक बच्चा नजर आ रहा है जिसने गांधी जी का लुक लिया हुआ है और एक जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा है। तभी वहां पर एक बच्ची आती है, वो जो खुद खा रही थी उसी में से एक टुकड़ा उस बच्चे को भी खाने के लिए ऑफर करती है। दोनों बच्चों की ये मासूमियत और बच्ची का उस बच्चे का ऐसा ख्याल रखना दिल जीत लेता है, और इसी कारण वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मगर ये जानकारी नहीं मिल पाई कि वीडियो कब और कहां का है।

जहां एक तरफ देश में बोर्ड परीक्षा के नतीजों के बाद बच्चों पर अच्छे मार्क्स लाने का भारी दबाव होता है, वहीं मुंबई के एक परिवार ने अपने बेटे मोहम्मद जैद के 55% मार्क्स आने पर जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। जब जैद का रिजल्ट आया तो पता चला कि उसने 55% अंक हासिल किए थे। आमतौर पर ऐसे नतीजों के बाद घरों में या तो सन्नाटा पसर जाता है या फिर पड़ोसी के बच्चों और दोस्तों से तुलना शुरू हो जाती है, लेकिन जैद के घर का सीन बिल्कुल अलग था। परिवार ने जैद की उपलब्धि को छोटा नहीं समझा और उसकी मार्कशीट के डिजाइन वाला एक खास केक मंगवा कर इसे सेलिब्रेट किया। इस स्पेशल केक पर जैद की पूरी डिटेल थी, नाम, रोल नंबर और हर सब्जेक्ट के मार्क्स। वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि जैद जैसे ही कमरे में आता है परिवार के लोग तालियों से उसका वेलकम करते हैं। जैद के चेहरे की मुस्कान ये बताने के लिए काफी थी कि उसके माता पिता का ये सपोर्ट उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कितना जरूरी था।

0: दिल्ली स्टेशन पर एक इंडोनेशियाई महिला पर्यटक अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी गेट पर खड़े होकर कैमरा संभालते समय उसका पसंदीदा दुपट्टा प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच के गैप में जा गिरा। इसके बाद जो हुआ, उसने इंटरनेट की जनता का दिल जीत लिया। दरअसल इंडोनेशिया की एक कंटेंट क्रिएटर हाल ही में भारत घूमने आई थी। दिल्ली स्टेशन पर जब वह ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी गेट पर खड़े होकर कैमरा संभालते समय उनका पसंदीदा दुपट्टा हाथ से फिसलकर सीधा प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच के खतरनाक गैप में जा गिरा। विदेशी महिला परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि चलती ट्रेनों के बीच पटरी पर उतरना जान जोखिम में डालने जैसा था। तभी वहां से गुजर रहे एक अंकल ने विदेशी महिला की परेशानी देखी। उन्होंने पहले हाथ से दुपट्टा खींचने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अपनी जान की परवाह किए बिना उस सकरे गैप में छलांग लगा दी। वहां खड़े लोग बस देखते रह गए। अंकल ने पटरी से दुपट्टा उठाया और उसे वापस महिला को थमा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि बच्ची एक जगह पर बैठी हुई है और अपना स्किन केयर कर रही है। उसे किसी का क्रीम मिल गया है और उसने लगभग पूरे शरीर पर उस क्रीम को लगा दिया है। पूरा चेहरा क्रीम से भरा हुआ है, हाथों में क्रीम लगी हुई है और साथ ही पैरों पर भी क्रीम लगा लिया है। वो अभी भी चेहरे पर क्रीम लगाती नजर आ रही है। वहीं चारों तरफ छोटे छोटे कागज पड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब किसी ने अचानक यह देखा और वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: टुडे बनाता है
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: कान फिल्म फेस्टिवल की जहां की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। ऐसे में इस ग्लोबल मंच पर विदेशी सेलेब्स के साथ हिंदुस्तान का भी जलवा देखने को मिल रहा है। कान फिल्म फेस्टिवल में इन सितारों ने अपने सिनेमा संस्कृति और यूनिक स्टाइल से न केवल भारतीय पहचान को खास अंदाज में पेश किया, बल्कि अपने फैशन सेंस से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं।
5: कैन के रेड कार्पेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर नहीं, भारतीय सिनेमा संस्कृति और स्टाइल का शानदार संगम भी देखने को मिला। जहां एक ओर सितारों ने अपने फैशन से दुनिया का ध्यान खींचा, तो वहीं कुछ चेहरों ने अपनी मौजूदगी से भारतीय पहचान को भी खास अंदाज में पेश किया। तारा के बाद अब कैन के मंच पर मलयालम सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन ने भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। फिल्म लोका से देश भर में पहचान बनाने वाली कल्याणी ने कैन 2026 में अपने पहले ही अपीयरेंस से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फ्रांस के खूबसूरत शहर में सजे इस भव्य फिल्म महोत्सव में कल्याणी का अंदाज बेहद शालीन, क्लासी और इंटरनेशनल फैशन से भरपूर नजर आया। जैसे ही उनकी तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी सादगी और एलिगेंस की खूब तारीफ शुरू कर दी। और अब आपको दिखाते हैं कैन फिल्म फेस्टिवल में सनातन की झलक। जब रेड कार्पेट पर हाथ में गीता और गले में तुलसी माला लिए पहुंची ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगर आरती खेत्रपाल, कैन जैसे ग्लोबल मंच पर आरती ने सिर्फ फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था को भी पूरे गर्व के साथ पेश किया। गोल्डन शेड के कस्टम मेड लहंगे में नजर आई आरती के आउटफिट पर वृंदावन की खूबसूरत झलक देखने को मिली। मंदिरों, आध्यात्मिक स्थलों और कृष्ण भक्ति से सजे इस लहंगे ने रेड कार्पेट पर हर किसी का ध्यान खींच लिया। देसी अंदाज और आध्यात्मिक संदेश का ये अनोखा मेल लोगों को काफी यूनिक लगा। वहीं आलिया भट्ट तो लगातार अपने फैशन स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियों में बनी ही हुई हैं। रेड कार्पेट से लेकर ग्लैमरस फोटोशूट तक आलिया का हर अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाल ही में सामने आए उनके नए लुक में वो मरून ऑफ शोल्डर कॉर्सेट गाउन में बेहद रॉयल और स्टर्निंग दिखी। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर इवेंट की कई तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, प्यारे दोस्तों अब अलविदा कहने का समय आ गया है, यानी कैन 2026 को आलिया ने स्टाइलिश अंदाज में गुड बाय कह दिया। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ फैशन ही नहीं अपने आत्मविश्वास और स्क्रीन प्रेजेंस से भी फैंस का दिल जीत लिया। और अब आपको लेकर चलते हैं कैन फिल्म फेस्टिवल की सबसे हटके और मजेदार पार्टी में, जहां ग्लैमर के बीच नजर आया फैशन का एक अलग ही रंग। जी हाँ, कैन में हुई चर्चित पजामा पार्टी में कई सितारे स्टाइलिश पजामों, ड्रेसिंग गाउन और नाइटवेयर में दिखे। इस पार्टी का खास ड्रेस कोड ही पजामा था। दिलचस्प बात ये रही कि इस एक्सक्लूसिव पार्टी में शामिल होने के लिए लोगों को लॉटरी सिस्टम से गुजरना पड़ा। इस साल सिर्फ 300 टिकटों के लिए करीब 1800 लोगों ने आवेदन किया था। यानी कैन में अब रेड कार्पेट के साथ साथ पजामा फैशन भी चर्चा का हिस्सा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कान फिल्म फेस्टिवल में इंडियन रीजनल फिल्मों की धूम भी मची हुई है। ऐसे में पंजाबी सिनेमा ने भी इस ग्लोबल मंच में धमाकेदार एंट्री की है, जहां एमी विर्क और रूपी गिल की फिल्म चढ़दी कला का विशेष प्रीमियर आकर्षण का केंद्र बना। और इस दौरान एक्ट्रेस रूपी गिल ने देसी पंजाबन का लुक लेते मची हुई है। ऐसे में पंजाबी सिनेमा ने भी इस ग्लोबल मंच में धमाकेदार एंट्री की है, जहां एमी विर्क और रूपी गिल की फिल्म चढ़दी कला का विशेष प्रीमियर आकर्षण का केंद्र बना। और इस दौरान एक्ट्रेस रूपी गिल ने देसी पंजाबन का लुक लेते हुए कान फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू कर खूब सुर्खियां बटोरी। बस ये पहली बार है जब ग्लोबल पंजाबी फिल्म को इतना बड़ा सम्मान मिला है।
6: फ्रेंच रिवेरा की चमक, कान का ग्लैमरस रेड कार्पेट, सोशल मीडिया पर इन दिनों जिस देसी बाला की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं, वो है पंजाबी मॉडल और अभिनेत्री रूपी गिल। व्हाइट आइवरी सूट, डायमंड और एमरल्ड ज्वेलरी में रूपी का अंदाज इतना एलिगेंट दिखा कि हर कोई बस उन्हें देखता रह गया। कान 2026 में रूपी गिल ने अपना डेब्यू किया। रुपिंदर कौर गिल यानी रूपी गिल ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक वीडियो यारियां चाफिक से की थी। इसके बाद साल 2018 में फिल्म अश्के से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। फिल्म में नूर के किरदार में उनकी दमदार एक्टिंग को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। यही वजह रही कि उन्हें पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। अब रूपी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को पूरी तरह से तैयार हैं। 29 मई को एमी वर्क के साथ उनकी नई फिल्म चढ़दी कला रिलीज होने जा रही है। दिलजीत दोसांझ से लेकर अमरिंदर गिल, प्रेम ढिल्लो और अखिल जैसे कई बड़े पंजाबी सितारों के म्यूजिक वीडियोस ने नजर आ चुकी रूपी गिल अब कान के मंच पर पंजाब का नाम रोशन कर रही हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि इस बार कान की रेड कार्पेट पर सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि पंजाबी संस्कृति की चमक भी खूब दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नब
7: देव की जयंती पर क्या होगा पूजा विधान, शनि देव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान, और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण घटाने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा फैसला, बिना पीयूसी वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल, 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन। न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत। नेफेड के जरिए 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी, किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाएगा सीबीआई का नया पोर्टल एआई फीचर्स लेस नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम अभय लॉन्च, नकली दस्तावेजों को पकड़ना आसान। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्दी मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मॉनसून, समय से पहले दस्तक दे रहा है मॉनसून। बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता। अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी, दसरी प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई। रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देश। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में दिखा आस्था और विश्वास का संगम। भगवान कृष्ण के पावन धाम में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान। दान पेटियों के पहले चरण में 11 करोड़ से ज्यादा राशि की गणना।

आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मशहूर शायर निदा फाजिल ने कभी लिखा था, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने को चार किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, ये हमारे जैसे नहीं है, बल्कि ये इतने सुपर टैलेंटेड और कमाल के फनकार हैं कि ये हमारे जैसे नहीं, बल्कि आप और हम इनके जैसे होना चाहेंगे। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा साउंड करता है, क्यों? चलिए आपको दिखा देते हैं।

0: ट्विंकल लिटिल स्टार, उम्र है 2, संस्कृत जोरदार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार स्पेस एक्सपर्ट हैं, उम्र है 4।
1: इसा मतलब इसे स्मॉल प्लैनेट, इसे सैटर्न एफ बिट फोर रिंग्स, इसे से पता था सो बिग प्लैनेट।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 2 साल के गूगल नॉलेज शानदार।
2: परशुराम कौन से अवतार है विष्णु भगवान के?
1: छठे अवतार।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 7 की उम्र में पार्क स्ट्रीट तैर कर

ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 14 की उम्र, 44 वाद्यों की फनकार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 9 की उम्र में स्विमर जोरदार।

चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर की रहने वाली 2 साल की जीनियस के साथ। 2 साल के बच्चे ठीक से बोलना तक नहीं जानते हैं, लेकिन प्रिशा उन बच्चों में से नहीं है। 2 साल की प्रिशा को 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र आते हैं। अंग्रेजी के अल्फाबेट्स 1 से लेकर 100 तक गिनती, सूर्य नमस्कार और भी ना जाने क्या क्या जानती हैं और क्या क्या करती है ये छोटी सी गुड़िया।

0: sonau. जोर से बोले ऐसे करके कंधे पे ऐसे ऐसे ही रखे हो अच्छे से ओम नमः शिवाय आईज क्लोज करके ओम
1: नमः शिवाय
2: ओम क्या कम यामें छोगा दीप पट्टी बनाया हुई बाद में बनाया मैं तुम क्या माता
3: जो ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी वेदों की वही भाषा पुराणों की वही बाणी जयपुर में मौजूद इस घर के आंगन में गूंजती
2: हम बोल बुआ जाए तो छतुर बजे हम पयोदे वजे देवा योया पचोलिया
3: मानो माँ सरस्वती बाल रूप में उतर आई और खेल खेल में अपनी तोतली जुबान में हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता संस्कृति और संस्कारों की कहानियाँ सुना रही हूँ
2: यारे भी चबूते चू छत्ती वो पैन छत्ती ता नमतते नमतते मरमो नमा
3: दो साल की उम्र जब बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते तब तुतलाती जुबान में श्लोक और मंत्रों का ऐसा उच्चारण कि सुनने वाला सुनता रह जाए जयपुर की रहने वाली दो साल की प्रिशा आज 30 से ज्यादा मंत्रों और श्लोकों का स्पष्ट उच्चारण कर लेती है जहाँ बड़े बड़े लोग भी संस्कृत श्लोकों और मंत्रों को सही तरह से उच्चारित नहीं कर पाते वहीं ये नन्ही बच्ची इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुँच गई है अपनी अद्भुत याददाश्त और प्रतिभा के दम पर जयपुर की प्रिशा आज सुपर टैलेंटेड किड कहलाने लगी है
4: आज के टेक सैवी जमाने में जहाँ हर एक बच्चा फोन या स्क्रीन्स के पीछे भागता है या फिर उससे ज्यादा अडिक्टेड हो जाता है वहीं जयपुर की एक नन्ही सी बच्ची है जिसने महज 2 साल की उम्र में अपने नाम पे इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है और वो नाम सुपर टैलेंटेड किड के नाम से दर्ज हुआ है ये नन्ही सी बच्ची है जयपुर की प्रिशा जो संस्कृत में 2 साल की उम्र में 30 से ज्यादा श्लोक बोल सकती है
3: बेटियां यूं भी दुआओं की तरह मिलती हैं अपनी खिलखिलाहट मासूमियत और खनकती हंसी से घर के कोनों को भिगोती हुई लेकिन गुड़िया रानी अगर प्रिशा जैसी प्रतिभा लेकर पैदा हो तो हैरानी की बात नहीं कि परिवार उसे ईश्वर का उपहार और आशीर्वाद मानता है प्रिशा के माता पिता का भी कुछ ऐसा ही मानना है
5: जब इसे ना हम रोज मॉर्निंग में मॉर्निंग प्रेयर करवाते थे जब ये बोलना स्टार्ट नहीं करी थी तो सुनती थी पर एकदम से जब हमने देखा कि एक दिन ये खुद से बोल रही थी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये खुद से बोल सकती है हमें लगा कि हाँ धीरे धीरे याद करेगी पर ये खुद से बोलने लग गई थी तब हमें रियलाइज हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है शायद इसमें
3: सिर्फ 24 महीने की उम्र में प्रिशा को 30 से ज्यादा संस्कृत मंत्र और श्लोक याद है वो न उनका स्पष्ट उच्चारण करती है बल्कि कई श्लोकों का अर्थ समझने की कोशिश भी करती है सभी देवी देवताओं को पहचानते हुए उनके बारे में काफी कुछ जानती है प्रिशा खुद 80 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स पहचान सकती है सारे अल्फाबेट्स और 100 तक गिनती भी प्रिशा को बखूबी याद है साथ ही ये बच्ची सूर्य नमस्कार कर सकती है हाथों के बल चलने का अभ्यास करती है और अपने से 3 गुना ऊंची ग्रिल पर भी अपने आप चढ़ जाती है आज यहाँ आम घरों में छोटे बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते वहाँ प्रिशा का मोबाइल से मानो कोई वास्ता ही नहीं है
5: इसने कभी फोन नहीं देखा आज तक नहीं कभी नहीं मैं अगर सुनाती भी हूँ तो स्पॉटिफाई पे बंद करके तो इसे पता है फोन में सुनना है देखना नहीं है बताती है आईज खराब हो जाती है फोन देखने से और हमको भी नहीं देखने देती हम भी चला रहे होते तो मम्मा फोन मत देखो आईज खराब हो जाएगी ऐसे बोलती है
3: प्रिशा की माँ के मुताबिक उनके घर में सुबह की शुरुआत ही भजन और मंत्रों के साथ होती है शायद यही माहौल धीरे धीरे उनकी बेटी के व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है और वे ये सब खुशी खुशी सीख रही है प्रिशा की प्रतिभा और सीखने की ललक वाकई एक मिसाल है इस नन्ही मुन्ही जीनियस से बच्चे तो क्या बड़े बड़े भी कई सबक सीख सकते हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब रीवा के गूगल बॉय की करते हैं। रीवा का विराज महज 2 साल 11 महीने का है। छोटा सा विराज डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे और मुश्किल अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड्स में आसानी से सुना सकता है और फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर लेता है। इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे, उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया। है ना कमाल।
6: विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं?
7: 10।
6: और परशुराम कौन से अवतार हैं विष्णु भगवान के?
7: छठे
6: अवतार। और परशुराम के पास क्या होता है?
3: ये नन्हा चैंपियन अविराज है, जिसे लोग गूगल बॉय के नाम से जानते हैं। ये मध्य प्रदेश में रीवा की धरती पर जन्मा एक चमकता सितारा है, जिसने अपनी अद्भुत प्रतिभा से दुनिया को चौंका दिया है।
6: रावण कहाँ लेके गया था सीता माता को?
7: अशोक वाटिका।
6: अशोक वाटिका कहाँ है?
7: लंका में।
6: और लंका कौन जला दिया था? लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कैसे, जोर से बोलो, हनुमान जी कैसे लंका जलाए थे?
7: अपनी
6: टेल से।
3: इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे, उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया।
7: टाइगर।
3: ये डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे खतरनाक अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड में फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर सकता है।
6: परशुराम के पास क्या होता है?
7: फरसा।
6: और परशुराम अपने फरसे से किसका टस्क तोड़ दिए थे?
7: गणेश जी का
6: टस्क तोड़ दिए थे। और विष्णु भगवान का पावरफुल वेपन क्या है?
7: सुदर्शन।
3: अविराज अभी 2 साल 11 महीने के हैं। इस उम्र में बच्चे अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पाते, मगर मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाला ये नन्हा उस्ताद बाकी बच्चों से जुदा है। लोग इसे रीवा का गूगल बॉय कहते हैं, क्योंकि इसने अपनी मेमोरी और नॉलेज से सभी को हैरान किया हुआ है। इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है और शब्द सुनते ही दिमाग में फीड हो जाते हैं। इसी अद्भुत प्रतिभा की वजह से अविराज अभी तक कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुका है।
6: इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, जीनियस में है, कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड है, और इंटरनेशनल है, इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऐसे करके कई 7-8 रिकॉर्ड्स मतलब है।
3: अविराज को जानवर ही नहीं, कई पक्षियों के नाम भी याद हैं। वो 42 देशों की राजधानी और 36 देशों के झंडे की पहचान कर सकता है। भारत के कई राज्यों की राजधानी उसे जुबानी याद है, जबकि ग्रहों और सोलर सिस्टम की तो उसे पूरी समझ है। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग और देवी देवताओं के वाहन तक बता सकता है। शास्त्र और पुराण की उसे अच्छी खासी जानकारी है और भगवान विष्णु के सभी अवतार उसे जुबानी याद हैं।
6: हम तीनों लोग, उसके दादाजी, नाना जी और हम लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो वहाँ की कैपिटल से स्टार्ट किया कि छत्तीसगढ़ की क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है, हम हैदराबाद में हैं तो तेलंगाना की क्या है, तो वो कैपिटल्स बताए। पीएम कौन है हमारे, तो वो भी उसको या मतलब ठीक से बता पाया वो। फिर उसके बाद वो 3 स्टेट से हम 52 कंट्रीज की भी बता पाता है, 28 स्टेट्स की भी बता पाता है, यूनियन टेरिटरीज जो हमारी 8 है उनकी भी कैपिटल्स बता पाता है।
3: अब मध्य प्रदेश से उठी ये चमक विदेश तक रोशनी फैला रही है। ये कहानी सिर्फ अविराज की नहीं है, बल्कि नए भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अब बात ग्रेटर नोएडा के लिटिल जीनियस की, जिसके टैलेंट की चमक ने आज उसे स्टार बना दिया है। 4 साल का रुद्र राणा सोलर सिस्टम के हर ग्रह और उपग्रह की जानकारी रखता है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की बदौलत रुद्र का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है।
2: Beautiful rings. This is Hippopotamus, big planet. This is Mercury's small planet.
3: 4 साल का रुद्र, जिसकी नजरों में छुपा है एक बड़ा आसमान। इस छोटी सी उम्र में वो खेल खेल में बखूबी जानता है ग्रहों और उपग्रहों के नाम। तभी तो रुद्र की प्रतिभा उसकी ग्रहों को लेकर नॉलेज पेरेंट के साथ ही लोगों को हैरान कर रही है। ग्रेटर नोएडा के नन्हे रुद्र राणा ने सोलर सिस्टम की जानकारी से एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी कम उम्र में रुद्र न केवल ग्रहों के नाम बल्कि उनकी विशेषताएं भी बेहद आसानी से बता रहे हैं। रुद्र अभी ABCD भी ठीक से लिख नहीं पाते, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के रंग, उनके आकार की जानकारी को महज 1 मिनट 5 सेकंड में बता देते हैं, जो एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। रुद्र की माँ बताती हैं कि कुछ महीने पहले ही YouTube किड्स को देखते हुए रुद्र का ग्रहों के बारे में इंटरेस्ट जागा। वो उनसे बहुत सारे सवाल करता था। ABCD से भले ही अभी रुद्र की दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन ग्रहों के साथ मास्टर रुद्र का तालमेल बड़ा दिलचस्प है, जिसे बनाए रखने में रुद्र की माँ का बड़ा रोल रहा। जब बेटा पढ़ने की उम्र तक आया, ऐसे में बच्चे को शुरुआती पढ़ाई से रूबरू करवाने, उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए ही रुद्र की माँ ने जॉब छोड़ी। लेकिन नौकरी का सेक्रीफाइस कुछ ऐसे रंग लाएगा, ये ज्योति ने नहीं सोचा था। वहीं इतनी कम उम्र में अपने बेटे की याददाश्त, समझ और ऐसी असामान्य उपलब्धि देख पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं। जाहिर है रुद्र की उम्र भले ही 4 साल की अभी प्यारी है, लेकिन उसकी काबिलियत लोगों के लिए सबसे न्यारी है। तभी तो रुद्र के पेरेंट्स ने अपने बेटे की इस असामान्य उपलब्धि को लेकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। मगर वो इस बात का ख्याल जरूर रख रहे हैं कि उनके बेटे पर रिकॉर्ड या किसी और चीज का कोई दबाव ना हो और वो भी सामान्य बच्चों की तरह अपने बचपन को खुलकर जिए।
8: कम उम्र में भले ही बड़ा रिकॉर्ड आया है, लेकिन रुद्र के ऊपर उनके पेरेंट्स कम से कम कोई बर्डन नहीं डाल रहे कि अब मेरा बेटा ये भी करेगा वो भी करेगा। जो फिलहाल उसके हिस्से में अचीवमेंट आई है, फिलहाल घर वाले उसी को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। और यही सबसे खूबसूरत बात है कि छोटे से बच्चे ने भले अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन उसके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी आगे के लिए नहीं है। मतलब उसका बचपन आगे भी ऐसे ही मजे से कटता रहेगा। बाय बोल दो सबको।
2: बाय।
8: कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
1: अब बात एक नन्ही म्यूजिकल जीनियस की, एक ऐसी टैलेंटेड बच्ची जो सिर्फ 14 साल की है और 44 अलग अलग वाद्य यंत्र बजाना जानती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की पकड़ कमाल की है। ना केवल नियति इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजा लेती है, बल्कि इनसे जुड़े कई कमाल के रिकॉर्ड्स नियति ने अपने नाम किए हैं।

0: संगीत के साथ ये गहरा रिश्ता अब एक विश्व कीर्तिमान के साथ पूरी दुनिया में नियति का नाम रोशन कर रहा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में नियति ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों को पहचान कर नियति ने इतिहास रच दिया। लेकिन नियति का हुनर सिर्फ वाद्य यंत्रों को पहचानने तक सीमित नहीं है। इस छोटी सी उम्र में ही नियति 44 वाद्य यंत्र बजा लेती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की कमाल की पकड़ है। नियति को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां ने हर कदम पर उनका सहयोग किया। संगीत के प्रति नियति के लगाव को उन्होंने बहुत कम उम्र में पहचान लिया था। नियति जब महज 6 महीने की थी तभी मां ने कीबोर्ड और जाइलोफोन से नियति को रूबरू कराया। 4 साल की उम्र में नियति ने काबिलियत हासिल कर ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले भी नियति कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। चौबीस में नियति ने आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो पर शिव तांडव स्त्रोत बजाया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। 2023 में नियति ने 65 सेकंड में 15 वाद्य यंत्रों पर राष्ट्रगान बजाया। इस उपलब्धि पर उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। संगीत के साथ नियति साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, एनिमेशन और रैप क्रिएशन में भी माहिर है। हिंदी और अंग्रेजी में कविता और गीत लिखने वाली नियति को अब तक 17 देशों में सम्मान मिल चुका है। संगीत में रुचि के साथ ही नियति पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही हैं। बचपन में एक छोटे से खिलौने के साथ शुरू हुआ संगीत का ये सफर आज नियति को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा चुका है और उनकी ये कामयाबी आज की नई पीढ़ी के लिए एक नई मिसाल बन गई है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। अब बात उन लिटिल मास्टर्स की जिन्होंने सीधे समंदर को चुनौती दी है। 7 साल का ईशांक और 9 साल के नैया ने स्विमिंग के ऐसे जोरदार रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं जो आज बड़े बड़े अनुभवी तैराक उन्हें सलाम कर रहे हैं।
1: माइकल फेल्प्स, केटी लेडेकी, मार्क स्पिट्स, पानी की मौजूदगी के चलते अब तक ब्रह्मांड का इकलौता नीला ग्रह है हमारी धरती। और उसी धरती के ये वो तीन तैराक हैं जिन्होंने धरती के पानी पर फतेह पाई। धरती के सबसे सफल स्विमर इन तीनों अमेरिकी स्विमर्स में से हर एक ने ओलंपिक में तैराकी के इतने मेडल जीत रखे हैं कि आप अपनी उंगलियों पर गिन नहीं सकते। लेकिन ये गुजरे हुए कल की तस्वीर है। आने वाले कल की तस्वीर कैसी हो सकती है ये आपको हम दिखाते हैं। पानी पर तैरती उम्मीदों की तस्वीर है, वो तस्वीर जो सपना दिखाती है, वो सपना जो अभी तक अधूरा है लेकिन कल पूरा हो सकता है। ओलंपिक में भारत के लिए स्विमिंग का मेडल लाने का सपना, और इस उम्मीद को पंख लगा रखे हैं इन दोनों टैलेंटेड यंग स्विमर्स ने। इनमें से एक है 9 साल की अनैया जगदीश कुंती कारकर और दूसरे 7 साल के मास्टर ईशान। इन दोनों नन्हे तैराकों ने हाल ही में स्विमिंग के ऐसे जोरदार रिकॉर्ड बनाए हैं कि हर कोई हैरान है। रांची के रहने वाले 7 साल के मास्टर ईशांक ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत बड़े बड़े तैराक नहीं कर पाते। इस बच्चे ने लहरों से लड़ते हुए 29 किलोमीटर का सफर 9 घंटे 50 मिनट में तय करके इतिहास रच दिया है। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि समंदर के जिस रास्ते को ईशांक ने तय किया है वो समंदर में सबसे मुश्किल रास्तों में एक माना जाता है। इस कामयाबी ने ईशांक को दुनिया का सबसे कम उम्र का पार्क स्ट्रेट तैराक बना दिया है। लेकिन ये सिर्फ

0: सर्वश्रेष्ठ तैराकों में से एक बना दिया है। समंदर में जिस रास्ते को ईशांक ने नापा है वो रास्ता दुश्वारियों से भरा है। यहाँ समंदर की लहरें तैराक का कड़ा इम्तिहान लेती हैं, तेज धाराएं उसका रास्ता रोकती हैं और मौसम उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेता है। ऐसे में इन सब का सामना करने के लिए केवल शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है, जो ईशांक में साफ दिखाई देती है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज की।
0: ईशान की इस उपलब्धि की अहमियत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पार्क स्ट्रीट वो जगह है जहां पहले तमाम अनुभवी तैराक भी हार मान चुके हैं। ऐसे में 7 साल के बच्चे का इसे पार करना अपने आप में असाधारण है। और कुछ ऐसा ही असाधारण करके दिखाया है मुंबई की रहने वाली अनैया जगदीश कुंती कारकर ने। खेलने कूदने की उम्र में इस 9 साल की बच्ची ने स्विमिंग में जोरदार रिकॉर्ड कायम किया है। मुंबई की अनैया ने समंदर में 17 किलोमीटर की दूरी तैर कर पार की। आपको बता दें कि समंदर के रास्ते अटल सेतु उल्वा से गेटवे ऑफ इंडिया की दूरी 17 किलोमीटर है, जिसे अनैया ने 4 घंटे में पार कर इतिहास रच दिया। 1 मई की रात करीब 2 बजे अनैया ने अटल सेतु के पास उल्वे से तैरना शुरू किया और सुबह करीब 6 बजे वो गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गई, यानी संकल्प के जरिए अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। ईशांक और अनैया ने ये साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, सही जज्बा, कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन हो तो छोटी उम्र में भी बड़े बड़ों के रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं। रांची से आकाश कुमार और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: शनि देव की जयंती पर क्या होगा पूजा विधान? शनि देव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान? और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण घटाने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा फैसला, बिना पीयूसी वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल, 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन, न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत, नेफेड के जरिए 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी, किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा।

0: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाएगा सीबीआई का नया पोर्टल एआई फीचर्स लेस नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम अभय लॉन्च नकली दस्तावेजों को पकड़ना आसान भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्दी मिलेगी राहत मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मॉनसून समय से पहले दस्तक दे रहा है मॉनसून बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी द सरयू प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देश मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में दिखा आस्था और विश्वास का संगम भगवान कृष्ण के पावन धाम में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान दान पेटियों के पहले चरण में 11 करोड़ से ज्यादा राशि की गणना
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं
0: नमस्कार मैं हूं नवजोत रंधावा सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब केवल अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है हर घटना हर तस्वीर हर वीडियो कुछ सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी कर दी जाती है कि वो असलियत से कोसों दूर लगती है नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर आगे शेयर करने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में तो आज फैक्ट चेक में जिन दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे उसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में नई सरकार के गठन के बावजूद टीएमसी के लोगों पर हमले रुक नहीं रहे हैं बीच सड़क पर एक टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला किया गया सच्चाई क्या है आगे करेंगे पड़ताल दूसरी खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुस्लिम ईसाइयों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर राज्य से बाहर निकाला जा रहा है इस वायरल दावे की सच्चाई क्या है करेंगे पड़ताल शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला
0: चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक का सफर और सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो में सड़क पर एक युवक दूसरे युवक को बुरी तरह से पीट रहा है वहां पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं लेकिन कोई भी इसे रोकने की कोशिश नहीं करता वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में नई सरकार के गठन के बावजूद टीएमसी के लोगों पर हमला रुक नहीं रहा है हर दिन उन्हें निशाना बनाया जा रहा है वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है देखिए रिपोर्ट
2: बंगाल में भगवा लहराने के साथ ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन में है राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार एक के बाद एक कड़े और कारगर फैसले ले रही है इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो में एक युवक को दूसरे युवक की पिटाई करते हुए देखा जा रहा है इस वीडियो के जरिए कुछ लोग राज्य सरकार के नियत पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद भी राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला रुक नहीं रहा है एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि सड़कों पर टीएमसी पर खुलेआम हमले हो रहे हैं आखिर बंगाल में हो क्या रहा है सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक युवक को दूसरे युवक की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है और इस वीडियो के जरिए लोग बंगाल की शुभेंदु सरकार की नियत पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद भी राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला रुक नहीं रहा है सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये मराठी में लगा। आप भी सुनिए इन आवाजों को। वायरल वीडियो बंगाल का होता है तो यहाँ पर बंगला वैसे सुनाई देती, लेकिन यहाँ पर बंगला मिश्रित हिंदी प्योर मराठी सुनाई दे रही है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने एक बार फिर से वायरल वीडियो के फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में एक स्कूटी नजर आई और इस स्कूटी पर MH नंबर प्लेट है जो कि महाराष्ट्र का है। अगर वीडियो बंगाल का होता तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बंगाल नंबर प्लेट स्कूटी नजर आती, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट और बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन वहां पर भी वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए बंगाल में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही है। देखिए सच और झूठ क्या है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर मिला। इसे 15 अप्रैल 2026 को पोस्ट करते हुए लिखा गया था, मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, मोहम्मद जैद शेख पर ऑटो रिक्शा से आए 3-4 लोगों ने हमला किया। सूत्र के अनुसार यह हमला सुपारी देकर करवाया गया है। इस मामले में हुजैफा नाम के व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही हमलावर भेजे। ये घटना वर्सोवा के पास अंधेरी वेस्ट में हुई बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर और जांच की जा रही है। ऐसे मामले शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। सर्च के दौरान एक फेसबुक यूजर के अकाउंट पर वायरल वीडियो देखने को मिला। यह वीडियो 11 अप्रैल 2026 को साझा किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक अंधेरी वेस्ट में शख्स पर हमला, सुपारी देकर हमले का आरोप, अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में एक व्यक्ति पर हमला जाने की घटना सामने आई। इंस्टाग्राम यूजर ने भी 10 अप्रैल 2026 को इस वीडियो को शेयर करते हुए घटना को 8 अप्रैल की रात का बताया था। जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 2 फरार है। महाराष्ट्र पुलिस की वेबसाइट पर इस मामले की FIR अपलोड है। वर्सोवा थाने में दर्ज केस के मुताबिक घटना 9 अप्रैल 2026 की रात की है। साफ है वायरल वीडियो मुंबई का है। अप्रैल 2026 की शुरुआत में अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया था। इस मामले की वीडियो को बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा का मामला बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सूरजुद्दीन मंडल के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों और ईसाइयों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जब वायरल वीडियो का सच और झूठ की पड़ताल की गई तो क्या कुछ सामने आया, देखिए हमारी रिपोर्ट।
3: बंगाल में बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा है कि शासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार का रोड मैप इस सरकार की प्राथमिकता होगी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो बेहद तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में सुरक्षा बल और पुलिस को लोगों की नागरिकता की जांच करते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद सुरक्षा बल और पुलिस के जवान मुस्लिमों और ईसाइयों के घर जाकर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटा रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद CRPF और पुलिस पश्चिम बंगाल में हर मुस्लिम और ईसाई के घर जाकर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटा रही है। ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है जिसका सामना भारत के अल्पसंख्यकों को रोज करना पड़ता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल बंगाल चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में कई वीडियोस को चुनाव से जोड़कर पेश किया जा रहा है। अब वहां पर ऐतिहासिक जीत के साथ ममता बनर्जी का वर्चस्व खत्म कर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो का सिलसिला अभी भी जारी है। और इस बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है, जिससे दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां के मुसलमानों और ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटाया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें शक हुआ। हमारी नजर वीडियो में नजर आ रहे पुलिस अधिकारी के ड्रेस के कलर पर गई। ये खाकी रंग है, जबकि बंगाल पुलिस की वर्दी का रंग सफेद है, जो कि भारत के दूसरे राज्यों की खाकी वर्दी से अलग है। उसके बाद नागरिकता जांचने का एक पूरा प्रोसेस होता है, ऐसे में हमें वीडियो के दावे पर भी शक हुआ। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने पता लगाने की कोशिश की कि क्या नई सरकार के गठन के बाद पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ हो भी रहा है, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा होता तो फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट पर सुर्खियां बनी होती, लेकिन कहीं कुछ हमें मिला नहीं। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो वायरल हो रहा वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। देखिए सच और झूठ क्या है।
3: हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो और पोस्ट वायरल हुए हैं। फैक्ट चेक टीम ने लगातार इन वीडियोस और पोस्ट का फैक्ट चेक किया है। इस दौरान वायरल दावे गलत साबित हुए हैं और अब इसी कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। दावे की सच्चाई का पता लगाने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें इंटरनेट पर खंगाला। इसके जरिए हम एक वेबसाइट पर पहुंचे, जहां 1 जनवरी 2026 को प्रकाशित खबर में वायरल हो रहे वीडियो के कुछ हिस्से देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कौशाम्बी थाने के प्रभारी अजय शर्मा एक संदिग्ध शख्स की पीठ पर मोबाइल रखकर उसकी तथाकथित नागरिकता जांच करते दिख रहे हैं। आमतौर पर नागरिकता की जांच के लिए बायोमेट्रिक, पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। वायरल वीडियो 23 दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो एक चैनल के एक्स हैंडल पर भी देखने को मिला। यहां इसे 1 जनवरी 2026 को अपलोड किया गया था। एक वेबसाइट पर 2 जनवरी 2026 को छपी रिपोर्ट के मुताबिक कौशाम्बी थाना प्रभारी का वीडियो वायरल होने के बाद इंदिरापुरम के सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने उन्हें चेतावनी जारी की है। उन्होंने आगे से इस तरह की हरकत नहीं करने की बात भी कही। वीडियो कौशाम्बी में अस्थायी बस्ती और झुग्गी में रहने वाले निवासियों से पूछताछ और सत्यापन की प्रक्रिया का था। सर्च के दौरान एक और रिपोर्ट मिली। 2 जनवरी 2026 को छपी खबर में लिखा था कि वीडियो वायरल होने के बाद कौशाम्बी थाने के प्रभारी अजय शर्मा ने इसे एक मजाक बताया था। साफ है, वायरल हो रहे वीडियो के जरिए गलत दावा किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई नागरिकता जांच का वीडियो है। पाकिस्तानी यूजर ने प्रोपेगेंडा के लिए इसे बंगाल में मुसलमानों और ईसाइयों की नागरिकता की जांच का बताकर शेयर किया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: देव की जयंती पर क्या होगा पूजा विधान, शनिदेव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान, और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: खबरें
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
5: मैं आपकी बात क्या मानूं, ये बताइए आपकी बात मैं क्या मानूं।
6: हालत खराब है, अम्मा नहीं रो पा रही हूं, प्लीज बस वापस ना लेके जाना, इतना मार जितना मारे उतना मार लीजिए, लेकिन वापस नहीं लेके जाना।
7: सोशल मीडिया पर बच्चों के मासूम वीडियो अक्सर लोगों का दिन बना देते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची क्लासरूम में अपनी टीचर के सामने ऐसे ऐसे बहाने बनाती नजर आ रही है कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं।
5: क्लास में अब्सेंट क्यों होती हो?
6: क्लास में स्पैम।
5: स्पैम नहीं, अब्सेंट क्यों होती हो?
6: अच्छा, बताती हूँ।
5: हाँ बिल्कुल बताइए, रीजन बताइए मुझे या।
7: वीडियो में बच्ची कभी रोती है, कभी अपनी बात समझने की कोशिश करती है और फिर अचानक टीचर से कहती है, मैम हंस के दिखा दीजिए फिर मैं खुश हो जाऊंगी।
5: अच्छा मैं आपको हंस के दिखा दूं? मैं स्टॉप रॉकिंग, मैं आपको हंस के क्यों दिखाऊं?
6: इसलिए फिर मेरा रोना बंद हो जाता है।
5: तो आप तो मेरे हंसने वाला वर्क कर ही नहीं रही हो, आप तो अपना टेस्ट कहाँ दे रही हो मुझे? आपको यही नहीं पता इन द स्काई, स्काई में आपको क्या क्या दिखते हैं?
7: यही मासूमियत अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रही है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। लोग बच्ची की क्यूटनेस और उसके एक्सप्रेशंस देखकर मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि ऐसी हरकत देखकर बच्चों पर गुस्सा करना भी मुश्किल हो जाता है।
5: डे किससे हॉट होता है?
6: गर्मी।
5: गर्मी किससे होती है?
6: हॉट।
5: हॉट किससे? हॉट कैसे आता है? अभी अभी स्काई में क्या ब्राइट हो रहा है?
6: अभी
5: स्काई में क्या ब्राइटनेस है? ये क्या है? मार दूंगी प्रिशा।
6: मैं जाने दो, कल पूरा ये पूरा याद करके आऊंगी मैं।
5: क्या जाने दूं मैं आपको? है
6: प्रिशा, मुझे जाने दीजिए प्लीज।
5: क्यों?
6: नहीं मुझे ऐसे आप डांटे कुछ करें, पता भी मैं बहुत मुझे डांटती आपसे भी।
7: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने दिल जीत लिया है। वीडियो में एक बच्चा नजर आ रहा है जिसने गांधी जी का लुक लिया हुआ है और एक जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा है। तभी वहां पर एक बच्ची आती है, वो जो खुद खा रही थी उसी में से एक टुकड़ा उस बच्चे को भी खाने के लिए ऑफर करती है। दोनों बच्चों की ये मासूमियत और बच्ची का उस बच्चे का ऐसा ख्याल रखना दिल जीत लेता है और इसी कारण वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मगर ये जानकारी नहीं मिल पाई कि वीडियो कब और कहां का है।

जहां एक तरफ देश में बोर्ड परीक्षा के नतीजों के बाद बच्चों पर अच्छे मार्क्स लाने का भारी दबाव होता है, वहीं मुंबई के एक परिवार ने अपने बेटे मोहम्मद जैद के 55% मार्क्स आने पर जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। जब जैद का रिजल्ट आया तो पता चला कि उसने 55% अंक हासिल किए थे। आमतौर पर ऐसे नतीजों के बाद घरों में या तो सन्नाटा पसर जाता है या फिर पड़ोसी के बच्चों और दोस्तों से तुलना शुरू हो जाती है, लेकिन जैद के घर का सीन बिल्कुल अलग था। परिवार ने जैद की उपलब्धि को छोटा नहीं समझा और उसकी मार्कशीट के डिजाइन वाला एक खास केक मंगवा कर इसे सेलिब्रेट किया। इस स्पेशल केक पर जैद की पूरी डिटेल थी, नाम, रोल नंबर और हर सब्जेक्ट के मार्क्स। वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि जैद जैसे ही कमरे में आता है परिवार के लोग तालियों से उसका वेलकम करते हैं। जैद के चेहरे की मुस्कान ये बताने के लिए काफी थी कि उसके माता पिता का ये सपोर्ट उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कितना जरूरी था।

0: दिल्ली स्टेशन पर एक इंडोनेशियाई महिला पर्यटक अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी गेट पर खड़े होकर कैमरा संभालते समय उसका पसंदीदा दुपट्टा प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच के गैप में जा गिरा। इसके बाद जो हुआ, उसने इंटरनेट की जनता का दिल जीत लिया। दरअसल इंडोनेशिया की एक कंटेंट क्रिएटर हाल ही में भारत घूमने आई थी। दिल्ली स्टेशन पर जब वह ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी गेट पर खड़े होकर कैमरा संभालते समय उनका पसंदीदा दुपट्टा हाथ से फिसलकर सीधा प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच के खतरनाक गैप में जा गिरा। विदेशी महिला परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि चलती ट्रेनों के बीच पटरी पर उतरना जान जोखिम में डालने जैसा था। तभी वहां से गुजर रहे एक अंकल ने विदेशी महिला की परेशानी देखी। उन्होंने पहले हाथ से दुपट्टा खींचने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अपनी जान की परवाह किए बिना उस सकरे गैप में छलांग लगा दी। वहां खड़े लोग बस देखते रह गए। अंकल ने पटरी से दुपट्टा उठाया और उसे वापस महिला को थमा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि बच्ची एक जगह पर बैठी हुई है और अपना स्किन केयर कर रही है। उसे किसी का क्रीम मिल गया है और उसने लगभग पूरे शरीर पर उस क्रीम को लगा दिया है। पूरा चेहरा क्रीम से भरा हुआ है, हाथों में क्रीम लगी हुई है और साथ ही पैरों पर भी क्रीम लगा लिया है। वो अभी भी चेहरे पर क्रीम लगाती नजर आ रही है। वहीं चारों तरफ छोटे छोटे कागज पड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब किसी ने अचानक यह देखा और वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
4: Jack, you're killing me.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: फिल्म फेस्टिवल की जहां की तस्वीरें लगातार सामने आ रही और सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं, ऐसे में इस ग्लोबल मंच पर विदेशी सेलेब्स के साथ हिंदुस्तान का भी जलवा देखने को मिल रहा है। कान फिल्म फेस्टिवल में इन सितारों ने अपने सिनेमा संस्कृति और यूनिक स्टाइल से न केवल भारतीय पहचान को खास अंदाज में पेश किया, बल्कि अपने फैशन सेंस से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं।
6: कैन के रेड कार्पेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर नहीं, भारतीय सिनेमा संस्कृति और स्टाइल का शानदार संगम भी देखने को मिला। जहां एक ओर सितारों ने अपने फैशन से दुनिया का ध्यान खींचा, तो वहीं कुछ चेहरों ने अपनी मौजूदगी से भारतीय पहचान को भी खास अंदाज में पेश किया। तारा के बाद अब कैन के मंच पर मलयालम सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन ने भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। फिल्म लोका से देश भर में पहचान बनाने वाली कल्याणी ने कैन 2026 में अपने पहले ही अपीयरेंस से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फ्रांस के खूबसूरत शहर में सजे इस भव्य फिल्म महोत्सव में कल्याणी का अंदाज बेहद शालीन, क्लासी और इंटरनेशनल फैशन से भरपूर नजर आया। जैसे ही उनकी तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी सादगी और एलिगेंस की खूब तारीफ शुरू कर दी। और अब आपको दिखाते हैं कैन फिल्म फेस्टिवल में सनातन की झलक। जब रेड कार्पेट पर हाथ में गीता और गले में तुलसी माला लिए पहुंची ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगर आरती खेत्रपाल, कैन जैसे ग्लोबल मंच पर आरती ने सिर्फ फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था को भी पूरे गर्व के साथ पेश किया। गोल्डन शेड के कस्टम मेड लहंगे में नजर आई आरती के आउटफिट पर वृंदावन की खूबसूरत झलक देखने को मिली। मंदिरों, आध्यात्मिक स्थलों और कृष्ण भक्ति से सजे इस लहंगे ने रेड कार्पेट पर हर किसी का ध्यान खींच लिया। देसी अंदाज और आध्यात्मिक संदेश का ये अनोखा मेल लोगों को काफी यूनिक लगा। मलयालम भट्ट तो लगातार अपने फैशन स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियों में बनी ही हुई हैं। रेड कार्पेट से लेकर ग्लैमरस फोटोशूट तक आलिया का हर अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाल ही में सामने आए उनके नए लुक में वो मरून ऑफ शोल्डर कॉर्सेट गाउन में बेहद रॉयल और स्टर्निंग दिखी। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर इवेंट की कई तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, प्यारे दोस्तों अब अलविदा कहने का समय आ गया है, यानी कैन 2026 को आलिया ने स्टाइलिश अंदाज में गुड बाय कह दिया। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ फैशन ही नहीं अपने आत्मविश्वास और स्क्रीन प्रेजेंस से भी फैंस का दिल जीत लिया। और अब आपको लेकर चलते हैं कैन फिल्म फेस्टिवल की सबसे हटके और मजेदार पार्टी में, जहां ग्लैमर के बीच नजर आया फैशन का एक अलग ही रंग। जी हाँ, कैन में हुई चर्चित पजामा पार्टी में कई सितारे स्टाइलिश पजामों, ड्रेसिंग गाउन और नाइटवेयर में दिखे। इस पार्टी का खास ड्रेस कोड ही पजामा था। दिलचस्प बात ये रही कि इस एक्सक्लूसिव पार्टी में शामिल होने के लिए लोगों को लॉटरी सिस्टम से गुजरना पड़ा। इस साल सिर्फ 300 टिकटों के लिए करीब 1800 लोगों ने आवेदन किया था। यानी कैन में अब रेड कार्पेट के साथ साथ पजामा फैशन भी चर्चा का हिस्सा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: कान फिल्म फेस्टिवल में इंडियन रीजनल फिल्मों की धूम भी मची हुई है। ऐसे में पंजाबी सिनेमा ने भी इस ग्लोबल मंच में धमाकेदार एंट्री की है, जहां एमी विर्क और रूपी गिल की फिल्म चढ़दी कला का विशेष प्रीमियर आकर्षण का केंद्र बना। और इस दौरान एक्ट्रेस रूपी गिल ने देसी पंजाबन का लुक लेते हुए कान फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू कर खूब सुर्खियां बटोरी। बस ये पहली बार है जब ग्लोबल पंजाबी फिल्म को इतना बड़ा सम्मान मिला है।
8: फ्रेंच रिवेरा की चमक, कान का ग्लैमरस रेड कार्पेट, सोशल मीडिया पर इन दिनों जिस देसी बाला की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं, वो है पंजाबी मॉडल और अभिनेत्री रूपी गिल। व्हाइट आइवरी सूट, डायमंड और एमरल ज्वेलरी में रूपी का अंदाज इतना एलिगेंट दिखा कि हर कोई बस उन्हें देखता रह गया। कान 2026 में रूपी गिल ने अपना डेब्यू किया। रुपिंदर कौर गिल यानी रूपी गिल ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक वीडियो यारियां चाफिक से की थी। इसके बाद साल 2018 में फिल्म अश्के से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। फिल्म में नूर के किरदार में उनकी दमदार एक्टिंग को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। यही वजह रही कि उन्हें पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। अब रूपी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को पूरी तरह से तैयार हैं। 29 मई को एमी वर्क के साथ उनकी नई फिल्म चढ़दी कला रिलीज होने जा रही है। दिलजीत दोसांझ से लेकर अमरिंदर गिल, प्रेम ढिल्लो और अखिल जैसे कई बड़े पंजाबी सितारों के म्यूजिक वीडियोस ने नजर आ चुकी रूपी गिल अब कान के मंच पर पंजाब का नाम रोशन कर रही हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि इस बार कान की रेड कार्पेट पर सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि पंजाबी संस्कृति की चमक भी खूब दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
4: Jack, you're killing me.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
9: शनि देव की जयंती पर क्या होगा पूजा विधान? शनि देव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान? और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण घटाने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा फैसला, बिना पीयूसी वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल, 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन, न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत, नेफेड के जरिए 12.35 रूपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी, किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाएगा सीबीआई का नया पोर्टल एआई फीचर्स लेस नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम, अब है लॉन्च, नकली दस्तावेजों को पकड़ना आसान। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्दी मिलेगी राहत, मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मॉनसून, समय से पहले दस्तक दे रहा है मॉनसून। बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता, अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी, द सरयू प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई, रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देश। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में दिखा आस्था और विश्वास का संगम, भगवान कृष्ण के पावन धाम में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान, दान पेटियों के पहले चरण में 11 करोड़ से ज्यादा राशि की

आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मशहूर शायर निदा फाजिल ने कभी लिखा था, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने को चार किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, ये हमारे जैसे नहीं है, बल्कि ये इतने सुपर टैलेंटेड और कमाल के फनकार हैं कि ये हमारे जैसे नहीं, बल्कि आप और हम इनके जैसे होना चाहेंगे। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा साउंड करता है, क्यों? चलिए आपको दिखा देते हैं।

0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उम्र है दो, संस्कृत जोरदार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार स्पेस एक्सपर्ट हैं, उम्र है 4।
1: स्मॉल प्लैनेट इसो सैटर्न एफ बिट फोर रिंग्स इसो जुपिटर इसो बिग प्लैनेट।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 2 साल के गूगल नॉलेज शानदार।
2: परशुराम कौन से अवतार हैं विष्णु भगवान के?
3: छठे अवतार।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 7 की उम्र में पार्क स्ट्रीट तैर कर

ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 14 की उम्र, 44 वाद्यों की फनकार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 9 की उम्र में स्विमर जोरदार।

चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर की रहने वाली 2 साल की जीनियस के साथ। 2 साल के बच्चे ठीक से बोलना तक नहीं जानते हैं, लेकिन प्रशा उन बच्चों में से नहीं है। 2 साल की प्रशा को 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र आते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स 1 से लेकर 100 तक गिनती, सूर्य नमस्कार और भी ना जाने क्या क्या जानते हैं और क्या क्या करती है ये छोटी सी गुड़िया।

0: सुनाओ।
1: गप्पू मेरा।

0: जोर से बोले ऐसे करके कंधे पे ऐसे ऐसे ही रखे हो अच्छे से। ओम नमः शिवाय। आईज क्लोज करके। ओम
1: नमः शिवाय।
2: ओम क्या कम यामें छोगा दीप पट्टी बनाया और बाद में बनाया मैं तुम क्या माता।
3: जो ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी वेदों की वही भाषा पुराणों की वही बानी जयपुर में मौजूद इस घर के आंगन में गूंज उठी।
2: ओम बोल बुआ जय चतुर बजे हम पयो देवते देव योया पचोलिया।
3: मानो माँ सरस्वती बाल रूप में उतर आई और खेल खेल में अपनी तोतली जुबान में हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता संस्कृति और संस्कारों की कहानियाँ सुना रही हूँ।
2: यारे भी सबूते चू छत्ती वो पैन छत्ती ता नमतते नमतते नमो नमा।
3: दो साल की उम्र जब बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते तब तुतलाती जुबान में श्लोक और मंत्रों का ऐसा उच्चारण कि सुनने वाला सुनता रह जाए। जयपुर की रहने वाली दो साल की प्रिशा आज 30 से ज्यादा मंत्रों और श्लोकों का स्पष्ट उच्चारण कर लेती है। जहाँ बड़े बड़े लोग भी संस्कृत श्लोकों और मंत्रों को सही तरह से उच्चारित नहीं कर पाते वहीं ये नन्ही बच्ची इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुँच गई है। अपनी अद्भुत याददाश्त और प्रतिभा के दम पर जयपुर की प्रिशा आज सुपर टैलेंटेड किड कहलाने लगी है।
4: आज के टेक सैवी जमाने में जहाँ हर एक बच्चा फोन या स्क्रीन्स के पीछे भागता है या फिर उससे ज्यादा अडिक्टेड हो जाता है वहीं जयपुर की एक नन्ही सी बच्ची है जिसने महज 2 साल की उम्र में अपने नाम पे इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है और वो नाम सुपर टैलेंटेड किड के नाम से दर्ज हुआ है। ये नन्ही सी बच्ची है जयपुर की प्रिशा जो संस्कृत में 2 साल की उम्र में 30 से ज्यादा श्लोक बोल सकती है।
3: बेटियां यूं भी दुआओं की तरह मिलती हैं। अपनी खिलखिलाहट मासूमियत और खनकती हंसी से घर के कोनों को भिगोती हुई लेकिन गुड़िया रानी अगर प्रिशा जैसी प्रतिभा लेकर पैदा हो तो हैरानी की बात नहीं कि परिवार उसे ईश्वर का उपहार और आशीर्वाद मानता है। प्रिशा के माता पिता का भी कुछ ऐसा ही मानना है।
5: जब इसे ना हम रोज मॉर्निंग में मॉर्निंग प्रेयर करवाते थे जब ये बोलना स्टार्ट नहीं करी थी तो सुनती थी पर एकदम से जब हमने देखा कि एक दिन ये खुद से बोल रही थी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये खुद से बोल सकती है। हमें लगा कि हाँ धीरे धीरे याद करेगी पर ये खुद से बोलने लग गई थी तब हमें रियलाइज हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है शायद इसमें।
3: सिर्फ 24 महीने की उम्र में प्रिशा को 30 से ज्यादा संस्कृत मंत्र और श्लोक याद है। वो न उनका स्पष्ट उच्चारण करती है बल्कि कई श्लोकों का अर्थ समझने की कोशिश भी करती है। सभी देवी देवताओं को पहचानते हुए उनके बारे में काफी कुछ जानती है। प्रिशा खुद 80 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स पहचान सकती है। सारे अल्फाबेट्स और 100 तक गिनती भी प्रिशा को बखूबी याद है। साथ ही ये बच्ची सूर्य नमस्कार कर सकती है हाथों के बल चलने का अभ्यास करती है और अपने से 3 गुना ऊंची ग्रिल पर भी अपने आप चढ़ जाती है। आज जहाँ आम घरों में छोटे बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते वहाँ प्रिशा का मोबाइल से मानो कोई वास्ता ही नहीं है।
5: इसने कभी फोन नहीं देखा आज तक नहीं कभी नहीं। मैं अगर सुनाती भी हूँ तो स्पॉटिफाई पे बंद करके तो इसे पता है फोन में सुनना है देखना नहीं है। बताती है आइस खराब हो जाती है फोन देखने से और हमको भी नहीं देखने देती। हम भी चला रहे होते तो मम्मा फोन मत देखो आइस खराब हो जाएगी ऐसे बोलती है।
3: प्रिशा की माँ के मुताबिक उनके घर में सुबह की शुरुआत ही भजन और मंत्रों के साथ होती है। शायद यही माहौल धीरे धीरे उनकी बेटी के व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है और वे ये सब खुशी खुशी सीख रही है। प्रिशा की प्रतिभा और सीखने की ललक वाकई एक मिसाल है। इस नन्ही मुन्ही जीनियस से बच्चे तो क्या बड़े बड़े भी कई सबक सीख सकते हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
6: और चलिए अब बात रीवा के गूगल बॉय की करते हैं। रीवा का विराज महज 2 साल 11 महीने का है। छोटा सा विराज डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे और मुश्किल अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड्स में आसानी से सुना सकता है और फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर लेता है। इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे, उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया, है ना कमाल।
1: विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं?
7: 10।
1: और परशुराम कौन से अवतार हैं विष्णु भगवान के?
7: छठे अवतार।
1: छठे अवतार। और परशुराम के पास क्या होता है?
3: ये नन्हा चैंपियन अविराज है, जिसे लोग गूगल बॉय के नाम से जानते हैं। ये मध्य प्रदेश में रीवा की धरती पर जन्मा एक चमकता सितारा है, जिसने अपनी अद्भुत प्रतिभा से दुनिया को चौंका दिया है।
1: रावण कहाँ लेके गया था सीता माता को?
7: अशोक वाटिका।
1: अशोक वाटिका कहाँ है?
7: लंका में।
1: और लंका कौन जला दिया था? लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कैसे, जोर से बोलो, हनुमान जी कैसे लंका जलाए थे?
7: अपनी
1: टेल से।
3: इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे, उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया।
7: टाइगर।
3: ये डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे खतरनाक अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड में फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर सकता है।
1: परशुराम के पास क्या होता है?
7: फरसा।
1: और परशुराम अपने फरसे से किसका टस्क तोड़ दिए थे?
7: गणेश जी का
1: टस्क तोड़ दिए। और विष्णु भगवान का पावरफुल वेपन क्या है?
7: सुदर्शन।
3: अविराज अभी 2 साल 11 महीने के हैं। इस उम्र में बच्चे अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पाते, मगर मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाला ये नन्हा उस्ताद बाकी बच्चों से जुदा है। लोग इसे रीवा का गूगल बॉय कहते हैं, क्योंकि इसने अपनी मेमोरी और नॉलेज से सभी को हैरान किया हुआ है। इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है और शब्द सुनते ही दिमाग में फीड हो जाते हैं। इसी अद्भुत प्रतिभा की वजह से अविराज अभी तक कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुका है।
1: इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, जीनियस में है, कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड है, और इंटरनेशनल है, इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऐसे करके कई 7-8 रिकॉर्ड्स मतलब है।
3: अविराज को जानवर ही नहीं, कई पक्षियों के नाम भी याद हैं। वो 42 देशों की राजधानी और 36 देशों के झंडे की पहचान कर सकता है। भारत के कई राज्यों की राजधानी उसे जुबानी याद है, जबकि ग्रहों और सोलर सिस्टम की तो उसे पूरी समझ है। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग और देवी देवताओं के वाहन तक बता सकता है। शास्त्र और पुराण की उसे अच्छी खासी जानकारी है, और भगवान विष्णु के सभी अवतार उसे जुबानी याद हैं।
1: हम तीनों लोग, उसके दादाजी, नाना जी और हम लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो वहाँ की कैपिटल से स्टार्ट किया कि छत्तीसगढ़ की क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है, हम हैदराबाद में हैं तो तेलंगाना की क्या है, तो वो कैपिटल्स बताए। पीएम कौन है हमारे, तो वो भी उसको मतलब ठीक से बता पाया वो। फिर उसके बाद वो 3 स्टेट्स से हम 52 कंट्रीज़ की भी बता पाता है, 28 स्टेट्स की भी बता पाता है, यूनियन टेरिटरीज जो हमारी 8 है उनकी भी कैपिटल्स बता पाता है।
3: अब मध्य प्रदेश से उठी ये चमक विदेश तक रोशनी फैला रही है। ये कहानी सिर्फ अविराज की नहीं है, बल्कि नए भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: अब बात ग्रेटर नोएडा के लिटिल जीनियस की, जिसके टैलेंट की चमक ने आज उसे स्टार बना दिया है। 4 साल का रुद्र राणा सोलर सिस्टम के हर ग्रह और उपग्रह की जानकारी रखता है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की बदौलत रुद्र का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है।
2: Beautiful rings. This is a potato, sir. बिग प्लैनेट। इसा मतलब इसे स्मॉल प्लैनेट।
3: 4 साल का रुद्र जिसकी नजरों में छुपा है एक बड़ा आसमान। इस छोटी सी उम्र में वो खेल खेल में बखूबी जानता है ग्रहों और उपग्रहों के नाम। तभी तो रुद्र की प्रतिभा उसकी ग्रहों को लेकर नॉलेज पेरेंट के साथ ही लोगों को हैरान कर रही है। ग्रेटर नोएडा के नन्हे रुद्र राणा ने सोलर सिस्टम की जानकारी से एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी कम उम्र में रुद्र न केवल ग्रहों के नाम बल्कि उनकी विशेषताएं भी बेहद आसानी से बता रहे हैं। रुद्र अभी ABCD भी ठीक से लिख नहीं पाते, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के रंग, उनके आकार की जानकारी को महज 1 मिनट 5 सेकंड में बता देते हैं, जो एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। रुद्र की माँ बताती हैं कि कुछ महीने पहले ही YouTube किड्स को देखते हुए रुद्र का ग्रहों के बारे में इंटरेस्ट जागा। वो उनसे बहुत सारे सवाल करता था। ABCD से भले ही अभी रुद्र की दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन ग्रहों के साथ मास्टर रुद्र का तालमेल बड़ा दिलचस्प है, जिसे बनाए रखने में रुद्र की माँ का बड़ा रोल रहा। जब बेटा पढ़ने की उम्र तक आया, ऐसे में बच्चे को शुरुआती पढ़ाई से रूबरू करवाने, उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए ही रुद्र की माँ ने जॉब छोड़ी। लेकिन नौकरी का सेक्रीफाइस कुछ ऐसे रंग लाएगा ये ज्योति ने नहीं सोचा था। वहीं इतनी कम उम्र में अपने बेटे की याददाश्त, समझ और ऐसी असामान्य उपलब्धि देख पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं। जाहिर है रुद्र की उम्र भले ही 4 साल की अभी प्यारी है, लेकिन उसकी काबिलियत लोगों के लिए सबसे न्यारी है। तभी तो रुद्र के पेरेंट ने अपने बेटे की इस असामान्य उपलब्धि को लेकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। मगर वो इस बात का ख्याल जरूर रख रहे हैं कि उनके बेटे पर रिकॉर्ड या किसी और चीज का कोई दबाव ना हो और वो भी सामान्य बच्चों की तरह अपने बचपन को खुलकर जिए।
8: कम उम्र में भले ही बड़ा रिकॉर्ड आया है, लेकिन रुद्र ने अभी, रुद्र के ऊपर उनके पेरेंट्स कम से कम कोई बर्डन नहीं डाल रहे कि अब मेरा बेटा ये भी करेगा वो भी करेगा। जो फिलहाल उसके हिस्से में अचीवमेंट आई है, फिलहाल घर वाले उसी को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। और यही सबसे खूबसूरत बात है कि छोटे से बच्चे ने भले अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन उसके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी आगे के लिए नहीं है। मतलब उसका बचपन आगे भी ऐसे ही मजे से कटता रहेगा। बाय बोल दो सबको।
2: बाय
8: बाय। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
6: अब बात एक नन्ही म्यूजिकल जीनियस की, एक ऐसी टैलेंटेड बच्ची जो सिर्फ 14 साल की है और 44 अलग अलग वाद्य यंत्र बजाना जानती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की पकड़ कमाल की है। ना केवल नियति इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजा लेती है, बल्कि इनसे जुड़े कई कमाल के रिकॉर्ड्स नियति ने अपने नाम किए हैं।

0: संगीत के साथ ये गहरा रिश्ता अब एक विश्व कीर्तिमान के साथ पूरी दुनिया में नियति का नाम रोशन कर रहा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में नियति ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों को पहचान कर नियति ने इतिहास रच दिया। लेकिन नियति का हुनर सिर्फ वाद्य यंत्रों को पहचानने तक सीमित नहीं है। इस छोटी सी उम्र में ही नियति 44 वाद्य यंत्र बजा लेती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की कमाल की पकड़ है। नियति को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां ने हर कदम पर उनका सहयोग किया। संगीत के प्रति नियति के लगाव को उन्होंने बहुत कम उम्र में पहचान लिया था। नियति जब महज 6 महीने की थी तभी मां ने कीबोर्ड और जाइलोफोन से नियति को रूबरू कराया। 4 साल की उम्र में नियति ने काबिलियत हासिल कर ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले भी नियति कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। 2024 में नियति ने आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो पर शिव तांडव स्तोत्र बजाया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। 2023 में नियति ने 65 सेकंड में 15 वाद्य यंत्रों पर राष्ट्रगान बजाया। इस उपलब्धि पर उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। संगीत के साथ नियति साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, एनिमेशन और रैप क्रिएशन में भी माहिर है। हिंदी और अंग्रेजी में कविता और गीत लिखने वाली नियति को अब तक 17 देशों में सम्मान मिल चुका है। संगीत में रुचि के साथ ही नियति पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही हैं। बचपन में एक छोटे से खिलौने के साथ शुरू हुआ संगीत का ये सफर आज नियति को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा चुका है और उनकी ये कामयाबी आज की नई पीढ़ी के लिए एक नई मिसाल बन गई है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात उन लिटिल मास्टर्स की जिन्होंने सीधे समंदर को चुनौती दी है। 7 साल का ईशांक और 9 साल के नैया ने स्विमिंग के ऐसे जोरदार रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं जो आज बड़े बड़े अनुभवी तैराक उन्हें सलाम कर रहे हैं।
2: माइकल फेल्प्स, केटी लेडेकी, मार्क स्पिट, पानी की मौजूदगी के चलते अब तक ब्रह्मांड का इकलौता नीला ग्रह है हमारी धरती। और उसी धरती के ये वो तीन तैराक हैं जिन्होंने धरती के पानी पर फतह पाई, धरती के सबसे सफल स्विमर। इन तीनों अमेरिकी स्विमर्स में से हर एक ने ओलंपिक में तैराकी के इतने मेडल जीत रखे हैं कि आप अपनी उंगलियों पर गिन नहीं सकते। लेकिन ये गुजरे हुए कल की तस्वीर है। आने वाले कल की तस्वीर कैसी हो सकती है ये आपको हम दिखाते हैं। पानी पर तैरती उम्मीदों की तस्वीर है, वो तस्वीर जो सपना दिखाती है, वो सपना जो अभी तक अधूरा है लेकिन कल पूरा हो सकता है। ओलंपिक में भारत के लिए स्विमिंग का मेडल लाने का सपना, और इस उम्मीद को पंख लगा रखे हैं इन दोनों टैलेंटेड यंग स्विमर्स ने। इनमें से एक है 9 साल की अनैया जगदीश कुंती कारकर और दूसरे 7 साल के मास्टर ईशांक। इन दोनों नन्हे तैराकों ने हाल ही में स्विमिंग के ऐसे जोरदार रिकॉर्ड बनाए हैं कि हर कोई हैरान है। रांची के रहने वाले 7 साल के मास्टर ईशांक ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत बड़े बड़े तैराक नहीं कर पाते। इस बच्चे ने लहरों से लड़ते हुए 29 किलोमीटर का सफर 9 घंटे 50 मिनट में तय करके इतिहास रच दिया है। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि समंदर के जिस रास्ते को ईशांक ने तय किया है वो समंदर में सबसे मुश्किल रास्तों में एक माना जाता है। इस कामयाबी ने ईशांक को दुनिया का सबसे कम उम्र का पार्क स्ट्रेट तैराक बना दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि हिम्मत, अनुशासन और जुनून का एक लंबा सफर है। समंदर की लहरों से टकराने का जुनून ईशांक के लिए नया नहीं है। ईशांक ने बहुत छोटी उम्र से ही पानी से दोस्ती कर ली। रोजाना घंटों की प्रैक्टिस, कड़ी ट्रेनिंग और मानसिक मजबूती, इन सब ने मिलकर ईशांक को आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तैराकों में से एक बना दिया है। समंदर में जिस रास्ते को ईशांक ने नापा है वो रास्ता दुश्वारियों से भरा है। यहाँ समंदर की लहरें तैराक का कड़ा इम्तिहान लेती हैं, तेज धाराएं उसका रास्ता रोकती हैं और मौसम उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेता है। ऐसे में इन सब का सामना करने के लिए केवल शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है, जो ईशांक में साफ दिखाई देती है।
3: छत्रपति शिवाजी महाराज की।
2: ईशांक की इस उपलब्धि की अहमियत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पार्क स्ट्रीट वो जगह है जहां पहले तमाम अनुभवी तैराक भी हार मान चुके हैं। ऐसे में 7 साल के बच्चे का इसे पार करना अपने आप में असाधारण है। कुछ ऐसा ही असाधारण करके दिखाया है मुंबई की रहने वाली अनैया जगदीश कुंती कारकर ने। खेलने कूदने की उम्र में इस 9 साल की बच्ची ने स्विमिंग में जोरदार रिकॉर्ड कायम किया है। मुंबई की अनैया ने समंदर में 17 किलोमीटर की दूरी तैर कर पार की। आपको बता दें कि समंदर के रास्ते अटल सेतु

0: निशांक और अनैया ने ये साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। सही जज्बा, कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन हो तो छोटी उम्र में भी बड़े बड़ों के रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं। रांची से आकाश कुमार और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: की जयंती पर क्या होगा पूजा विधान? शनिदेव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान? और शनिदेव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच.
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा. सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं. कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं. क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब केवल अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है. यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है. लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है. कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी कर दी जाती है कि वो असलियत से कोसों दूर लगती है. नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर आगे शेयर करने लगते हैं, और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी. ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं. जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में. तो आज फैक्ट चेक में जिन दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में नई सरकार के गठन के बावजूद टीएमसी के लोगों पर हमले रुक नहीं रहे हैं. बीच सड़क पर एक टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला किया गया. सच्चाई क्या है, आगे करेंगे पड़ताल. दूसरी खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुस्लिम ईसाइयों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर राज्य से बाहर निकाला जा रहा है. इस वायरल दावे की सच्चाई क्या है, करेंगे पड़ताल. शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली
4: श्री घुसपैठिया बताकर राज्य से बाहर निकाला जा रहा है. इस वायरल दावे की सच्चाई क्या है, करेंगे पड़ताल. शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली.
4: चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक का सफर. और सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सड़क पर एक युवक दूसरे युवक को बुरी तरह से पीट रहा है. वहां पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इसे रोकने की कोशिश नहीं करता. वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में नई सरकार के गठन के बावजूद टीएमसी के लोगों पर हमला रुक नहीं रहा है, हर दिन उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट.
5: बंगाल में भगवान

0: लहराने के साथ ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन में है। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार एक के बाद एक कड़े और कारगर फैसले ले रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को दूसरे युवक की पिटाई करते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग राज्य सरकार के नियत पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद भी राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला रुक नहीं रहा है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि सड़कों पर टीएमसी पर खुलेआम हमले हो रहे हैं, आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक युवक को दूसरे युवक की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। और इस वीडियो के जरिए लोग बंगाल की शुभेंदु सरकार की नियत पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद भी राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला रुक नहीं रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये मराठी में लगा। आप भी सुनिए इन आवाजों को। वायरल वीडियो बंगाल का होता है तो यहाँ पर बंगला आवाज सुनाई देती, लेकिन यहाँ पर बंगला मिश्रित हिंदी प्योर मराठी सुनाई दे रही है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने एक बार फिर से वायरल वीडियो के फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में एक स्कूटी नजर आई और इस स्कूटी पर MH नंबर प्लेट है जो कि महाराष्ट्र का है। अगर वीडियो बंगाल का होता तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बंगाल नंबर प्लेट स्कूटी नजर आती, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट और बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन वहां पर भी वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए बंगाल में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही है। देखिए सच और झूठ क्या है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर मिला। इसे 15 अप्रैल 2026 को पोस्ट करते हुए लिखा गया था, मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मोहम्मद जैद शेख पर ऑटो रिक्शा से आए 3-4 लोगों ने हमला किया। सूत्र के अनुसार यह हमला सुपारी देकर करवाया गया है। इस मामले में हुजैफा नाम के व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही हमलावर भेजे। ये घटना वर्सोवा के पास अंधेरी वेस्ट में हुई बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर और जांच की जा रही है। ऐसे मामले शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। सर्च के दौरान एक फेसबुक यूजर के अकाउंट पर वायरल वीडियो देखने को मिला। यह वीडियो 11 अप्रैल 2026 को साझा किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक अंधेरी वेस्ट में शख्स पर हमला, सुपारी देकर हमले का आरोप, अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में एक व्यक्ति पर हमला किए जाने की घटना सामने आई। इंस्टाग्राम यूजर ने भी 10 अप्रैल 2026 को इस वीडियो को शेयर करते हुए घटना को 8 अप्रैल की रात का बताया था। जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार है। महाराष्ट्र पुलिस की वेबसाइट पर इस मामले की FIR अपलोड है। वर्सोवा थाने में दर्ज केस के मुताबिक घटना 9 अप्रैल 2026 की रात की है। साफ है वायरल वीडियो मुंबई का है। अप्रैल 2026 की शुरुआत में अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया था। इस मामले की वीडियो को बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा का मामला बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सूरजुद्दीन मंडल के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों और ईसाइयों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जब वायरल वीडियो का सच और झूठ की पड़ताल की गई तो क्या कुछ सामने आया, देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा है कि शासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार का रोड मैप इस सरकार की प्राथमिकता होगी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो बेहद तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में सुरक्षा बल और पुलिस को लोगों की नागरिकता की जांच करते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद सुरक्षा बल और पुलिस के जवान मुस्लिमों और ईसाइयों के घर जाकर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटा रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सीआरपीएफ और पुलिस पश्चिम बंगाल में हर मुस्लिम और ईसाई के घर जाकर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटा रही है। ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है जिसका सामना भारत के अल्पसंख्यकों को रोज करना पड़ता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल बंगाल चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में कई वीडियोस को चुनाव से जोड़कर पेश किया जा रहा है। अब वहां पर ऐतिहासिक जीत के साथ ममता बनर्जी का वर्चस्व खत्म कर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो का सिलसिला अभी भी जारी है। और इस बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है जिससे दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां के मुसलमानों और ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटाया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें शक हुआ। हमारी नजर वीडियो में नजर आ रहे पुलिस अधिकारी के ड्रेस के कलर पर गई। ये खाकी रंग है, जबकि बंगाल पुलिस की वर्दी का रंग सफेद है, जो कि भारत के दूसरे राज्यों की खाकी वर्दी से अलग है। उसके बाद नागरिकता जांचने का एक पूरा प्रोसेस होता है, ऐसे में हमें वीडियो के दावे पर भी शक हुआ। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने पता लगाने की कोशिश की कि क्या नई सरकार के गठन के बाद पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ हो भी रहा है, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा होता तो फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट पर सुर्खियां बनी होती, लेकिन कहीं कुछ हमें मिला नहीं। लिहाजा हमने इस सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो वायरल हो रहा वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। देखिए सच और झूठ क्या है।
2: हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो और पोस्ट वायरल हुए हैं। फैक्ट चेक टीम ने लगातार इन वीडियोस और पोस्ट का फैक्ट चेक किया है। इस दौरान वायरल दावे गलत साबित हुए हैं और अब इसी कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। दावे की सच्चाई का पता लगाने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें इंटरनेट पर खंगाला। इसके जरिए हम एक वेबसाइट पर पहुंचे, जहां 1 जनवरी 2026 को प्रकाशित खबर में वायरल हो रहे वीडियो के कुछ हिस्से देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कौशाम्बी थाने के प्रभारी अजय शर्मा एक संदिग्ध शख्स की पीठ पर मोबाइल रखकर उसकी तथाकथित नागरिकता जांच करते दिख रहे हैं। आमतौर पर नागरिकता की जांच के लिए बायोमेट्रिक, पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। वायरल वीडियो 23 दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो एक चैनल के एक्स हैंडल पर भी देखने को मिला। यहां इसे 1 जनवरी 2026 को अपलोड किया गया था। एक वेबसाइट पर 2 जनवरी 2026 को छपी रिपोर्ट के मुताबिक कौशाम्बी थाना प्रभारी का वीडियो वायरल होने के बाद इंदिरापुरम के सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने उन्हें चेतावनी जारी की है। उन्होंने आगे से इस तरह की हरकत नहीं करने की बात भी कही। वीडियो कौशाम्बी में अस्थायी बस्ती और झुग्गी में रहने वाले निवासियों से पूछताछ और सत्यापन की प्रक्रिया का था। सर्च के दौरान एक और रिपोर्ट मिली। 2 जनवरी 2026 को छपी खबर में लिखा था कि वीडियो वायरल होने के बाद कौशाम्बी थाने के प्रभारी अजय शर्मा ने इसे एक मजाक बताया था। साफ है वायरल हो रहे वीडियो के जरिए गलत दावा किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई नागरिकता जांच का वीडियो है। पाकिस्तानी यूजर ने प्रोपेगेंडा के लिए इसे बंगाल में मुसलमानों और ईसाइयों की नागरिकता की जांच का बताकर शेयर किया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
5: मैं आपके बात क्या मानू, ये बताइए आपकी बात मैं क्या मानूं?
6: हालत खराब है, अम्मा नहीं रो पा रही हूं, प्लीज चाहे बस वापस ना लेके जाना, इतना मार जितना मारे उतना मार लीजिए, लेकिन वापस नहीं लेके जाना।
7: सोशल मीडिया पर बच्चों के मासूम वीडियो अक्सर लोगों का दिन बना देते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची क्लासरूम में अपनी टीचर के सामने ऐसे ऐसे बहाने बनाती नजर आ रही है कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं।
5: आप क्लास में अब्सेंट क्यों होती हो?
6: क्लास में स्पेंड
5: नहीं, अब्सेंट क्यों होती हो?
6: अच्छा, बताती हूँ।
5: हाँ बिल्कुल बताइए, रीजन बताइए मुझे आप।
7: वीडियो में बच्ची कभी रोती है, कभी अपनी बात समझने की कोशिश करती है और फिर अचानक टीचर से कहती है, मैम हंस के दिखा दीजिए फिर मैं खुश हो जाऊंगी।
6: प्लीज हंस के दिखा दीजिए तो मैं चुप हो जाता हूँ। हंस के दिखा दीजिए तो मैं चुप हो जाता हूँ।
5: अच्छा मैं आपको हंस के दिखा दूँ? मैं स्टॉप लॉगिंग, मैं आपको हंस के क्यों दिखाऊं?
6: इसलिए फिर मेरा रोना बंद हो जाता है।
5: तो आप तो मेरे हंसने वाला वर्क कर ही नहीं रही हो, आप तो अपना टेस्ट कहाँ दे रही हो मुझे? आपको यही नहीं पता इन द स्काई में आपको क्या क्या दिखते हैं?
7: यही मासूमियत अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रही है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। लोग बच्ची की क्यूटनेस और उसके एक्सप्रेशंस देखकर मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि ऐसी हरकत देखकर बच्चों पर गुस्सा करना भी मुश्किल हो जाता है।
5: डे किससे हॉट होता है?
6: गर्मी।
5: गर्मी किससे होती है?
6: हॉट।
5: हॉट किससे? हॉट कैसे आता है? अभी अभी स्काई में क्या ब्राइट हो रहा है?
6: अभी
5: स्काई में क्या ब्राइटनेस है? ये क्या है? मार दूंगी मैं प्रिशा।
6: जाने दो, कल पूरा ये पूरा याद करके आऊंगी मैं।
5: क्या जाने दूं मैं आपको? है
6: प्रिशा, मुझे जाने दीजिए प्लीज।
5: क्यों?
6: नहीं मुझे ऐसे आप डांटे कुछ करें, पता भी मैं बहुत मुझे डांटती आपसे भी।
7: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने दिल जीत लिया है। वीडियो में एक बच्चा नजर आ रहा है जिसने गांधी जी का लुक लिया हुआ है और एक जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा है। तभी वहां पर एक बच्ची आती है, वो जो खुद खा रही थी उसी में से एक टुकड़ा उस बच्चे को भी खाने के लिए ऑफर करती है। दोनों बच्चों की ये मासूमियत और बच्ची का उस बच्चे का ऐसा ख्याल रखना दिल जीत लेता है और इसी कारण वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मगर ये जानकारी नहीं मिल पाई कि वीडियो कब और कहां का है।

जहां एक तरफ देश में बोर्ड परीक्षा के नतीजों के बाद बच्चों पर अच्छे मार्क्स लाने का भारी दबाव होता है, वहीं मुंबई के एक परिवार ने अपने बेटे मोहम्मद जैद के 55% मार्क्स आने पर जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। जब जैद का रिजल्ट आया तो पता चला कि उसने 55% अंक हासिल किए थे। आमतौर पर ऐसे नतीजों के बाद घरों में या तो सन्नाटा पसर जाता है या फिर पड़ोसी के बच्चों और दोस्तों से तुलना शुरू हो जाती है, लेकिन जैद के घर का सीन बिल्कुल अलग था। परिवार ने जैद की उपलब्धि को छोटा नहीं समझा और उसकी मार्कशीट के डिजाइन वाला एक खास केक मंगवा कर इसे सेलिब्रेट किया। इस स्पेशल केक पर जैद की पूरी डिटेल थी, नाम, रोल नंबर और हर सब्जेक्ट के मार्क्स। वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि जैद जैसे ही कमरे में आता है परिवार के लोग तालियों से उसका वेलकम करते हैं। जैद के चेहरे की मुस्कान ये बताने के लिए काफी थी कि उसके माता पिता का ये सपोर्ट उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कितना जरूरी था।

0: दिल्ली स्टेशन पर एक इंडोनेशियाई महिला पर्यटक अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी गेट पर खड़े होकर कैमरा संभालते समय उसका पसंदीदा दुपट्टा प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच के गैप में जा गिरा। इसके बाद जो हुआ उसने इंटरनेट की जनता का दिल जीत लिया। दरअसल इंडोनेशिया की एक कंटेंट क्रिएटर हाल ही में भारत घूमने आई थी। दिल्ली स्टेशन पर जब वह ट्रेन का इंतजार कर रही थी तभी गेट पर खड़े होकर कैमरा संभालते समय उनका पसंदीदा दुपट्टा हाथ से फिसलकर सीधा प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच के खतरनाक गैप में जा गिरा। विदेशी महिला परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि चलती ट्रेनों के बीच पटरी पर उतरना जान जोखिम में डालने जैसा था। तभी वहां से गुजर रहे एक अंकल ने विदेशी महिला की परेशानी देखी। उन्होंने पहले हाथ से दुपट्टा खींचने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अपनी जान की परवाह किए बिना उस सकरे गैप में छलांग लगा दी। वहां खड़े लोग बस देखते रह गए। अंकल ने पटरी से दुपट्टा उठाया और उसे वापस महिला को थमा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि बच्ची एक जगह पर बैठी हुई है और अपना स्किन केयर कर रही है। उसे किसी का क्रीम मिल गया है और उसने लगभग पूरे शरीर पर उस क्रीम को लगा दिया है। पूरा चेहरा क्रीम से भरा हुआ है, हाथों में क्रीम लगी हुई है और साथ ही पैरों पर भी क्रीम लगा लिया है। वो अभी भी चेहरे पर क्रीम लगाती नजर आ रही है। वहीं चारों तरफ छोटे छोटे कागज पड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब किसी ने अचानक यह देखा और वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: बरकान फिल्म फेस्टिवल की जहां की तस्वीरें लगातार सामने आ रही और सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं, ऐसे में इस ग्लोबल मंच पर विदेशी सेलेब्स के साथ हिंदुस्तान का भी जलवा देखने को मिल रहा है। कान फिल्म फेस्टिवल में इन सितारों ने अपने सिनेमा संस्कृति और यूनिक स्टाइल से न केवल भारतीय पहचान को खास अंदाज में पेश किया बल्कि अपने फैशन सेंस से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं।
4: कैन के रेड कार्पेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर नहीं, भारतीय सिनेमा संस्कृति और स्टाइल का शानदार संगम भी देखने को मिला। जहां एक ओर सितारों ने अपने फैशन से दुनिया का ध्यान खींचा तो वहीं कुछ चेहरों ने अपनी मौजूदगी से भारतीय पहचान को भी खास अंदाज में पेश किया। तारा के बाद अब कैन के मंच पर मलयालम सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन ने भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। फिल्म लोका से देश भर में पहचान बनाने वाली कल्याणी ने कैन 2026 में अपने पहले ही अपीयरेंस से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फ्रांस के खूबसूरत शहर में सजे इस भव्य फिल्म महोत्सव में कल्याणी का अंदाज बेहद शालीन, क्लासी और इंटरनेशनल फैशन से भरपूर नजर आया। जैसे ही उनकी तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी सादगी और एलिगेंस की खूब तारीफ शुरू कर दी। और अब आपको दिखाते हैं कैन फिल्म फेस्टिवल में सनातन की झलक। जब रेड कार्पेट पर हाथ में गीता और गले में तुलसी माला लिए पहुंची ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगर आरती खेत्रपाल, कैन जैसे ग्लोबल मंच पर आरती ने सिर्फ फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था को भी पूरे गर्व के साथ पेश किया। गोल्डन शेड के कस्टम मेड लहंगे में नजर आई आरती के आउटफिट पर वृंदावन की खूबसूरत झलक देखने को मिली। मंदिरों, आध्यात्मिक स्थलों और कृष्ण भक्ति से सजे इस लहंगे ने रेड कार्पेट पर हर किसी का ध्यान खींच लिया। देसी अंदाज और आध्यात्मिक संदेश का ये अनोखा मेल लोगों को काफी यूनिक लगा। वहीं आलिया भट्ट तो लगातार अपने फैशन स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियों में बनी ही हुई हैं। रेड कार्पेट से लेकर ग्लैमरस फोटोशूट तक आलिया का हर अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाल ही में सामने आए उनके नए लुक में वो मरून ऑफ शोल्डर कॉर्सेट गाउन में बेहद रॉयल और स्टर्निंग दिखी। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर इवेंट की कई तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, प्यारे दोस्तों अब अलविदा कहने का समय आ गया है, यानी कैन 2026 को आलिया ने स्टाइलिश अंदाज में गुड बाय कह दिया। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ फैशन ही नहीं अपने आत्मविश्वास और स्क्रीन प्रेजेंस से भी फैंस का दिल जीत लिया। और अब आपको लेकर चलते हैं कैन फिल्म फेस्टिवल की सबसे हटके और मजेदार पार्टी में, जहां ग्लैमर के बीच नजर आया फैशन का एक अलग ही रंग। जी हां, कैन में हुई चर्चित पजामा पार्टी में कई सितारे स्टाइलिश पजामों, ड्रेसिंग गाउन और नाइटवेयर में दिखे। इस पार्टी का खास ड्रेस कोड ही पजामा था। दिलचस्प बात ये रही कि इस एक्सक्लूसिव पार्टी में शामिल होने के लिए लोगों को लॉटरी सिस्टम से गुजरना पड़ा। इस साल सिर्फ 300 टिकटों के लिए करीब 1800 लोगों ने आवेदन किया था। यानी कैन में अब रेड कार्पेट के साथ साथ पजामा फैशन भी चर्चा का हिस्सा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: कान फिल्म फेस्टिवल में इंडियन रीजनल फिल्मों की धूम भी मची हुई है। ऐसे में पंजाबी सिनेमा ने भी इस ग्लोबल मंच में धमाकेदार एंट्री की है, जहां एमी विर्क और रूपी गिल की फिल्म चढ़दी कला का विशेष प्रीमियर आकर्षण का केंद्र बना। और इस दौरान एक्ट्रेस रूपी गिल ने देसी पंजाबन का लुक लेते हुए कान फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू कर खूब सुर्खियां बटोरी। वैसे ये पहली बार है जब ग्लोबल पंजाबी फिल्म को इतना बड़ा सम्मान मिला है।
5: फ्रेंच रिवेरा की चमक, कान का ग्लैमरस रेड कार्पेट, सोशल मीडिया पर इन दिनों जिस देसी बाला की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं, वो है पंजाबी मॉडल और अभिनेत्री रूपी गिल। व्हाइट आइवरी सूट, डायमंड और एमरल्ड ज्वेलरी में रूपी का अंदाज इतना एलिगेंट दिखा कि हर कोई बस उन्हें देखता रह गया। कान 2026 में रूपी गिल ने अपना डेब्यू किया। रुपिंदर कौर गिल यानी रूपी गिल ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक वीडियो यारियां चाफिक से की थी। इसके बाद साल 2018 में फिल्म अश्के से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। फिल्म में नूर के किरदार में उनकी दमदार एक्टिंग को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। यही वजह रही कि उन्हें पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। अब रूपी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को पूरी तरह से तैयार हैं। 29 मई को एमी वर्क के साथ उनकी नई फिल्म चढ़दी कला रिलीज होने जा रही है। दिलजीत दोसांझ से लेकर अमरिंदर गिल, प्रेम ढिल्लो और अखिल जैसे कई बड़े पंजाबी सितारों के म्यूजिक वीडियोस ने नजर आ चुकी रूपी गिल अब कान के मंच पर पंजाब का नाम रोशन कर रही हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि इस बार कान की रेड कार्पेट पर सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि पंजाबी संस्कृति की चमक भी खूब दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: शनि देव की जयंती पर क्या होगा पूजा विधान? शनि देव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान? और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: प्रदूषण घटाने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा फैसला, बिना पीयूसी वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल, 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन। न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत, नेफेड के जरिए 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी, किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाएगा सीबीआई का नया पोर्टल एआई फीचर्स लेस नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम अभय लॉन्च नकली दस्तावेजों को पकड़ना आसान भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्दी मिलेगी राहत मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मॉनसून समय से पहले दस्तक दे रहा है मॉनसून बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी द सरयू प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देश मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में दिखा आस्था और विश्वास का संगम भगवान कृष्ण के पावन धाम में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान दान पेटियों के पहले चरण में 11 करोड़ से ज्यादा राशि की गणना
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबर
3: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण घटाने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा फैसला बिना पीयूसी वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत नेफेड के जरिए 12.35 रूपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाएगा सीबीआई का नया पोर्टल एआई फीचर्स लेस नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम अभय लॉन्च नकली दस्तावेजों को पकड़ना आसान भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्दी मिलेगी राहत मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मॉनसून समय से पहले दस्तक दे रहा है मॉनसून बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी द सरयू प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देश मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में दिखा आस्था और विश्वास का संगम भगवान कृष्ण के पावन धाम में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान दान पेटियों के पहले चरण में 11 करोड़ से ज्यादा राशि की गणना

आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं डीएनटी स्पेशल। मशहूर शायर निदा फाजिल ने कभी लिखा था, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने को चार किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, ये हमारे जैसे नहीं है, बल्कि ये इतने सुपर टैलेंटेड और कमाल के फनकार हैं कि ये हमारे जैसे नहीं, बल्कि आप और हम इनके जैसे होना चाहेंगे। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा साउंड करता है, क्यों? चलिए आपको दिखा देते हैं।

0: ट्विंकल लिटिल स्टार। उम्र है 2, संस्कृत जोरदार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार स्पेस एक्सपर्ट हैं। उम्र है 4।
1: स्मॉल प्लैनेट इसो सैटर्न हैव ब्यूटीफुल रिंग्स इसो जुपिटर इज अ बिग प्लैनेट।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार 2 साल के गूगल नॉलेज शानदार।
2: परशुराम कौन से अवतार हैं विष्णु भगवान के?
3: छठे अवतार।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार 7 की उम्र में 5 स्टेट तैर कर

ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 14 की उम्र, 44 वाद्यों की फनकार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 9 की उम्र में स्विमर जोरदार।

चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर की रहने वाली 2 साल की जीनियस के साथ। 2 साल के बच्चे ठीक से बोलना तक नहीं जानते हैं, लेकिन प्रिशा उन बच्चों में से नहीं है। 2 साल की प्रिशा को 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र आते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स 1 से लेकर 100 तक गिनती, सूर्य नमस्कार और भी ना जाने क्या क्या जानते हैं और क्या क्या करती है ये छोटी सी गुड़िया।

0: सुनाओ। जोर से बोले ऐसे करके कंधे पे ऐसे ऐसे ही रखे हो अच्छे से। ओम नमः शिवाय। आईज क्लोज करके ओम
1: नमः शिवाय।
2: ओम क्या कम यावे छो गदीम पट्टे वाला कोई बाद में बनाया मैं तुम क्या माता।
3: जो ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी वेदों की वही भाषा पुराणों की वही बानी जयपुर में मौजूद इस घर के आंगन में गूंज उठी।
2: ओम बोल बुआ जय छोटो बजे हम पयो देवते देव होया पचोलिया।
3: मानो माँ सरस्वती बाल रूप में उतर आई और खेल खेल में अपनी तोतली जुबान में हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता संस्कृति और संस्कारों की कहानियाँ सुना रही हूँ।
2: यारे भी सबूते चू छत्ती वो पैन छत्ती ता नमतते नमतते मरमो नमा।
3: 2 साल की उम्र जब बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते तब तुतलाती जुबान में श्लोक और मंत्रों का ऐसा उच्चारण कि सुनने वाला सुनता रह जाए। जयपुर की रहने वाली 2 साल की प्रिशा आज 30 से ज्यादा मंत्रों और श्लोकों का स्पष्ट उच्चारण कर लेती है। जहाँ बड़े बड़े लोग भी संस्कृत श्लोकों और मंत्रों को सही तरह से उच्चारित नहीं कर पाते वहीं ये नन्ही बच्ची इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुँच गई है। अपनी अद्भुत याददाश्त और प्रतिभा के दम पर जयपुर की प्रिशा आज सुपर टैलेंटेड किड कहलाने लगी है।
4: आज के टेक सेवी जमाने में जहाँ हर एक बच्चा फोन या स्क्रीन्स के पीछे भागता है या फिर उससे ज्यादा अडिक्टेड हो जाता है वहीं जयपुर की एक नन्ही सी बच्ची है जिसने महज 2 साल की उम्र में अपने नाम पे इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है और वो नाम सुपर टैलेंटेड किड के नाम से दर्ज हुआ है। ये नन्ही सी बच्ची है जयपुर की प्रिशा जो संस्कृत में 2 साल की उम्र में 30 से ज्यादा श्लोक बोल सकती है।
3: बेटियां यूं भी दुआओं की तरह मिलती हैं। अपनी खिलखिलाहट मासूमियत और खनकती हंसी से घर के कोनों को भिगोती हुई लेकिन गुड़िया रानी अगर प्रिशा जैसी प्रतिभा लेकर पैदा हो तो हैरानी की बात नहीं कि परिवार उसे ईश्वर का उपहार और आशीर्वाद मानता है। प्रिशा के माता पिता का भी कुछ ऐसा ही मानना है।
5: जब इसे ना हम रोज मॉर्निंग में मॉर्निंग प्रेयर करवाते थे जब ये बोलना स्टार्ट नहीं करी थी तो सुनती थी पर एकदम से जब हमने देखा कि एक दिन ये खुद से बोल रही थी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये खुद से बोल सकती है। हमें लगा कि हाँ धीरे धीरे याद करेगी पर ये खुद से बोलने लग गई थी तब हमें रियलाइज हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है शायद इसमें।
3: सिर्फ 24 महीने की उम्र में प्रिशा को 30 से ज्यादा संस्कृत मंत्र और श्लोक याद है। वो न उनका स्पष्ट उच्चारण करती है बल्कि कई श्लोकों का अर्थ समझने की कोशिश भी करती है। सभी देवी देवताओं को पहचानते हुए उनके बारे में काफी कुछ जानती है। प्रिशा खुद 80 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स पहचान सकती है। सारे अल्फाबेट्स और 100 तक गिनती भी प्रिशा को बखूबी याद है। साथ ही ये बच्ची सूर्य नमस्कार कर सकती है हाथों के बल चलने का अभ्यास करती है और अपने से 3 गुना ऊंची ग्रिल पर भी अपने आप चढ़ जाती है। आज जहाँ आम घरों में छोटे बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते वहाँ प्रिशा का मोबाइल से मानो कोई वास्ता ही नहीं है।
5: इसने कभी फोन नहीं देखा आज तक नहीं कभी नहीं है। मैं अगर सुनाती भी हूँ तो स्पॉटिफाई पे बंद करके तो इसे पता है फोन में सुनना है देखना नहीं है। बताती है आइस खराब हो जाती है फोन देखने से और हमको भी नहीं देखने देती। हम भी चला रहे होते तो मम्मा फोन मत देखो आइस खराब हो जाएगी ऐसे बोलती है।
3: प्रिशा की माँ के मुताबिक उनके घर में सुबह की शुरुआत ही भजन और मंत्रों के साथ होती है। शायद यही माहौल धीरे धीरे उनकी बेटी के व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है और वे ये सब खुशी खुशी सीख रही है। प्रिशा की प्रतिभा और सीखने की ललक वाकई एक मिसाल है। इस नन्ही मुन्नी जीनियस से बच्चे तो क्या बड़े बड़े भी कई सबक सीख सकते हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब रीवा के गूगल बॉय की करते हैं। रीवा का विराज महज 2 साल 11 महीने का है। छोटा सा विराज डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे और मुश्किल अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड्स में आसानी से सुना सकता है और फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर लेता है। इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे, उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया, है ना कमाल।
6: विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं?
7: 10।
6: और परशुराम कौन से अवतार हैं विष्णु भगवान के?
7: छठे अवतार।
6: और परशुराम के पास क्या होता है?
3: ये नन्हा चैंपियन अविराज है, जिसे लोग गूगल बॉय के नाम से जानते हैं। ये मध्य प्रदेश में रीवा की धरती पर जन्मा एक चमकता सितारा है, जिसने अपनी अद्भुत प्रतिभा से दुनिया को चौंका दिया है।
6: रावण कहाँ लेके गया था सीता माता को?
7: अशोक वाटिका।
6: अशोक वाटिका कहाँ है?
7: लंका में।
6: और लंका कौन जला दिया था? लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कैसे, जोर से बोलो, हनुमान जी कैसे लंका जलाए थे?
7: अपनी
6: टेल से।
3: इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे, उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया। ये डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे खतरनाक अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड में फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर सकता है।
6: परशुराम के पास क्या होता है?
7: फरसा।
6: और परशुराम अपने फरसे से किसका टस्क तोड़ दिए थे?
7: गणेश जी का
6: टस्क तोड़ दिए थे। और विष्णु भगवान का पावरफुल वेपन क्या है?
7: सुदर्शन।
3: अविराज अभी 2 साल 11 महीने के हैं। इस उम्र में बच्चे अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पाते, मगर मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाला ये नन्हा उस्ताद बाकी बच्चों से जुदा है। लोग इसे रीवा का गूगल बॉय कहते हैं, क्योंकि इसने अपनी मेमोरी और नॉलेज से सभी को हैरान किया हुआ है। इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है और शब्द सुनते ही दिमाग में फीड हो जाते हैं। इसी अद्भुत प्रतिभा की वजह से अविराज अभी तक कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुका है।
6: इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, जीनियस में है, कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड है, और इंटरनेशनल है, इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऐसे करके कई 7-8 रिकॉर्ड्स मतलब है।
3: अविराज को जानवर ही नहीं, कई पक्षियों के नाम भी याद हैं। वो 42 देशों की राजधानी और 36 देशों के झंडे की पहचान कर सकता है। भारत के कई राज्यों की राजधानी उसे जुबानी याद है, जबकि ग्रहों और सोलर सिस्टम की तो उसे पूरी समझ है। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग और देवी देवताओं के वाहन तक बता सकता है। शास्त्र और पुराण की उसे अच्छी खासी जानकारी है और भगवान विष्णु के सभी अवतार उसे जुबानी याद हैं।
6: हम तीनों लोग, उसके दादाजी, नाना जी और हम लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो वहाँ की कैपिटल से स्टार्ट किया कि छत्तीसगढ़ की क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है, हम हैदराबाद में हैं तो तेलंगाना की क्या है, तो वो कैपिटल्स बताए, पीएम कौन है हमारे, तो वो भी उसको या मतलब ठीक से बता पाया वो। फिर उसके बाद वो 3 स्टेट से हम 52 कंट्रीज की भी बता पाता है, 28 स्टेट्स की भी बता पाता है, यूनियन टेरिटरीज जो हमारी 8 है उनकी भी कैपिटल्स बता पाता है।
3: अब मध्य प्रदेश से उठी ये चमक विदेश तक रोशनी फैला रही है। ये कहानी सिर्फ अविराज की नहीं है, बल्कि नए भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात ग्रेटर नोएडा के लिटिल जीनियस की, जिसके टैलेंट की चमक ने आज उसे स्टार बना दिया है। 4 साल का रुद्र राणा सोलर सिस्टम के हर ग्रह और उपग्रह की जानकारी रखता है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की बदौलत रुद्र का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है।
2: Beautiful rings. This is Jupiter's big planet. This is Mercury's small planet.
3: 4 साल का रुद्र, जिसकी नजरों में छुपा है एक बड़ा आसमान। इस छोटी सी उम्र में वो खेल खेल में बखूबी जानता है ग्रहों और उपग्रहों के नाम। तभी तो रुद्र की प्रतिभा, उसकी ग्रहों को लेकर नॉलेज पेरेंट के साथ ही लोगों को हैरान कर रही है। ग्रेटर नोएडा के नन्हे रुद्र राणा ने सोलर सिस्टम की जानकारी से एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी कम उम्र में रुद्र न केवल ग्रहों के नाम बल्कि उनकी विशेषताएं भी बेहद आसानी से बता रहे हैं। रुद्र अभी ABCD भी ठीक से लिख नहीं पाते, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के रंग, उनके आकार की जानकारी को महज 1 मिनट 5 सेकंड में बता देते हैं, जो एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। रुद्र की माँ बताती हैं कि कुछ महीने पहले ही YouTube किड्स को देखते हुए रुद्र का ग्रहों के बारे में इंटरेस्ट जागा। वो उनसे बहुत सारे सवाल करता था। ABCD से भले ही अभी रुद्र की दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन ग्रहों के साथ मास्टर रुद्र का तालमेल बड़ा दिलचस्प है, जिसे बनाए रखने में रुद्र की माँ का बड़ा रोल रहा। जब बेटा पढ़ने की उम्र तक आया, ऐसे में बच्चे को शुरुआती पढ़ाई से रूबरू करवाने, उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए ही रुद्र की माँ ने जॉब छोड़ी। लेकिन नौकरी का सेक्रीफाइस कुछ ऐसे रंग लाएगा, ये ज्योति ने नहीं सोचा था। वहीं इतनी कम उम्र में अपने बेटे की याददाश्त, समझ और ऐसी असामान्य उपलब्धि देख पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं। जाहिर है रुद्र की उम्र भले ही 4 साल की अभी प्यारी है, लेकिन उसकी काबिलियत लोगों के लिए सबसे न्यारी है। तभी तो रुद्र के पेरेंट ने अपने बेटे की इस असामान्य उपलब्धि को लेकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। मगर वो इस बात का ख्याल जरूर रख रहे हैं कि उनके बेटे पर रिकॉर्ड या किसी और चीज का कोई दबाव ना हो और वो भी सामान्य बच्चों की तरह अपने बचपन को खुलकर जिए।
8: कम उम्र में भले ही बड़ा रिकॉर्ड आया है, लेकिन रुद्र ने अभी, रुद्र के ऊपर उनके पेरेंट्स कम से कम कोई बर्डन नहीं डाल रहे कि अब मेरा बेटा ये भी करेगा वो भी करेगा। सबसे खूबसूरत बात है कि छोटे से बच्चे ने भले अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन उसके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी आगे के लिए नहीं है, मतलब उसका बचपन आगे भी ऐसे ही मजे से कटता रहेगा। बाय बोल दो सबको।
2: बाय।
8: कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
1: अब बात एक नन्ही म्यूजिकल जीनियस की, एक ऐसी टैलेंटेड बच्ची जो सिर्फ 14 साल की है और 44 अलग अलग वाद्य यंत्र बजाना जानती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की पकड़ कमाल की है। ना केवल नियति इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजा लेती है, बल्कि इनसे जुड़े कई कमाल के रिकॉर्ड्स नियति ने अपने नाम किए हैं।

0: संगीत के साथ ये गहरा रिश्ता अब एक विश्व कीर्तिमान के साथ पूरी दुनिया में नियति का नाम रोशन कर रहा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में नियति ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों को पहचान कर नियति ने इतिहास रच दिया। लेकिन नियति का हुनर सिर्फ वाद्य यंत्रों को पहचानने तक सीमित नहीं है। इस छोटी सी उम्र में ही नियति 44 वाद्य यंत्र बजा लेती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की कमाल की पकड़ है। नियति को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां ने हर कदम पर उनका सहयोग किया। संगीत के प्रति नियति के लगाव को उन्होंने बहुत कम उम्र में पहचान लिया था। नियति जब महज 6 महीने की थी तभी मां ने कीबोर्ड और जाइलोफोन से नियति को रूबरू कराया। 4 साल की उम्र में नियति ने काबिलियत हासिल कर ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले भी नियति कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। चौबीस में नियति ने आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो पर शिव तांडव स्त्रोत बजाया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। 2023 में नियति ने 65 सेकंड में 15 वाद्य यंत्रों पर राष्ट्रगान बजाया। इस उपलब्धि पर उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। संगीत के साथ नियति साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, एनिमेशन और रैप क्रिएशन में भी माहिर है। हिंदी और अंग्रेजी में कविता और गीत लिखने वाली नियति को अब तक 17 देशों में सम्मान मिल चुका है। संगीत में रुचि के साथ ही नियति पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही हैं। बचपन में एक छोटे से खिलौने के साथ शुरू हुआ संगीत का ये सफर आज नियति को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा चुका है और उनकी ये कामयाबी आज की नई पीढ़ी के लिए एक नई मिसाल बन गई है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात उन लिटिल मास्टर्स की जिन्होंने सीधे समंदर को चुनौती दी है। 7 साल का ईशांक और 9 साल के नैया ने स्विमिंग के ऐसे जोरदार रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं जो आज बड़े बड़े अनुभवी तैराक उन्हें सलाम कर रहे हैं।
2: माइकल फेल्प्स, केटी लेडर की मार्क स्पिट, पानी की मौजूदगी के चलते अब तक ब्रह्मांड का इकलौता नीला ग्रह है हमारी धरती, और उसी धरती के ये वो 3 तैराक हैं जिन्होंने धरती के पानी पर फतह पाई है। धरती के सबसे सफल स्विमर इन 3 अमेरिकी स्विमर्स में से हर एक ने ओलंपिक में तैराकी के इतने मेडल जीत रखे हैं कि आप अपनी उंगलियों पर गिन नहीं सकते। लेकिन ये गुजरे हुए कल की तस्वीर है। आने वाले कल की तस्वीर कैसी हो सकती है ये आपको हम दिखाते हैं। पानी पर तैरती उम्मीदों की तस्वीर है, वो तस्वीर जो सपना दिखाती है, वो सपना जो अभी तक अधूरा है लेकिन कल पूरा हो सकता है। ओलंपिक में भारत के लिए स्विमिंग का मेडल लाने का सपना, और इस उम्मीद को पंख लगा रखे हैं इन दोनों टैलेंटेड यंग स्विमर्स ने। इनमें से एक है 9 साल की अनैया जगदीश कुंती कारकर और दूसरे 7 साल के मास्टर ईशांक। इन दोनों नन्हे तैराकों ने हाल ही में स्विमिंग के ऐसे जोरदार रिकॉर्ड बनाए हैं कि हर कोई हैरान है। रांची के रहने वाले 7 साल के मास्टर ईशांक ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत बड़े बड़े तैराक नहीं कर पाते। इस बच्चे ने लहरों से लड़ते हुए 29 किलोमीटर का सफर 9 घंटे 50 मिनट में तय करके इतिहास रच दिया है। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि समंदर के जिस रास्ते को ईशांक ने तय किया है वो समंदर में सबसे मुश्किल रास्तों में एक माना जाता है। इस कामयाबी ने ईशांक को दुनिया का सबसे कम उम्र का 5 स्ट्रेट तैराक बना दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि हिम्मत, अनुशासन और जुनून का एक लंबा सफर है। समंदर की लहरों से टकराने का जुनून ईशांक के लिए नया नहीं है। ईशांक ने बहुत छोटी उम्र से ही पानी से दोस्ती कर ली थी। रोजाना घंटों की प्रैक्टिस, कड़ी ट्रेनिंग और मानसिक मजबूती, इन सब ने मिलकर ईशांक को आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तैराकों में से एक बना दिया है। समंदर में जिस रास्ते को ईशांक ने नापा है वो रास्ता दुश्वारियों से भरा है। यहाँ समंदर की लहरें तैराक का कड़ा इम्तिहान लेती हैं, तेज धाराएं उसका रास्ता रोकती हैं और मौसम उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेता है। ऐसे में इन सब का सामना करने के लिए केवल शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है जो ईशांक में साफ दिखाई देती है। ईशान की इस उपलब्धि की अहमियत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पार्क स्ट्रीट वो जगह है जहां पहले तमाम अनुभवी तैराक भी हार मान चुके हैं। ऐसे में 7 साल के बच्चे का इसे पार करना अपने आप में असाधारण है। कुछ ऐसा ही असाधारण करके दिखाया है मुंबई की रहने वाली अनैया जगदीश कुंती कारकर ने। खेलने कूदने की उम्र में इस 9 साल की बच्ची ने स्विमिंग में जोरदार रिकॉर्ड कायम किया है। मुंबई की अनैया ने समंदर में 17 किलोमीटर की दूरी तैर कर पार की। आपको बता दें कि समंदर के रास्ते अटल सेतु उल्वा से गेटवे ऑफ इंडिया की दूरी 17 किलोमीटर है जिसे अनैया ने 4 घंटे में पार कर इतिहास रच दिया। 1 मई की रात करीब 2 बजे अनैया ने अटल सेतु के पास उल्वे से तैरना शुरू किया और सुबह करीब 6 बजे वो गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गई, यानी संकल्प के जरिए अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। ईशांक और अनैया ने ये साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, सही जज्बा, कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन हो तो छोटी उम्र में भी बड़े बड़ों के रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं। रांची से आकाश कुमार और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: दिल्ली की सड़कों पर अब हाइड्रोजन की जादुई शक्ति दिखेगी। इससे न सिर्फ पेट्रोल की बचत होगी बल्कि राजधानी की हवा भी शुद्ध रहेगी। दिल्ली के VVIP सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली शटल बस सर्विस शुरू हो गई है। अभी फिलहाल 2 हाइड्रोजन बसेस चलाई जा रही हैं।
1: टुडे इज द डे ऑफ द हाइड्रोजन बसेस। दे एंजॉय द राइड एंड यू नो लेट अस कम टुगेदर टू सेव फ्यूल।
0: इस बस सेवा से केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी ताकि सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों की दफ्तरों तक आवाजाही आसान हो सके। इससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता भी कम होगी। ये बसें सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेंगी। हर 30 मिनट में 1 बस उपलब्ध होगी। सबसे बड़ी बात, इन बसेस में GPS ट्रैकिंग और CCTV सिस्टम भी लगाए गए हैं और किराया 10 और 15 रुपए रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: देव की जयंती पर क्या होगा पूजा विधान? शनि देव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान? और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब केवल अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी कर दी जाती है कि वो असलियत से कोसों दूर लगती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर आगे शेयर करने लगते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज फैक्ट चेक में जिन 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे उसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में नई सरकार के गठन के बावजूद TMC के लोगों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। बीच सड़क पर एक TMC कार्यकर्ता पर हमला किया गया, सच्चाई क्या है, आगे करेंगे पड़ताल। दूसरी खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में BJP की सरकार बनते ही मुस्लिम ईसाइयों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। इस वायरल दावे की सच्चाई क्या है, करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
5: चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक का सफर और सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर एक युवक दूसरे युवक को बुरी तरह से पीट रहा है। वहां पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं लेकिन कोई भी इसे रोकने की कोशिश नहीं करता। वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में नई सरकार के गठन के बावजूद TMC के लोगों पर हमला रुक नहीं रहा है, हर दिन उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।

0: बंगाल में भगवा लहराने के साथ ही शिवेंदु सरकार फुल एक्शन में है। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार एक के बाद एक कड़े और कारगर फैसले ले रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को दूसरे युवक की पिटाई करते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग राज्य सरकार के नियत पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद भी राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला रुक नहीं रहा है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि सड़कों पर टीएमसी पर खुलेआम हमले हो रहे हैं, आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक युवक को दूसरे युवक की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। और इस वीडियो के जरिए लोग बंगाल की शुभेंदु सरकार की नियत पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद भी राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला रुक नहीं रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये मराठी में लगा। आप भी सुनिए इन आवाजों को। वायरल वीडियो बंगाल का होता है तो यहाँ पर बंगला वैसे सुनाई देती, लेकिन यहाँ पर बंगला मिश्रित हिंदी प्योर मराठी सुनाई दे रही है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने एक बार फिर से वायरल वीडियो के फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में एक स्कूटी नजर आई और इस स्कूटी पर MH नंबर प्लेट है जो कि महाराष्ट्र का है। अगर वीडियो बंगाल का होता तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बंगाल नंबर प्लेट स्कूटी नजर आती, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट और बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन वहां पर भी वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए बंगाल में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही है। देखिए सच और झूठ क्या है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर मिला। इसे 15 अप्रैल 2026 को पोस्ट करते हुए लिखा गया था, मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मोहम्मद जैद शेख पर ऑटो रिक्शा से आए 3-4 लोगों ने हमला किया। सूत्र के अनुसार यह हमला सुपारी देकर करवाया गया है। इस मामले में हुजैफा नाम के व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही हमलावर भेजे। ये घटना वर्सोवा के पास अंधेरी वेस्ट में हुई बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर और जांच की जा रही है। ऐसे मामले शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। सर्च के दौरान एक फेसबुक यूजर के अकाउंट पर वायरल वीडियो देखने को मिला। यह वीडियो 11 अप्रैल 2026 को साझा किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक अंधेरी वेस्ट में शख्स पर हमला, सुपारी देकर हमले का आरोप, अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में एक व्यक्ति पर हमला किए जाने की घटना सामने आई। इंस्टाग्राम यूजर ने भी 10 अप्रैल 2026 को इस वीडियो को शेयर करते हुए घटना को 8 अप्रैल की रात का बताया था। जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार है। महाराष्ट्र पुलिस की वेबसाइट पर इस मामले की FIR अपलोड है। वर्सोवा थाने में दर्ज केस के मुताबिक घटना 9 अप्रैल 2026 की रात की है। साफ है वायरल वीडियो मुंबई का है। अप्रैल 2026 की शुरुआत में अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया था। इस मामले की वीडियो को बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा का मामला बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सूरजुद्दीन मंडल के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों और ईसाइयों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जब वायरल वीडियो का सच और झूठ की पड़ताल की गई तो क्या कुछ सामने आया, देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: की सरकार है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा है कि शासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार का रोड मैप इस सरकार की प्राथमिकता होगी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो बेहद तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में सुरक्षा बल और पुलिस को लोगों की नागरिकता की जांच करते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद सुरक्षा बल और पुलिस के जवान मुस्लिमों और ईसाइयों के घर जाकर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटा रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सीआरपीएफ और पुलिस पश्चिम बंगाल में हर मुस्लिम और ईसाई के घर जाकर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटा रही है। ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है जिसका सामना भारत के अल्पसंख्यकों को रोज करना पड़ता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल बंगाल चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में कई वीडियोस को चुनाव से जोड़कर पेश किया जा रहा है। अब वहां पर ऐतिहासिक जीत के साथ ममता बनर्जी का वर्चस्व खत्म कर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो का सिलसिला अभी भी जारी है। और इस बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है जिससे दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां के मुसलमानों और ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटाया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें शक हुआ। हमारी नजर वीडियो में नजर आ रहे पुलिस अधिकारी के ड्रेस के कलर पर गई। ये खाकी रंग है, जबकि बंगाल पुलिस की वर्दी का रंग सफेद है, जो कि भारत के दूसरे राज्यों की खाकी वर्दी से अलग है। उसके बाद नागरिकता जांचने का एक पूरा प्रोसेस होता है, ऐसे में हमें वीडियो के दावे पर भी शक हुआ। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने पता लगाने की कोशिश की कि क्या नई सरकार के गठन के बाद पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ हो भी रहा है, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा होता तो फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट पर सुर्खियां बनी होती, लेकिन कहीं कुछ हमें मिला नहीं। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो वायरल हो रहा वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। देखिए सच और झूठ क्या है।
2: हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो और पोस्ट वायरल हुए हैं। फैक्ट चेक टीम ने लगातार इन वीडियोस और पोस्ट का फैक्ट चेक किया है। इस दौरान वायरल दावे गलत साबित हुए हैं और अब इसी कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। दावे की सच्चाई का पता लगाने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें इंटरनेट पर खंगाला। इसके जरिए हम एक वेबसाइट पर पहुंचे, जहां 1 जनवरी 2026 को प्रकाशित खबर में वायरल हो रहे वीडियो के कुछ हिस्से देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कौशाम्बी थाने के प्रभारी अजय शर्मा एक संदिग्ध शख्स की पीठ पर मोबाइल रखकर उसकी तथाकथित नागरिकता जांच करते दिख रहे हैं। आमतौर पर नागरिकता की जांच के लिए बायोमेट्रिक, पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। वायरल वीडियो 23 दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो एक चैनल के एक्स हैंडल पर भी देखने को मिला। यहां इसे 1 जनवरी 2026 को अपलोड किया गया था। एक वेबसाइट पर 2 जनवरी 2026 को छपी रिपोर्ट के मुताबिक कौशाम्बी थाना प्रभारी का वीडियो वायरल होने के बाद इंदिरापुरम के सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने उन्हें चेतावनी जारी की है। उन्होंने आगे से इस तरह की हरकत नहीं करने की बात भी कही। वीडियो कौशाम्बी में अस्थायी बस्ती और झुग्गी में रहने वाले निवासियों से पूछताछ और सत्यापन की प्रक्रिया का था। सर्च के दौरान एक और रिपोर्ट मिली। 2 जनवरी 2026 को छपी खबर में लिखा था कि वीडियो वायरल होने के बाद कौशाम्बी थाने के प्रभारी अजय शर्मा ने इसे एक मजाक बताया था। साफ है, वायरल हो रहे वीडियो के जरिए गलत दावा किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई नागरिकता जांच का वीडियो है। पाकिस्तानी यूजर ने प्रोपेगेंडा के लिए इसे बंगाल में मुसलमानों और ईसाइयों की नागरिकता की जांच का बताकर शेयर किया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: प्रवक्ता फैक्ट चेक के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
5: मैं आपके बात क्या मांग, बताइए आपकी बात में क्या
6: हालत खराब है, मैं नहीं रो पा रही हूँ, प्लीज बस वापिस ना लेके जाना, इतना मार जितना मारे उतना मार लीजिए, लेकिन वापिस नहीं लेके जाना।
7: सोशल मीडिया पर बच्चों के मासूम वीडियो अक्सर लोगों का दिन बना देते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची क्लासरूम में अपनी टीचर के सामने ऐसे ऐसे बहाने बनाती नजर आ रही है कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं।
5: आप क्लास में अब्सेंट क्यों होती हो?
6: क्लास में स्पेंड
5: नहीं, अब्सेंट क्यों होती हो?
6: अच्छा, बताती हूँ।
5: हाँ बिल्कुल बताइए, रीजन बताइए मुझे आप।
7: वीडियो में बच्ची कभी रोती है, कभी अपनी बात समझने की कोशिश करती है और फिर अचानक टीचर से कहती है, मैम हंस के दिखा दीजिए फिर मैं खुश हो जाऊंगी।
5: अच्छा मैं आपको हंस के दिखा दूं? मैं स्टॉप लॉगिंग, मैं आपको हंस के क्यों दिखाऊं?
6: इसलिए फिर मेरा रोना बंद हो जाता है।
5: तो आप तो मेरे हंसने वाला वर्क कर ही नहीं रही हो, आप तो अपना टेस्ट कहाँ दे रही हो मुझे? आपको यही नहीं पता इन द स्काई में आपको क्या क्या दिखते हैं?
7: यही मासूमियत अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रही है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। लोग बच्ची की क्यूटनेस और उसके एक्सप्रेशंस देखकर मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि ऐसी हरकत देखकर बच्चों पर गुस्सा करना भी मुश्किल हो जाता है।
5: डे किससे हॉट होता है? गर्मी किससे होती है? हॉट किससे? हॉट कैसे आता है? अभी स्काई में क्या ब्राइट हो रहा है?
6: अभी
5: स्काई में क्या ब्राइटनेस है? ये क्या है? मार दूंगी प्रिशा,
6: मैं जाने दो, कल पूरा याद करके आऊंगी मैं।
5: क्या जाने दूं मैं आपको? है
6: मुझे जाने दीजिए प्लीज।
5: क्यों
6: पसंद नहीं मुझे ऐसे आप डांटे कुछ करें, पता भी मैं बहुत मुझे डांटती आपसे भी।
7: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने दिल जीत लिया है। वीडियो में एक बच्चा नजर आ रहा है जिसने गांधी जी का लुक लिया हुआ है और एक जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा है। तभी वहां पर एक बच्ची आती है, वो जो खुद खा रही थी उसी में से एक टुकड़ा उस बच्चे को भी खाने के लिए ऑफर करती है। दोनों बच्चों की ये मासूमियत और बच्ची का उस बच्चे का ऐसा ख्याल रखना दिल जीत लेता है और इसी कारण वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मगर ये जानकारी नहीं मिल पाई कि वीडियो कब और कहां का है।

जहां एक तरफ देश में बोर्ड परीक्षा के नतीजों के बाद बच्चों पर अच्छे मार्क्स लाने का भारी दबाव होता है, वहीं मुंबई के एक परिवार ने अपने बेटे मोहम्मद जैद के 55% मार्क्स आने पर जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। जब जैद का रिजल्ट आया तो पता चला कि उसने 55% अंक हासिल किए थे। आमतौर पर ऐसे नतीजों के बाद घरों में या तो सन्नाटा पसर जाता है या फिर पड़ोसी के बच्चों और दोस्तों से तुलना शुरू हो जाती है, लेकिन जैद के घर का सीन बिल्कुल अलग था। परिवार ने जैद की उपलब्धि को छोटा नहीं समझा और उसकी मार्कशीट के डिजाइन वाला एक खास केक मंगवा कर इसे सेलिब्रेट किया। इस स्पेशल केक पर जैद की पूरी डिटेल थी, नाम, रोल नंबर और हर

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: बरकान फिल्म फेस्टिवल की जहां की तस्वीरें लगातार सामने आ रही और सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं, ऐसे में इस ग्लोबल मंच पर विदेशी सेलेब्स के साथ हिंदुस्तान का भी जलवा देखने को मिल रहा है। कान फिल्म फेस्टिवल में इन सितारों ने अपने सिनेमा संस्कृति और यूनिक स्टाइल से न केवल भारतीय पहचान को खास अंदाज में पेश किया बल्कि अपने फैशन सेंस से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं।
3: कैन के रेड कार्पेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर नहीं, भारतीय सिनेमा संस्कृति और स्टाइल का शानदार संगम भी देखने को मिला। जहां एक ओर सितारों ने अपने फैशन से दुनिया का ध्यान खींचा तो वहीं कुछ चेहरों ने अपनी मौजूदगी से भारतीय पहचान को भी खास अंदाज में पेश किया। तारा के बाद अब कैन के मंच पर मलयालम सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन ने भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। फिल्म लोका से देश भर में पहचान बनाने वाली कल्याणी ने कैन 2026 में अपने पहले ही अपीयरेंस से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फ्रांस के खूबसूरत शहर में सजे इस भव्य फिल्म महोत्सव में कल्याणी का अंदाज बेहद शालीन, क्लासी और इंटरनेशनल फैशन से भरपूर नजर आया। जैसे ही उनकी तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी सादगी और एलिगेंस की खूब तारीफ शुरू कर दी। और अब आपको दिखाते हैं कैन फिल्म फेस्टिवल में सनातन की झलक, जब रेड कार्पेट पर हाथ में गीता और गले में तुलसी माला लिए पहुंची ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगर आरती खेत्रपाल। कैन जैसे ग्लोबल मंच पर आरती ने सिर्फ फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था को भी पूरे गर्व के साथ पेश किया। गोल्डन शेड के कस्टम मेड लहंगे में नजर आई आरती के आउटफिट पर वृंदावन की खूबसूरत झलक देखने को मिली। मंदिरों, आध्यात्मिक स्थलों और कृष्ण भक्ति से सजे इस लहंगे ने रेड कार्पेट पर हर किसी का ध्यान खींच लिया। देसी अंदाज और आध्यात्मिक संदेश का ये अनोखा मेल लोगों को काफी यूनिक लगा। मलयालम भट्ट तो लगातार अपने फैशन स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियों में बनी ही हुई हैं। रेड कार्पेट से लेकर ग्लैमरस फोटोशूट तक आलिया का हर अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाल ही में सामने आए उनके नए लुक में वो मरून ऑफ शोल्डर कॉर्सेट गाउन में बेहद रॉयल और स्टर्निंग दिखी। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर इवेंट की कई तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, प्यारे दोस्तों अब अलविदा कहने का समय आ गया है, यानी कैन 2026 को आलिया ने स्टाइलिश अंदाज में गुड बाय कह दिया। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ फैशन ही नहीं अपने आत्मविश्वास और स्क्रीन प्रेजेंस से भी फैंस का दिल जीत लिया। और अब आपको लेकर चलते हैं कैन फिल्म फेस्टिवल की सबसे हटके और मजेदार पार्टी में, जहां ग्लैमर के बीच नजर आया फैशन का एक अलग ही रंग। जी हाँ, कैन में हुई चर्चित पजामा पार्टी में कई सितारे स्टाइलिश पजामों, ड्रेसिंग गाउन और नाइटवेयर में दिखे। इस पार्टी का खास ड्रेस कोड ही पजामा था। दिलचस्प बात ये रही कि इस एक्सक्लूसिव पार्टी में शामिल होने के लिए लोगों को लॉटरी सिस्टम से गुजरना पड़ा। इस साल सिर्फ 300 टिकटों के लिए करीब 1800 लोगों ने आवेदन किया था। यानी कैन में अब रेड कार्पेट के साथ साथ पजामा फैशन भी चर्चा का हिस्सा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कान फिल्म फेस्टिवल में इंडियन रीजनल फिल्मों की धूम भी मची हुई है। ऐसे में पंजाबी सिनेमा ने भी इस ग्लोबल मंच में धमाकेदार एंट्री की है, जहां एमी विर्क और रूपी गिल की फिल्म चढ़दी कला का विशेष प्रीमियर आकर्षण का केंद्र बना। और इस दौरान एक्ट्रेस रूपी गिल ने देसी पंजाबन का लुक लेते हुए कान फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू कर खूब सुर्खियां बटोरी। बस ये पहली बार है जब ग्लोबल पंजाबी फिल्म को इतना बड़ा सम्मान मिला है।
4: फ्रेंच रिवेरा की चमक, कान का ग्लैमरस रेड कार्पेट, सोशल मीडिया

0: पर इन दिनों जिस देसी बाला की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं, वो है पंजाबी मॉडल और अभिनेत्री रूपी गिल। व्हाइट आइवरी सूट, डायमंड और एमरल्ड ज्वेलरी में रूपी का अंदाज इतना एलिगेंट दिखा कि हर कोई बस उन्हें देखता रह गया। कान 2026 में रूपी गिल ने अपना डेब्यू किया। रुपिंदर कौर गिल यानी रूपी गिल ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक वीडियो यारियां च फिक से की थी। इसके बाद साल 2018 में फिल्म अश्के से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। फिल्म में नूर के किरदार में उनकी दमदार एक्टिंग को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। यही वजह रही कि उन्हें पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। अब रूपी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को पूरी तरह से तैयार हैं। 29 मई को एमी वर्क के साथ उनकी नई फिल्म चढ़दी कला रिलीज होने जा रही है। दिलजीत दोसांझ से लेकर अमरिंदर गिल, प्रेम ढिल्लो और अखिल जैसे कई बड़े पंजाबी सितारों के म्यूजिक वीडियोस ने नजर आ चुकी रूपी गिल अब कान के मंच पर पंजाब का नाम रोशन कर रही है। और कहना गलत नहीं होगा कि इस बार कान की रेड कार्पेट पर सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि पंजाबी संस्कृति की चमक भी खूब दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: देव की जयंती पर क्या होगा पूजा विधान? शनि देव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान? और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: प्रदूषण घटाने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा फैसला, बिना पीयूसी वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल, 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन, न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत, नेफेड के जरिए 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी, किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाएगा सीबीआई का नया पोर्टल एआई फीचर स्लैश नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम, अब है लॉन्च, नकली दस्तावेजों को पकड़ना आसान। भीषण गर्मी से बेहाल, लोगों को जल्दी मिलेगी राहत, मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मॉनसून, समय से पहले दस्तक दे रहा है मॉनसून। बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता, अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी, दसरी प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई, रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देश। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में दिखा आस्था और विश्वास का संगम, भगवान कृष्ण के पावन धाम में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान, दान पेटियों के पहले चरण में 11 करोड़ से ज्यादा राशि की गणना।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण घटाने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा फैसला, बिना पीयूसी वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल, 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन, न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत, नेफेड के जरिए 12 रुपए

पैसे प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी, किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाएगा सीबीआई का नया पोर्टल एआई फीचर्स लेस नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम, अब है लॉन्च, नकली दस्तावेजों को पकड़ना आसान। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्दी मिलेगी राहत, मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मॉनसून, समय से पहले दस्तक दे रहा है मॉनसून। बॉलीवुड एक्टर्स को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता, अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी, दसरी प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई, रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देश। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में दिखा आस्था और विश्वास का संगम, भगवान कृष्ण के पावन धाम में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान, दान पेटियों के पहले चरण में 11 करोड़ से ज्यादा राशि की गणना।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मशहूर शायर निदा फाजिल ने कभी लिखा था, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने को चार किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, ये हमारे जैसे नहीं है, बल्कि ये इतने सुपर टैलेंटेड और कमाल के फनकार हैं कि ये हमारे जैसे नहीं, बल्कि आप और हम इनके जैसे होना चाहेंगे। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा साउंड करता है, क्यों? चलिए आपको दिखा देते हैं।

0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उम्र है 2, संस्कृत जोरदार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार स्पेस एक्सपर्ट हैं, उम्र है 4।
1: इसा मतलब इसे स्मॉल प्लैनेट, इसे सैटर्न एफ बिट फोर रिंग्स, इसे से पता था सो बिग प्लैनेट।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 2 साल के गूगल नॉलेज शानदार।
2: परशुराम कौन से अवतार है विष्णु भगवान के?
3: छठे अवतार।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 7 की उम्र में पार्क स्ट्रीट तैर कर किया।

ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 14 की उम्र, 44 वाद्यों की फनकार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 9 की उम्र में स्विमर जोरदार।

चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर की रहने वाली 2 साल की जीनियस के साथ। 2 साल के बच्चे ठीक से बोलना तक नहीं जानते हैं, लेकिन प्रशा उन बच्चों में से नहीं है। 2 साल की प्रशा को 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र आते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स 1 से लेकर 100 तक गिनती, सूर्य नमस्कार और भी ना जाने क्या क्या जानते हैं और क्या क्या करती है ये छोटी सी गुड़िया।

0: sunau. जोर से बोला ऐसे करके कंधे पे ऐसे ऐसे ही रखे हो अच्छे से ओम नमः शिवाय आईज क्लोज करके
1: ओम नमः शिवाय ओम के आकम यावे छो गदीम पट्टे वाले कोई बाद में बनाया मैं तुम क्या माता
2: जो ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी वेदों की वही भाषा पुराणों की वही बानी जयपुर में मौजूद इस घर के आंगन में गूंजती
1: हम बोल बुआ जाए तो छोटो बजे हम पयो देवते देव होया पचोलिया
2: मानो माँ सरस्वती बाल रूप में उतर आई और खेल खेल में अपनी तोतली जुबान में हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता संस्कृति और संस्कारों की कहानियाँ सुना रही हूँ
1: यारे भी सबूते चू छत्ती वो पैन छत्ती ता नमतते नमतते मनमो नमा
2: दो साल की उम्र जब बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते तब तुतलाती जुबान में श्लोक और मंत्रों का ऐसा उच्चारण कि सुनने वाला सुनता रह जाए जयपुर की रहने वाली दो साल की प्रिशा आज 30 से ज्यादा मंत्रों और श्लोकों का स्पष्ट उच्चारण कर लेती हैं। जहाँ बड़े बड़े लोग भी संस्कृत श्लोकों और मंत्रों को सही तरह से उच्चारित नहीं कर पाते वहीं ये नन्ही बच्ची इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुँच गई है अपनी अद्भुत याददाश्त और प्रतिभा के दम पर जयपुर की प्रिशा आज सुपर टैलेंटेड किड कहलाने लगी है
3: आज के टेक सैवी जमाने में जहाँ हर एक बच्चा फोन या स्क्रीन्स के पीछे भागता है या फिर उससे ज्यादा अडिक्टेड हो जाता है वहीं जयपुर की एक नन्ही सी बच्ची है जिसने महज 2 साल की उम्र में अपने नाम पे इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है और वो नाम सुपर टैलेंटेड किड के नाम से दर्ज हुआ है ये नन्ही सी बच्ची है जयपुर की प्रिशा जो संस्कृत में 2 साल की उम्र में 30 से ज्यादा श्लोक बोल सकती है
2: बेटियां यूं भी दुआओं की तरह मिलती हैं अपनी खिलखिलाहट मासूमियत और खनकती हंसी से घर के कोनों को भिगोती हुई लेकिन गुड़िया रानी अगर प्रिशा जैसी प्रतिभा लेकर पैदा हो तो हैरानी की बात नहीं कि परिवार उसे ईश्वर का उपहार और आशीर्वाद मानता है प्रिशा के माता पिता का भी कुछ ऐसा ही मानना है
4: जब इसे ना हम रोज मॉर्निंग में मॉर्निंग प्रेयर करवाते थे जब ये बोलना स्टार्ट नहीं करी थी तो सुनती थी पर एकदम से जब हमने देखा कि एक दिन ये खुद से बोल रही थी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये खुद से बोल सकती है हमें लगा कि हाँ धीरे धीरे याद करेगी पर ये खुद से बोलने लग गई थी तब हमें रियलाइज हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है शायद इसमें
2: सिर्फ 24 महीने की उम्र में प्रिशा को 30 से ज्यादा संस्कृत मंत्र और श्लोक याद है वो न उनका स्पष्ट उच्चारण करती है बल्कि कई श्लोकों का अर्थ समझने की कोशिश भी करती है सभी देवी देवताओं को पहचानते हुए उनके बारे में काफी कुछ जानती है प्रिशा खुद 80 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स पहचान सकती है सारे अल्फाबेट्स और 100 तक गिनती भी प्रिशा को बखूबी याद है साथ ही ये बच्ची सूर्य नमस्कार कर सकती है हाथों के बल चलने का अभ्यास करती है और अपने से 3 गुना ऊंची ग्रिल पर भी अपने आप चढ़ जाती है आज यहाँ आम घरों में छोटे बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते वहाँ प्रिशा का मोबाइल से मानो कोई वास्ता ही नहीं है
4: इसने कभी फोन नहीं देखा आज तक नहीं कभी नहीं मैं अगर सुनाती भी हूँ तो स्पॉटिफाई पे बंद करके तो इसे पता है फोन में सुनना है देखना नहीं है बताती है आइस खराब हो जाती है फोन देखने से और हमको भी नहीं देखने देती हम भी चला रहे होते तो मम्मा फोन मत देखो आइस खराब हो जाएगी ऐसे बोलती है
2: प्रिशा की माँ के मुताबिक उनके घर में सुबह की शुरुआत ही भजन और मंत्रों के साथ होती है शायद यही माहौल धीरे धीरे उनकी बेटी के व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है और वे ये सब खुशी खुशी सीख रही है प्रिशा की प्रतिभा और सीखने की ललक वाकई एक मिसाल है इस नन्ही मुन्नी जीनियस से बच्चे तो क्या बड़े बड़े भी कई सबक सीख सकते हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और चलिए अब रीवा के गूगल बॉय की करते हैं। रीवा का विराज महज 2 साल 11 महीने का है। छोटा सा विराज डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे और मुश्किल अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड्स में आसानी से सुना सकता है और फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर लेता है। इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे, उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया, है ना कमाल।
6: विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं?
7: 10।
6: और परशुराम कौन से अवतार हैं विष्णु भगवान के?
7: छठे अवतार।
6: और परशुराम के पास क्या होता है?
2: ये नन्हा चैंपियन अविराज है, जिसे लोग गूगल बॉय के नाम से जानते हैं। ये मध्य प्रदेश में रीवा की धरती पर जन्मा एक चमकता सितारा है, जिसने अपनी अद्भुत प्रतिभा से दुनिया को चौंका दिया है।
6: रावण कहाँ लेके गया था सीता माता को?
7: अशोक वाटिका।
6: अशोक वाटिका कहाँ है?
7: लंका में।
6: और लंका कौन जला दिया था? लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कैसे, जोर से बोलो, हनुमान जी कैसे लंका जलाए थे?
7: अपनी
6: टेल से।
2: इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे, उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया।
7: टाइगर।
2: ये डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे खतरनाक अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड में फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर सकता है।
6: परशुराम के पास क्या होता है?
7: फरसा।
6: और परशुराम अपने फरसे से किसका टस्क तोड़ दिए थे?
7: गणेश जी का
6: टस्क तोड़ दिए थे। और विष्णु भगवान का पावरफुल वेपन क्या है?
7: सुदर्शन।
2: अविराज अभी 2 साल 11 महीने के हैं। इस उम्र में बच्चे अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पाते, मगर मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाला ये नन्हा उस्ताद बाकी बच्चों से जुदा है। लोग इसे रीवा का गूगल बॉय कहते हैं, क्योंकि इसने अपनी मेमोरी और नॉलेज से सभी को हैरान किया हुआ है। इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है और शब्द सुनते ही दिमाग में फीड हो जाते हैं। इसी अद्भुत प्रतिभा की वजह से अविराज अभी तक कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुका है।
6: इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, जीनियस में है, कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड है, और इंटरनेशनल है, इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऐसे करके कई 7-8 रिकॉर्ड्स मतलब है।
2: अविराज को जानवर ही नहीं, कई पक्षियों के नाम भी याद हैं। वो 42 देशों की राजधानी और 36 देशों के झंडे की पहचान कर सकता है। भारत के कई राज्यों की राजधानी उसे जुबानी याद है, जबकि ग्रहों और सोलर सिस्टम की तो उसे पूरी समझ है। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग और देवी देवताओं के वाहन तक बता सकता है। शास्त्र और पुराण की उसे अच्छी खासी जानकारी है और भगवान विष्णु के सभी अवतार उसे जुबानी याद हैं।
6: हम तीनों लोग, उसके दादाजी, नाना जी और हम लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो वहाँ की कैपिटल से स्टार्ट किया कि छत्तीसगढ़ की क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है, हम हैदराबाद में हैं तो तेलंगाना की क्या है, तो वो कैपिटल्स बताए। पीएम कौन है हमारे, तो वो भी उसको या मतलब ठीक से बता पाया वो। फिर उसके बाद वो 3 स्टेट से हम 52 कंट्रीज की भी बता पाता है, 28 स्टेट्स की भी बता पाता है, यूनियन टेरिटरीज जो हमारी 8 है उनकी भी कैपिटल्स बता

0: पाता है।
1: अब मध्य प्रदेश से उठी ये चमक विदेश तक रोशनी फैला रही है। ये कहानी सिर्फ अभिराज की नहीं है बल्कि नए भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अब बात ग्रेटर नोएडा के लिटिल जीनियस की, जिसके टैलेंट की चमक ने आज उसे स्टार बना दिया है। 4 साल का रुद्र राणा सोलर सिस्टम के हर ग्रह और उपग्रह की जानकारी रखता है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की बदौलत रुद्र का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है।
3: Beautiful rings. This is Jupiter's big planet. This is Mercury's small planet.
1: 4 साल का रुद्र, जिसकी नजरों में छुपा है एक बड़ा आसमान। इस छोटी सी उम्र में वो खेल खेल में बखूबी जानता है ग्रहों और उपग्रहों के नाम। तभी तो रुद्र की प्रतिभा उसकी ग्रहों को लेकर नॉलेज पेरेंट के साथ ही लोगों को हैरान कर रही है। ग्रेटर नोएडा के नन्हे रुद्र राणा ने सोलर सिस्टम की जानकारी से एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी कम उम्र में रुद्र न केवल ग्रहों के नाम बल्कि उनकी विशेषताएं भी बेहद आसानी से बता रहे हैं। रुद्र अभी ABCD भी ठीक से लिख नहीं पाते, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के रंग, उनके आकार की जानकारी को महज 1 मिनट 5 सेकंड में बता देते हैं, जो एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। रुद्र की माँ बताती हैं कि कुछ महीने पहले ही YouTube किड्स को देखते हुए रुद्र का ग्रहों के बारे में इंटरेस्ट जागा। वो उनसे बहुत सारे सवाल करता था। ABCD से भले ही अभी रुद्र की दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन ग्रहों के साथ मास्टर रुद्र का तालमेल बड़ा दिलचस्प है, जिसे बनाए रखने में रुद्र की माँ का बड़ा रोल रहा। जब बेटा पढ़ने की उम्र तक आया, ऐसे में बच्चे को शुरुआती पढ़ाई से रूबरू करवाने, उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए ही रुद्र की माँ ने जॉब छोड़ी। लेकिन नौकरी का सेक्रीफाइस कुछ ऐसे रंग लाएगा, ये ज्योति ने नहीं सोचा था। वहीं इतनी कम उम्र में अपने बेटे की याददाश्त, समझ और ऐसी असामान्य उपलब्धि देख पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं। जाहिर है रुद्र की उम्र भले ही 4 साल की अभी प्यारी है, लेकिन उसकी काबिलियत लोगों के लिए सबसे न्यारी है। तभी तो रुद्र के पेरेंट ने अपने बेटे की इस असामान्य उपलब्धि को लेकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। मगर वो इस बात का ख्याल जरूर रख रहे हैं कि उनके बेटे पर रिकॉर्ड या किसी और चीज का कोई दबाव ना हो और वो भी सामान्य बच्चों की तरह अपने बचपन को खुलकर जिए।
4: कम उम्र में भले ही बड़ा रिकॉर्ड आया है, लेकिन रुद्र ने अभी, रुद्र के ऊपर उनके पेरेंट्स कम से कम कोई बर्डन नहीं डाले कि अब मेरा बेटा ये भी करेगा वो भी करेगा। जो फिलहाल उसके हिस्से में अचीवमेंट आई है, फिलहाल घर वाले उसी को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। और यही सबसे खूबसूरत बात है कि छोटे से बच्चे ने भले अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन उसके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी आगे के लिए नहीं है। मतलब उसका बचपन आगे भी ऐसे ही मजे से कटता रहेगा। बाय बोल दो सबको।
3: बाय।
4: कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
2: अब बात एक नन्ही म्यूजिकल जीनियस की, एक ऐसी टैलेंटेड बच्ची जो सिर्फ 14 साल की है और 44 अलग अलग वाद्य यंत्र बजाना जानती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की पकड़ कमाल की है। ना केवल नियति इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजा लेती है, बल्कि इनसे जुड़े कई कमाल के रिकॉर्ड्स नियति ने अपने नाम किए हैं।

संगीत के साथ ये गहरा रिश्ता अब एक विश्व कीर्तिमान के साथ पूरी दुनिया में नियति का नाम रोशन कर रहा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में नियति ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया।

0: महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों को पहचान कर नियति ने इतिहास रच दिया। लेकिन नियति का हुनर सिर्फ वाद्य यंत्रों को पहचानने तक सीमित नहीं है। इस छोटी सी उम्र में ही नियति 44 वाद्य यंत्र बजा लेती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की कमाल की पकड़ है। नियति को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां ने हर कदम पर उनका सहयोग किया। संगीत के प्रति नियति के लगाव को उन्होंने बहुत कम उम्र में पहचान लिया था। नियति जब महज 6 महीने की थी तभी मां ने कीबोर्ड और जाइलोफोन से नियति को रूबरू कराया। 4 साल की उम्र में नियति ने काबिलियत हासिल कर ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले भी नियति कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। में नियति ने आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो पर शिव तांडव स्त्रोत बजाया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। 2023 में नियति ने 65 सेकंड में 15 वाद्य यंत्रों पर राष्ट्रगान बजाया। इस उपलब्धि पर उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। संगीत के साथ नियति साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, एनिमेशन और रैप क्रिएशन में भी माहिर है। हिंदी और अंग्रेजी में कविता और गीत लिखने वाली नियति को अब तक 17 देशों में सम्मान मिल चुका है। संगीत में रुचि के साथ ही नियति पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही हैं। बचपन में एक छोटे से खिलौने के साथ शुरू हुआ संगीत का ये सफर आज नियति को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा चुका है और उनकी ये कामयाबी आज की नई पीढ़ी के लिए एक नई मिसाल बन गई है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात उन लिटिल मास्टर्स की जिन्होंने सीधे समंदर को चुनौती दी है। 7 साल का ईशांक और 9 साल के नैया ने स्विमिंग के ऐसे जोरदार रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं जो आज बड़े बड़े अनुभवी तैराक उन्हें सलाम कर रहे हैं।
2: माइकल फेल्प्स, केटी लेडेकी, मार्क स्पिट्स, पानी की मौजूदगी के चलते अब तक ब्रह्मांड का इकलौता नीला ग्रह है हमारी धरती। और उसी धरती के ये वो 3 तैराक हैं जिन्होंने धरती के पानी पर फतह पाई है। धरती के सबसे सफल स्विमर इन 3 अमेरिकी स्विमर्स में से हर एक ने ओलंपिक में तैराकी के इतने मेडल जीत रखे हैं कि आप अपनी उंगलियों पर गिन नहीं सकते। लेकिन ये गुजरे हुए कल की तस्वीर है। आने वाले कल की तस्वीर कैसी हो सकती है ये आपको हम दिखाते हैं। पानी पर तैरती उम्मीदों की तस्वीर है, वो तस्वीर जो सपना दिखाती है, वो सपना जो अभी तक अधूरा है लेकिन कल पूरा हो सकता है। ओलंपिक में भारत के लिए स्विमिंग का मेडल लाने का सपना है। और इस उम्मीद को पंख लगा रखे हैं इन दोनों टैलेंटेड यंग स्विमर्स ने। इनमें से एक है 9 साल की अनैया जगदीश कुंती कारकर और दूसरे 7 साल के मास्टर ईशांक। इन दोनों नन्हे तैराकों ने हाल ही में स्विमिंग के ऐसे जोरदार रिकॉर्ड बनाए हैं कि हर कोई हैरान है। रांची के रहने वाले 7 साल के मास्टर ईशांक ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत बड़े बड़े तैराक नहीं कर पाते। इस बच्चे ने लहरों से लड़ते हुए 29 किलोमीटर का सफर 9 घंटे 50 मिनट में तय करके इतिहास रच दिया है। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि समंदर के जिस रास्ते को ईशांक ने तय किया है वो समंदर में सबसे मुश्किल रास्तों में एक माना जाता है। इस कामयाबी ने ईशांक को दुनिया का सबसे कम उम्र का पाक स्ट्रेट तैराक बना दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि हिम्मत, अनुशासन और जुनून का एक लंबा सफर है। समंदर की लहरों से टकराने का जुनून ईशांक के लिए नया नहीं है। ईशांक ने बहुत छोटी उम्र से ही पानी से दोस्ती कर ली थी। रोजाना घंटों की प्रैक्टिस, कड़ी ट्रेनिंग और मानसिक मजबूती इन सब ने मिलकर ईशांक को आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तैराकों में से एक बना दिया है। समंदर में जिस रास्ते को ईशांक ने नापा है वो रास्ता दुश्वारियों से भरा है। यहाँ समंदर की लहरें तैराक का कड़ा इम्तिहान लेती हैं, तेज धाराएं उसका रास्ता रोकती हैं और मौसम उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेता है। ऐसे में इन सब का सामना करने के लिए केवल शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है जो ईशांक में साफ दिखाई देती है।
3: छत्रपति शिवाजी महाराज की।
2: ईशांक की इस उपलब्धि की अहमियत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पार्क स्ट्रीट वो जगह है जहां पहले तमाम अनुभवी तैराक भी हार मान चुके हैं। ऐसे में 7 साल के बच्चे का इसे पार करना अपने आप में असाधारण है। और कुछ ऐसा ही असाधारण करके दिखाया है मुंबई की रहने वाली अनैया जगदीश कुंती कारकर ने। खेलने कूदने की उम्र में इस 9 साल की बच्ची ने स्विमिंग में जोरदार रिकॉर्ड कायम किया है। मुंबई की अनैया ने समंदर में 17 किलोमीटर की दूरी तैर कर पार की। आपको बता दें कि समंदर के रास्ते अटल सेतु उल्वा से गेटवे ऑफ इंडिया की दूरी 17 किलोमीटर है जिसे अनैया ने 4 घंटे में पार कर इतिहास रच दिया। 1 मई की रात करीब 2 बजे अनैया ने अटल सेतु के पास उल्वे से तैरना शुरू किया और सुबह करीब 6 बजे वो गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गई, यानी संकल्प के जरिए अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। ईशांक और अनैया ने ये साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। सही जज्बा, कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन हो तो छोटी उम्र में भी बड़े बड़ों के रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं। रांची से आकाश कुमार और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: दिल्ली में पर्यावरण की रक्षा और ईंधन बचाने के लिए नए नए प्रयोग किए जाते हैं। अब केंद्रीय शहरी आवास विकास मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से हाइड्रोजन बस सर्विस शुरू की गई है। 35 सीटों वाली दो अत्याधुनिक हाइड्रोजन बसें सेंट्रल विस्टा इलाके में दौड़ने लगेंगी। इस परियोजना के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डीएमआरसी को 35 सीटों वाली दो अत्याधुनिक हाइड्रोजन बसें उपलब्ध करवाई हैं। ये पेट्रोल बचाएंगी और पर्यावरण की रक्षा करेंगी।
3: दिल्ली की सड़कों पर अब हाइड्रोजन की जादुई शक्ति दिखेगी। इससे न सिर्फ पेट्रोल की बचत होगी बल्कि राजधानी की हवा भी शुद्ध रहेगी। दिल्ली के वीवीआईपी सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली शटल बस सर्विस शुरू हो गई है। अभी फिलहाल दो हाइड्रोजन बसेस चलाई जा रही हैं।
4: टुडे इज द डे ऑफ द हाइड्रोजन बसेस, दे एंजॉय द राइड एंड यू नो लेट अस कम टुगेदर टू सेव फ्यूल।
3: इस बस सेवा से केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी, ताकि सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों की दफ्तरों तक आवाजाही आसान हो सके। इससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता भी कम होगी। ये बसें सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेंगी। हर 30 मिनट में एक बस उपलब्ध होगी। सबसे बड़ी बात, इन बसेस में जीपीएस ट्रैकिंग और सीसीटीवी सिस्टम भी लगाए गए हैं और किराया 10 और 15 रुपए रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the big...

0: and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search Classic Hip-Hop or tell your device to play Classic Hip-Hop on TuneIn to listen.
2: शनि देव की जयंती पर क्या होगा पूजा विधान? शनि देव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान? और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण घटाने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा फैसला, बिना पीयूसी वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल, 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन। न्यू जेनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम। प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत, नेफेड के जरिए 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी, किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाएगा सीबीआई का नया पोर्टल एआई फीचर्स लेस नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम, अब है लॉन्च, नकली दस्तावेजों को पकड़ना आसान। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को जल्दी मिलेगी राहत, मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को केरलम के समुद्री तट से टकराएगा मॉनसून, समय से पहले दस्तक दे रहा है मॉनसून। बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी लुभा रही रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता, अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर ने भी अवधपुरी में खरीदी प्रॉपर्टी, द सरयू प्रोजेक्ट की जमीन में किया निवेश। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई, रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देश। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में दिखा आस्था और विश्वास का संगम, भगवान कृष्ण के पावन धाम में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान, दान पेटियों के पहले चरण में 11 करोड़ से ज्यादा राशि की गणना।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब केवल अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है, यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर हर वीडियो कुछ सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी कर दी जाती है कि वो असलियत से कोसों दूर लगती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर आगे शेयर करने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज फैक्ट चेक में जिन 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे उसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में नई सरकार के गठन के बावजूद टीएमसी के लोगों पर हमले रुक नहीं रहे हैं, बीच सड़क पर एक टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला किया गया, सच्चाई क्या है आगे करेंगे पड़ताल। दूसरी खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुस्लिम ईसाइयों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर राज्य से बाहर निकाला जा रहा है, इस वायरल दावे की सच्चाई क्या है करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
4: चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक का सफर और सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर एक युवक दूसरे युवक को बुरी तरह से पीट रहा है, वहां पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं।